सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएंगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। अच्छा, ओम शांति।

0: क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। प्रबंधन का तनाव क्यों होता है? कारण है किसी काम को टालते रहना, यानी कोई काम जिस समय किया जाना चाहिए था और जिस समय वह किया गया उसके बीच का समय अंतराल इस तनाव का कारण बन जाता है। टेक्नोलॉजी गैप क्या होता है? यह है काम को करने के लिए किसी बेहतर तरीके का उद्योग में आ तो जाना, लेकिन उसे अभी तक अपनाया न जाना। जो काम आखिरकार किया ही जाना है, उसे आज ही क्यों न कर दिया जाए और तनाव से बचा जाए। यदि काम करने का कोई बेहतर तरीका है, तो इससे पहले कि कोई और उसे अपनाकर आगे बढ़ जाए और हमें फिसड्डे बना जाए, हम ही उस तरीके को क्यों ना अपना लें। जब हम जानते हैं कि अमुक चीज बुरी है, तो उसे अभी ही क्यों ना छोड़ दिया जाए। नए वर्ष का इंतजार क्यों किया जाए? कल का इंतजार क्यों किया जाए? क्या आप विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाला काम करना चाहते हैं? तो हर उस चीज को, हर उस काम को रोक दें जो विश्व स्तरीय से कमतर हो। क्या आप किसी ऐसी गलती के लिए माफी मांगना चाहते हैं जो हुई तो पहले कभी थी, लेकिन उसका पता आपको अभी चला है? तो ये माफी तुरंत मांग लें, वरना आप अपराध बोध में उलझे रहेंगे। क्या आपको कोई बढ़िया और शानदार बात सूझी है? तो उसे तुरंत कर डालें, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और को भी वही काम सूझ जाए, क्योंकि फिर तो आप उसकी नकल ही करते नजर आएंगे। इसीलिए तो कहावत है, कल करे सो आज कर,

नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार जांगड़ा, हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग। हरियाणा पुलिस व होमगार्ड आपकी सेवा में हर समय तत्पर है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

बुद्धिमान और मूर्ख करते तो वही काम है, लेकिन बस अलग अलग समय पर। बुद्धिमान उसे तत्काल कर देता है, लेकिन मूर्ख उसे अंतकाल में करता है। जीवन ऐसे जी जैसे आने वाला कल आज ही आ गया है। हम स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का महत्व तो समझते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी कोशिशों को टालते रहते हैं। वित्तीय प्रबंध और निवेश के महत्व को तो समझते हैं, लेकिन उस दिशा में उठाए जाने वाले कदमों को टालते रहते हैं। हम बोर्ड की परीक्षा का महत्व अच्छी तरह समझते तो हैं, लेकिन तैयारी तब तक नहीं करते जब तक कि परीक्षा सिर पर ही न आ जाए। कागजों को पेंडिंग फोल्डर में डाल देना हमें सबसे सुविधाजनक लगता है। जीवन में आने वाले सारे दबाव व तनाव कुछ और नहीं, बस परत दर परत बढ़ता गया मनोवैज्ञानिक बोझ है, जो इस समय अंतराल के कारण होता है कि कोई काम कब किया जाना था और आखिरकार कब किया गया। काम को कल पर टालते रहने की आदत जीवन रेखा को छोटी करने का सबसे अच्छा तरीका है। टालते रहना पिछड़ने वालों की पहचान है। जीवन हमारी मृत्यु को नहीं टालेगा, इसलिए हम भी जीवन को न टालें। किसी दिन जैसा कोई दिन नहीं होता, जो है आज ही है। यदि आने वाला कल आया तो मैं उसे बता दूंगा कि यह काम मैं बीते कल में पहले ही पूरा कर चुका हूं। भय रहित जीना ही जीना है। अगर आपने कोई चोरी नहीं की है तो किसी से डरने की क्या जरूरत है। जिसका जीवन खुली किताब हो वही वास्तव में स्वतंत्र है। अपने बारे में की जा सकने वाली सबसे अच्छी प्रशंसात्मक टिप्पणी है,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

यानी नुकसान तो वह पहले ही उठा चुका होता है। क्या आपने लिफ्ट के लिए बटन दबा दिया है? तो अब थोड़ा इंतजार करें, अपने अनुसार उसे जब आना होगा वह आ ही जाएगी। लिफ्ट के आने के लिए अधीर होने से आप फर्श पर पैर पटकते हैं, अपनी पुतलियों को ऊपर नीचे घुमाते हैं, जैसे आपके ऐसा करने से लिफ्ट की गति बढ़ जाएगी और वह आपके तल पर दौड़ी चली आएगी। क्या आपने वेटर को अपना ऑर्डर दे दिया है? तो अब थोड़ा इंतजार करें, यह अधीर हो उठने से इंतजार कुढ़न और चिढ़ भरा हो जाता है। तो इन सारे उदाहरणों से आपने यह तो समझ ही लिया होगा कि इंतजार करने और अधीर हो उठने में बहुत ही बारीक अंतर है। अगर हम इस अंतर को मिटा देते हैं तो हम निश्चित रूप से शांतिपूर्ण प्रगति कर सकते हैं बजाय तनाव

हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

जो निर्णय लेने थे क्या आपने ले लिए हैं? क्या उनके लिए आपको जो कुछ भी करना था आपने कर लिया है? यदि हाँ तो अब इंतजार करें, बस इंतजार। उस चीज या किसी भी चीज के लिए आकुल व्याकुल ना हो उठें, बल्कि इंतजार करें। इस इंतजार में आपको शांतिपूर्ण सफलता की कुंजी हाथ लग जाएगी। अधीर हो उठना भी कभी कभी सफल बना देता है, लेकिन वह सफलता बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होती है। जब यही सफलता शांतिपूर्ण रास्ते पर चलकर हासिल की जा सकती है, तो तनाव भरे रास्ते पर क्यों चले? आध्यात्मिक उत्थान के लिए जरूरी गुणों में से एक है अपने हिस्से का काम पूरा करना और फिर बस इंतजार करना। कई लोग जो आध्यात्मिक अनुभव पाने और इसकी नीरव शांति महसूस करने को बड़े व्याकुल होते हैं, वे दरअसल इसी प्रवृत्ति संबंधी रोग से ग्रस्त रहते हैं, जिसे अधीर होना कहते हैं। अधीर हो उठने पर मिलने वाले अनुभव में आप वांछित अनुभव के साक्षी होने के बजाय अपने अहम के साक्षी बनकर रह जाते हैं। वह तो केवल इंतजार में डूबा साक्षी होना ही है, जिसमें आध्यात्मिक अनुभव स्वयं को प्रकट करता है। आप अधीर हो उठना छोड़ दें तो तनाव भरी सफलता भी आपसे छूट जाएगी। अपने हिस्से का काम करना और इंतजार करना सीख लें। शांतिपूर्ण प्रगति का यही रास्ता है। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

0: दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों को अगर हम सही समय पर समझ लें और उसके अनुसार अगर हम अपने जीवन शैली में वो परिवर्तन ले आए तो स्वस्थ रहना संभव है। कई बार हम ये समझ लेते हैं कि स्वस्थ रहना तो असंभव सी बात है, कोई ना कोई प्रकार की व्याधि या बीमारी आती ही रहेगी, ऐसा कई लोग मानते हैं। मगर कुछ चीजें जो हम खुद अपनी गलतियों की वजह से अपने स्वास्थ्य में तब्दीलियां ले आते हैं या अस्वस्थता या रोग को निमंत्रण दे देते हैं, उससे तो कम से कम हम अपने प्रयासों से बच ही सकते हैं। सहज स्वास्थ्य के हर एक कड़ी में हमारा प्रयास यही होता है कि हम स्वास्थ्य को अपने करीब बनाए रखें और रोगों को दूर रखने के लिए जो प्रयास हम कर सकते हैं वो प्रयास हर कोई करने में सक्षम हो, और सही जानकारी से यह संभव भी है। आज इन्हीं विषयों पर हमें सही जानकारियां देने के लिए स्वास्थ्य जगत के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़ रहे हैं। पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के जाने माने एक्सपर्ट हैं और भारत के सुप्रसिद्ध ऑस्टियोपैथ्स में से एक हैं। भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और अभी भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो ये बात समझने वाली है कि अगर हम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सही जानकारियां हमारे पास रखते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र का काम करते हैं रोगों से लड़ने के लिए और रोगों को दूर रखने के लिए। सही जानकारी के अभाव में लोग गलत चीजें कर लेते हैं और फिर उसके खामियाजा रोग के रूप में या व्याधि के रूप में भुगतना पड़ता है। आज एक ऐसा ही बड़ा रोग या ये कहें एक ऐसी बीमारी जिससे लोग ग्रस्त हैं वो है डायबिटीज। डायबिटीज को जब हम नाम सुनते ही हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो ऐसी बीमारी है, इसके साथ जीवन भर रहना है। अब जीवन भर रहने के बारे में सोचें न सोचें तो भी कम से कम डायबिटीज के मरीजों को क्या करना चाहिए, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ये चीज समझने वाली बात है। प्रायः ये चीज सुनाया जाता है कि भाई अभी आपको अपने खान पान को बदलने की जरूरत होगी, आपका जो फूड सिस्टम है उसे चेंज करना है, ये चीज बताया जाता है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जब डायबिटीज के मरीजों को अपने आहार पद्धति में बदलाव लाने की बात कही जाती है तो क्या बदलाव है, किस चीज को बदलने की जरूरत?
1: डायबिटीज का मरीज जब पहली बार उस बीमारी से ग्रसित होता है या उसे मालूम चलता है कि वो ग्रसित है और उसके परिवार में किसी को भी ये समस्या नहीं है या उसकी हम उम्र जो मित्र हैं उनमें से किसी को ये समस्या नहीं है, तो उसको एक बहुत बुरा झटका लगता है। उसको ऐसा लगता है कि वाय मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, और वो अपने आप को कोसता है और तुरंत एक प्रण करता है कि मैं अपने आप को अब सुधार के रखूंगा, मैं अपने आप को ठीक से रखूंगा। और अमूमन लोगों में, भैया मुझे कहना नहीं चाहिए, वो इस मोटिवेशन को हार्डली 15 दिन 20 दिन एक महीना रख पाते हैं। और वो जैसे ही उनको डायबिटीज होती वो तुरंत भोजन पे कंट्रोल करना शुरू करते हैं और उनको उससे अच्छा लगने लगता है। फिर वो जब बाहर समाज में निकलते हैं या वो अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं या घर पे भी देखते हैं कि सब लोग तो खा रहे हैं यार, मैं क्यों नहीं खा पा रहा, तो वो अपना संयम जो है उसको छोड़ देते हैं और फिर से खाने लगते हैं। और एक बहुत गलत सोच वो अपने दिमाग में विकसित करते हैं कि अरे मैं दवा तो खा रहा हूं, भोजन को कंट्रोल क्यों करूं। एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा, मेरे एक बहुत अच्छे पेशेंट हैं, उनको मैं बहुत रेगुलरली देखता हूं। वो डायबिटीज से ग्रसित हैं, वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, वो इंजेक्शन लगाने के बाद चॉकलेट खाते हैं कि मेरी इंसुलिन गिर रही है। मैंने एक दो बार उनको धीरे से समझाने की कोशिश करी कि आप इंसुलिन की यूनिट कम कर दीजिए, आपको चॉकलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर वो कहते नहीं नहीं मेरी शुगर गिर रही है। उनका मन जो है वो कंट्रोल में ही नहीं है, वो बिना चॉकलेट खाए रह ही नहीं पा रहे हैं और उस स्वाद के लिए वो अपने शरीर को नुकसान दिए चले जा रहे हैं। सो सबसे पहली बात, अगर आपको ये बीमारी हुई है तो ये आपको संयम से इसका जो अपना भोजन है, आपका दिनचर्या है, आपके रहन सहन को संयम से रखना पड़ेगा। कल मैंने अपने लेक्चर के दौरान, बातचीत के दौरान आपसे बोला था कि डायबिटीज एक अपॉर्चुनिटी की तरह है अपने आप को फिट रखने के लिए। आपने जो भी गलत करना था कर लिया, जिस उम्र तक आप बेछूट खा रहे थे, बिना एक्सरसाइज के रह रहे थे, जब मन चाह रहा था तब खा रहे थे, जितनी बार मन कर रहा था खा रहे थे, जो आपको अच्छा लग रहा था वो खा रहे थे, जो आपको दिख रहा था वो खा रहे। डायबिटीज एक अपॉर्चुनिटी है आपको फिट रखने के लिए। आप पहले जो भी खा रहे थे, जितना भी खा रहे थे, जैसे भी खा रहे थे, उसको अब छोड़ दीजिए, संयम से खाना शुरू करिए। आप अच्छा खा, कभी हमारा मन कुछ, हमको अब ये ध्यान देना है कि पहले हम जो खाते थे, जितना खाते थे, जितनी बार खाते थे, जो हमारा मन करता था वो हम खाते थे, उस पे अब हमको संयम रखना है। हमको बहुत कुछ अपने शरीर के लिए अब खाना है, न कि मन के लिए। कभी कभार महीने दो महीने में एक बार थोड़ा बहुत मन का जरूर खा लीजिए, मगर प्लीज अपने शरीर की अब सुनना शुरू करिए। आपके शरीर ने आपको बताया है कि उसको एक समस्या हो रही है, और उस समस्या का निवारण सिर्फ अपनी जिह्वा पे कंट्रोल करना है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने यह भी कहा है कि वाणी से व्यवहार, वाणी से व्यापार। मतलब अगर आपकी जिह्वा ठीक है तो आपका व्यापार भी बढ़ेगा और आपका व्यवहार भी बढ़ेगा। और मैं एक डॉक्टर होकर उसमें सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि आपकी जिह्वा से अब स्वास्थ्य भी है। अगर आप अपनी जिह्वा पे कंट्रोल कर लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और आप डायबिटीज रिवर्सल भी अपने साथ कर सकते हैं।
0: ये बात प्रायः पूछी जाती है कि भाई ठीक है, हम पहले जैसे तो चीजें नहीं खाएंगे, या हम पहले जितनी मात्रा में खा रहे थे या जितने बार खा रहे थे उन चीजों को बदलने पर तो लोग प्रयासरत होते हैं। अक्सर लोग फ्रूट्स के बारे में ये बात करते हैं कि भाई पहले बड़े चाव से हम फ्रूट खाते थे, अब प्रश्न उठता है कि भाई अब क्या मेरे को फ्रूट्स खाना छोड़ देना पड़ेगा। चीनी तो लोग समझ लेते हैं कि चलिए चीनी के बिना चाय पीना शुरू करते हैं, या मीठे चीजों से परहेज करना शुरू करते हैं। फ्रूट्स के बारे में क्या ख्याल है? फ्रूट्स को तो हम बहुत ही हेल्दी चीजें समझते हैं।
1: सबसे पहली बात पे कहना चाहूंगा कि आपको जो चीज हमेशा के लिए छोड़नी चाहिए वो है चीनी। आपने खुद ही बोला भैया, चीनी के साथ साथ कॉर्न, शुगर सिरप और चीनी के जो भी डेरिवेटिव्स हैं, जैसे शहद या हनी हुआ, गुड़ हुआ, इन सब चीजों को आपको छोड़ देना चाहिए। आप फल जो हैं, वो कोई भी फल जो आप खा रहे थे, उसमें भी आपको कुछ फलों के लिए थोड़ा सा संयम करना पड़ेगा। और इसमें भी जो दो सबसे जरूरी फल हैं, जिसको हम रोकने को कहते हैं, वो है केला और आम। ये भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कभी केला मत खाइए या कभी आम मत खाइए, मगर एक फाग आम और आधा केला आप खा सकते हैं। आपके लिए सबसे अच्छी बात ये हुई कि आप सेब हुआ, नाशपाती हुआ, वाटरमेलन हुआ, खरबूजा हुआ, पपीता हुआ और जामुन हुआ, ये सारी चीजें आप बहुत आराम से खा सकते हैं। सुबेरे आप सेब खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, आप चेरीज खा सकते हैं, ब्लूबेरीज खा सकते हैं। आपके एरिया में जो आपको फल मिलता है वो आप जरूर खा सकते हैं। ये चीज का ध्यान बस देने लायक है कि हमें फल खाना है, हमें फल का रस जो है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा चीनी होती है और उसमें फाइबर जो है वो जीरो होता है। इसीलिए जब हम फ्रूट खाते हैं तो हमें फ्रूट के साथ फ्रूट शुगर, उसके न्यूट्रिएंट और उसके सारे के सारे जो खुज्जा या फाइबर है वो भी हमें मिलता है, और ये हमको बहुत आराम देता है। एक चीज का हमको पहले फल खाने से भी या भोजन करने से भी पहले हमको सबसे जो चीज ध्यान में रखनी चाहिए

0: करें जो बहुत ज्यादा हाई फैट कंटेंट है जिनमें, या हाई शुगर कंटेंट है, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इसको हम प्लीज बंद करें। और इसको हम रिप्लेस किस चीज से करें, चेंज किस से करें, होल ग्रेन से, मतलब जो भी मोटे अनाज हैं और जो पूरे अनाज हैं उससे इसको रिप्लेस करें। सिंगल ग्रेन, एक बार में एक ही अनाज का हम सेवन करें। जो सब्जी हमें पसंद है हम हर सब्जी खा सकते हैं, हम जो फल हमें पसंद है संयम में हम सारे फल खा सकते हैं। और हमको कोशिश करना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा ऑयल, बहुत ज्यादा सॉल्ट, बहुत ज्यादा फ्राइड, ये सारी चीजें छोड़। और आप अगर इसे छोड़ देंगे तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। डायबिटीज की जो सबसे खराब बात ये है कि वो मालूम चलने के बाद भी शरीर में कुछ बहुत परिवर्तन या चेंजेस नहीं आते हैं, तो आदमी ये मानने को तैयार नहीं रहता कि उसके साथ कुछ हो गया है। वो थोड़ा सा थक रहा है तो वो कहता है अरे यार ज्यादा काम कर लिए थक गए हैं। आपको थकान लग रही है आप उसका बहाना बनाने लगते हैं। आपके शरीर में स्फूर्ति नहीं है आप बोलते हैं हमने आज ज्यादा काम कर लिया, या आज मैं ज्यादा चल दिया हूं। आपको झटका कब लगता है, या तो उसकी वजह से आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, या आपकी कोई फोड़ा या फुंसी आपके शरीर में, या कोई कट लगा है या चोट लगी है वो ठीक नहीं हो रही हो, हील नहीं हो रही हो, या आपकी आंख पे चश्मा का नंबर बार बार बदल रहा हो, आपको पेशाब पे कंट्रोल छूट गया हो, आपको बाथरूम पे कंट्रोल छूट गया हो, आप एकदम परेशान होने लगे, तब आप फ्रोजन शोल्डर हो जाए, आपको पता चला अपना दांत निकलवाने गए वहां डॉक्टर ने टेस्ट किया और मालूम चला अरे आपको तो डायबिटीज है, तब आपको झटका लगा कि अरे ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। तो जो आपके शरीर में कोई जब बदलाव नहीं आ रहा होता है तो आप फिर से बेछूट खाने लगते हैं। तो प्लीज ये एक शांति से अंदर चल रहा हुआ एक बीमारी है, इसको शांत ही रहने दें, अपने भोजन को कंट्रोल करके रखें। इवन भैया ये तक कहा जाता है अगर आप बीमार होंगे, वायरल इन्फेक्शन होगा, आप बहुत स्ट्रेस में होंगे, तब भी आपका शुगर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए एक्सरसाइज करिए, संयम से भोजन करिए और आप एकदम ठीक रहेंगे।
1: एक अवधारणा जो डायबिटीज के बारे में अक्सर पूछी जाती है या कई लोग अपने मन में पाल के रखते हैं, डॉक्टर साहब जैसे आप ये कह रहे हैं कि एक साइलेंट बीमारी है, ये पता नहीं चलता, यकायक पता चल गया कि कोई दांत के दर्द के लिए गया, वहां दांत निकालवाना था तो उन्होंने ब्लड टेस्ट करने को बोला तो शुगर निकल आया, और इत्यादि अनेक चीजों में लोगों को ये चीजें पता चलती है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि भाई हमारे परिवार में तो किसी को डायबिटीज है नहीं, तो हमें भी आएगा नहीं, हमें होगा नहीं। वैसे भी हमारी उम्र तो अभी है, हम अभी जवान हैं, हम 30-40 साल के हैं, तो हमें कुछ नहीं होगा, हमारे घर में भी किसी को डायबिटीज नहीं है और ना मुझे हो सकता है क्योंकि मैं जवान हूं, ये भी लोग कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए कि हमें क्या इन चीजों के बारे में सजग होने की जरूरत है।
0: ये एक ऐसी बीमारी है जो माँ के पेट में भी आपको मिल सकती है, जेस्टेशनल डायबिटीज उसे कहते हैं, और ये आपके जीवन के अंतिम पड़ाव में भी आपको मिल सकती है। और मैं सबसे कहता हूं इससे मिलना भी नहीं है, और अगर बाई चांस ये आपको मिल गई है तो भोजन में संयम करके इसको अपने एकदम कंट्रोल में रखना है। आपको इसको अपने कंट्रोल में रखना है, न कि इसके कंट्रोल में आप चले जाइए। और ये जो बीमारी है वो आपकी जिह्वा से ही आपको परेशान करती है, जितना आप उसको संभाल लेंगे उतना आप इससे बचे रहेंगे। एक एग्जाम्पल से इसको समझाना चाहूंगा। मेरे चिकित्सालय में आज ही एक डॉक्टर आए हैं, उनको डायबिटीज हो गया है, ही इज ओनली 32, 32 साल के हैं मात्र, और ये मालूम चला कि वो अल्कोहल के सेवन की वजह से उनको डायबिटीज है, और उनके घर वाले बहुत परेशान है। वो एक मतलब 32 साल के यंग डायनेमिक और एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, और घर वाले तो ये बोल रहे हैं कि उनको 6 महीने ये आदत पड़ी और जिसकी वजह से वो डाउनहिल चले गए, उनको डायबिटीज हो गया। ये किसी को भी हो सकती है, और आपको अपने पैंक्रियास को बचा के रखना है। मैंने बोला बाहर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से आपका पैंक्रियास गड़बड़ हो सकता है, आपको हो सकती है, आप बेछूट खाए चले जा रहे हैं। आप देखिए ना, आप एक बड़ी सीधी बात समझिए कि आप सोचिए, चौकीदार है आपके पास कोई, आप उसको रात में ड्यूटी करने के लिए उठा के रखे हैं, वो रात में ड्यूटी कर रहा है, पर जब उसके सोने

0: इतना समय आ गया तब भी आप उसको हर 15 मिनट पे उठा दे रहे हैं, वो कैसे काम करेगा? हम और आप ही हैं, हम लोग अगर 4 घंटा या 6 घंटा सोते हैं और हर 15 मिनट में कोई उठा रहा है हमको या 20 मिनट पे हिला रहा है तो हम कैसे सो पाएंगे? ये और आप ये समझिए, हिलाना या उठाने का मतलब है हम कुछ भी मुंह में भोजन डालते हैं, पैंक्रियास को उठ उसके लिए काम करना पड़ता है। और आप जितना ज्यादा मीठा, जितना ज्यादा रिफाइंड, जितना ज्यादा प्रोसेस खाएंगे उतना ज्यादा उसको इंसुलिन निकालना पड़ेगा। तो आपको ये कभी भी मिल सकती है, ये एकदम भेदभाव नहीं करती है, न पुरुष में, न महिला में, न अमीर में, न गरीब में, न उम्र में, न लिंग में, ये किसी चीज में कोई भेदभाव नहीं करती है, किसी को भी मिल सकता है। आपके माता पिता को नहीं है तो आपको इसके मिलने के चांसेस बहुत बहुत कम है। मैंने अपने अपने ही एक क्लिनिक में ही देखा कि माता पिता को नहीं है, बच्चे को हो गया, वो बड़े परेशान है क्यों हो गया, पर वो उनके खान पान, उनकी बहुत सारे अननोन कॉजेस भी हैं। तो अगर हम अपने भोजन को कंट्रोल कर लें तो हम इससे बच सकते हैं, और अगर हमें हो भी गई है डायबिटीज तब भी हम अपने भोजन को कंट्रोल कर लें तो हम इससे बचे रह सकते हैं। आप मेरी बात मान लीजिए, अगर आप 80-85 किलो के हैं और आपको डायबिटीज हो गई है, आप अपना 7 से 8 किलो वजन कम कर लेंगे, आप नॉर्मल हो जाएंगे, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा, आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: यानी ये बात स्पष्ट होती है कि अगर मैं बार बार खा रहा, बीच बीच में खा रहा हूँ, भले मैं छोटी मात्रा में खाऊं, अगर मैं सतत ये कार्य कर रहा हूँ तो मैं अपने पैनक्रियास को आराम करने का मौका ही नहीं दे रहा, और उसकी वजह से ये मुझे हाई रिस्क पर डालती है, डायबिटीज के मार्ग पर मुझे अग्रसर करती है। साथ ही साथ अगर मैं अपने जीवन शैली के बारे में जागरूक नहीं हूँ, अपने वजन के बारे में जागरूक नहीं हूँ, अगर हमारे घर में डायबिटीज की हिस्ट्री हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को ये चीज हो सकता है, ये बात समझ में आ रहा है, और इससे ये पता चलता है कि हम सबको जागरूक रहने की जरूरत है। एक और चीज मैं आखिर में पूछना चाहूंगा, वो ये है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो डायबिटीज के मरीजों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए या उसे बिल्कुल छूने की जरूरत नहीं होनी चाहिए?
0: नंबर वन जो सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं वो है कोल्ड ड्रिंक। नंबर दो मिठाई और आइसक्रीम। नंबर तीन मैदे से बनी हुई सारी प्रोसेस चीजें। और इन सब जो भी चीज आप देख रहे हैं उसमें एक इंग्रेडिएंट कॉमन है, वो है केन शुगर। केन शुगर, कॉर्न सिरप शुगर और किसी भी तरह का स्वीटनर जो आप जो नेचुरल है वो आपके लिए जहर है, इसको छोड़ देना चाहिए। और ये सब छोड़ने के साथ साथ भोजन की क्वांटिटी भी कंट्रोल में खानी चाहिए। इतना आप कर लीजिए, आप इस समस्या से पूरा बाहर निकल आएंगे।
1: बहुत ही ज्ञानवर्धक और फायदेमंद बातचीत आज हमारी हुई है दोस्तों। डॉक्टर राहुल मोदी जी ने बड़ी स्पष्टता से हमें डायबिटीज से बचाव के लिए, अगर आप डायबिटीज के शिकार नहीं है तो कैसे उसके रास्ते पे शिकार बनना नहीं है, उसके लिए कौन सा मार्ग चुनना है ये भी बताया। साथ ही साथ अगर आप डायबिटीज के मरीज हो चुके हैं तो भी आप इससे बचकर बाहर कैसे निकल सकते हैं और क्या हमें करने की जरूरत है, ये चीज हमें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आज की बातचीत से हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, अपने परिवार में, स्वजनों का, मित्रों का, संबंधियों का, साथ में काम करने वाले सहकर्मियों का, सभी का ख्याल रख सकते हैं। सिर्फ भोजन पर ध्यान देना है, हम चीनी को, मैदा को, प्रोसेस्ड फूड को, अगर इन चीजों को रोक लें तो फिर हम अपने स्वास्थ्य की ओर एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आज जो चर्चा हुई है वो मेरे लिए तो फायदेमंद रही ही है, मगर मैं आशा करता हूँ कि आप सभी श्रोता मित्रों के लिए ये जानकारी लाभप्रद होगी और आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगी। आज डॉक्टर राहुल मोदी जी ने हम सबके मन के अंदर जो भी प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर दिया, और हमें सहज स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करने के लिए, डायबिटीज से बचने के लिए मार्गदर्शन दिया। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज हमने डायबिटीज और उससे संबंधित विषयों पर जानकारी हासिल की है। ये सिर्फ जानकारी जानकारी ना होकर हमारे जीवन की धारणा बने, हम एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ विश्व, एक स्वस्थ राष्ट्र को बना सकें, इसकी ओर हम सभी अग्रसर हों। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हम ज्योति बिंदु रूप चैतन्य शक्ति आत्मा हैं और हमारे पिता परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है। परमात्मा के साथ हमारा सीधा संबंध है और इस दिव्य अविनाशी संबंध की निरंतर स्मृति से हम आत्माओं में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं।
1: तो यहाँ जब मैंने भाषा के परे जाने का भाव अभी सीखा नहीं, या अभी मैं उस प्रोसेस में हूँ, तो मैं उस पूरे जो रिएक्शन है या जो मुझे मिल रहा है उसे अनुभव कैसे करूँ?
2: उसका सबसे पहला जो फर्स्ट क्या कहें चेकिंग, मतलब अपना पैरामीटर चेक करना कि जैसे ही मैं परमात्मा को याद करूँ राइट तरह से एंड राइट एंटिटी को,
1: मतलब ओके पूरी पहचान के साथ
2: कनेक्टिंग टू द राइट एंटिटी इन द राइट वे, आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दोज क्वालिटीज जो हम सिर्फ कह रहे हैं अभी तक, आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इन माई सेल्फ एंड द रिजल्ट ऑफ दैट विल बी कि हमारे जो संस्कार जो आज दिन तक हम कहते थे ये तो मेरी नेचर है, ये तो चेंज नहीं हो सकती, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, वो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली इतनी पावर भरती जाएगी कि मेरे लिए अपने आप को परिवर्तन करना जो आज दिन तक हम समझ रहे थे बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि आप देखो कोई भी रिश्ता अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम उस रिश्ते में अगर हमें एनर्जी मिलती है तो हमें कोई भी रिश्ता एम्पावर कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि जो ह्यूमन बींग्स के साथ हमारे रिश्ते हैं वो हमें एम्पावर नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आज मेजॉरिटी सोल्स थोड़ी सी
1: डिप्लीटेड
2: वीक हो गई हैं तो इसलिए हमें सोल टू सोल कुछ बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा है। नहीं तो आज किसी से मुझे इतना प्यार मिले अनकंडीशनल लव मिले तो मुझे अपनी कमजोरियों को ओवरकम करना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन आज एक पेरेंट एज अ चाइल्ड मुझे बोलता ही रहे तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही, तुम और अगर अच्छा अच्छा बोल भी रहा लेकिन खुद इतने दर्द में है तो उनकी दर्द की वाइब्रेशन मुझे मिलती है तो आई कंटिन्यू टू गेट डिप्लीटेड। तो इवन एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड टूडे द बॉडी फॉर्म parent and a child, parents give a lot of love to children. But parents are in a lot of pain.
1: खुद किस situation में है? तो परमात्मा कभी खुद थोड़ा pain में जाएंगे?
2: That's the point. तो जैसे ही आपका relationship उसके साथ जुड़ता है जो इतना powerful है, तो उससे आपको vibration कौन सी आएगी? आज एक parent भी एक बच्चे के साथ ये relationship जोड़ सकता है, not like God. But if a parent has the power कि वो unconditional love दे stability के साथ, बच्चा कितना भी दर्द में है पेरेंट दर्द में ना जाए, तो पेरेंट की जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी बच्चे को वो बच्चे को मदद कर देगी अपने दर्द से बाहर आने की। नाउ दैट बिकॉज वी आर नॉट बीइंग एबल टू गेट हियर सो व्हाट हैपेंस, रिलेशनशिप इज देयर लेकिन हम फिर भी हमारी स्थिति कैसे होती जा रही है? We all love each other, we say, but so many conditions we apply and that's why we are getting disempowered. Lekin jaise hi hamara connection ek aise atma se judta hai, you know, just look at him just as another soul. We are looking at him just as another soul. Itni sari atmao se rishta juda hai. Ab ek aise atma se rishta jud raha hai jo kabhi dard mein nahi jata.
1: Jiska apna koi dard nahi. Wonderful.
2: No pain, right? No anger, no stress, none of all these things. Ever powerful. Ever pure, ever peaceful. अब एक ऐसी आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा मेरे ऊपर?
1: Oh, it will start vibrating.
2: Now that's all. That I will start experiencing. कि मुझे जो अपने अंदर परिवर्तन लाना है ना वो एक्चुअली हम खुद ही लाते हैं। भगवान हमें चेंज नहीं करता, he doesn't do like this magic. लेकिन भगवान से जो वो अनकंडीशनल पावर लव प्योरिटी मिलती है दैट हेल्प्स मी to overcome my pain and overcome my old sanskars. And that's why relationship with God ka jo sabse fundamental result nikalta hai, that is self-transformation. God does not transform me. We have to be very clear. Hum Bhagwan ko agar ye bhi kehte rahe na, mera ye sanskar thik kar do, mera ye sanskar, it's not going to happen. Nahin to Bhagwan aise kare aur sabke sanskar thik ho jaye. It doesn't happen. Hum khud thik karte hain. हमें अपने ऊपर मेहनत खुद करनी पड़ेगी, लेकिन यस बीइंग इन द कंपनी ऑफ दैट एवर प्योर मुझे वो इतनी वाइब्रेशन इतनी पावर मिलती है जिससे मैं अपने आप को ठीक करती हूँ,
1: इतनी शक्ति मिलती जा सकती है। वंडरफुल, दिस इज अ ब्यूटीफुल वे टू लुक एट द रिलेशनशिप। अगर पूरे दिन में मैं अपने जीवन में देखती हूँ तो जो भी मेरा कोई रिश्ता है उसका कोई ना कोई रोल होता है मेरे, जैसे आप हैं आपके साथ मेरा क्या रिश्ता है या उसका एक रोल है मेरी लाइफ में, कोई भी है मेरी बेटी है अगर आप देखें तो उसका क्या रोल है। तो सिमिलरली अगर हम गॉड को देखते हैं उसका मेरे जीवन में, मेरे दिन भर दिन में जितना भी मैं होती हूँ, क्या होगा रोल?
2: लेट्स टेक एनी रिलेशनशिप, क्योंकि परमात्मा के साथ हम कहते, एक तो हम उसको बाबा कहते हैं प्यार से एज अ फादर, लेकिन वो आत्मा है. एंड वी ऑलरेडी सीन कि रिलेशनशिप्स लेबल्स नहीं है, रिलेशनशिप है आत्मा का, आत्मा से कनेक्शन. हाँ, आज हमने उसको बहुत सारे लेबल्स दे दिए हैं, लेकिन एक हस्बैंड और एक वाइफ है तो रिलेशनशिप किसके बीच है? दो आत्माओं के बीच. एक पेरेंट और एक चाइल्ड है, रिलेशनशिप दो आत्माओं के बीच. अब एक आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप है, तो अगेन रिलेशनशिप दो आत्माओं के बीच है. लेट्स से आई एम इन पेन, मेरे मन में कोई बात है, समथिंग इज बॉदरिंग मी. और कई बार होता कि अनलेस आई शेयर इट, जस्ट गोज ऑन इनसाइड, एंड मुझे चाहिए कि मैं किसी के साथ वो शेयर करूँ. मैं वो बात किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती, बिकॉज प्रोबेबली इट्स जस्ट टू पर्सनल. एंड शेयर करने का भाव भी क्या होता है कि इफ़ आई शेयर इट विद यू, आई वॉन्ट टू गेट फ्री फ्रॉम दैट पेन. यू नो, हम शेयर भी इसी भाव से करते हैं कि मैं किसी से शेयर करूँ ताकि तो मेरा दर्द ही मुक्त हो जाए. लेकिन आज अगर मेजोरिटी आत्माएं अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस में, अपने इश्यूज में हैं, या खुद उतने एम्पावर्ड नहीं हैं, अगर उनसे हम अपनी कोई बात शेयर भी करते हैं, तो डू आई बिकम फ्री ऑफ माई पेन? अगर मुझे कोई राय देता भी है कि ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लो, ऐसे आपको क्या पता मेरे साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. सो आई कैन शेयर, बट आई डोंट गेट द पावर जिससे मैं अपने दर्द से मुक्त हो जाऊँ. अब एक्सपीरियंस करें कि हम बात कर रहे हैं उस ऑलमाइटी अथॉरिटी, एवर पावरफुल आत्मा से, जो अनकंडीशनल लव करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है, मैंने कितना बड़ा पता नहीं क्या कर दिया है. नाउ आई शेयर, शेयर कुड बी विद माई थॉट पावर, कि मैं जो भी है मैं बोलती जाती हूँ. रिटर्न में वाइब्रेशंस कैसी आ रही हैं? सपोज मैं आपके साथ शेयर करूँ ना कि मैंने आपको पता है कितनी बड़ी गलती कर दी, या मेरे साथ ऐसा हुआ या ऐसा हुआ, आप ये एक ह्यूमन नेचर जैसे कहें, क्योंकि हम बहुत डिप्लीटेड हैं अभी, आप भले ऊपर से कहेंगे हाँ कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, अंदर कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन
1: देखा ये होना ही था,
2: या आपने ऐसा कर दिया,
1: ये आप इस हद तक,
2: या यू नो, सो हम बोलेंगे नहीं. ठीक है, इवन आज एक बच्चे से भी अगर कोई गलती हो जाए तो पेरेंट बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्चे से अगर कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो एक पेरेंट के अंदर वो उस चीज़ का एक जो नेगेटिविटी का इम्प्रेशन है वो आ ही जाता है, और तब पेरेंट्स कहते हैं बच्चे ने ये कर दिया, या यू नो धोखा दे दिया, या व्हाटएवर. तो वाइब्रेशन कौन सी पहुँचेगी? तो इसलिए हम शेयर नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो हमें वो एम्पावर रिटर्न में नहीं मिलता. लेकिन जब हम उससे शेयर करते हैं जिसके ऊपर मेरी नेगेटिविटी का कोई ट्रेस नहीं आता, जिसकी वाइब्रेशन मेरी थॉट या बात सुनने के बाद चेंज नहीं होती, जिसका मेरे प्रति जो एनर्जी फ्लो है वो चेंज नहीं होता,
1: वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा.
2: हाँ. वो चेंज नहीं होता भले मैंने कुछ भी किया है या मैंने कितना भी दर्द क्रिएट किया. अब उसके साथ अगर मैं शेयर करूँ अपनी बात, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा?
1: पॉजिटिव.
2: जब हम

0: अर्थ में होते हैं, हमें चाहिए सिर्फ क्या होता है, वी नीड लॉट ऑफ लव. आई नीड अ सोल हु विल गिव मी सो मच लव दैट आई विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट पेन. लेकिन आज हम किसी से भी अपना पेन शेयर करें तो हमें रिटर्न में कोई यू नो वी स्टिल गेटिंग पेन. सो व्हेन आई शेयर माय प्रॉब्लम माय कॉन्फ्लिक्ट माय पेन विद हिम, इट इज़ नॉट दैट यू नो जस्ट द शेयरिंग डज द वर्क. एक तो शेयरिंग करते हुए मैं अपने आप को हल्का करते जाती हूँ, लेकिन वो जो इन रिटर्न मुझे फिर भी अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मिलती कि आप जो हो जैसे हो आई स्टिल लव यू, दिस हेल्प्स मी टू बिल्ड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल ओवर अगेन. तो परमात्मा के साथ रिलेशनशिप मतलब एक तो अपनी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी कोई भी बात हो हम शेयर कर सकते हैं. तो फिर हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी कि मुझे किससे बात शेयर करनी है वो नहीं पड़नी पड़ती. पालना, मैं अपने जीवन की हर स्टेप पर जो भी कर रही हूँ कर्म कर रही हूँ, हाँ मुझे अब ये ज्ञान है कि मेरा जो भी कर्म हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. माय एवरी कर्म स्टार्ट्स विद माय थॉट. बट व्हाट अबाउट व्हाट थॉट टू क्रिएट, ये तो मुझे क्रिएट करना है. आई क्रिएट द थॉट. लेकिन अगर मैं एक ऐसी पावर से कनेक्ट हो जाऊँ जिससे मुझे वो शक्ति मिलती रहती है, जिससे मेरा माइंड बिल्कुल साइलेंट और स्टेबल रहता है, तो नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स खत्म होते जाते
1: हैं. मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं विजन भी क्लियर होने शुरू हो जाती है.
0: वो तो क्लियर है, लेकिन यू नो लाइक अभी क्या हो रहा है, हमें ये पता है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है. लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो हमारे पास वो राइट करने नॉलेज होने के बावजूद वो राइट करने की कहीं ना कहीं ताकत नहीं है, क्योंकि माइंड इतना वीक हो गया है कि वो फिर भी एक नेगेटिव या एक वेस्ट थॉट क्रिएट कर देता है. लेकिन अगर ये माइंड उस सोल से कनेक्टेड है जो कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिटिंग पावर है, तो इसके अंदर क्या शक्ति आती है. परमात्मा मुझे थॉट्स नहीं भेजता है, लेकिन परमात्मा मेरे माइंड को मुझे आत्मा को वो साइलेंस पावर देता है, वो शक्ति देता है जिससे मैं आत्मा फिर राइट थॉट क्रिएट कर सकती हूँ. परमात्मा मुझे वो ज्ञान देता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमें ज्ञान, हम रोज सेंटर पर जाते और परमात्मा के महावाक्य सुनते, तो वो ज्ञान मुझे मिलता है जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन राइट मिलती है, जिससे राइट थॉट क्रिएट करने की एक फाउंडेशन मिलती. तो एक नॉलेज मिल गई और साथ साथ एक पावर मिल गई. और सबसे इजी जो पावर मिलती है गॉड से वो है सोल कॉन्शियस होने के. जब हम जिस कॉन्शियसनेस के संग में बैठेंगे ना, तो उनकी कॉन्शियसनेस का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है. तो जब हम एक ऐसे के सामने बैठेंगे जो 100% सोल कॉन्शियस है, तो हमारी कॉन्शियसनेस किस तरफ जाएगी. क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब दो आत्माएं कॉन्टैक्ट में आती तो एक का दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है. तो आज जब हम एक ऐसी आत्मा के कांटेक्ट में आते हैं जो नेगेटिव ऑरा की है, तो उसका नेगेटिव ऑरा हम पे ओवरपावर करता है. अब जब हम एक ऐसी आत्मा के कांटेक्ट में आते जो एवर प्योर है, तो उसकी पावर मुझ पर ओवरपावर करती है. एंड फिर सोल कॉन्शियस बनना ये इजी हो जाता है. कितनी बार ऐसा होता कि हम किसी को याद करते हैं,
1: उनका फोन आ जाता,
0: तो वो कब होता है, जब राइट टाइम पर हमने जो थॉट क्रिएट की और वहां से थॉट आई और हमारी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई. अब हम एक ऐसी आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके यहाँ क्लटर का तो कोई ट्रेस ही नहीं है. सो बेसिकली ही इज एवर रेडी.
1: अच्छा, ही इज रेडी, आई जस्ट हैव टू गेट कनेक्टेड. यू नो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो कि इफ इन द होल डे इफ आई वांट टू गेट कनेक्टेड टू You are there personally. But if I want to get connected to my daughter or
0: see,
1: like anyone
0: I may
1: else,
0: not be there personally. Sometimes I could be sitting here, but I'm not here. If my mind is there. Mera man ho sakta na, main aap se baat kar rahi hoon. Lekin man kahin aur hai. To aapko wo exchange ka anubhav nahi hoga. Kyunki har atma apne apne bahut sare disturbance se guzar rahi hai. Lekin ab hum kisse connect kar rahe hain?
1: To main yeh janna chahti hoon, log bhi yeh janna chahenge ki when I get connected to him, matlab jab main unko yaad karun, to kya wo connected mujhse hai hamesha?
0: Absolutely.
1: This is what I
0: Actually,
1: think some reassurance
0: people hamesha hi connected hai. You know, it's like a transmitter. जो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट कर रहा है. अब सिर्फ रोल किसका बचा है?
1: मेरा,
0: रिसीवर. कि रिसीवर उस ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर जाए. अब जो ट्रांसमिट कर रहा है वो एक आत्मा है, लेकिन मैं जो रिसीवर बैठी हूँ, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठी थी आज तक, तो इसलिए रिसीवर और ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं एक माँ हूँ तो कौन याद आया, बच्चे, क्योंकि कॉन्शियसनेस माँ की थी। मैंने सोचा मैं एक ऑफिसर हूँ तो कौन याद आया, ऑफिस याद आया। अब जैसे ही ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई कि मैं एक आत्मा हूँ, तो तुरंत किससे कनेक्शन जुड़ा,
1: परमात्मा,
0: क्योंकि वो तो रेडी है, लेकिन मैं उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं जा रही थी। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे उधर का सिग्नल कैच करेंगे। तो अभी तक हम भगवान को याद करने की कोशिश कर रहे थे, इवन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या कॉन्शियसनेस, लेकिन खुद अपने को पहले सोल कॉन्शियस नहीं किया
1: था। अपनी पहचान बेसिकली वो तो था ही था।
0: वो तो है ही है, ही इज नॉट गॉन एनीवेयर, वो तो है ही है, लेकिन आई वॉज नॉट फर्स्ट इन दैट सेम कॉन्शियसनेस, एंड सेकेंड आई डेंट नो हु आई वॉज कनेक्टिंग टू। अब नॉलेज के आधार पर ये दोनों चीज़ें मिल गई, कि पहले अपनी कॉन्शियसनेस कि ये सब बातों की विस्मृति करके आई एम अ प्योर सोल, तो सोल को याद कौन आएगा, सुप्रीम सोल। फिर वो अनुभव करना, ही इज ऑलरेडी देयर, लेकिन द मिनट आई ट्यून इन आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द फ्लो। तो सारा दिन में जैसे सुबह हम मेडिटेशन करने बैठते, तो क्योंकि ये शुरू शुरू का हमारा नया नया रिश्ता है, तो सुबह जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, वी आर सिटिंग विद द एम एंड ऑब्जेक्टिव कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जो डीप रूटेड संस्कार्स हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम परमात्मा को क्यों याद करते हैं। पहले हम याद करते थे कि प्रॉब्लम ठीक कर दो, बट नाउ वी अंडरस्टैंड दैट दैट इज़ माई कर्मा। अब हमें ये समझ में आता कि परमात्मा को हम इसलिए याद करते हैं ताकि हम उसकी शक्ति से अपने को ठीक करते हैं, स्व परिवर्तन करते। तो जो मॉर्निंग का टाइम है जो हम खास बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए, ताकि हम अपने माइंड को साइलेंट करें, सब कॉन्शियस लेयर पर जाएँ, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के सारी थॉट्स को पुट असाइड करें, सब कॉन्शियस माइंड में जाएं, जहां बहुत सारे पुराने बिलीफ्स, पुराने संस्कार डीप एम्बेडेड हैं, और परमात्मा की पावर हमें वो मदद करती है उस सब कॉन्शियस माइंड पे जाने के लिए। फिर परमात्मा की वो शक्ति, वो एक एक जो पावर है, हम उसको थॉट से अपने सब कॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट करते हैं। वी आर चेंजिंग आर बिलीफ सिस्टम। फर्स्ट माई बिलीफ वॉज आई एम अ बॉडी, गुस्सा ये वो तो मेरे संस्कार हैं। नाउ आई एम चेंजिंग इट, आई एम अ प्योर सोल, चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ प्योरिटी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ। आई वॉन्ट के ये मेरे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, लेकिन इसको एम्बेड कहाँ करना पड़ेगा,
1: सबकॉन्शियस,
0: यहाँ सब कॉन्शियस में। तो मॉर्निंग में साइलेंट में बैठकर कॉन्शियस थॉट साइड पे कर सब कॉन्शियस लेयर को, जैसे यू नो ऊपर की सारी चीज़ें को हटाकर नीचे की चीज़ों को लेकर आते, उसमें से पुराने बिलीफ्स के बदले ये नया जो सत्यता है, अभी वो बिलीफ ही है, उसको एम्बेड करते हैं और फिर उसको कार्य व्यवहार में लेके जाते हैं। तो सुबह का जो हमारा समय है वो है साइलेंस में बैठकर वो परमात्मा की शक्ति से अपने संस्कारों को ट्रांसफॉर्म करना, और सारा दिन में हम उसके साथ एक रिलेशनशिप कैसा एक्सपीरियंस कर सकते कि वन आई कैन गो ऑन कम्युनिकेटिंग विद हिम। अपने हर कर्म करने से पहले एक मिनट याद करें, फिर माइंड को साइलेंट करें, उसके साथ कनेक्ट करें, अपना काम करें। कोई मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं, कोई डिसीशन आपको लेना है, कुछ भी करना है, कनेक्ट टू हिम। कोई बात बोझ है, शेयर विद हिम। तो जितना उस सुप्रीम पावर के साथ रिलेशनशिप जुड़ता जाएगा, आपका रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म होती जाएगी
1: बाकी सब,
0: और फिर जो आपका रिलेशनशिप होगा बाकियों के साथ, वो लेने के भाव से नहीं होगा कि मुझे आपसे ये चाहिए, वो होगा कि मेरे पास अब ऑलरेडी स्टॉक भर चुका है, नाउ आई कैन एक्सप्रेस इन माय रिलेशनशिप। फिर जो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ था कि खुश रहना और खुश रहकर सब कुछ करना, तो वो करना
1: आसान
0: बहुत ईजी हो जाएगा, एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सैटिस्फैक्शन, लव, एंड बिकॉज आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग आई विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग, एंड व्हेन आई स्टार्ट एक्सप्रेसिंग आई गिव, एंड व्हेन आई गिव माय रिलेशनशिप्स बिकम वेरी क्लोज। जो हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो तीन आत्मा की जो तीन फैकल्टीज हैं, माइंड, इंटेलेक्ट एंड एक्सपीरियंस, संस्कार, ये तीनों फैकल्टीज अपना अपना रोल प्ले करते। माइंड क्रिएट्स अ थॉट, इंटेलेक्ट उसको तुरंत विजुअलाइज करता है, जैसे आपने थॉट क्रिएट किया बेटी, तुरंत पिक्चर आ जाएगी। तो इसी तरह आत्मा ने थॉट क्रिएट किया, गॉड, परमात्मा, सुप्रीम सोल, तो तुरंत एक फॉर्म आ जाता है कि जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट। आप अगर अपनी बेटी को भी याद करो तो तुरंत आपका थॉट आएगा वो अभी कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह जब हम परमात्मा को याद करते तो वो कहाँ पर है, तो हमें घर भी ऑटोमेटिकली याद आता। तो घर याद आता कि घर हमारा द सोल वर्ल्ड इज गोल्डन रेड लाइट कंप्लीट प्योरिटी एंड देयर दिस ओशन ऑफ प्योरिटी। तो हम फिर मन और बुद्धि से वहाँ चलते हैं, जैसे हम यहाँ बैठे अपने घर जा सकते हैं, वहाँ के बैठे हुए लोगों को याद कर सकते हैं, वैसे ही अब हम उस घर चलते हैं। तो माइंड और इंटेलेक्ट दोनों साथ साथ चलेगा, मन थॉट क्रिएट करेगा, इंटेलेक्ट उसको हल्के से, डू नॉट अगेन प्रेशराइज योर सेल्फ, डू नॉट ट्राई टू सी समथिंग, इट इज़ नॉट सीइंग लाइक दिस विद दीज आइज, इट इज़ जस्ट ट्राइंग टू विजुअलाइज इट। किस लिए? क्योंकि अगर वो विजुअलाइज करते तो इंटेलेक्ट कहीं और नहीं चले जाते, क्योंकि अगर इंटेलेक्ट कहीं और चले जाती है तो मन उधर चला जाता है। यू नो, अगर मन ने कहा परमात्मा, अगर इंटेलेक्ट ने वो पिक्चर नहीं लाई तो इंटेलेक्ट किसी और की पिक्चर ले आएगा,
1: बस फिर
0: वो मन वहाँ चला जाएगा। तो बेसिकली माइंड और इंटेलेक्ट को इकट्ठे चलना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। बट सम पीपल ट्राई टू बी वेरी यू नो हार्श विद देमसेल्फ, पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा, तो इट्स नॉट अ पिक्चर। एज लॉन्ग एज आपकी इंटेलेक्ट पर कोई और पिक्चर नहीं आ रहा, आपका मन कहीं और नहीं स्वे कर गया, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, जस्ट विजुअलाइज इट वेरी लाइटली। मन और बुद्धि के द्वारा हम अपने पिता के पास जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को देखना है। ये सारे लेबल्स, नाम, प्रोफेशन, रोल जो मैंने आज दिन तक समझा मैं हूँ, ये मेरे हैं, यहाँ तक कि ये शरीर भी मेरा है। दिस इज ऑल मैटर, आई एम एनर्जी, कॉन्शियसनेस, शक्ति। ट्राई एंड सी योरसेल्फ शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, ब्रिकुटी के बीच में एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा, टाइनी स्टार, कॉन्शियसनेस। यहाँ से बैठकर मैं इस शरीर को चलाती हूँ, मैं ही हूँ जो हर आत्मा से संबंध अनुभव करती हूँ। ये शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है, संबंध अनुभव करने वाली मैं शक्ति हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। प्योर सोल, प्योरिटी, डिविनिटी, ये तो मेरी अपनी नेचर है। आई सी माई सेल्फ अपने घर की तरफ चलते हुए, अपने आप को देखे वो पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर से पार, इस सृष्टि से भी पार अपने घर की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे अपने आप को देखने की कोशिश करें कि वो पॉइंट चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस कर रहा है, और इस दुनिया को क्रॉस करते करते मैं आत्मा अपने घर में आकर पहुंची हूँ। गोल्डन रेड लाइट, कंप्लीट स्पेस ऑफ प्योरिटी एंड पीस। आज दिन तक मैं इस घर को याद करती थी, अपने पिता को याद करती थी, आज मैं उनके पास आकर पहुंची हूँ। अपने आप को देखे, मैं एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा, इस आत्माओं की दुनिया में मेरे सामने एक और बहुत सुंदर पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट, मेरे ही जैसा, मेरे ही जितना छोटा सा सूक्ष्म बट पावर वाइब्रेटिंग ऑल ओवर. मैं अपने पिता के पास आकर बैठा हूं. आज दिन तक तो मैं ढूंढ ही रहा था गॉड, ईश्वर, अलग अलग नाम से पुकार रहा था. मैं उनके सामने आकर बैठा हूं. मन पे कोई बात, कोई बोझ, कोई क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं. मैं पवित्रता के सागर के सामने बैठा हूं. देखने का प्रयास करें पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें, एनर्जी है जो मुझ पर फ्लो कर रही है. और मैं आत्मा उन शक्तियों को अपने अंदर भरती जा रही हूँ. ओम शांति,
1: ओम शांति. शिवानी, जिस तरह से परमात्मा का परिचय हमें मिला और जिस तरह से एक रिलेशनशिप, हमारा एक डायनामिक रिलेशनशिप जो मेरा और आपका या हमारा किसी भी और व्यक्ति के साथ है, वो कायम हो सकता है. सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसका तरीका थोड़ा सा अलग है. थोड़ा सा खुद को एलिवेट करके अपनी पहचान को करने की ज़रूरत है. बाकी रिश्ता इतना सुंदर, इतना डायनामिक हो सकता है. वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं हम, जिसको हम अभी तक तलाश रहे थे. थैंक यू सो मच. ओम शांति. हर बार की तरह आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम आपका अपना है. सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद को समझते हुए, खुद को मैनेज करने का ये जो पूरा प्रोसेस हम समझ रहे हैं, इससे जुड़ी कोई आपकी बात है, कोई सवाल है, आपका हम स्वागत करेंगे. आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0999-344-555, 0-9873-666-5, 0-9999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें हर बार की तरह आपको यही कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे सवाल होते हैं, जो भी हम प्रोग्राम में करते हैं, फीडबैक आप ही से मिलता है. आपका ढेर सारा प्यार हम तक पहुंचता है और साथ ही आपके सवाल भी आते हैं. इन सवालों का हम हर बार स्वागत करते हैं. और आज इस कड़ी में इतना ही, लेकिन आने वाली कड़ियों में आप ही के सवालों पर आधारित बहुत सी बातें और करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कुछ और सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद से सच्चा संवाद करें, क्योंकि दुनिया के सभी उत्तर आपके भीतर ही छिपे हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है। रेडियो मधुबन

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर गलती एक सबक है, आत्म मंथन के माध्यम से उनसे सीखें और आगे बढ़ें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

राम राम सुप्रभात सुश्रीकाल अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई किरण और मैं हूँ आरजे शुभा। आप सोच रहे होंगे कि आरजे रमेश जी कहाँ गए। आरजे रमेश जी कुछ अचानक कार्यवश थोड़ा सा बाहर गए, मिलेंगे आपसे वो कल। आज हम और आप बात कर लेते हैं, जान लेते हैं आज के दिन का हालचाल और कुछ विशेष बातें। पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि 2026 20 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल सप्तमी तिथि अगले दिन तड़के 4:02 पर तक रहेगी, जिसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। सूर्य दक्षिणायन उत्तर गोल और वर्षा ऋतु में रहेंगे। इस दिन हस्त नक्षत्र शाम को 7:09 तक रहेगा, फिर चित्रा नक्षत्र लगेगा। योग शिव शाम को 6:37 तक रहेगा, इसके बाद सिद्ध योग का आरंभ होगा। चंद्रमा दिन रात कन्या राशि पर संचार करेगा। सूर्य उदय का समय प्रातः 5:36 पर हुआ है। सूर्य अस्त का समय 7:19 पर शाम को होगी। चंद्र उदय का समय दोपहर 11:37 पर होगा। चंद्रास्त का समय रात्रि 11:04 पर होगा। सूर्य और चंद्रमा की राशियां सूर्यदेव कर्क राशि में स्थित हैं और चंद्रदेव कन्या राशि में स्थित हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:55 से 4:41 तक था। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00 से लेकर के 12:55 तक है। अमृतकाल का समय दोपहर 12:55 से लेकर के 2:35 तक है। इस्लामी हिजरी के अनुसार 1448 05 सफर पीर अव्वा है आज के दिन। और आज सोमवार भी है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। गुड मॉर्निंग।

बहुत गाने मैंने हिंदी में भी गाया था, लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, सिंहली, सुवरिया, सो मेनी लैंग्वेजेस मैंने गाए थे। मैं एस जानकी प्लेबैक सिंगर बोल रही हूँ। एफएम रेडियो नाम है मधुबन, इसमें बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम्स आता है, आप जरूर सुनना चाहिए, प्रेम से सुनिए। आप सुनते रहना, मुस्कुराते रहना।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। और आइए चलते हैं आज के वेदर रिपोर्ट की ओर। जिला सिरोही में 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 36 डिग्री तक जा सकता है। और यहाँ क्षमा करें, जिला सिरोही में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। 55% तक बारिश होने की संभावना है। जयपुर में, राजधानी जयपुर में अभी 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है। और इसके साथ साथ बारिश होने की संभावना है 91% दिन रात्रि के समय, और दिन के समय 60% तक संभावना है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर। उदयपुर में 25 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक जा सकता है। वर्षा की संभावना लगभग 25% तक है। और वहीं पर आबूरोड के शहर में 26 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक जा सकता है। बारिश की संभावना 60% तक दिन के समय, रात्रि के समय 55% तक है। बात करें माउंट आबू की, 19 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक जा सकता है। 65% तक वर्षा की संभावना दिन के समय, रात्रि के समय 55% तक है। पाली जिले में 28 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक जा सकता है। 55% तक बारिश की संभावना रात्रि के समय है, दिन के समय गर्मी होने की संभावना है। जोधपुर में 28 डिग्री न्यूनतम, अधिकतम 36 डिग्री तक जा सकते हैं। बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना नहीं है फिलहाल। सूरत में 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, वर्षा की संभावना जोरदार है यहाँ पर रात्रि के समय, और दिन के समय 55% से ज़्यादा वर्षा की संभावना है सूरत में। भारी बरसात होने की संभावना है सूरत में। मेहसाना में भी भारी बरसात होने की संभावना है, दिन के समय 35 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। बात करें राजकोट की, 26 डिग्री तक न्यूनतम, अधिकतम 32 डिग्री तक जा सकता है। रात्रि के समय बारिश होने की संभावना है, दिन के समय कम संभावना है। गांधीनगर अहमदाबाद में 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, अधिकतम 34 डिग्री तक जा सकता है, और थोड़ा सा कम संभावना है बारिश होने की, लगभग 69% है रात्रि के समय, दिन के समय 64% तक बारिश होने की संभावना है। बात करें अगर हम दिल्ली की, राजधानी दिल्ली में 32 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर थोड़ी सी बारिश होने की संभावना है, लगभग 25%। कोलकाता की बात करें, 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। 96% तक बारिश होने की संभावना है यहाँ पर। बेंगलुरु की बात करें, 30 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक जा सकता है। 55% तक बारिश होने की संभावना है। मुंबई में 30 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। 96% तक जोरदार बारिश होने की संभावना है। चेन्नई की बात करें, 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। 56% तक बारिश होने की यहाँ पर संभावना है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे वेदर रिपोर्ट्स के साथ। आइए लेते हैं यहाँ पर एक भजन वाला ब्रेक। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। भजन के बाद आप सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात।

आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम नई किरण में। अभी कुछ पल के बाद 9 बजने वाले हैं रेडियो मधुबन की घड़ी पर। उसके बाद आप सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात। उसके बाद आप सुनेंगे चांद स्पेशल एपिसोड, आज रमेश जी के साथ एक म्यूजिकल एपिसोड। और मैं आप सभी से यहीं पर कहती हूँ अलविदा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया।

0: और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है, ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
1: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
3: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
4: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
3: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
5: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार आठवीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
6: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
7: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
8: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
9: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
10: धन्यवाद मुनी।

0: चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्य ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजाति समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आइए, जैसे कि हम सभी लोग आपसे स्पेशल एपिसोड में किसी विषय को लेकर जुड़ते हैं और उस विषय से जुड़ी हुई बातें भी आपसे करते हैं और साथ में उस विषय से जुड़ा हुआ गाने भी सुनाते हैं, तो आज भी हम लोग ऐसे ही एक नए एपिसोड को लेकर आए हैं। तो कौन सा एपिसोड आप सुनाने वाले हैं आज? वंदना जी हमारे साथ हैं।
1: मेरा इश्क और ये चांद दोनों एक से हैं, दोनों ही अधूरे और दोनों ही बेहद खूबसूरत। तो जी हाँ श्रोताओं, शायद आपको आइडिया लग गया होगा आज का विषय है चांद।
0: क्या बात साथियों, चांद ये हमारे दिल के करीब वाला शब्द है। बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें जुड़ी हुई। आज हम लोग इसी विषय को देखकर इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। तो साथियों, आज है वो तारीख जब पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहली बार कदम रखा था।

0: जुलाई 1969 और वहाँ पर जाकर देखा, वहाँ उन्होंने जिस चांद को छूने की कल्पना हम लोग करते हैं वो कैसा है ये जानने की कोशिश की। हालांकि बाद में इस बात पर काफी विस्तार से चीजें हुई और कुछ लोगों ने इसे माना, कुछ लोगों ने नहीं माना और कुछ लोगों ने इसे फोटोग्राफिक कमाल भी समझा। तो साथियों इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी चांद हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। न जाने कितनी कविताएं लेखक, शेरो शायरी करने वाले और कितनी सारी किताबों में चांद पर लिखी गई बातें आपने सुनी है। ज्यादातर लेखकों ने तो चांद की खूबसूरती को ही बयां किया है। किसी को अपनी प्रेमिका की सूरत में चांद नजर आता है, तो किसी को चंदा नजर आता है अपना बेटा, कोई प्रेमी को या प्रेमिका को चांद की रात में चांद को देखकर कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो। बेचैन इस कदर था कि सोया न रात भर, पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर।
1: वाह क्या बात। जी हाँ, जरा याद कीजिए अपने बचपन को, जब हमें बताया जाता था कि चंदा हमारा मामा है, तो ये मामा वाला रिश्ता शायद हम सब ने चांद के साथ जरूर जोड़ा है अपने बचपन में। और साथ ही एक बात हमें और बताई जाती थी कि चंदा मामा हमारा पुए पकाता है, हा? और हम में से शायद सबने ये सुना होगा। और हम बच्चे अपनी माँ के बताने पर सचमुच की कल्पना करने लगते थे कि हमारा चंदा मामा पुए भी पकाता है। तो हाँ, आप खुद ही सुन लीजिए ये गाना जो आपको अपने बचपन की तरफ ले जाएगा और बहुत पुरानी याद दिलाएगा।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, चंदा मामा दूर के। कई बार हम लोग जो है इस तरह के गाने सुनकर चांद शब्द आते ही मन जो है खुशी से नाचने लगता है। तो साथियों, आप खुद ही सुन लीजिए एक बात और, जरा याद कीजिए उस कविता को जहाँ चांद अपनी माँ से हट करता है कि मुझे भी ऊन का एक मोटा जिंगोला। तो रामधारी सिंह दिनकर ने ये बेहद खूबसूरत जो चांद पर कविता लिखी थी वो आज भी हमारी यादों में है, और यकीन मानिए कि ये कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक खूबसूरत है जितनी हमें बचपन में पढ़ने पर लगती।
1: तो आगे बढ़ते हैं और आपको एक और बहुत खूबसूरत छोटी सी कविता याद दिलाती हूँ मैं। बैठ चंद किरणों के रथ पर छोटी नन्ही परी उतरती, आंखें नीली बाल सुनहरे आती जगमग जगमग करती। तो श्रोताओं, यह तो रहा हमारा चांद से बचपन का रिश्ता, और जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता जाता है हमारा चांद से भी रिश्ता और गहरा होता चला जाता है। अब जरा याद कीजिए उन दिनों को जब छत पर गर्मियों में सब सोते थे और चांदनी रात होती थी, तो सोचो कितना सुंदर समय होता था, मैं कितना ज्यादा सुख किया करता था। तो याद कीजिए जरा उस समय को।
0: बिल्कुल बिल्कुल वंदना जी, काफी अच्छी बात है आपने कहा, बचपन की यादें ताजा कर। कितनी बहनें चंदा से अपने भाई के लिए संदेश पहुंचाती थी, बहनें उनको कितना याद करती है।

0: चांद हमारे जीवन में एक पैगाम देने का काम भी करता है।
1: और तो और, जब हम में से कुछ लोगों की कल्पना शक्ति चांद तक ऊपर नहीं पहुंचती है तो दोस्तों होता क्या है, वो चांद से खुद बातें करने के लिए उसको जमीन पर बुलाते हैं।

घर में न जाने कितने व्रत व पूजा पाठ चंद्र देवता को साक्षी मानकर किए जाते हैं, क्योंकि वह देने वाला है, इसलिए उसको देवता का विशेष दर्जा मिला है। और एक बात मैं आपको और बताती चलूं कि जब भारत से कोई विदेश जाता है तो वहाँ भारत के निकले चांद के तन्हा होने पर परेशान होकर सोचता है, पता नहीं चांद क्या कर रहा होगा, है ना, और जाने कैसा होगा ना, है ना, हमारा चांद से कितना अटूट और गहरा रिश्ता। तो चलिए इसी के ऊपर हम आपको एक बहुत खूबसूरत गजल सुनवाते हैं।

0: साथियों, ये तो हमारा अपना देखने का नजरिया है कि हम खूबसूरती देखते हैं या कुछ और। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार बहुत ही खूबसूरत चांद पर गीत आपने सुना। कहते हैं कुछ को ईद के चांद का इंतजार रहता है, शायद अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। जी हाँ, ईद के चांद सा है इश्क मेरा, पूरी रोशनी से महरूम ही सही,
1: खूबसूरती बेहिसाब है।

0: तो दोस्तों कुछ तो हम में से चांद पर बंगला बनाने की भी बात करते हैं।
1: छोटे बच्चों को बताते हैं
0: कि वहाँ पर हम एक नई दुनिया भी बसा सकते हैं।

0: अगर हम चांद की खूबसूरती की कुछ और बातें आपको बताएं, तो आप देखेंगे कि वैज्ञानिक लोग ये अनुसंधान कर रहे हैं कि चांद पर जाके मकान भी बनाएं।
1: जी हाँ, आपको चलिए चांद की और खूबसूरती के नज़ारे हम आपको दिखाते हैं कि अगर आप में से कुछ लोगों ने कभी बर्फ से ढके पहाड़ों पर चांदनी को बिखरे देखा होगा तो दृश्य इतना खूबसूरत होता है कि धुला साफ आसमान, ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके सफेद पहाड़ और उन पर पड़ती चांद की रोशनी, चांदनी, इतनी खूबसूरती को कभी आपने अपनी आंखों में समाया है? जरा मेरे साथ इस दृश्य की कल्पना कीजिए, कितनी खूबसूरती है ना इस चांद में और चांदनी में। जी हाँ, मैंने इस सीन को कश्मीर में देखा है और मेरे मन में तो यह बिल्कुल अपनी अमिट छाप छोड़ गया है। तो चलिए चांद की खूबसूरती के साथ साथ चलते हुए आपको एक और सैर करवाते हैं

स्वागत है आप सभी का। चांद पर बहुत ही सुंदर गाने आप सुन रहे हैं, लेकिन इस बीच में मुझे एक और खूबसूरत गाना याद आ रहा है, वो है देवानंद पर पिक्चराइज किया गया था, कभी कभी व्यक्ति खो जाता है। लेकिन यहाँ पर राइटर ने ये कहा है कि खोया खोया चांद। क्या साथियों, खोया खोया चांद आपने भी कभी देखा है?

स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। आशा करूंगा आप यात्रा पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। जंगल की सैर, जंगल की सैर, जी हाँ, कभी चांदनी रात में जंगल देखने का अगर आपको मौका मिला है तो यकीन मानिए बड़ा ही अनोखा अनुभव होता है। तो ये थोड़ा हिम्मत वाला डेयरिंग टाइप का एक्सपीरियंस मगर बड़ा यादगार होता है। रात का सन्नाटा और झिंगूर की आवाज में और कहीं से छन कर आती चांद की रोशनी, थोड़ा अंधेरा कहीं पेड़ों पर पड़ती चांद की रोशनी, और कहीं अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो थोड़े पेड़ों के बीच में से झांकता चांद कितना अनोखा सा अनुभव होता होगा।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति मिल ही जाती है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ भाई, दीपावली जल्दी ही आने वाली है और घरों में साफ सफाई का काम चल रहा है, तो पित्तल और तांबे के बर्तनों को कैसे साफ करेंगे, ये टिप्स आपको जरूर देंगे, ठीक है। और आज की युवा पीढ़ी शादी तो कर लेती है परंतु रिश्ते टिका नहीं पाते। इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार हो ना आप सभी, तो जरूर तैयार रहिएगा। और बनाएंगे गर्मा गर्म कुछ खास, वो क्या, वो सस्पेंस रहेगा भाई। आप आशियाना सुनिए, सब कुछ जान जाएंगे और प्रश्न भी पूछने वाली हूँ, तो तैयार रहिएगा आशियाना में प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो अभी सुन लेते हैं गीत, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो।

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति मिल ही जाती है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति मिल ही जाती है। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक कहानी के साथ करना चाहूँगी स्पष्ट कि एक समय एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठ शास्त्र अध्ययन में बहुत ही निपुण था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और सौम्य थी। घर में सिर्फ ब्राह्मण और उनकी पत्नी ही रहते थे। इस कारण घर के पूरे काम का बोझ उसके पत्नी पर पड़ता था। कुछ समय बाद काम करते करते पत्नी थकने लगी और काम से तंग आने लगी। काम के बोझ को कम करने के लिए वह उपाय सोचने लगी। उसने अपने पति से कहा, आप वेदों शास्त्रों में पंडित है, कोई ऐसा यज्ञ रचिए जिससे एक काम करने वाला व्यक्ति उस यज्ञ से उत्पन्न हो। यदि कोई नौकर रखेंगे तो पूरा समय उसके पीछे रह करके काम कराना पड़ेगा, परंतु यदि अपनी ही रचना का कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो सारा दिन हमारे साथ रहे, सब काम करे और आज्ञाकारी भी हो तो अच्छा होगा। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पसंद आई और उसने इस बारे में सोचना शुरू किया। ब्राह्मण ने अपने घर में पड़े हुए पुराने ताल पत्रों का अध्ययन करना शुरू किया। अचानक एक पत्र में उसे जिन्न को तैयार करने की यज्ञ प्रक्रिया मिली। ब्राह्मण ने खुश होकर के यज्ञ आरंभ किया। कुछ समय बाद यज्ञ की अग्नि से एक जिन्न प्रकट हुआ। काम करने के लिए जिन्न को पैदा किया था, इसलिए उसका नाम काम का जिन्न पड़ा। जिन्न ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को आदर सहित प्रणाम किया और उन दोनों को अपना मालिक माना, परंतु साथ ही साथ जिन्न ने एक शर्त रखी कि उसको सदा कुछ न कुछ काम मिलते ही रहना चाहिए। यदि एक क्षण के लिए भी काम नहीं मिला तो जिन्न ब्राह्मण को खा जाएगा। ब्राह्मण ने जिन्न की ये शर्त मान ली और सोचा कि करने के लिए काम तो बहुत है, इसलिए इसको सदा काम में व्यस्त रखने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। उसी क्षण से जिन्न ने मालिक का काम करना शुरू किया तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी तो बड़े प्रसन्न हुए, पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जिन्न को चाहे जितना भी बड़ा काम दो, एक पल में उसे पूरा करके वह ब्राह्मण के पास पुनः आकर के खड़ा हो जाता और कहता कि और कोई काम है, कोई काम चाहिए, कोई काम चाहिए। ब्राह्मण ने जिन्न को बड़े बड़े पतीले बर्तन पुराने सामान सब साफ करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने सोचा कि ये काम करने के लिए जिन्न को एक दिन तो लगेगा और कम से कम एक दिन के लिए तो वह जिन्न से छुटकारा पा सकेगा। लेकिन जिन्न ने सारा काम एक पल में ही पूरा कर लिया और फिर कहने लगा कि काम चाहिए, कोई काम दो। ब्राह्मण का घर बड़ा था, बहुत ही बड़ा था, सो घर का पूरा काम करके झाड़ू और पोछा करने के लिए कहा गया। ये काम भी जिन्न ने एक पल में पूरा कर लिया और फिर बोलने लगा कि काम चाहिए, काम चाहिए। इस बार ब्राह्मण ने सुराख वाले घड़े दिए और कुएं से पानी भरने के लिए कहा। ब्राह्मण को मालूम था कि ये काम भी जिन्न एक पल में कर लेगा, इसलिए होशियार ब्राह्मण ने एक युक्ति रची। जब जिन्न अपना काम पूरा करके फिर से ब्राह्मण के पास आया तो उसने उसे सीढ़ी उतरने और चढ़ने की आज्ञा दी। अब जिन्न सीढ़ी चढ़ने और उतरने में व्यस्त हो गया। जब तक ब्राह्मण बुलाएगा नहीं तब तक जिन्न वही काम करता रहेगा। जब जरूरत पड़ेगी तब उसे बुलाया जाएगा और काम करने की आज्ञा दी जाएगी। इस तरह से ब्राह्मण ने युक्ति से मुक्ति पा ली और जिन्न को व्यस्त कर दिया। इसलिए प्यारे श्रोता बंधुओं, कहने का भाव यही है कि कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति जरूर मिलती है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर टिप्स। देखिए, दीपावली के दिन चल रहे हैं भाई, दीपावली बहुत ही जल्दी आने वाली है और घरों में साफ सफाइयाँ शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले हम साफ सफाई करेंगे, घर हमारा चमकेगा, तभी तो दीपावली पर हम माता लक्ष्मी जी का आह्वान कर पाएंगे ना। तो स्वाभाविक है कि घर की साफ सफाई में हम बर्तनों को तो मांजते ही हैं, सब कुछ पूरे घर को हम अच्छे से स्वच्छता से साफ करते हैं, सारे ही सामान को उथल पुथल करके वहाँ से हटा के साफ करके उस जगह को साफ करके फिर वहाँ पर वापस व्यवस्थित रखते हैं। तो भाई, पित्तल के बर्तन की तो वैल्यू बहुत है, स्टील के बर्तन तो अभी चले हैं, पहले के समय में पित्तल के बर्तन ही चलते थे और हमारे दादी नानी के ज़माने में पित्तल के बर्तन में ही भोजन पकाया जाता था, खाया जाता था। पित्तल के, तांबे के ये बर्तन सबसे ज़्यादा चलते थे। आप पनियारे पर देख लीजिए, तांबे के घड़े रखे जाते थे पानी भर के, वो भी कुएं से ला करके। तो अभी समय के साथ परिवर्तन हुआ है, माताएं बहनें थोड़े काम धंधे में नौकरी में व्यस्त हो गई है, भाई लोग भी, तो पित्तल और तांबे के बर्तन को हटा ही दिया गया, क्योंकि उसमें मांजने की मेहनत है ना, स्टील के बर्तन में कोई मेहनत ही नहीं है और मेहनती काम आजकल कोई करना नहीं चाहते। सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, ऐसा मत सोचना है कि मैं सभी के लिए कह रही हूँ। आज भी बहुत झने पित्तल और तांबे के बर्तन रखते हैं और बड़े ही उसको प्यार से साफ करते हैं। तो आपको बहुत ही सरल टिप्स देती हूँ ताकि तांबे और पित्तल के बर्तनों को फिर से चमका सको। देखिए, मैंने तो देखा है बहुत जगह पर, विशेष करके गुजरात में, कि पित्तल के बर्तन और तांबे के बर्तन को बहुत ही अच्छी तरह सजा करके रखते हैं दीपावली के दिनों में। वो मांज मांज के थक जाते हैं, बोलते कि बहन जी क्या करे, लेकिन जब ये चमकते तो बड़े अच्छे लगते हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो सही कहा है कि भाई मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी टिप्स देने वाली हूँ कि उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपके बर्तन ऐसे चमकेंगे कि बस आने वाले देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। मैं आपको टिप्स दे रही हूँ बहुत ही सुंदर की। देखिए, बाजार में पीताम्बरी पाउडर आता है बर्तन मांजने के लिए, जो पित्तल और तांबे के बर्तन है उसमें आप पीताम्बरी पाउडर को यूज़ करेंगे तो बर्तन बहुत ही अच्छी तरह चमकेंगे। इसमें खास मेहनत नहीं है, आपको क्या करना है, पीताम्बरी पाउडर लाना है

और जो अपने बर्तन मांजने का स्क्रब होता है ना, जिसको हम देसी भाषा में कुच्चा कहते हैं, लोखन वाला, ठीक है। तो उस कुच्चे से आप उस पीताम्बरी पाउडर को लगाइए और साफ करिए। ज़्यादा आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं, आप हल्के हल्के हाथों से पीतल और तांबे के बर्तन को रगड़ेंगे ना, घिसेंगे, तो भी बर्तन चमक उठेंगे, ठीक है। तो ये टिप्स आपको मिल गई है। पीताम्बरी पाउडर का पैकेट आता है मार्केट में और आप इससे आसानी से पीतल और तांबे के बर्तन को मांज सकते हैं। अब मैं दूसरी टिप्स आपको दे रही हूँ। नींबू तो देखिए सभी लाते हैं। नींबू का रस निचोड़ दीजिए, इसमें नमक मिला दीजिए, फिर कुच्चे से इस कुच्चे को पूरा भिगो दीजिए अच्छी तरह, और फिर तांबे और पीतल के बर्तन को हल्के हल्के हाथों से रगड़िए। 5 मिनट के बाद फिर से घिसिए साफ। ना आपको पाउडर ना लिक्विड लगाने की ज़रूरत है, बस नींबू में नमक डाल दीजिए नींबू के रस में, और कुच्चे से इसको अच्छी तरह घिस दीजिए, तो पित्तल और तांबे के बर्तन चमक उठेंगे। और बर्तन चमकेंगे तो हमारे चेहरे के मुस्कुराहट भी बढ़ेगी, क्योंकि इतने सरल तरीके से साफ हो गए। पहले तो हम बहुत घिसते थे, घंटों घंटों लग जाते थे, और एक 5 मिनट में बर्तन चमक उठे तो खुशी तो होती है ना। और लास्ट टिप्स ये कि अगर आप नींबू यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो विनेगार और नमक ये आप यूज़ करिए। विनेगार और नमक को मिक्स करके कुच्चे से फिर आप मांजिए बर्तन को, तो इससे भी बर्तन तांबे और पीतल के चमक उठेंगे। तो ये टिप्स आपको मिली है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इसको आजमा सकते हैं। अब मैं आज का प्रश्न पूछने जा रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। चूंढावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। बस इससे आगे नहीं बोलूंगी। चूंढावत ने जब अपनी पत्नी से निशानी मांगी युद्ध पर जाते समय, तो क्षत्राणी ने सिर ही काट के दे दिया। तो उस क्षत्राणी का नाम आपको बताना है, ठीक है। रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए बढ़ते हैं एक गीत की ओर, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: किसी ने कुछ ठीक ही लिखा है कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग के खा रहा हूँ। तो ये विषय आपको दिया है, आप चर्चा में राय अपनी व्यक्त कर सकते हैं कि शादी ब्याह, आज की पीढ़ी शादी ब्याह तो करने के लिए उत्सुक रहती है परंतु रिश्ते टिका नहीं पाती है। देखते हैं कि समाज में ज़्यादातर रिश्ते टूट रहे हैं, सहन शक्ति कम होती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है। बहुत कुछ देखते हैं आजकल शादी ब्याह में। लड़की वाले तो इतना कुछ देखते हैं कि लड़के के घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, भले अपने घर में कुछ हो ना हो लेकिन मेरे अपनी बेटी की शादी जहाँ करूँ वहाँ पर सब कुछ होना चाहिए, और फिर भी करते भी हैं लेकिन उसके बाद भी रिश्ते टूट जाते हैं, उसके बाद भी लड़कियाँ टिक नहीं पाती अपने ससुराल में और तलाक ले लेती हैं। तलाक के पीछे बहुत सारे बातें भी होती हो, आप सभी जानते हो कि खर्चा भी लेती है, घर का हिस्सा भी लेती है। तो समाज में ये क्या हो रहा है? देखिए, आप सभी सामाजिक प्राणी हैं, हम सभी, आप भी, तो आप भी देखते हैं आपके आसपास या कहीं पर तो इस तरह की बातें होती होगी, तो आप भी चर्चा में राय व्यक्त कर सकते हो। नंबर हमारे है 94-14-15-14-15। और आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है कि चूंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। जब चूंडावत ने युद्ध में जाते समय अपनी पत्नी से निशानी मांगी तो उनकी पत्नी ने सिर काट करके दे दिया। तो ऐसी क्षत्राणी का आपको नाम बताना है, ऐसी रानी का नाम आपको बताना है। नंबर 94141514-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब भी आपको देना है और विषय में भी आप भाग ले सकते हो। हेलो,
2: जय माता दी, जय श्री हरि।
1: जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका।
2: सभी सुनने वाले और सुनाने वाले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार
1: जी।
2: टॉपिक तो बहुत ही सुंदर लेके आई है। सबसे पहले तो मैं एक विश करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ?
1: हाँ जी,
2: आपकी इजाजत हो तो।
1: जी जी, कहिए।
2: मेरे पति का जन्मदिन है तो उनको जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं।
1: जी जी, हम भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आपके भतीजे के जन्मदिन पर। बहुत बहुत खुश रहे वो, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे बढ़े और हमेशा स्वस्थ रहे।
2: भाई नाम है उसका। और आज का टॉपिक है तो देखिए, अभी जो कुछ हो रहा है ना उसी पे आपने टॉपिक लिया, बहुत सुंदर टॉपिक है
1: जी।
2: शादियाँ हो जाती है फिर मतलब तलाक भी लेना नहीं चाहती है और उनको खर्चा भी चाहिए
1: जी।
2: ऐसे भी मैटर देखे है
1: जी।
2: तो मैं कहना चाहूंगा अगर वो ज्यादा सैलरी कमा रहा है तो चलो दे सकता है, मगर कोई बंदा ऐसा भी होते है जो 10-15 हजार महीने के कमाता है
1: जी,
2: और वहाँ वो खर्चा पहुँचाएगा तो वो खुद पर घर कैसे चलाएगा, खाएगा क्या
1: जी।
2: तो मैं जो भी, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच गई है उन सभी बहनों से यही मेरी गुजारिश है कि आप अगर शादी कर रहे हो, आपको पसंद नहीं है तो तलाक करके छुट्टी कर सकते हैं
1: जी।
2: केशबाजी में भी कोई बेनिफिट नहीं है और ऐसे मतलब गरीब परिवारों को दुखी करने में भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि परमात्मा देख रहा है
1: जी।
2: अगर वो कोई मतलब उनकी गलती है तो आप उनको सजा दे सकते हो, मगर कोई उसमें गलती नहीं है, वो राजी खुशी रखना चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी ये गलत फहमिया कुछ हो जाती है, तो ये गलत फहमिया कि किसी को बिना कसूर के फिर दर्द दुख देखना पड़े
1: जी।
2: तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, और रही बात की शादी करे तो देख के मतलब थोड़ा बहुत देख के मतलब कुछ समय के बाद में जल्दबाजी में शादी की जाना
1: जी
2: तो सही रहेगा। और रही बात दूसरी तो मैं सभी बहनों और भाइयों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मतलब कई ऐसे कुछ रहम वगैरह भी हो जाए ना तो उसका सही मुजारा करना चाहिए, उसकी सही जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाए।
1: जी जी
2: तो दूरिया बनी मतलब नजदीकियाँ बनी रहेगी नहीं तो दूरिया आ सकती है। और बस कुछ बहन मेरे देखने की भी बात हुई है तो यही मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे कदम उठाने से पहले लाखों बात सोचिए। थैंक यू
1: जी जी बहुत बहुत आभार आपका। तो बहुत ही सुंदर आपने स्पष्ट किया है। देखिए शादी ब्याह तो होते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और एक दूसरे को देख करके परख करके समझ करके ही शादी करते हैं। क्योंकि पहले के समय में तो ऐसा होता था कि एक दूसरे को देखते नहीं थे, परिवार वाले ही फाइनल करते थे कि भाई आपकी लड़की हमें पसंद है और शादी फाइनल हो जाती थी। लेकिन लड़के लड़के आपस में मिलते नहीं थे, एक दूसरे को देखते नहीं थे, फिर भी रिश्ते टिकते थे। कभी पहले के समय में सुना आपने कि भाई वो छोड़ के चली गई या उनका तलाक हो गया, अब वो मायके जा कर के बैठ गई? बिल्कुल नहीं, वो 100-200 में एक आध केस ऐसे होते थे तो ये समस्या आती थी। और आज तो आप देख लीजिए 100 में से कुछ ऐसे है जहाँ पर रिश्ते टिके रहते, बाकी अधिकतर लड़ाई झगड़े और फिर तंग आ करके घर परिवार छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही बढ़ता जा रहा है। और ये भी है कि देखिए, हम एक बार बात करेंगे अपने श्रोता बंधु से। हेलो
3: दीदी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार।
1: हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में सुरेश भाई।
3: जी दीदी, बहुत अच्छी बात हो रही है
1: जी।
3: और अभी अभी जो आपने दीदी बताया कि बिल्कुल सही बात है कि पहले जमाना में कोई देखता नहीं था, लड़की लड़का नहीं देखता, माँ बाप करते वो सही हो जाता था
1: जी।
3: और कभी भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता था
1: जी,
3: तो पूरी जिंदगी तक सबर सीखते थे
1: जी।
3: लेकिन आज नहीं, पता नहीं, आज इतने सब कुछ देखते हैं, सब कुछ तय होने के बाद ही शादी करते हैं, बाद में भी ऐसा होता है। तो इसका मतलब तो देती यही है कि अभी लोग को सहन शक्ति भी बिल्कुल नहीं है, कुछ बात हो जाती है तो तुरंत बोल देते हैं हमको रिश्ता नहीं रखना है, हमको ये नहीं करना है
1: जी।
3: तो और दूसरी बात की आप कितना ही दो लड़के वाले को, फिर भी वो बस यही बात करता है हमारे पास नहीं है तो ये दे दो, ये हमारे पास नहीं है तो ये दे दो, हरदम मारने की ही बात करते हैं
1: जी।
3: तो माँ बाप भी कई ऐसी प्रॉब्लम होते थे, माँ बाप कहाँ से दे सकते हैं
1: जी।
3: तो ये मांग भी सही नहीं है, इसीलिए भी रिश्ता टूट जाता है क्योंकि माँ बाप के पास कुछ नहीं होता है। तो
1: जी जी जी,
3: सामने वाला मांगता है तो बेटी को दुख तो होता है कि मेरे घर को पास कुछ नहीं है, फिर भी ये मांग करता है तो
1: जी जी
3: सही नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा।
3: माँ बाप भी कई बार माँ बाप भी कहते हैं कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है तो सामने वाले को हम भी इतना बेटी को, वो हमारी बेटी को ये चाहिए, हमारी बेटी को ये चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ये भी एक बात सही है। इसी कई बार क्या होता है हमारे घर में कुछ नहीं होता, वो सामने वाले को हम सब कुछ बोलते हैं, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास बंगला नहीं है, उसके पास कोई अच्छा टैलेंट नहीं है, जॉब नहीं है
1: जी।
3: लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि सामने वाले पास कुछ ना हो लेकिन इसके पास रिश्तेदारी हो, खानदानी हो, उसका लड़का अच्छा हो, अच्छी तरह से वो करका जो पूरा कर सकते हो, और लड़का सीधा साधा हो तो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है
1: जी।
3: हम कई बार क्या होता है ज्यादातर बहुत बड़े लोग भी शादी करते हो तो यही भी प्रॉब्लम रहता है
1: जी जी।
3: तो हम बराबरी का रिश्ता करें तो यही रिश्ता सीख सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत आभार आपका।
3: मैं तो यही कहूँगा बस बराबरी में रिश्ता करिए और सब चेती पे सब देख के करिए तो अच्छा रहेगा
1: जी जी जी। बहुत सुंदर जी, नमस्कार, बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही सुंदर स्पष्ट किया आपने। अब यहाँ पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप जरूर जुड़िएगा, प्रश्न का जवाब भी दीजिएगा। चूंडा वत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। तो ऐसी कौन सी क्षत्राणी है जिसने निशानी के तौर पर अपना सिर ही काट करके दे दिया? तो प्रश्न का जवाब भी दीजिए और विषय में भी जरूर भाग लीजिए। नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और रेडियो मधुबन से आप जुड़ सकते हो। आइए सुनेंगे एक गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: चूंढावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। बहुत सुंदर ये प्रश्न है, इस पर आपको जवाब देना है कि ऐसी कौन सी क्षत्राणी है जिसने निशानी के तौर पर अपने पति को सिर काट करके ही दे दिया। ऐसी क्षत्राणी का नाम आपको बताना है। भाई आप सभी देखिए राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान का ही ये इतिहास है और ये इतिहास तो आपने पढ़ा ही होगा। तो आप जो भी आशियाना सुन रहे हैं ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि इतिहास की बातें हैं तो इतिहास में तो अगर हम बात करते हैं तो और हमारे देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है ज़्यादा, क्योंकि वैसे तो होती है लेकिन कुछ ऐसे हम टॉपिक को लेकर आते हैं या फिर अच्छे अच्छे से गीत सुनते हैं तो उससे और भी हमारे मन में देश के प्रति प्रेम बढ़ता है। और ये राजस्थान का इतिहास है कि ऐसी कौन सी क्षत्राणी है जिसने अपने पति को निशानी के तौर पर सिर काट करके दे दिया है। तो जिन्होंने भी पढ़ाई की हो ज़रूर आप जवाब दे सकते हैं, और पढ़ाई नहीं की है तो ठीक है, फिर तो आपको हम बताएंगे, जवाब देंगे ताकि आप इतिहास को जान सको। तो देखते हैं अब किन्होंने पढ़ाई की है, जवाब आएगा, फोन कॉल्स आएंगे तो पता चल जाएगा। और विषय भी बहुत सुंदर है कि भाई शादी ब्याह तो कर लेते हैं लेकिन रिश्ते नहीं टिक पा रहे हैं, क्या करें। बहुत से पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि बच्चों को इतना उमंग उत्साह से शादी करवाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, माता पिता बेचारे पूरे कहते हैं ना जिंदगी भर की कमाई लुटा देते हैं, उसके बाद रिश्ते नहीं टिकते और इस तरह लड़कियां घर छोड़ करके चली जाती है, बेटा वापस कुंवारा। बेटी के भी माता पिता को कोई कम दिक्कतें नहीं आती है, दोनों ही परिवार को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर वो दूसरी जगह देखते हैं कि कहीं अच्छा मिल जाए। तो देखिए जीवन में थोड़ा बहुत तो सबके जीवन में तकलीफ होती ही है, और कहते हैं कि कुछ समस्याएं आती है तो हमें भी उस समस्याओं का सामना करने का अवसर मिलता है। अगर समस्या नहीं आती है तो कैसे जिंदगी का आभास होगा कि जीवन में उतार चढ़ाव भी है, एक रस जीवन सभी के जीवन में नहीं होता है। तो कहते हैं कि रिश्ता टूटे उससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत वही सहन कर लो, और सहन शक्ति अगर हाँ वो कहते हैं ना कि लिमिट से बाहर हो जाती है तो स्वाभाविक है एक रबड़ को आप कितना खींचेंगे, ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूटेगा ही। तो रिश्ते भी ऐसे हैं कि अगर मजबूरी से निभाए जाए तो फिर वो टिकेंगे नहीं, टूट जाते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर देखिए अलग अलग समाज की अलग अलग बातें हैं, जैसे सुरेश भाई ने कहा कि भाई दहेज बहुत मांगते हैं और डिमांड पूरी नहीं होती है तो भी इस तरह रिश्ते टूट रहे हैं, तो इस तरह भी होता है। हेलो
2: हेलो नमस्कार जी।
1: हाँ जी नमस्कार नमस्कार, कैसे हो आप भूरीलाल जी? जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या बात है, आप तो हमेशा मुस्कुराहट के साथ ही आते हैं, बहुत अच्छा है। तो आज के विषय के बारे में आप क्या कहेंगे? आज के विषय
2: सवाल भी बहुत अच्छा है, प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है
1: जी।
2: तो क्या है कि रिश्ते में तो टिकते ही नहीं है ज्यादातर,
1: क्यों नहीं
2: टिकते? लोगों में एक चीज सहनशीलता है ही नहीं
1: जी,
2: इसलिए रहते ही नहीं है
1: जी, जी, जी।
2: इसलिए कह रहा हूँ कि विषय दो ही पार्टी को बराबर रहना चाहिए, समानता का अधिकार रखना चाहिए और ज्यादा दहेज वहेज के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ना चाहिए
1: जी जी।
2: ये
1: जी,
2: मेरा कहने का है
1: जी जी, बहुत सुंदर बात है।
2: वो पद्मावती होनी चाहिए मेरे ख्याल से।
1: अच्छा ठीक है,
2: ये मेरा सवाल सुनो।
1: ठीक है तो भूरीलाल जी आप आशियाना कार्यक्रम सुनिए, हम जवाब जरूर देंगे आपका। ठीक है
2: जी, ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम मिलेगा मैं रुकूंगा
1: जी जी,
2: बाकी चला जाऊंगा।
1: नहीं नहीं जाना नहीं है आपको, रुकना है।
2: धंधा करना ही पड़ता है सर।
1: नहीं नहीं धंधा तो देखिए बिजनेस तो पहले वो करिए आप, लेकिन आप ईयरफोन लगा के रखिएगा और सुनते भी रहिए कार्यक्रम, ठीक है, बीच बीच में समय मिले तो जी। बहुत बहुत आभार आपका। तो बहुत ही सुंदर बात कही है कि देखिए सहनशीलता होना जरूरी है, लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं कि लड़कियां भी, एक हमारे ही लिसनर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उनके साथ भी इस तरह की परेशानी हुई है और उन्होंने कहा है कि लड़कियां शादी कर तो लेती है लेकिन फिर वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है, इसलिए थोड़े से अनबन करके घर से चली जाती है और पैसे ऐंठती है पति से, और रहना नहीं है साथ में सास ससुर की सेवा. अरे सास ससुर की सेवा क्या, देखे आजकल तो बूढ़े बूढ़े माता पिता भी अपना काम खुद कर रहे हैं, अपना ही नहीं पूरे घर परिवार का काम कर रहे हैं, तो कौन से हम उनकी सेवा कर रहे हैं. और जरूरत पड़ने पर हम भी तो बीमार हो जाते हैं ना, तो हमारी भी सभी मदद करते हैं. ऐसे वो भी बीमार होते तो उनकी मदद, उनकी सेवा करना बहुत जरूरी है. हेलो
3: जी, नमस्कार, ओम शांति.
1: हाँ जी नमस्कार कुपाराम जी, ओम शांति, कैसे हो आप?
3: बस बहुत अच्छे कार्यक्रम सुन रहे
1: जी.
3: पहले तो वो आपका प्रश्न बता देता, वो तो हांडी रानी है
1: जी,
3: और एक बटालियन भी बनी हुई है हांडी बटालियन
1: जी,
3: इसके नाम से हांडा परिवार में हुई है
1: जी.
3: की स्टोरी तो बहुत लंबी है, फिर आप भी बताना
1: जी. जी जी.
3: और ये विषय चल रहा है मेरे हिसाब से क्या नए नए होते हैं ना.
1: हाँ जी.
3: ये उनको अभी ये मालूम नहीं, लेकिन तो पूरी दुनिया में ऐसा होता रहा है, खटपट वाली बात तो छोड़ना नहीं है, उसके साथ संघर्ष करना है
1: जी.
3: जैसे कोई भी गाड़ी आती है तो ड्राइवर होशियार होगा ना
1: जी,
3: उनको ठिकाना लाता है वो, और रिश्ते तोड़ के वो फिर दूसरी जगह जाएगी भी कहाँ
1: जी,
3: वहाँ भी परेशानी तो वो खड़ी होगी
1: जी. लेकिन वो कहते हैं कि बहुत ही परेशानी होती है घर में, तो फिर क्या करना चाहिए. बहुत जैसे कोई समझने को तैयार नहीं, लड़ाई झगड़े ताने मारना, तो फिर क्या होगा.
3: वो तो ऐसे करना पड़ता है थोड़ा
1: सा संघर्ष.
3: हाँ संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, वो तो ऐसे थोड़े दिन एक बार क्लियर रूट के जाते हैं
1: जी,
3: उनकी आदत होती है वो, तो वहाँ भी फिर उनको वो भी परेशानी रहती है
1: जी.
3: फिर या तो उसको मजबूर करेंगे दूसरी जगह जाओ, तो नहीं मुझे तो दूसरी जगह लेने वही जा रहा है, तो फिर वो वापस आके तो सीधी होने वाली है
1: जी. चलिए बहुत बहुत आभार आपका.
3: देखो एक बार की बात करेगी मेरी
1: जी,
3: आदमी ज्ञाति लेके जो काम करता है ना
1: जी,
3: तो भी घर को नहीं सुधार दे सकता, और महिला बहन है जो सुई लेके काम पे लगे ना
1: जी,
3: तो भी घर को सुधार देती है.
1: बिल्कुल बिल्कुल,
3: महिला में वो ताकत है
1: जी,
3: लेकिन
1: जी,
3: वो उसके उसको सोचना है कि मेरे घर को बिगाड़ना है कि सुधारना है, वो उसके ऊपर है
1: जी. जी जी,
3: इसलिए समय तो निकल जाएगा, थोड़े दिन उधर गए फिर के हम तो पीछे रह गए
1: जी,
3: ऐसे तो वो पीछे ही रहेंगे
1: जी. जी जी, बहुत बहुत आभार आपका.
3: नमस्कार नमस्कार
1: नमस्कार, बहुत सुंदर बात आपने कही है, आभार आपका. और देखिए ये टॉपिक ऐसा है कि जितनी बात करे उतनी कम है, हर प्रकार के पहलू हुए इसमें, कहीं पर दहेज की डिमांड है, तो कहीं पर पति की ज्यादती है, कहीं पर नशे में ग्रत रहते हैं वो भी पत्नी के साथ अत्याचार करते हैं, और कहीं कहीं पर पत्नियां भी कम नहीं होती है, वो भी पैसे ऐड करके चली जाती है. कोई पैसे मतलब ऐटने के लिए आती है तो फिर वो ऐट के चली जाती है, लेके चली जाती है. मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि तलाक तो लेती नहीं है भाई, साइन नहीं करूंगी लेकिन मैं रहूंगी नहीं तुम्हारे घर में, और फिर भरण पोषण देना ही पड़ेगा. तो ये भी हर प्रकार के पहलू है, ऐसा नहीं है कि एक तरह की समस्या है, लेकिन सभी का तोड़ यही है कि थोड़ा सा सहन कर लीजिए और समझाने की कोशिश करिए. अगर नहीं समझते हैं, बेसिर पैर की बातें होती है और बिल्कुल समझते नहीं है, देख लेते हैं कि साल दो साल तीन साल या पाँच साल में भी अगर ससुराल वाले नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप डिसीजन ले सकते हो. और मैं तो हर माता पिता से भी यही कहना चाहूँगी कि बेटी को अगर आप विदा करते हैं तो उनको यही शिक्षा दीजिए कि भाई आप घर में शांति से और प्यार से रहिए, क्योंकि अगर बेटी की शादी होती है तो वो सिर्फ पति ही उसका सब कुछ नहीं होता है, पति का जो पूरा परिवार होता है वहाँ पर, सास ससुर ननंद भाई देवर जेठ जो भी होते हैं, सभी को सम्मान देना बहुत ज़रूरी होता है, तो ही रिश्ते टिकते हैं. बाकी ठीक है, मैं तो पति का कहना मानूंगी, बाकी सभी का कुछ भी नहीं करूंगी, सामने बोलूंगी जबान लड़ाऊंगी, वो नहीं चलता है. इसलिए परिवार में अगर रहना है, परिवार को टिका के रखना है, तो सभी के साथ प्यार से रहना होगा, और सभी का सम्मान करेंगे तो सभी का प्यार भी मिलेगा. इसलिए पति के घर वालों को भी कहना चाहूंगी कि वो भी आने वाली बहू का दिल से स्वागत करें और उसको एक बेटी की तरह प्यार देवे. मैं जानती हूँ कि बहू ही रहेगी, बेटी नहीं बन सकती, लेकिन बेटी का प्यार तो दे सकते ना. कहीं कहीं पर तो देखने को मिलता है कि बेटियों से भी बढ़कर के बहुएं होती है, और पूरे ही अपने पूरे ससुराल वालक जो परिवार का पूरा ही ध्यान रखते हैं, तो हर तरह की बातें आती है इसमें, लेकिन बस थोड़ा सा सहन कर लीजिए, थोड़ा सा एक दूसरे को पहचानिए, एक दूसरे को समझिए, तो ये रिश्ते टिकेंगे और बहुत ही अच्छा भी लगेगा। बाकी तो कहते हैं कि रिश्ते टूटने में तो कोई देरी नहीं लगती, भड़काने वाले कितने ही आ जाते हैं, लेकिन स्वयं को सोचना होता है कि हमें क्या करना है। हमें अपने परिवार को टिका के रखना है, अपने घर गृहस्थी की गाड़ी को टिकाए रखनी है या तोड़नी है। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ। चूंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी, तो ऐसी कौन सी क्षत्राणी है जिसने निशानी के तौर पर अपना सिर काट करके दे दिया? जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए बढ़ते हैं गीत की ओर, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो भाई, इतने बड़े बड़े त्यौहार आ रहे हैं, कल शरद पूर्णिमा है, फिर दीपावली, दीपावली के आसपास तो कितने सारे त्यौहार होते हैं, और त्यौहारों की तैयारी तो पहले ही कर लेते हैं, इसमें मिठाइयाँ वगैरह भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना करके रखते हैं। कहते हैं ना कि भाई दीपावली का त्यौहार ऐसा है कि बहुत सारे टू मच मिठाइयाँ, नमकीन आइटम बना बना करके रखते हैं, ताकि मेहमान जब दीपावली पर आना शुरू करे तो उनको हम मिठाइयों और नमकीन आइटम के साथ उनका वेलकम करते हैं, है ना। आते हैं तो बहुत प्यार से उनको बिठाते हैं, खिलाते हैं। तो सोचा कि क्यों ना आपको मैं इमरती सिखा दूँ, ताकि आप ऐसे बड़े त्यौहार पर आप इमरती बना सको और अपने गेस्ट को खिला सको। तो सामग्री आपको लिखवा रही हूँ, जलेबी की तरह ही होती है इमरती, लेकिन फिर भी टेस्ट में फ़र्क है, क्योंकि जलेबी बनाते हैं मैदे की, और ये बनाएंगे हम उड़द की दाल की इमरती, और ये भी बहुत टेस्टी लगती है। जलेबी टेस्टी लगती है, इसी तरह इमरती भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो सामग्री आप सभी को लिखवा रही हूँ, 250 ग्राम लेंगे आप उड़द की दाल, ठीक है। फिर आप लीजिए 1 किलो चीनी। अब आप 50 ग्राम दूध ले लीजिए, और 25 ग्राम लेना है मैदा। फिर आप आवश्यकता के अनुसार घी लीजिए, और खाने का मीठा रंग लेना है, ठीक है, जिसको नारंगी रंग भी कहते हैं। तो बस सामग्री फिर से दोहरा रही हूँ, इतनी सी ही सामग्री है, 250 ग्राम उड़द की दाल, 1 किलो चीनी, फिर आप लीजिए 25 ग्राम मैदा, आवश्यकता के अनुसार घी, और 50 ग्राम दूध। फिर आप खाने का ले लीजिए मीठा रंग, ठीक है। अब बनाने का तरीका भी आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ कि इमरती कैसे बनाई जाती है। आप क्या करेंगे, दाल को अच्छी तरह धो करके भिगो दीजिए, ठीक है। दाल कम से कम 4 घंटे भीगी रहने दीजिए, ताकि वह अच्छी तरह से फूल जाए। इसके बाद दाल का छिलका निकालिए, उसे खूब बारीक पीस लीजिए। अगर मोगर है तो आप मोगर को गलाइए, ठीक है। इस तरह आप कपड़े में पानी डाल करके गला कर रखिए, और अगर मोगर नहीं है तो फिर छिलके वाली दाल को भी आप भिगो सकते हैं। 4 घंटे में तो सारे छिलके निकल जाएंगे, तो इन छिलकों को निकाल दीजिए, फिर बारीक पीसना है, ठीक है। पीसी हुई दाल में मैदा और रंग मिला करके परात में आप डालिए, जिसको गुजराती में कचरोट कहते हैं। तो कचरोट में डाल करके काफ़ी देर तक अच्छी तरह उसको फेंटिए। इतना फेंटना है कि फेंटते फेंटते दाल का हल्कापन आ जाए। पहले जब हम फेंटेंगे ना तो हमको भारी भारी लगेगा, लेकिन अच्छी तरह जब फेंटेंगे, फेंटते ही जाएंगे, तो फिर हल्कापन आ जाएगा। इतनी देर तक आपको फेंटना है। फिर एक तवी लीजिए, समतल कढ़ाई भी कहते हैं इसको, तवी जिसमें मालपुआ भी बनाते हैं, तो ऐसी तवी आपको लेनी है, ठीक है। तवी में ही हम ये बना सकते हैं इमरती। तो फेंटी हुई दाल को एक कपड़े में रखिए, स्वच्छ कपड़ा लीजिए, उसमें भरिए फेंटी हुई दाल, ठीक है। इतना लीजिए कपड़े के आवश्यकता के अनुसार, भाई कपड़ा छोटा और दाल का खीरा ज़्यादा भर देंगे ना तो ऊपर से निकलेंगे, जब आप दबाएंगे तो ऊपर से निकल जाएगा सारा खीरा, इसलिए आप कपड़ा ऐसा लीजिए और उसमें आवश्यकता के अनुसार ही इस खीरे को भरना है, ठीक है। और नीचे से काना कर दीजिए, काना बोले तो खड्डा, ठीक है। और फिर ऐसे छोटा सा छेद कर लिया, अब आप तवी में घी डाल दिया, घी गर्म हो जाए तो फिर आप बस कपड़े को चारों तरफ से अच्छी तरह पकड़ लीजिए ऊपर से, और थोड़ा सा प्रेशर दे करके एक अपन चूड़ी कैसे पहनते हैं ऐसे गोल गोल गोल गोल आप डालिए तवी में, ठीक है। जो साइज आपको पसंद है उस साइज में डाल करके फिर आप दूसरी डालिए, फिर तीसरी डालिए, फिर चौथी डालिए, घी के अनुसार, तवी के अनुसार, जो साइज है उसके अनुसार आप इस तरह इमरती डालिए, फिर इसको आप पलटी लगाइए अच्छी तरह, एक तरफ से सिक जाए तो दूसरी तरफ से पलटी लगाइए। पलटी लगाने के बाद इधर आपने जो शक्कर ली है ना, तो उसके आप चाशनी बना लीजिए, ठीक है। चाशनी बनानी है, फिर इस चाशनी ज़्यादा देखिए कड़क नहीं करनी है चाशनी को, एक तार की चाशनी बनानी है, जैसे कि गुलाब जामुन की बनाते ऐसी, ठीक है। और फिर इस चाशनी में आप इमरती को डालते जाइए, तो इस तरह सारी इमरती बना लीजिए। बहुत सरल तरीका है ना। हाँ, ज़रूर आप बना करके देख सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी। और एक नई आइटम बनाते हैं अक्सर, हम क्या करते हैं, गुलाब जामुन नहीं, इमरती और जलेबी हम बाज़ार से लाते हैं, घर पर बनाते नहीं है। लेकिन घर पर अभी दीपावली का त्यौहार है, बाज़ार से कितना लाएंगे, घर पर बनाएंगे तो अच्छा है ना, थोड़े से क्वांटिटी में बनेगी वही चीज़ और क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि हम खुद अपने हाथ से बना रहे हैं, ईश्वर की याद में, प्रभु की याद में बनाते हैं, स्वच्छता से बनाते हैं, तो वो क्वालिटी वाली भी हो जाती है और क्वांटिटी तो बढ़ती ही है। एक किलो आप बाज़ार से लाइए और एक किलो ही आप घर पर बनाइए, देखो कितना बैठती है, तो सस्ती पड़ती है घर पर। ठीक है, तो इस तरह इमरती बनाई जाती है। फिर से मैं तरीका समझा रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह बना सको, तो आप ध्यान से सुनना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो उड़द की दाल ली है ना, उसको आप पानी में डाल करके भिगोइए। अगर मोगर है तो मोगर भिगोइए, नहीं है तो छिलके वाली दाल भी भिगोइए। 4 घंटे तक पानी में भिगो के रखना है, ठीक है, ताकि अच्छी तरह ये दाल फूल जाए। 4 घंटे के बाद जो छिलके हैं ऊपर आ जाते हैं, सारे हटा दीजिए, निकाल दीजिए और फिर इसको बारीक पीस लीजिए। ठीक है, पीसी हुई दाल में फिर आप मैदा और रंग डालिए, खाने का जो रंग लिया है ना वो डालिए, और एक परात में, चौड़े बर्तन में, जिसको कचरोट भी कहते हैं, परात कहते हैं राजस्थान में, हिंदी भाषा में भी परात कहते हैं, गुजराती में कचरोट कहते हैं, चौड़े बर्तन में आप निकालिए और अच्छी तरह इसको फेंटिए। फेंटते समय थोड़ा भारीपन महसूस होगा, जब फेंटते जाएंगे तो हल्कापन आ ही जाएगा, तो इतनी देर तक आपको फेंटना है। ठीक है, अब फेंटने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको अच्छा से इकट्ठा कर लीजिए, और कढ़ाई नहीं, तवी रखनी है आपको गैस में, और इसमें घी डालिए आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, और इस खीरे को आप क्या करेंगे, एक स्वच्छ कपड़ा लीजिए, वाइट सूती, ठीक है, इसमें आप भरिए और भर करके चारों ही कोनों को लपेट करके हाथ से पकड़ लीजिए मुट्ठी में। ठीक है, नीचे से एक छेद

कर लीजिए और फिर थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर देते हुए तवी में जब घी गर्म हो जाए तो मध्यम आंच पर आप चूड़ी की तरह गोल गोल गोल गोल गोल गोल डालते जाइए। तो जो आपने घी डाला है तवी की साइज है उस अनुसार इमरती आप बनाइए, 3, 4, 5 डालिए, ठीक है। फिर आप जाले से इसको पलटी मारिए, जब दोनों तरफ से अच्छी तरह लाल लाल हो जाए तो फिर आप एक तरफ चाशनी बना दीजिए एक तार वाली और उस चाशनी में फिर आप इन इमरती को डालते जाइए। तो ये इमरती तैयार है। फिर चाशनी जब पी ले इमरती तो फिर आपको निकाल देना है, चाशनी में ही नहीं रखना है। गुलाब जामुन को हम चाशनी में रखते हैं लेकिन इमरती को चाशनी में नहीं रखते हैं। अच्छी तरह वो जब चाशनी पी ले तो आप निकालते जाइए, दूसरी इमरती डालते जाइए, उनको निकालिए, फिर तीसरा पाया डालिए। इस तरह इमरती आपको बनानी है, ठीक है। तो चलिए इमरती बन चुकी है हमारी। अब भाई मीठा सिखाया है तो कुछ नमकीन तो ज़रूर बनाना पड़ेगा, परंतु एक ब्रेक के बाद, ठीक है। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है। चलो
3: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में ला।
4: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे इमरती। अब बना देते हैं भाई नमकीन आइटम में चीज की पकौड़िया। बहुत तरह की आपको पकौड़िया सिखा चुकी हूँ, तरह तरह की। देखिए पकौड़ी तो ऐसी है कि बहुत अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं और हर जिस भी तरीके से हम बनाते हैं सभी स्वादिष्ट ही लगती हैं। तो आपको रतालू की, कच्चे केले की, न जाने कौन कौन सी आपको पकौड़िया सिखा चुकी हूँ। आज सोचा कि चीज़ की पकौड़ी आपको सिखाऊँ। तो इसके लिए सामग्री ले लेंगे आप 25 ग्राम मक्खन, 50 ग्राम मैदा, आधी कटोरी पानी ले लीजिए और 1/4 छोटा चम्मच लेना है लाल मिर्च, चुटकी भर स्वाद के अनुसार नमक और 40 ग्राम के आसपास बारीक कसा हुआ चीज़। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री, ध्यान दीजिएगा। 25 ग्राम मक्खन, 50 ग्राम मैदा, आधा प्याला माने आधी कटोरी पानी, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च, चुटकी भर नमक या फिर नमक और मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालिए, क्योंकि कोई तीखा पसंद करते हैं, कोई मोरा पसंद करते हैं, तो आप पर छोड़ा। फिर 40 ग्राम के आसपास लीजिए बारीक कसा हुआ चीज़। ठीक है, ये तो हो गई सामग्री। बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि पानी में मक्खन डाल दीजिए और पकने के लिए रख दीजिए।

गिराते जाइए, ठीक है। और पकौड़िया सुनहरे रंग की तल लीजिए। निकालने के बाद ऊपर से कसा हुआ चीज़ बुरक दीजिए और गरम माँ गरम पेश करिए। तो ये बन गई चीज़ की पकौड़िया। फिर से दोहरा रही हूँ विधि को, ध्यान से सुनिएगा। पानी में मक्खन डाल दीजिए और पकने के लिए रख दीजिए। जैसे ही उबाला आने लगे एकदम से सारा मैदा डाल दीजिए और लगातार घुमाते जाइए, जब तक कि बिल्कुल बराबर मुलायम ना हो जाए तब तक इसको हिलाते रहना है। फिर गैस बंद करके इसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने तो देना है लेकिन फिर भी लगातार हिलाते रहना है। और एक एक करके कसा हुआ चीज़ और नमक मिर्च मैदा सब इसमें मिला दीजिए, ठीक है। मैदा तो ऑलरेडी हम इसमें गरम कर चुके हैं और अब आप सभी अच्छा मिश्रण ये तैयार हो गया। मसाला इसमें डाल दिया, नमक मिर्च वगैरह। तो फिर आप कढ़ाई में तेल गरम करिए। तेल गरम हो जाए तो मैदे और चीज़ के मिश्रण को एक छोटे चम्मच से पकौड़े की तरह डालिए। अगर हाथ से पसंद करते हो तो हाथ से डालिए। तो पकौड़िया सुनहरे रंग की तल लीजिए और निकाल दीजिए। निकालने के बाद ऊपर से और भी आप किसा हुआ चीज़ बुरक सकते हैं। तो ये बन गई गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। तरह तरह के स्वाद की अलग अलग प्रकार की पकौड़ियाँ आपको सिखाते रहते हैं। तो चीज़ की पकौड़ी भी आप बना करके ज़रूर खाइएगा, बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट है। तो चलिए, इमरती और पकौड़ियाँ तैयार है, तो देर किस बात की। लीजिए एक स्वच्छ थाली। थाली में आप ये एक प्लेट में इमरती रखिए, एक प्लेट में चीज़ पकौड़ी रखिए और जो भी कुछ आपने बनाया है रखिए। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास पर के भी रखिएगा। ऊपर से थाल पोश ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद ले सकते हो चीज़ पकौड़िया का, ठीक है। और आज का प्रश्न बड़ा सुंदर था, लेकिन हमारे श्रोता बंधु लगते हैं कि या तो शरद पूर्णिमा की तैयारी कर रहे हैं या फिर दीपावली की साफ सफाई में खोए हुए हैं। इसलिए देखे, हमारी बहनें तो जुड़ी नहीं पाती है क्योंकि वो साफ सफाई कर रही है घर की। चलिए, वो भी बहुत जरूरी है। प्रश्न था कि चूंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो क्षत्राणी। ये राजस्थान का बहुत अच्छा इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। बहुत ही बड़ी बात है कि चूंडावत ने जब सेनानी के तौर पर, निशानी के तौर पर अपनी पत्नी से मांगा, युद्ध में जा रहे थे और युद्ध में जाते जाते याद आ गई पत्नी की, तो फिर से लौट आए और लौट करके पत्नी से निशानी मांगी। और पत्नी ने सोचा कि अगर ये मेरे ही याद में खोए रहेंगे तो युद्ध को क्या खाक जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि न रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, और उन्होंने अपना सिर काट करके दे दिया। ऐसी क्षत्राणी का नाम है हाड़ी रानी, जो आप सभी ने सही जवाब दिया है। सिर्फ एक भूरी लाल जी का जवाब गलत है, उन्होंने पद्मावती कहा है। पद्मावती ने जौहर किया है, उन्होंने शीश को नहीं काटा है, ये हाड़ी रानी ने करके दिखाया है। तो सबसे पहले जवाब दिया है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, फिर सुरेश भाई झोटाना से और फिर कुपाराम जी ने। आप सभी ने सही जवाब दिया है, भूरीलाल जी का जवाब गलत है। तो आप सभी के लिए, जिन्होंने सही जवाब दिया है, आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। और अब मैं दहेज प्रथा पर एक सुंदर कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। नारी का न करो व्यापार, नारी का न करो व्यापार, स्वयं जिसे कहते तुम लक्ष्मी क्यों कर रहे फिर उस पर तुम अत्याचार। स्वयं जिसे कहते तुम लक्ष्मी क्यों कर रहे फिर उस पर तुम अत्याचार। दौलत के तराजू पर तोल के, दौलत के तराजू पर तोल के छीना तुमने उसका अधिकार। नारी बिन जीवन है सुना, नारी बिन जीवन है सुना, थोड़ा तो करो विचार। कभी संगनी कभी भगिनी बन, उसने लुटाया तुम पर प्यार। कभी संगनी कभी भगिनी बन, उसने लुटाया तुम पर प्यार। दौलत के नशे में डूबे ए मानव, लूट लिया तुमने उसकी खुशियों का संसार। अब भी समय शेष है देखो, अब भी समय शेष है देखो, करो स्वयं में जागरूकता का संचार। कुरुतियों से ग्रसित समाज का, कुरुतियों से ग्रसित समाज का तुम करो अब बहिष्कार। त्यागो कुंठित सोच को अपनी ए मानव, त्यागो कुंठित सोच को अपनी ए मानव, करो परिवर्तित अपना व्यवहार। हो सके जिससे समाज में, हो सके जिससे समाज में स्वस्थ मानसिकता का निर्माण। बंद करो दहेज प्रथा,
नारी का न करो व्यापार।

व्यापार। बंद करो दहेज प्रथा, नारी का न करो व्यापार। स्वयं जिसे कहते तुम लक्ष्मी, स्वयं जिसे कहते तुम लक्ष्मी, क्यों कर रहे फिर उस पर अत्याचार, क्यों कर रहे फिर उस पर तुम अत्याचार।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार श्रोता बंधुओं, आपका अपना सामुदायिक रेडियो मधुबन 107.8 FM जो प्रस्तुत करता है कार्यक्रम हिंसा को नो, मैं आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों, अक्सर समाज में देखने को मिलता है कि अगर पत्नी पति से ज्यादा पढ़ी लिखी होती है तो पति उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और बात बात पर शक करता है और गलत शब्द व मारपीट से प्रताड़ित करता है। अगर महिला व्यवसाय या फिर नौकरी के लिए कहती है तो फिर पूछे मत कि उसके साथ क्या नहीं होता। हिंसा की सारी हदें पार हो जाती है। इससे महिलाओं के जीवन पर तो गहरा असर पड़ता ही है, साथ ही साथ बच्चों के बाल मन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। समाज मजबूत होने के बजाय कमजोर पड़ने लगता है। तो सुनेंगे एक ऐसा नाटक जिसका विषय है हिंसा का महिलाओं व समाज पर पड़ने वाला प्रभाव।
1: आज आपको आबू के एक गांव में ले चलते हैं, जहां पत्नी काजल अच्छी पढ़ी लिखी और समझदार है, प्रेग्नेंट भी है, और पति विक्रम काजल से थोड़ा कम पढ़ा लिखा होता है। वह बात बात में काजल पर शक करता है, प्रताड़ित भी करता है, गलत शब्दों का प्रयोग भी करता है। तो चलिए चलते हैं इस परिवार में और देखते हैं क्या हो रहा है।
2: कठे जा रही है पूनम?
3: मारे नौकरी लगी है, इन वास्ते मैं काम पे जा रही हूँ।
2: कतरो बढ़िया है तू नौकरी करे और हमेशा मस्त रहे।
3: तो काई हुओ, तू भी तो पढ़ी लिखी है, काम काज कर सके।
2: मैं नौकरी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं कौन ही कर सकूं नौकरी। मने तो बारे जाता भी धरप लागे।
3: क्यों काई भियो, क्यों नहीं कर सके? तू भी तो पढ़ी लिखी है, कटे तारा हस्बैंड तो मना नहीं करे?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, दरअसल मैं प्रेग्नेंट हूँ।
4: काजल, बाने क्या कर रही? घर में आओ, सुबह सुबह बाने गप मारवा पड़ेगी।
2: पूनम, मैं जाऊँ, घर में काम है।
3: हाँ हाँ, मैं भी जाऊँ, चल बाय।
4: क्या कर रही है बाने?
2: मारे आपने कहीं कहनो है?
4: हाँ कहीं केवे, बोल।
2: मैं भी कहीं काम करवा जाऊँ, पढ़ी लिखी हूँ। आप दो ही मिलना काम करो तो आपनो घर अच्छो चाली।
4: कई बोली? घर को काम तो होवे को नहीं थारती, अनन चाली काम करवा। आज का बात लोगा ने देखन, एडी बात सोची ने, तो मारती बुरो कोई नहीं वेला। हाँ समझी, आई बड़ी काम करवा वाली, दूसरा पुरुषा का मुंडा लागना, जो काम करवा जानो थारे, मैं सब जान रही हूँ थारे लोगाया ने।
2: ओथे कोई, मैं तो एड़ो कदी सोचो ही को नहीं सको।
4: मैं थार सो कम पढ़ियो लिखियो, इन वास्ते अभिमान करे खुद पे।
5: क्या हुआ आपके साथ, आप कैसे गिरी?
2: मैं मुझे
5: साफ साफ बोलो, हुआ क्या है?
2: मारो पांव फिसल गयो, मैं पड़ गई।
5: संभल कर चलो, अब तुम्हारा बच्चा नहीं रहा।
1: तो देखा आपने, इतनी हिंसा सहन करने के बाद भी महिला अपने पति के आंख दिखाने की वजह से डर गई है। आंख दिखाने के डॉक्टर के सामने झूठ बोल दिया और डॉक्टर के सामने झूठ बोल दिया, स्वयं को दोषी समझ रही है, फिर स्वयं को दोषी समझ कर हिंसा सहती रहेगी। महिला जब तक पुरुष की जिंदगी किसी प्रकार से पुरुष महिला को टॉर्चर करता रहेगा। आइए देखते हैं पूनम और पूनम के पति क्या बात कर रहे हैं।
6: पूनम, काले थू विक्रम की वाइफ सु बात कर रही ही, तो विक्रम क्यों चिल्ला रहे हो?
3: तेरी को नाम मत लो, एकदम जंगली इंसान है, जंगली।
6: अरे भाई काई बताओ तो ठा पड़े।
3: काई बोलू, काले काजल और मैं खाली हुई कामकाज की बात कर रहा हा, तो विक्रम आन चिल्लावा लाग गयो और घर में जान काजल के थप्पड़ मारी। धक्को भी दी दो जिकाऊ विके 4 महीना को गर्भ पड़ गयो, केवा को मतलब गर्भपात हो गयो। अभी हाल ही में हॉस्पिटल से आ रही हूँ। और सुनो, काजल का पति का आंख दिखावा सु काजल डर गई और डॉक्टर का सामने भी झूठ बोली कि मारो पैर फिसलवा की वजह से मैं पड़ी।
6: या तो कोमल की गलती है, जत्री दर पी वत्री दर पाई, एड़ी बात है पूनम की, कोई अपनी पत्नी ने आगे बढ़ावो छावे तो कोई दरपान रखे, कटे मारी पत्नी आगे बढ़ जाए तो मारी वैल्यू कम हो जाए, तो एड़ा पुरुष महिला ने मानसिक आर्थिक रूप से टॉर्चर करन कमजोर बना देवे है, ताकि वह कतरी भी पढ़ी लिखी क्यों न वे फिर भी वह हर पल दरबती रहे, अंदर ही अंदर कमजोर हो जावे, काम करवा की सारी इच्छा ही मर जावे, न किने बता सके न कोई विनय महसूस कर सके, जीण पे बीते विनय ही था पड़े। एड़ा माहौल सू कतरी बार महिला के तो डिप्रेशन को शिकार हो जावे के पछे सुसाइड कर लेवे।
7: नारी शक्ति में भी गजब की ताकत होती है सहन करने की। पति कितना भी जुल्म क्यों न करे, पत्नी चुप रहेगी, सब कुछ सहती रहेगी। तो देखते हैं इसका समाज पर किस तरह प्रभाव पड़ता है। ले चलते हैं एक और परिवार में। यहाँ दादी और पोते के बीच क्या बात हो रही है। दादी अपने पोते से थोड़ी नाराज भी है, क्यों सुनते हैं।
8: दादी मुझे ये अपना गांव अच्छा नहीं लगता है।
2: क्यों कई हुआ छोरा जो आपनो गांव खराब लागे थाने।
8: मैंने जहाँ पढ़ाई की वहाँ का माहौल देखते हुए मुझे यहाँ रहने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है।
2: अड़ो क्यों बोले बेटा।
8: मैंने अपने मामा के गांव में रहकर पढ़ाई की है, वहाँ पर खेल के बड़े बड़े मैदान हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉलेज हॉस्पिटल सिनेमा घर हर तरह की फैसिलिटी है। अपने यहाँ दादी ऐसा क्यों नहीं है।
2: समाज में शिक्षा की कमी है बेटा।
8: मतलब दादी मैं समझा नहीं।
2: देख बेटा अपना गांव में पढ़ा लिखा लोग तो कम है, पर शराबी तने हर घर में मिल जाए।

0: तो उससे शिक्षा और समाज का क्या मतलब है दादी?
1: पुरुष लोग नशा में डूबा रहे बेटा, तो ना बच्चा को ध्यान रख सके ना परिवार को।
0: ओहो, अब समझा, इस वजह से शिक्षा का अभाव है यहाँ पर। अच्छा दादी, यहाँ की महिलाएं तो खुश है ना?
1: काहे की खुश बेटा, रास्ते में जब चार जना माल शराब पीवे तो महिला तो वटू निकल भी नहीं सके, और घर में तो शराब पीन महिलाओं का साथ में मारपीट करे, हिंसा करे, विको प्रभाव महिला पे तो पड़े और बच्चा पे भी जबरदस्त पड़े है बेटा। जेड़ देखे वेड़ो सीखे या कहावत है, और आगे चालन वे भी एड़े ही काम करे, और ये सब कारणों समाज कमजोर पड़े।
0: क्या दादी, मारपीट भी होती है? यह तो हिंसा है, यह तो बहुत ही गलत है। मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मैं आगे की पढ़ाई वही करूँगा, मुझे नहीं रहना ऐसे गाँव में।
1: अरे बेटा, एड़ो क्यों सोचे, थारे अपना गाँव सु वाकिफ होना भी तो जरूरी है बेटा।
0: दादी, शराबियों से तो मुझे बड़ा डर लगता है। महिला और लड़कियां तो अपने आप को अनसेफ महसूस करती होंगी, वह घर से बाहर भी कैसे निकलेगी और कोई काम भी कैसे करेगी? फिर जब किसी घर या गांव का यह हाल होगा तो समाज पर तो इसका बुरा प्रभाव पड़ना ही है।
1: हाँ बेटा, सही बात है, तू भाग्यशाली है जो तने अच्छो माहौल मिलियो है।
0: हाँ दादी, जहाँ मैंने पढ़ाई की वहाँ के सभी लोग अच्छे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, महिलाएं भी काम करती हैं, और पुरुष महिलाएं एक दूसरे की मदद करते हैं और इज्जत भी करते हैं।
1: मैं थारा सु नाराज हूँ, मैं कह रही हूँ अपना गावरी एड़ी दशा है, फिर भी तू जिद पकड़ रखी है कि मारे हटे कोनी पढ़नो। खुद को स्वार्थ छोड़, अपना गावरी सोच, तू एक अच्छो इंसान है। अगर एक इंसान भी कोशिश करे तो देख दूसरा भी धीरे धीरे मैंने देखन बदलू, और एक दिन समाज भी अच्छो हो जाए। थारा मामा को गांव है वेड़ो, आपनो गांव भी हो जाए। बेटा तो तू मने के आगे की पढ़ाई तू अटे ही करी, और सुन, तू कोई भी एड़ो वेड़ो कई काम मत कर जे जिससे समाज पर बुरो प्रभाव पड़े।
0: हाँ दादी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े, और मैं इतनी पढ़ाई करूँगा कि एक दिन बड़ा आदमी बन सकूँ और अपने गांव में बदलाव ला सकूँ। और दादी, गुस्सा छोड़ो, 11वीं 12वीं की पढ़ाई मैं यही करूँगा।
1: वाह बेटा वाह, जीता रो।
2: बीजू ने अपने गाँव के बदलाव के लिए आखिरकार दादी की बात मान ली और गलत काम नहीं करने का वायदा भी किया। तो दोस्तों, इस तरह हर एक व्यक्ति सोच ले कि मुझे अपने गांव के विकास में योगदान देना है, तो वह दिन दूर नहीं जब घर, परिवार, समाज और गांव सब कुछ मजबूत होगा और उस गांव में खुशहाली बनी रहेगी।
3: तो देखा दोस्तों, आपने कि आखिरकार दादी अपने पोते बीजू को गांव में रहने के लिए मना ही लेती है, और उसको ये भी समझाती है कि भविष्य में वह कभी भी गलत काम नहीं करे। बीजू भी अपने गांव के तरक्की के लिए रुक जाता है और गलत काम नहीं करने का प्रॉमिस करता है। तो इस तरह हर युवा सोच ले कि मैं कभी भी गलत काम नहीं करूंगा और मेरे गांव के विकास में योगदान करूंगा, तो सचमुच एक मजबूत समाज का विकास हो सकता है। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो ठीक इसी तरह के कार्यक्रम लेकर के और भी आपसे मिलेंगे। अभी के लिए आप सभी से अनुमति चाहेंगे, सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। इसको और अधिक समझने के लिए सुनेंगे एक गीत आरजे उषा के द्वारा। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुइया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में आशा मामा सब हार्दिक नमस्कार कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरा संपर्क हो तब से मना जिंदगी को एक नया दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम्स जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इन्हें सब मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारा लोगों ना बोलूँगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगाकर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाऊंगा। फिर नमस्ते, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रुक, ओए रुक, ओए रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, वो इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं होलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड. मधुबन अनप्लग्ड यानी कि संगीत का वो सफर, यानी कि शेर व शायरी, क्रिएटिविटी और पंक्तियों का सफर. जी हाँ, जब एक गाना बनता है तो शब्द मोतियों की तरह पिरोए जाते हैं. बातें वही होती हैं लेकिन कहने का अंदाज इतना अलग होता है कि वो दिल में घर कर जाते हैं. और ऐसी ही कुछ बातें, ऐसी ही कुछ पंक्तियां, ऐसी ही कुछ लाइंस आज आपको मिलेंगी कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में. और इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आज हमारे समक्ष है एक ऐसी अतिथि, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने लेखन जगत में अपना नाम ही नहीं कमाया बल्कि ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जो प्रेरणा का स्रोत है. जी हाँ, हमारे समक्ष है डॉक्टर अलका अग्रवाल सिकतिया जी, जिन्होंने बीएससी की, फिर अंग्रेजी में भी उन्होंने पढ़ाई करी, हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडलिस्ट रही, पीएचडी की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की. उनका शोध रहा हरिशंकर परसाई पर, लघु शोध और प्रबंधन शोध उन्होंने किया. कई प्रकाशन उनके नाम हैं. वैसे तो हम कुछ के नाम आपको जरूर लेकर सुनाते हैं. मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, अदृश्य, मेरी तेरी, सबकी, मीरा कूल, व्यंग संग्रह है ये. कई पत्र पत्रिकाएं भी उनकी प्रकाशित हुई और इसके साथ साथ उन्होंने लेखन क्षेत्र में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है. उनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, चाहे वो गोदरेज कंज्यूमर फिल्म फेस्टिवल सम्मान हो, दुष्यंत सम्मान हो, रचनाकार आयोग द्वारा बिस्मिल्ला खां पुरस्कार हो, ऐसे कई अवार्ड भी उन्हें प्राप्त है. वैसे तो उनके करियर की लंबी व्याख्या है लेकिन चलिए पहले उनका स्वागत करते हैं और उनके बारे में और जाने का आज अवसर हमें मिलेगा. आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है अलका जी.
1: जी बहुत बहुत आभार. और ये मेरे लिए हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि आज ब्रह्मा कुमारी के रेडियो मधुबन में मुझे ये अवसर मिला है. और बचपन से हम सुनते आए हैं और मैं 90s में एक बार यहाँ पर आई भी थी.
0: अच्छा.
1: और उस समय बहुत से, हम जो मनुष्य होते हैं, जिज्ञासा तो हमारे भीतर होती है.
0: बिल्कुल.
1: तो बहुत से जिज्ञासाएं थी तो मैं लगातार प्रश्न पूछती जा रही थी क्योंकि उस समय छोटी भी थी थोड़ी सी. तो वो जो दीदी थे तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आपके भीतर इतनी जिज्ञासा है. आप कहाँ रहती? मैंने बताया मुंबई, बॉम्बे. तब तो बॉम्बे

0: जी।
1: तो उन्होंने कहा कि हमारे सेंटर पर जाइएगा, और कुछ ऐसा होता है ना कि हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर कई बार परेशान भी हो जाते हैं, तो वो कुछ कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जिज्ञासा और परेशानी दोनों थी, और मुझे पता नहीं क्यों मैं मेरे कदम उठ गए आपके जो मलाड में सेंटर है वहां उठ गए।
0: ओके।
1: और वहां पर फिर मुझे बहुत से प्रश्नों का उत्तर भी मिला और मेरे मन की परेशानियों का समाधान भी हुआ था। तो मैं लगातार कई बार गई, लेकिन फिर बहुत सी बातें होती कि अगर आपने परिवार चुना है तो कुछ प्रायोरिटीज हो जाती हैं कि वी कांट गो अगेंस्ट दैट। तो ठीक है, मतलब फिर मैं गई नहीं, लेकिन हाँ मैं जो आपके सिस्टर बीके शिवानी जी हैं उनको तो सुनना किसको अच्छा नहीं लगता
0: जी, जी।
1: तो बहुत बार जब हम कहीं अटकते हैं ना, तो हम जब उन सुनने लगते हैं तो हमको बहुत से प्रश्नों का समाधान मिल जाता है
0: जी।
1: और अभी शिव बाबा ने पता नहीं उनकी क्या मंशा है, मुझे नहीं मालूम है, फिर से उन्होंने बुलाया। और यहाँ पर भी जो आपका आर्ट एंड कल्चर का ये जो 3 दिन का पूरा कॉन्फ्रेंस होता है राष्ट्रीय सम्मेलन, तो उसमें क्योंकि विषय इतना अच्छा था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको समाज को बचाना है, देश को बचाना है और विश्व को बचाना है, तो परिवार को बचाना सबसे अधिक आवश्यक है।
0: बिल्कुल।
1: तो जो विषय था और मेरा विषय था संस्कृति, संस्कार और परिवार के मूल्यों के संवर्धन की कला, तो ये बहुत आवश्यक है कि जैसे मुझे ये लगता है कि हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं और जो दूसरे देश के लोग हैं वो हमारी संस्कृति की ओर आ रहे हैं। तो खैर ये तो मैंने बताया कि स्पीकर यहाँ आई थी, लेकिन आज आप सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है, तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।
0: वैसे तो बहुत सारे प्रश्न है मेरे मन में, लेकिन मैंने आपकी बहुत सुंदर प्रोफाइल जो पढ़ी उसमें आप ये भी लिखा था कि आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग की।
1: सॉरी,
0: आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग।
1: जी जी, हाँ।
0: जी, तो अगर उसके बारे में कुछ बताएं।
1: जी, जरूर। क्रिएटिव राइटिंग देखिए क्या होता है, जो लेखक होता है ना, नजर और नजरिए का फर्क होता है। अब सामने ये पेड़ दिख रहा है मुझे, है ना, मैं भी देख रही हूँ, कोई और भी देख रहा है, किसी को सिर्फ लगेगा कि उसमें पत्तियां हैं, लेकिन एक जो लेखक होता है उसमें एक अलग दृष्टिकोण से देखता है, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। तो बहुत से लोग कोविड में खास तौर पर बहुत, क्योंकि कोविड में लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे थे, अंतर यात्रा कर रहे थे, और कई लोग जब बहुत परेशान थे तो कई लोगों ने हमसे संपर्क किया
0: जी।
1: मेरे साथ में दिनेश शाकुल जी हैं जो चंद्रगुप्त बनते थे चाणक्य सीरियल में, और काफी बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं
0: जी।
1: तो कई लोगों ने हमसे कहा कि लिखा कैसे जाता है, हम लिख तो रहे हैं। तो फिर हमने क्रिएटिव राइटिंग का जो है वो शुरुआत करी।
0: ओके।
1: और उसमें हमने कहा कि जो कविता क्या होती है, कविता में अलग अलग भाव होते हैं, नाद होता है, और उसमें किस तरह से आप उसको लिखते हैं। तो फिर हमने ये काफी सारी पूरा सिलेबस बनाया था, 5 मॉड्यूल्स थे उसके, 5 मॉड्यूल्स में हमने वो सिलेबस बनाया था।
0: अच्छा।
1: और उसमें हम उनको वो पूरी क्लासेस लेते थे और उसके बाद उनको हम होमवर्क देते थे। तो कई लोगों ने उसमें बहुत अच्छी कविताएं लिखना सीखा। और क्योंकि मैं एक महिला काव्य मंच है, अंतर्राष्ट्रीय है, जिसके फाउंडर है नरेश नाथ जी, तो उन्होंने मुझे महाराष्ट्र मकाम का अध्यक्ष बनाया, तो उसमें बहुत सी महिलाएं जुड़ी। और उसमें आरुषि जी क्या है कि मन से मंच तक,
0: अच्छा,
1: है ना
0: जी।
1: तो ये जो आपने कहा क्रिएटिव राइटिंग और मन से मंच तक, तो मन में बहुत से लोगों के भाव होते हैं ना, आप अनुभूति को जब अभिव्यक्ति में ढाल देते हैं, उसको उतार देते हैं कागज के कैनवास पर, तो वो कविता, कहानी, गजल कुछ भी बन जाती है
0: जी।
1: तो इसी तरीके से जब बहुत सी महिलाएं आई जिनको लिखना नहीं आता था और वो केवल कुछ भी या तो किसी की पढ़ देती थी, फिर हमने उनको थोड़ा सा और गाइड किया। तो इस तरह से जो क्रिएशन, क्योंकि देखिए कलाकार तो क्रिएशन करता है।
0: बिल्कुल।
1: और यहाँ पर एक चीज मैंने बड़ी अच्छी सुनी कि कलाकार यानी जो कल को आकार देता है।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम ये नहीं कहते कि हम सचमुच पूरा कल को आकार दे सकते हैं, एक चेतना जरूर पैदा कर सकते हैं। तो एक क्रिएटिव राइटिंग के क्रिएशन कैसे था, राइटिंग तो है लेकिन क्रिएशन क्रिएटिव कैसी हो, रचनात्मकता कैसे आए उसमें, तो ये जो है हमने पूरा मॉड्यूल बनाए हैं और उसको लेकर के हमने पूरी कविता के ऊपर क्रिएटिव राइटिंग की। इसी तरह से कहानी पर भी हम मॉड्यूल बना रहे थे लेकिन किसी कारण से छूट गया, क्योंकि मैं कहती हूँ कहानी एक घटना से नहीं होती। जैसे जब हम छोटे थे, मैं बहुत छोटी उम्र से लिख रही हूँ, पहले तो मैं बता दूं 6-7 साल के लिए जब से मैंने कुछ कुछ लिखना शुरू कर दिया था। उसके रीजंस भी हैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी।
0: बिल्कुल।
1: तो खैर
0: जानना चाहेंगे।
1: तो क्या होता है ना कि जैसे मैंने एक घटना कहीं देखी, दूसरी घटना कहीं देखी, तीसरी घटना कहीं देखी, तो हम जब सबको सिंक्रोनाइज करते हैं, क्योंकि जो रचनात्मकता होती है, रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग होती है, वो रिपोर्टिंग नहीं होती है। उसमें आप यथार्थ के साथ में कल्पना का भी उसमें सम्मिश्रण रहता है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो होता है, ये तो क्रिएटिव राइटिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड और उसमें ये वाली बात है। और एक बात बहुत आवश्यक है कि क्रिएटिव राइटिंग कोई मशीनी तो वो होती नहीं, उसमें आपको भावनाओं में जब तक पगी नहीं हो ना, तो उसमें वो बात नहीं आ पाती है। तो मुझे लगता है कि हर जो रचनाकार है उसके अंदर भावनाएं तो होनी चाहिए और वो अपने दुख के साथ दूसरे के दुख को भी उसी तरह से अनुभव कर सके,
0: संवेदनशील
1: कर सके। बिल्कुल। तो क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है और जिंदगी हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, तो उस जिंदगी को जब आप रचनात्मकता में ढालते हैं वो क्रिएटिव राइटिंग।
0: क्या बात है, कितनी सुंदर डेफिनेशन दी है आपने।
1: थैंक यू।
0: आपने फिल्मों के लिए लिखा है, आप रेडियो की बात करें या फिर कविताओं की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, कहानी, मतलब बहुत बहुत कुछ लिखा है आपने। आपके कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। कुछ एक किसी प्रकाशन के बारे में आप जरूर बताएं। जैसे मान लीजिए, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल लगा, मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो इसके पीछे का क्या कहानी है, ये कैसे लिखा या क्या, उसके बारे में कुछ
1: बताती हूँ। एक तो आपने रेडियो की बात की, उस पे फिर मैं मुर्दे पे आऊंगी। तो रेडियो लेखन के लिए मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जैसे मैं बॉम्बे से हूँ, तो एक बार किसी ने कहा कि बम्बई के में संयुक्त परिवारों पर आप कुछ एक लिखो।
0: अच्छा।
1: तो मुझे किसी ने चैलेंज किया कि आपको बॉम्बे में संयुक्त परिवार मिलने वाले ही नहीं है। लेकिन बोलते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मुझे तो करना था। आप मानेंगे नहीं आरुषि, जब मैं जब ढूंढने लग गई, 13 परिवार की जगह मुझे इतने परिवार मिलते चले गए, और वो मैं आज भी गूज़बम्प्स आते हैं मुझे जब मैं वो अनुभव शेयर करती हूँ। तो जिनके भी परिवार में गई, तो क्या होता है ना कि जैसे एक जगह अगर जब इकट्ठा होता जाता है पानी तो सड़ने लगता है, इसी तरह से ना परिवारों में भी कई कई बार कुछ कुछ भावनाओं में एक दूसरे से क्लैशेस होने लगते हैं। तो लेकिन जब मैं उनसे मिली, और एक परिवार अंधेरी का मैं आपको बताती हूँ, दुबे परिवार था, तो वहाँ बड़े भाई भाभी ने ही उनके पूरे मतलब छोटे भाई बहनों को बड़ा किया था और बहुत अच्छे से सारा कुछ उनका किया था। तो जब हमने ये किया तो वो लोग लिटरली रोने लग गए और मुझे गले लगा लिया और उनने कहा कि जैसे एक विरेचन होता है ना, जिसको कैथासिस कहते हैं, एरिस्टोटल ने जो दिया था, कि उन्होंने कहा हमारे अंदर की सारी जो गलत भावनाएं आने लगी थी वो सब खत्म हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से एक हमने जो काम किया। तो रेडियो लेखन में ये एक अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। और ये रापा सीरियल अवार्ड होता है, रापा यानी जो टेलीविजन और दूरदर्शन में जो बेस्ट होता है, तो उसको बेस्ट रापा सीरियल अवार्ड भी मिला था।
0: क्या बात है
1: जी,
0: क्या बात।
1: अब आपने मुझसे मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो आपको जैसे शीर्षक बहुत अच्छा लगा, तो दरअसल ये एक मेरे एक दोस्त हैं, तो वो पहले फिल्मों में एक्टिंग करते थे, वो बिहार में कहीं रहते हैं। तो क्या हुआ था कि मेरी कहानी पढ़ के उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि मुझे बहुत अपनी अपनी सी वो कहानी लगी, बहुत मैं कनेक्ट हुआ हूँ उससे। तो फिर उनसे बातचीत होने लग गई। तो जो क्योंकि बॉम्बे में तो बॉलीवुड और बॉम्बे की लाइफ, तो बॉम्बे या तो मतलब ऐसे कहते गरीब से गरीब को भी भूखा नहीं सुलाता, अमीर से अमीर को भी। तो बॉम्बे एक ऐसी मिस्ट्री है कि जिसको हर कोई हल करना भी चाहता है, जिसमें जाकर फंस भी जाता है। तो ये हुआ कि वो रवि नाम है उनका, तो उनसे मेरी फिर अच्छी बातचीत होने लग गई। और वो फिल्मों में सीरियल्स में सब स्ट्रगल कर रहे थे, फिल्मों में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बन गए तो बन गए, नहीं तो बहुत खत्म भी हो जाते। खैर, तो वो जो बताते थे, फिर उनकी कविता थी मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, और तो इस तरीके से, तो वो फिर बाद में उनसे ही, क्योंकि उनकी लाइफ थी, तो वो स्ट्रगल करते हुए दो दोस्तों की कहानी है। फिर अंत में ये होता है कि जो दो दोस्त हैं, मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त को संभालता है, और फिर दूसरा दोस्त जब परेशान होता है तो ये संभालता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि वो कुछ ऐसा समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है और रूम से चला जाता है। उस समय पेजर हुआ करती थी जब मैंने ये कहानी लिखी थी, तो पेजर पर ये कबीर जो है पहला वाला दोस्त, वो आदित्य को मैसेज करता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, इतिहास वो लिखते हैं जो धारा के विरुद्ध चलकर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो अब मैं ये शीर्षक कैसे है, देखिए कई लोग कहते हैं मुर्दे, मतलब तुम्हारे शीर्षक मुझे समझ नहीं आए, जो समझ सकता है जैसे आपको अच्छा लगा। अब आप मुझे बताइए कि जो जीते जी मर जाएगा वो तो मुर्दा हो गया ना, और जीते जी जिसके अंदर जिजीविषा है, एक संघर्ष की कामना है, तो वो कभी मुर्दा नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल,
1: इतिहास उनका ही लिखा जा सकता है,
0: और हार नहीं मानता
1: है ना, उसका इतिहास तो कभी नहीं लिखा जाएगा। तो ये बात है, और यही मैं अपने जिंदगी में भी कहती हूँ कि हार कभी मत मानो, है ना, जैसे वो है ना कि हार के आगे जीत है, तो यही वाली बात है कि अपने आप को हारने नहीं दो, और खास करके यहाँ आने के बाद इस डिवाइन में, कि मतलब जब हम अपने आप से संवाद करते हैं, परमात्मा से खुद को जोड़ते हैं और अपने

0: अगर आप कुछ टिप्स दें, कुछ ऐसी बातें जो मदद करें, जैसा आपने कहा ना अनुभूति को अभिव्यक्ति मिलाने के लिए, आपकी ओर से कुछ ऐसे,
1: मतलब आपका प्रश्न है कि कौन सी बातें कहानी लिखने में मदद करती।
0: जी जी जी,
1: हमारा जो मैका है वो कटनी एमपी में है और वहाँ एक फार्म हाउस है हमारा। तो मेरे पापा जो थे उन्होंने पूरी अपना सारा एकदम रात से लाइफ छोड़ के, उनको फार्मिंग बहुत पसंद आई, तो वो हम मतलब 400 एकड़ जमीन थी, बंगला था, तो हम लोग वहाँ रहते थे। तो वहाँ जो गांव की लड़कियाँ आया करती थी उनसे हमारी दोस्ती हो जाती थी, और वो लड़कियों को देख करके ना मेरे जहन मतलब वो अंकित होती चली गई। उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्योंकि मैंने छोटी उम्र में कहानी भी लिखनी शुरू कर दी थी, तो वो कहीं ना कहीं मतलब जैसे एक शिवरात्रि नाम की लड़की थी, हाँ उसका नाम ही शिवरात्रि था, और आज भी मुझे वो वैसे की वैसे याद है, एकदम लंबी छरहरी सांवले रंग की बड़ी बड़ी आंखें, तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में अंकित हो गई है ना। इसी तरह से हमारे यहाँ पर एक गाल बाबा थे, तो उनकी बेटी का नाम था अमसा था, अमसा। अब आप बोलेंगे अमसा कोई नाम होता है ना, है ना। अब वो उसका रीजन क्या था कि मेरी दीदी ने उनकी बेटी का नाम रखा था अंशा।
0: अच्छा।
1: अब अंशा तो वो नहीं बोल सकते थे तो अमसा बोलते थे, तो एक करेक्टर मेरी अमसा बनी, एक करेक्टर मेरी शिवरतिया बनी, और फिर उनकी कहानी दूसरों कहीं से आए। जैसे मैंने बताया आपको कि कटनी की हूँ मैं, तो कटनी में ना चूने के भट्टे बहुत होते हैं, तो चूने के भट्टों में जो लोग काम करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ उनको टीबी बहुत हो जाती है, तो वो जो सारी जो चीजें थी वो। उसके बाद में रेलवे लाइन पर जैसे गरीब लोग हैं वो कोयले बिन रहे हैं, कोयले के जो वैन निकलती है ना कोयले गिरते हैं, तो वो कोयले बिनते बिनते ट्रेन से कट जाते हैं, कई बार उनको नहीं पता चलता था। तो ये जो मेरा जो एकदम मासूम सा मन था ये बहुत मुझे परेशान करती थी ये चीजें, और वो फिर सब मेरी कहानी में ना मतलब एक चीज वहां में जैसे बताया ना एक घटना ये घटना वो, तो ये जैसे कि जो मतलब मेरी कहानी में अमसा जो है वो गांव से शहर आती है, फिर वो इस तरह से उसकी और वो अमसा से मिलती है ये जो राइटर है, और वो चूने भट्टे के वहाँ जाती है, तो वो बोलती है कि दीदी हम ना कक्का भाई, क्योंकि मैं वहाँ की तो मुझे भाषा भी आती, दीदी हम कब ना चूने के भट्टे में काम करीबे, तो वो फिर वो बोलती है। लेकिन जब दूसरी बार जाती तो देखती कि वो अमसा खांस रही है बुरी तरीके से, तो वो बोलती कि तुमको क्या हो गया, तब वो कहती कि दीदी हम कहे थे ना कि हम अम्मा वाला काम कभी ना करेंगे, लेकिन हमारे घर में खाने को नहीं बचा, दद्दा भूखे मर रहे हैं, दीदी भूखी मर रही, तो क्या करें, काम तो करवे को पड़ा थे। तो वो सारी जो चीजें थी, तो वो मतलब वो मैंने वो भाषा वहाँ की, क्योंकि बचपन में उनके बीच में जाते थे, तो ये ना जो लेखक होता है ना वो बहुत ज्यादा ग्रहणशील होता है और उसका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होता है और संवेदनाएं कहीं, और उस पर जो संवेदनाएं होती है ना, तो कहते हैं ना जैसे कि हीरे पॉलिश कर दिया है, तराशती है संवेदनाएं, इस तरह से कहानियां हमारी बनती हैं। जैसे आपसे ही मैं बात कर रही हूँ, अब आपकी स्माइल पर ही मैं कुछ कविता लिख दूंगी तो ये तो देखिए क्या होता है कि नजर की बात है,
2: नजर और नजरिया जो आपने कहा,
1: बिल्कुल हाँ।
2: जैसा आपने कहा था कि आपने बहुत कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था, तो क्या ऐसी कहानियां थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, या फिर क्या कोई ऐसा क्षण था जिसने आपको इंस्पायर किया, या कहां से लेखन की शुरुआत कितनी कम उम्र में कैसे हो?
1: क्या हुआ था ऋषि जी कि बचपन में मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, अक्सर मैं साक्षात्कार में ये बात तो आती कि लोग पूछते हैं कि लिखना कैसे शुरू किया, क्या किसी ने जैसे आपने पूछा क्या किसी ने इंस्पायर किया या कोई ऐसा क्षण आया, तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी। तो मतलब हम लोग पांच बहन थे और मैंने अपना बहुत दीदी लोगों ने मेरा नाम जल्दी लिखा दिया था, तो मैं मम्मी पापा फार्म हाउस में रहते थे तो मैं दीदी लोग के साथ यहाँ रहती थी, और मैं बहुत छोटी सी थी, तो मेरी दीदी जो थी सबसे बड़ी वो खुद 18 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी, और वो मेरे लिए माँ समान थी कि मम्मी फार्म हाउस पे रहते थे मम्मी पापा। तो उसके बाद मतलब उन्होंने ही मुझे डांस वगैरह, हम लोग का पिक्चर हॉल हुआ करता था तो डांस वगैरह करती थी, तो उनने कहा कि इसको डांस सिखाया जाएगा, तब तो लिखने जैसा कुछ सोचा भी नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था मतलब 5-6 साल की बच्ची क्या सोचेगी ना उस वक्त। तो मैं क्या करती थी, पिक्चर हॉल से आती थी फिर वो लैट लगा के फिर गा के अंदर, तो बोले करती क्या अंदर ये, तो दीदी लोग ने देखा तो इसको डांस सिखाया जाएगा, और वो ही गा के सिखाते थे मुझे क्योंकि क्लासेस नहीं थी, कथक बेस है लेकिन मेरे डांस का। तो खैर फिर वो दीदी की शादी बहुत जल्दी हो गई, 19वें साल के पहले ही मतलब कहते हैं डाउरी डेथ थी उनकी, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मतलब आज भी कई बार आंसू आ जाते हैं उनकी बात करते हुए मेरे आंखों में। तो उनसे जो छोटी दीदी थी उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में जो आता है ना याद करके लिखा करो, और डांस शशि दीदी नाम था शशि, तो उन्होंने

0: कि शशि को मतलब उनका मन था कि तुम डांस करो, तो मेरी जो प्रभा दीदी वगैरह थी उन्होंने मुझे लगातार डांस, तो मतलब मैंने कई सारे डांस में भी अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बहुत सारे जीते हुए हैं। तो सरस्वती माँ की कृपा है जो उन्होंने मुझे कला दे करके भेजा, और मैं कहती हूँ लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा, अब बोलती हूँ क्योंकि तब तो मालूम नहीं था मुझे। तो मैं जो भी मन में कुछ भी आता था पेंसिल से लिखती जाती थी उसको, फिर धीरे धीरे 3 एज की जब हुई तब तक मैं कहानियां लिखने लगी थी जी। तो उस टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पब्लिकेशन था सारिका, धर्मयुग अगर आपने सुना होगा सारिका, ये दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन हुआ करते थे। तो सारिका में मेरी पहली कहानी छपी नवांकुर विशेषांक में। उसके बाद तमाम जगहों से पत्र आने लग गए और बात और मंगाई जाने लग गई कहानियां, और मतलब उस समय मुझे अब बहुत सेलिब्रिटी बन गई, इतने सारे लेटर्स के बीच में छोटी सी अलका बैठी हुई पत्र पढ़ रही है सारे। खैर फिर वो एक सिलसिला शुरू हो गया आकाशवाणी जबलपुर और फिर तमाम जगह, फिर बॉम्बे भी गई। तो मेरे साथ में अच्छा ये हुआ क्योंकि मेरे पति वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन वो मेरे लेखन को बहुत पसंद करते रहे हमेशा से। तो उन्होंने कहा कि तुम लिखना बंद मत करो, और मुझे कुछ वहां पर जनसत्ता में सब रंग उनका आता था। तो शादी के बाद भी मेरा लेखन कभी ना रुका नहीं। तो यही वाली बात है कि आप दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या दुख में अपने आप को खत्म कर दीजिए। तो दुख ने मुझे बनाया है जी, इस तरह में लिखने लग गई, शब्दों में ढाल दिया अपने दुख को मैंने।
1: ये जो सेंटेंस है जी, दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या खत्म कर दीजिए, यही से वो जो आपका जो पहला टाइटल है शायद वो सिद्ध हो जाता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते। इतिहास वो लिखते हैं जैसे आप जैसे लोग जो जिन्होंने दुख से अपने आप को बना लिया। मुझे लगता है लाखों लोगों को दुख से निकालने के निमित्त बन गए
0: जी।
1: क्या इसके लिए फिर आपको ऐसा कुछ लगा कि हाँ मुझे और ट्रेनिंग करनी है या और कहानियों को समझना है? किसको मतलब आप पढ़ते किनको थे या कौन आपको बहुत पसंद, कौन किसका लेखन आपको बहुत पसंद था?
0: जैसे चित्रा मुद्गल जी का बहुत अच्छा लिखता है, लगता है मुझे। मधु काकड़िया इस समय जो है हमारे समय की, मतलब हम हमारे से बड़ी पीढ़ी की है, लेकिन मधु काकड़िया जी बहुत अच्छा लिखती है। उसके अलावा जैसे कि हरिशंकर परसाई जी को तो मैं खैर एक तरह से उनके लेखन को जीती हूँ। ज्ञान रंजन जी भी मुझे बेटी जैसे ही मानते थे, और मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मुझे इन सब से मिलने का मौका मिला है। मुक्तिबोध को मैंने पढ़ा है, अज्ञेय को मैंने पढ़ा है। तो कई बार जैसे बाबा नागार्जुन की कुछ कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। इसी तरह से अमरकांत मुझे बहुत पसंद थे, उनकी जिंदगी और जो क्या बहुत सारी। तो मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे एक कोई साहित्यकार पसंद है, कभी किसी की कुछ चीज अच्छी लगती है, कभी किसी की कोई चीज बहुत अच्छी लगती है। तो और आपको ना वो रास्ता जैसे बशीर बद्रे उनकी आप शायरी सुनेंगे कि आप सुने कि हम बचपन में थे ना, तो वो रखते थे उजाले अपनी यादों के, हमारी साथ रहने दो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और बहुत सारे है कि मतलब उनकी मतलब बार बार हम उनके बहुत सारे शेर हमें याद आते हैं। तो जो भी अच्छा मिलता है, और कई बार ये भी होता है आरुषि जी की बहुत नाम नहीं होता है किसी का, लेकिन अचानक आप उठा के पढ़ते हैं तो अरे इतने ये लिख दिया, ये मैंने क्यों नहीं लिखा, तो ये होता है। और जैसे कि कई बार ये होता है कि जैसे ना जैसे अगर आप बोलेंगे तो मैं अपनी एक आध आपको रचना भी सुना दूंगी
1: जी। मैं एक्चुअली वो पूछने ही वाली थी कि कुछ पंक्तियां अगर आप सुनाएं अपने लेखन की हमें भी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
0: तो पहले से मैं बताती हूँ कि ना बता जैसे मतलब हमेशा मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं, और मैं ना मैंने मुझे लगता है कि आपका भी मुझे लग रहा है आपके अंदर का भी बच्चा हमेशा जिंदा रखती है आप। तो अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। तो मेरे पति हमेशा कहते हैं मम्मी पापा ने तुमको बड़ा करके नहीं भेजा। तो मैं कहती थी कि कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए, कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए, बड़े होना मतलब झूठ बोलो शान से मक्कार हो जाओ। क्या करें इस परिभाषा पे हम खरे नहीं हुए, तो कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए।
1: वाह वाह वाह।
0: तो क्या हुआ कि मेरी बेटी अब तो बड़ी हो गई, तो जब वो 5 साल की थी ना तो एक बार मेरे साथ जा रही थी। अच्छा वो वैसे मम्मा बोलती है, लेकिन जब वो बहुत उसमें प्यार में होती है तो माँ बोलती है मुझे। और मुझे बहुत मतलब तो मैं लगती हूँ कि ना, और सचमुच मुझे लगता है कि जो रिश्ते आपको जो खुशी देते हैं ना वो कहीं नहीं मिलती है। और मैं आपको 2 कविताएं इसलिए सुनाऊंगी कि आपने अगर परिवार चुना है तो पहले मैं वो सुनाती हूँ, फिर मैं अपनी बेटी पे।
1: प्लीज प्लीज जरूर जरूर
0: जी। तो क्या सपने बन गए बोनसाई, कहते हैं कुछ लोग कि स्त्री जब बनती है माँ करती जाती है अपने सपनों को छोटा छोटा बहुत छोटा, मारती जाती है अपने सपनों को खुद बेमौत, या हो जाते हैं उसके सपने बौने, बन जाते हैं क्या बोनसाई, बन जाते हैं बोनसाई। सोच का बवंडर उठा भीतर उसके, क्या ये सच उसका भी है, क्या ये सच उसका भी है, हो जाने दिया है उसने अपने सपनों को बोना, बना दिया हरे भरे वृक्ष से बोनसाई। विचार मंथन चल पड़ा अंतस में, अगर ऐसा होता तो मिट चुका होता कब का वजूद उसका। उसने टटोला, खुद के वजूद को महसूस किया, अरे वो तो वहाँ है, मतलब उसका वजूद तो वहाँ है, बड़ा अजीब है व्यक्तित्व उसका। एक कोस्त्री विमर्श की बातें तमाम, पर झेलती है यातनाएं भी तो क्या छद्म है उसकी बौद्धिकता, लेखन में विरोध के स्वर है मात्र दिखावा, तर्कों की मथानी से फिर मंथन वो करती है, तब सांसारिक सच की सोच नवनीत से उतरती है, पत्नीत्व और मातृत्व का चुनाव उसका ही तो है, तो फिर शायद जायज है समझौते भी। यातना सहते हुए भी खुद को खुश रख पाती है, अपने वजूद से पहचानी जाती है, यानी नहीं होने दिया उसने अपने सपनों को बोना, जिजीविषा के पानी, महत्वाकांक्षा की खाद और आत्मसम्मान की धूप से बचाया है उसने अपने सपनों को बोनसाई बनने से। तो अब मेरी बेटी मेरे साथ जा रही थी, एक बार 5 साल की थी तब, वो तो ऐसे आंख बंद करके एकदम बैठी थी, मैं उसको देख रही थी, अचानक उसने मुझे जो बोला तब ये कविता निकली। क्या बोला था इसमें आएगा, सुबह की सुहानी बयार सी है वो, अल सुबह की सी शीतल ओस सी है वो, उसे देखकर लगता है ऐसे भर ली हो भोर की भीनी खुशबू भीतर जैसे, उसका मीठा बोसा लगता है यूं सहला गया ठंडी हवा का झोंका जू, चूमती जब मासूमियत से आंखों को मेरी, कितना नाजुक पिघलता सा है वो एहसास। उस रोज सुबह सुबह संग मेरे वो निकली, नन्ही परी ने आंखें बंद कर ली अपनी, खो गई एक प्यारी सी दुनिया में, एंजल सी चमकती चेहरे पे उसके, अपनी छोटी छोटी बाहों का घेरा मेरे गले में डाल, आंखों में सितारे भर कर कहा उसने, माँ माँ माँ मुझे सुबह बहुत अच्छी लगती है। अनहद नाच सब बज उठा अंतस में मेरे, मंदिर में बज गई हूँ घंटियां जैसे, कैसे महसूस कर पाती है मेरी नन्ही सी कली सुबह की पावन खूबसूरती, कितनी मधुर है ये अनुभूति, बड़े प्यार से फिर वो मुझसे सटी, सीप सी पलकें बंद कर अपनी, झर झर झर झर झर झरते झरने सी आवाज में कहा उसने, सुबह कितनी अच्छी लगती है ना माँ, है ना माँ सुबह कितनी अच्छी लगती है ना, खिल उठी भीतर मेरे खुशियों की बीथियां, कितनी प्यारी होती हैं बेटियां, आगोश में अपने भर कर पेशानी उसकी चूम कर कहा मैंने, बेटी मेरी मुझे तो तू खुद सुबह सी लगती है, तू खुद सुबह सी लगती है।
1: क्या बात है, मतलब सच में ये जो आपने पंक्तियां कही हैं, हर माँ सुनेगी तो अपनी बेटी को, अगर वो उनसे थोड़ा सा भी दूर है तो मुझे लगता है वो उनके करीबी पल, वो उनकी आंखों के सामने वैसे तो रहते ही हैं, लेकिन वो आंखों में आंसू बन के बह जाएंगे, इतने खूबसूरत हैं ये पंक्तियां। आपकी बेटी क्या कहती है जब वो आपकी कविता सुनती है?
0: मेरी बेटी अभी मतलब बेटा भी है मेरा, अभी जॉब कर रहा है, और बेटी अभी लॉ कर रही है और 4th ईयर में है। और अभी मैं आपको बताऊं कि पता नहीं, मतलब कई बार हमको लगता है कि शायद पता नहीं वो उतना प्यार करती है, लेकिन अभी इधर में भोपाल में किसी कार्यक्रम से गई थी, यहाँ पर हूँ मैं 26 तारीख से, तो वो मुझे बहुत मिस कर रही है, तो रोज फोन करती है, तो मुझे लग रहा है कि काश मैं जल्दी चली जाती। खैर, तो वो ना लॉ कर रही है। अच्छा, एक बात अच्छी कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखती है, मुझसे बेहतर लिखती है, और वो बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कर लेती है। तो मैं कहती हूँ कि उसका नाम, वैसे हम लोग घर में मिष्टी बोलते हैं, वैसे उसका नाम शरण्या है।
1: अच्छा।
0: तो कई बार ना वो जब छोटी भी थी ना, तो जैसे मैं उसको लोरी सुनाया करती थी, तो वो मुझे अपनी गोद में सुला करके वैसे लोरी गाती थी, तो मैं कहती थी कि बेटी माँ बन जाती है, तो मतलब ये होता है। तो अभी भी ना कई बार मम्मा ऐसे नहीं करना, मम्मा वैसे करना है, तो मैं कई बार, मुझे लगता है, और मैं अभी उसको बोलने देती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ वो मेरी माँ बन करके मुझे उस तरीके से वो कर रही है। तो बड़ी प्यारी सी, नाजुक सी है, और अच्छा लिखती है, और लॉ कर रही है, और उसका शुरू से ना बहुत ये मन था कि मैं इसमें रहूं, मतलब जो जासूसी जो सीरियल होते थे, हाँ, इस तरह के जो होते थे वो देखा करती थी, तो उसको उसमें मतलब बहुत इंटरेस्ट आता था, तो उस तरीके से वो अब वो लॉ कर रही है।
1: क्या बात है। अच्छा, इसीलिए उन्होंने वो प्रोफेशन बनाया उसको, और समाज की मदद के लिए, जैसे वो एक उसको इंटरेस्ट को भी उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। क्या बात है। तो वो क्या करते हैं, तो जब आपके घर वाले आपकी कविताएं सुनते हैं तो क्या आपको फीडबैक देते हैं, कैसा लिखा है कहते हैं, या क्या महसूस हुआ, कैसा, मतलब पहले, सबसे पहले जब आप लिखते हैं तो किसको सुनाते हैं आप?
0: आपको बताऊं, मैं सबसे पहले अपने पति को सुनाती हूँ।
2: अच्छा,
0: ठीक है
2: जी।
0: वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन मैंने देखा कि साहित्य की समझ उनकी बहुत अच्छी है और मैं ना बहुत जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी अभी जैसे बोल के बता रही हूँ आपको, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोला कर
2: जी।
0: तो मुझे कहते हैं कि थोड़ा ना थम थम के
2: आराम से,
0: है ना। तो उन्होंने मुझे एक तो ये सिखाया, दूसरा वो कहते थे कि तुम्हारा जो फोर्टे है वो तुम्हारी भावनाएं संवेदनाएं हैं, तो तुम अपने किसी के बोलने से ना उसको बदलो नहीं। और वो कई बार मुझे कहते नहीं ये चीज ऐसे अच्छी नहीं लग रही है, तो वो मैं उनको बताती हूँ। अच्छा, कई बार ये भी होता था कि मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बता देती थी, तो पता चलता था थोड़े दिन में मेरी चीज उनके नाम से आने लग गई। ये बहुत होता है आरुषि जी। मेरी तो आपको बताऊँ, ये कविता है जो बहुत ज्यादा फेमस हुई है, द्रौपदी तुम्हें उठाने होंगे शस्त्र, तुम्हें ही बनना होगा सशक्त, नहीं आएंगे अब कोई कृष्ण, उसको चुरा के लोगों ने कर लिया, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अपना आएंगे गोविंद। ये मैंने लिखी थी कविता।
2: अच्छा, उसमें एक दो शब्द बदल के
0: और ये मतलब एक मिनिस्टर है, नाम नहीं ले रही हूँ मैं यहाँ रेडियो पे, एक मिनिस्टर है उन्होंने फिर एक और, तो तमाम उसको बहुत सारे राजनेताओं ने उसको कोट किया। तो मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मम्मा आप लिखते हो, आप इतना अच्छा लिखते हो, आप उसके लिए, तो मेरे पास में मेल है वो, जब मैंने पहले लिखी थी, भेजी थी, पेपर में छपी भी थी। अच्छा, मैं एक और काम किया करती थी उस कविता को, हम तो जाते थे, हम मार्शल आर्ट वालों को लेकर के जाते थे, तो मार्शल आर्ट वाले जो थे वो वहां पे मार्शल आर्ट सिखाते थे लड़कियों को, एक मेरे साथ वकील जाते थे मेरे दोस्त, और मैं एक कविता गाती थी बोलती थी। तो हम पूरी लड़कियों को, मैं कहती थी कि आप लड़कियों को इतना ट्रेन कर दो कि दो चार लोगों को से अपने आप को सेफ तो कर सके वो।
2: बिल्कुल।
0: तो ये मैं, मेरा ये पूरा का पूरा मोटो था। लेकिन खैर, उसके बाद मेरे एक सीरियल को मेरा, मैंने लिखी थी कहानी तपस्या वाला था, वो क्या था, तपस्या थी उस सीरियल में, अब मैं सीरियल का नाम ही पता नहीं कैसे अचानक से अभी बात करते, तो उस पर सीरियल बन गया और वो मेरी कहानी की चोरी थी। तो खैर, मुझे फिल्म राइटर एसोसिएशन में, मुझे मेरे फेवर में डिसीजन भी आया, पर बहुत कुछ ऐसा हुआ, पर ठीक है, क्या किया जा सकता है, तो बहुत कुछ होता है। लेकिन और भी, जैसे कि मैं, अगर आप बोलेंगी तो आपको मैं एक दो चार शेर सुना दूं, अगर आप बोले तो।
2: जरूर जरूर, और शेर भी सुनना चाहेंगे, और साथ में जो आपने कहा ना कि लड़कियों को इतनी तैयार हो जाए, इतना मोटिवेट हो जाए कि वो खुद की रक्षा स्वयं कर सके। हाँ। तो अगर कोई ऐसी भी कविता हो तो भी हम जरूर सुनना चाहेंगे, अगर आप कोई।
0: जैसे कि मैंने वो जो द्रौपदी वाली थी ना, कि मतलब सुनो द्रौपदी शेर उठा लो, कि मतलब द्रौपदी अब जगह जगह पुकार रही है, लेकिन मतलब अब उसको खुद को ही सशक्त बनना होगा। तो ये एक तो है, लेकिन अभी फिलहाल ये है कि जैसे दूसरों को भी, कि मतलब हम कहते हैं कि अपने दिल और जान में रखना, नाम मेरा भी ध्यान में रखना, मुफलिसों को ना दो चांद तारे भले पाके उनके ध्यान में रखना, कि भाई आपके मन में एक दया भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने किरदार, ये देखिए, जैसे कि अपने किरदार को बहुत मजबूत इस बदलते जहान में रखना, ऐसे नहीं कि आप बह गए धारा के साथ में। तो मेरा शीर्षक भी मुर्दे इतिहास में लिखते कि आपका अगर किरदार मजबूत है तो फिर आपको कोई बदल नहीं सकता है, कि इस बदलते जहान में रखना, तेरे कपड़ों पे जो है गर्दे सफर, कामयाबी की शान में रखना। कई लोग कहते होता ना कि जब बड़े बन गए तो भूल जाते हैं, आप अपनी जमीन से हमेशा जुड़े रहे। तो ये मैं कहती हूँ कि तेरे कपड़े पे जो है गर्दे सफर, कामयाबी के शान में रखना, हमेशा याद रखो कि हम कहाँ से उठे, कहाँ पहुँचे हैं, और तुमको आकाश है छूना अगर, तुमको आकाश है छूना अगर, पंख अपनी उड़ान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना। और ये जो आपने कहा कि मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम इतना मीठा बोलती हो कि मतलब हम तो बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैंने कहा नहीं, वो ऊपर वाले ने दे के भेजा है। तो ये शायद इस तरह है कि सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, लुत्फ ऐसा जुबान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना। और कभी कभी होता है ना कि हम बहुत दुखी हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं, तो अब जैसे अब तो बाबा है वो कोना, हमको कभी लगेगा तो हम बाबा को स्मरण करेंगे, तो कि रो सको जहां पे छुप छुप कर, रो सको जहां पर छुप छुप कर, ऐसा गोशा मकान में रखना, ऐसा कोना मतलब गोशा, ऐसा गोशा मकान में रखना। और वो गोशा आध्यात्मिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये कि कम नहीं है, हालांकि मैंने अलका अपना इसमें तलफ़ुज़ जो होता है मक्ता जो कहते हैं, लेकिन मैं इसको भी बदल देती फिलहाल यहाँ की, कम नहीं है किसी से कोई, कम नहीं है किसी से कोई, दोस्तों ये गुमान में रखना, दोस्तों ये गुमान में रखना। तो आपने जैसे कहा, तो मेरी कहानी थी बेटी
2: जी,
0: तो उसमें माँ अपनी बेटी के बारे में सोचती है और वो पहले सोचती नहीं शादी, तो दूसरे कहते भाई बेटी बड़ी हो रही शादी करा, तो बेटी को फिर बताने लगती है देखो तुम जाओगी एक राजकुमार जैसा लड़का होगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा, और लड़की वो बेटी सपने पाल लेती है। शादी होती है, शादी होती है जब, तो वो जब आती है घर तो वो खुश नहीं है, मैके जब आती तब माँ को समझ में आता है कि उसको जो सपने बेटी को दे दिए हैं वो उसको हाथ में हाथ लेकर घुमाने नहीं लेकर जाता है, बहुत सारी जो चीजें,
2: राजकुमार आएगा,
0: राजकुमार आएगा, तो वो तो नहीं मिला उसको कि भाई नमक कम है तो भी बोलेगा है वो है, तब उसको समझ में आता है कि मैंने इसे गलत सपने दे दिए हैं। फिर वो उसको दूसरी तरह से कि एक एक कविता है कि हो जाती वो पयस्विनी जब वो माँ खुद बनती है तो महिला, तो बेटी को फिर अलग तरीके से समझाती है आपकी, और वो प्रेग्नेंट है जब बेटी आती तभी भी खुश नहीं, तो फिर उसको अलग तरह से समझा के भेजती है और कि मतलब आपकी बार अगर दुखी हो जाएगी तो मैं इसे नहीं भेजूंगी, लेकिन उसको मालूम है कि मैंने इसे ऐसा समझा दिया है क्योंकि मैंने उसे गलत ट्रेन किया था। तो ये जो हम संस्कार देते हैं ना तो वो हमारे भीतर कहीं ना कहीं पनप जाते हैं, तो माँ जो बच्चे को सिखाती है वो बहुत सोच समझ के बताना चाहिए कि उसको आगे जा करके भी एक घर संभालना है, तो वो उस तरह से ट्रेन करे कि वो समझ पे आए कि हाँ मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ रही, अब मैं वो बच्ची नहीं रह गई हूँ, बहुत बदलना पड़ता है। तो मुझे जो मेरी टाइप करते थे उनने कहा कि एक दिन मुझे कहा कि क्या लड़कियां सब सोचती कि शादी के बाद ऐसा होगा है? मैंने कहा अमूमन तो सभी सोचती,
2: अमूमन सभी सोचते,
0: तो मैंने भी सोचा था। बोले अच्छा, तो मुझे एक दिन फोन किया, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कि क्यों? बोले कि आपकी कहानी से मैं अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने लग गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन मैंने बोला कि मेरे कुछ कहानियां टाइप कर दीजिए। बोले आज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? बोले मैं आज अपनी पत्नी को डेट पर लेकर जा रहा हूँ और ये आपकी कहानी का असर है,
2: और इससे पहले शायद वो,
0: हाँ वो, तो वो
2: रियलाइजेशन मतलब उनको हुआ उससे
0: एक्चुअली, मतलब
2: से।
0: क्या होता है ना कई बार ना जो दूसरे घर से लड़की आती है ना, पति समझ ही नहीं पाता है कि ये कितने अंदर अपनी भावनाएं लेकर आई है,
2: उनके सपने क्या है,
0: सपने लेकर आई है ना। और आप जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आप कायम कर पाते हैं, तो जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और हम एक दूसरे के साथ में साथ साथ कदम बढ़ा के चल रहे हैं ना, ये कोई नहीं सोचे कि मैं ये तो आई है मैं ही, क्योंकि एक शोविनिस्टिक मेंटालिटी
2: सोचते हैं इनको एडजस्ट करना है, ये आई है यहाँ से, मगर वो सोच उनके मन में क्या चल रही है वो सोच समझ ही नहीं पाए।
0: एक्चुअली वही वाली बात। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उसके बाद उनको लगा कि अच्छा ये भी सपने लेके
2: बदलाव कितना
0: है, उसको समझना चालू कर दिया। तो मुझे लगता है कि मेरा लिखना सार्थक हो गया। और इससे मुझे बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कई लोगों ने मुझे कहा कि आपको देख के हमने डांस करना सीखा, आपको देख कर, मतलब कटनी में, पहले मैं मारवाड़ी हूँ, हमारे दादाजी नगर सेठ हुआ करते थे, तो लड़कियों को डांस वगैरह, इवन मेरे बाबा जी ने वैसे बहुत हमको फ्रीडम दे रखे थे, हमको कभी पता, आप आरुषि जी मैं बिल्कुल खुले दिल से बोलती हूँ कि मुझे कभी वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे घर में नहीं हुआ,
2: लड़का और लड़की वाला,
0: हाँ लड़का अच्छा। लड़की वाला कभी नहीं हुआ, हम लोग पांच बहने थे पर कभी नहीं, ना बाबा जी ने, दादाजी ने, ना पापा ने, मम्मी किसी ने नहीं। तो फिर लेकिन वो लोग आए तो बोले डांस, तो उनने बोला भाई नगर सेठ की बेटी ने लोकचंद फुलचंद की पोती डांस करेगी, तो बोले अगर आपकी बेटी डांस करेगी पोती तो बहुत सी बच्चियों, तो उन्होंने हाँ कह दिया।
2: अच्छा, कि हाँ, बाकी लोगों को भी और इंस्पिरेशन मिली।
0: हाँ, तो उन्होंने हाँ कहा, और मैंने पहला डांस जो किया था वो था होठों पे ऐसी बात, और उसके बाद में कारी कारी कारी अंधी आ रही थी रात नवरंग की, तो उसमें भी मुझे दूसरी बार किसी ने डरा दिया, अरे तुमसे तो बहुत बड़ी डांसर आ रही, तुम क्या जीतोगी छोड़ दो। मैं रोई तो मम्मी ने कहा अब तो तेरी असली परीक्षा है बेटा, अब तो तेरे को जीतना ही, दीदी लोगों ने भी, तो वो मैं फिर जीती, फिर मैं सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बनी।
2: क्या
0: तो ये मतलब हमेशा मुझे मतलब ये कि मुझे लोग फॉलो करते हैं, अच्छा अलका ने किया, उनकी पोती ने किया, अब हमारी बेटियों को भी,
2: हमारी बेटियों को भी करना चाहिए ना, करना एक चाहिए। क्या बात है। मुझे आपकी बातों से ना एक चीज और बहुत समझ में आई कि साहित्य कैसे जीवन को आसान बनाने में मदद करता है, कैसे एक दूसरे को समझने में मदद करता है। तो हमें से बहुत लोग हैं जो पढ़ते नहीं है, मोबाइल में ही चले गए हैं जिंदगियां, तो अगर साहित्य के और नजदीक जाएंगे तो अपने आसपास वालों को भी और बेहतर समझ पाएंगे।
0: बिल्कुल सही बात है जी,
2: ये पढ़ना चाहिए। और
0: बिल्कुल देखिए क्या होता है ना, आपने आप भी बचपन से कि पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, और मैं दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में गई थी तो आज तक वालों ने एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि आजकल पुस्तकों का अस्तित्व खत्म हो रहा है। मैंने अगर ऐसा होता तो आप पुस्तक मेले में मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और तमाम स्टॉल्स हैं और लोग खरीद रहे हैं किताबें और स्पेशली जाते हैं और खास करके बच्चों के माता पिता जाते हैं। मेरी बेटी भी बहुत पढ़ती है, ठीक है, वो अंग्रेजी में पढ़ती है लेकिन बहुत किताबें पढ़ती है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे जब हम मोबाइल पे, आजकल जो हम रील बोलते हैं ना, रील लाइफ में के कारण हम रियल लाइफ से दूर होते जा रहे हैं, और व्हाट्सएप, हम फेसबुक पे, अच्छा अभी हम परिचित हो गए, अच्छा आप में से कनेक्टेड है, अरे अलका जी आपकी तबीयत, ओ प्लीज गेट वेल सून, अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे लगेगा आरुषि से ज्यादा तो मेरा कोई अपना है ही नहीं। लेकिन अभी मेरी

0: घर में अगर कोई है और मैं आपको तो पूछ रही हूँ, आप मुझे पूछ रहे, लेकिन आपके घर में तो मतलब लोग लीस्ट वरीड होते हैं या सोचते भी नहीं कि घर में भी हमको वही चीजें करनी है। तो लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो साहित्य हमें एक एक, एक भावना देता है। जैसे मेरी जिंदगी में बहुत सी चीजें हुई, मैंने कहानियां पढ़ रही हूँ आलेख, जैसे मैंने परसाई जी को, उनको पढ़ करके मेरी चीजें बहुत भीतर बदला है। जो आप उसको उस तरह से जब पढ़ेंगे ना, आपको बहुत एक प्रेरणा मिलती है, कई बार
1: पर्सपेक्टिव भी मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलता है,
0: नया पर्सपेक्टिव मिलता है जिंदगी को समझने का। अच्छा कि हम तो अभी तक हम कूप मंडूक बने रहते हैं, पर जब आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से लेखक, जैसे वो क्या होता है कि उन्होंने पूरी राजनीति पढ़ी होती है, तमाम माइथोलॉजी पढ़ी होती है, तमाम वेद पढ़े होते हैं, या नहीं भी तो और जिंदगी को पढ़ा होता है, और वो उसको उसका सार उसमें लिखते हैं। तो आपको तो सार पूरा मिल गया ना एक जगह, तो जब आपको सार मिल रहा है तो आपको साहित्य बहुत कुछ देता है। साहित्य का अर्थ होता है सहित, जिसमें हित हो, सबका हित,
1: सबका हित हो,
0: तो साहित्य तो हित ही करेगा, तो साहित्य पढ़ना ही चाहिए।
1: अलका जी, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, जो युवा हमें सुन रहे हैं, अगर आप कुछ किताबें सजेस्ट करें कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कुछ किताबें।
0: देखिए आजकल एक तो सेल्फ हेल्प की बुक्स बहुत आ रही, रॉबिन समथिंग उनका ध्यान एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, और रोंडा बर्न की भी, जैसे द मैजिक, और आप लोगों का भी साहित्य शायद जैसे अभी जीवन पलटने की कला है, तो ये तो एक अलग चीज है। लेकिन उसके अलावा जैसे कि बहुत सी अच्छी कविताएं आती हैं, हाँ नेगेटिव बहुत ज्यादा मत पढ़िए। और उसके अलावा जैसे कि हमारे जो बहुत सारे पहले के साहित्यकार हैं, जैसे मैंने इंग्लिश में भी एमए किया है, तो आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं या शैली को पढ़ते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, तो मुझे लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए। और आजकल के भी जैसे अब देवदत्त पटनायक, जो आपके यहाँ शायद आ भी चुके होंगे, वो तो उन्होंने माइथोलॉजी को ना बहुत ही खूबसूरती से डिपिक्ट किया है। उनके एक हनुमान की रामायण है, पता है आपको? अच्छा, उन्होंने लिखी, हाँ, कि हनुमान जी ने एक रामायण लिखी, तो वाल्मीकि जी को पता चला कि नारायण ने उनको बोला, नारद मुनि ने कहा कि आप जाइए एक बार हनुमान की रामायण देखिए। तो हनुमान जी की रामायण पता है कहाँ लिखी थी? एक गार्डन में, एक बागीचे में, और केले के पत्तों में, इसमें उसमें उसमें, और वो वाल्मीकि जी पढ़ते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, तो हनुमान जी बोले क्यों रो रहे हैं आप ऐसे? तो बोले नहीं, आपने जो लिख दिया मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? आप, हनुमान जी ने क्या किया, उसको सारे को खा लिया, पत्तों को। बोले क्या किया आपने, इतना सब लिखा? बोले मेरे राम मेरे अंदर है, अब आपको हमेशा सब याद रखेंगे। तो इस तरह के जो आपको एक जगाने वाली अवेयरनेस जहाँ है वो सारी चीजें। और आजकल तो देखिए ये डिजिटल जमाना है, आप
1: बिल्कुल
0: AI दे देता है, गूगल को पूछिए,
1: आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं
0: जी,
1: ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे नॉवेल्स भी, उपन्यास भी।
0: हम बॉम्बे में रहते हैं, मैं सोचू मैं अपनी लाइब्रेरी बहुत बना लूं बड़ी, तो कहाँ रखूंगी मैं सारी चीजें 3 BHK के फ्लैट में। अब आप ऑनलाइन करते जाए, किंडल पे पढ़ लीजिए, और उसमें देखिए कि सेल्फ हेल्प बुक्स, मुझे जैसे जिस समय मुझे जो पढ़ने का मन है कि आई एम फीलिंग लो, नहीं मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे आध्यात्मिक कुछ पढ़ना है, तो सब कुछ तो आपके क्लिक में अवेलेबल है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मैं बोल दूंगी ये पढ़ो तो नहीं, क्या होता है जो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है,
1: उनको क्या इंटरेस्ट है,
0: उनको क्या पढ़ना है, उनका क्या इंटरेस्ट है, तो जिसमें खुद की रुचि हो, बस आप ये मत पढ़िए कि आप दूसरों का बुरा करने का सोचे, अपने आप को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे इवॉल्व हो सकते
1: ऐसा
0: हैं,
1: कुछ पढ़िए,
0: कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं, जो कल से उससे बेहतर बनना है हमें, और बेहतर करते करते दूसरों को भी साथ में लेके चलना है, ऐसा कुछ पढ़िए।
1: बहुत सुंदर बात है, और चाहे कहानियां पढ़ें चाहे कविताएं पढ़ें, लेकिन और मुझे लगता है और संवेदनशील भी बनाती है हमें ये।
0: बिल्कुल, मैं एक छोटी सी लघु कथा आपको बता देती
1: हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल,
0: अभी हाल ही में जैसे क्या होता है, और ये सचमुच में जब होता है ना, क्योंकि कहानियां हमें जिंदगी से मिलती हैं आरुषि जी, तो आजकल कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, तो एक हस्बैंड वाइफ है, और वो जो वाइफ है वो सोच रही कि आज वो अक्षत, और लड़की का नाम है रंगोली, अक्षत आज कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं, आज उसने मुझे वीट जूस भी बना के नहीं दिया है। वो अपने कमरे में जाती है, तमाम वो सारी देखती, जहाँ उन दोनों की फोटोज हैं, यहाँ गए थे वहाँ गए थे, अच्छा वो देखती डेकोर पूरा उसके मन से, तो अक्षत ने कराया पूरा पर्ल कलर का, फिर वो देखती है कि कहीं पर्दे का से हवा का झोंका आता है और उसके बाल उड़ते हैं, तो उसको याद आता है कि अक्षत कहता कि रंगोली तुम्हारे बाल कितने सुंदर है ना, एकदम मतलब मुलायम, ये रेशमी और ब्राउन कलर के वैसे सब, तो वो अपने आंखों पे उसके बाल भी छा लेता, तो कहती अक्षत बाल तुम्हारे भी तो कितने सुंदर, तुम रोमन गॉड जैसे दिखते हो। और अचानक वो सोचते सोचते दर्पण के सामने चली जाती है और देखती कि उसके सिर पे बाल नहीं है, क्योंकि केमोथेरेपी से बाल चले गए, तो 6 महीने पहले उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और इससे तो वो मतलब रोते रोते सो जाती, थोड़ी देर में उसको स्पर्श महसूस होता है, तो देखती अक्षत तुम कहाँ, अक्षत तुम्हारे बाल कहाँ आ गए, तो वो बोलता है नहीं वो चलो सॉरी चलो खाना भी लगा है और तुम्हारा वीडियोस भी बना हुआ है। तो तब वो देखती तो बोलता है कि बस वो मतलब उसको मतलब बहुत प्यार से सताता है, तो वो सोचती कि आज जो रंगोली है वो अक्षत के प्यार से सज गई है, मतलब ये कि पति जो है उसके लिए उसने अपने बाल भी, कि जब तक उसकी पत्नी के बाल नहीं आएंगे वो भी बाल ऐसे ही रखेगा। तो ये जो चीजें होती है ना कि मतलब एक पॉजिटिव संदेश मैं देना चाहती हूँ। आजकल मैं लघु कथाओं, मतलब मैं लघु कथा शोध केंद्र बॉम्बे की अध्यक्ष बनी हूँ हाल ही में, तो हम लघु कथाओं पे बहुत काम कर रहे हैं, और आजकल की लघु कथाएं जो एक संदेश देना चाह रही है वो बहुत पॉजिटिव संदेश देती हैं, कि अब उसमें नेगेटिविटी नहीं हो, एक पॉजिटिव संदेश के साथ में अपनी लघु कथा को खत्म करिए। तो आजकल हम लोग वो कर रहे हैं।
1: कई बार हम सोशल मीडिया पे भी और अपने आसपास जिंदगी में बहुत चीजें देखते हैं लेकिन उन्हें भूल जाते हैं। कहते हैं ना आजकल की रात गई बात गई जैसे हो जाता है, एक न्यूज आई दूसरी न्यूज चली गई, लेकिन जब लघु कथा के रूप में हम उन्हें सुन रहे हैं तो मुझे लगता है वो छाप छूट जाती है, वो चीज फिर वो हमारे अंदर वो हमारा हिस्सा बन जाती है कहीं ना कहीं। बहुत प्रेरणादायक कहानियां हैं।
0: आपने जैसे बात की, आपको याद है ना बचपन में हम सब ने कहानी सुनी ना कि एक पिताजी थे, उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, एक लकड़ी का गट्ठर दिया कि तोड़ो, है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो वो कोई नहीं तोड़ पाए, जब अलग अलग करके तोड़ा तो तोड़ दिया, तो उन्होंने कहा यही चीज सिखा। तो कथा के माध्यम से वो बात हमेशा आपके जहन में, जैसे आपने कहा बिल्कुल वही बात है कि हमारे जहन में अंकित हो जाती है, हमारे अंदर अंकित हो जाती है, हमें याद आती है। मैं अपनी बेटी को ना बचपन में और बेटे को भी एक कहानी सुनाती थी, हम लोग मारवाड़ी हैं, हल्दी हल्दी मल्दी सटवा सूट। अच्छा। कि सटवा सूट जो है वो थोड़ी सी बिटर है, दो बहनें हैं तो हल्दी मल्दी सबका भला करती है, तो जब हल्दी मल्दी अपनी नानी के घर जाती सबको मिलती सबका भला करती जाती, तो जब वो लौटती तो उसको बहुत सारे गिफ्ट मिलते। सटवा सूट भी कहती कि मैं जाऊंगी और सबको, तो जो भी बोलता क्यों मैं, क्यों वो तो थी हल्दी मल्दी, मैं हूँ सटवा सूट, मैं नहीं करती तुम्हारा काम। अब वो आती तो उसको कोई कुछ नहीं देता। तो मेरी बेटी आज भी, मम्मा मैं आपकी हल्दी मल्दी हूँ ना। तो ये हमें ना इस तरह के संस्कार कहानियों के माध्यम से हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। और बिल्कुल आपने सही बात बोली कि आप भाषण देंगे ना कोई नहीं सुनेगा, उसको इंटरेस्टिंग वे में बता के कहिए तो आपको लोग जरूर सुनेंगे,
1: जरूर सुनेंगे। तो कहानियां और पढ़िए और सुनिए और सुनाइए, है ना। भारत की तो मतलब मुझे लगता है भारत में तो कहानियां बसती हैं हर कोने में,
0: बिल्कुल
1: हर भाषा में, हर लोकगीत लोक कथा में बहुत कुछ है सच में। तो आपने आज हमें वापस मुझे लगता है जोड़ दिया, जहाँ से हम थोड़ा दूर भी निकल आए थे, तो वापस उन कहानियों की ओर अब बढ़ जाएंगे। अलका जी, क्या कोई और आपकी ऐसी कविता या कोई एक ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप शेयर करें?
0: बिल्कुल सुना दूंगी आपको। वैसे लता दीदी पर भी एक, जब वो लता दीदी तो गजल तो मैं गा के तरन्नुम में तो अभी नहीं सुनाऊंगी
1: जी,
0: पर एक है ना ये, आजकल हम पर्यावरण के लिए बहुत परेशान मतलब हैं, देखिए तो मैं सुना देती हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं सुनाऊंगी कि जहाँ पर कहीं पर नेगेटिविटी हो। एक ये बॉम्बे में आतंकी हमला हुआ था, है ना, तो उससे मैं, अच्छा मैं एक चीज और बताती हूँ कि मैं जब बहुत दुखी होती हूँ ना और गुस्से में होती हूँ तो मेरे भीतर से कविता निकलती है, सिलसिले वार जिंदगी कहानी बनती है, और मैं व्यंग भी लिखती हूँ, मेरे जैसे आपने व्यंग संग्रहों के नाम भी लिए, तो विसंगतियां व्यंग बन जाती। तो जब ये आतंकी हमले हो रहे थे लगातार, अच्छा हमारे भी बहुत परिचित लोग थे जो उसमें मारे गए थे, तो उस समय मैंने एक सिम्बॉलिक कविता लिखी थी कि मैं उसको कुछ तरन्नुम में भी गा के थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ। एक चिड़िया दर

बीच हरियाली छाई थी, खिले थे सुंदर फूल, तितलियां रंग बिरंगी उड़ रही थी उड़ रही थी। माँ तोती ने दरख्त पे बनाया एक घरौंदा, सुरक्षित रख कर बच्चे उसमें निकल गई लेने दाना। पर अचानक कहीं से आया एक कठफोड़वा, ये कठफोड़वा वो आतंकवादी है।

बच्चे चीखे डर डर के, तितली के पंख गिरे कट कट के, हरियाली बदली पतझड़ में, फैल गया आतंक, मिट्ठू न जाने कहाँ गुम हो गया, तितलियों ने उड़ना छोड़ा, हो गए फूलों के रंग सभी बदरंग।

0: सच में वो उस इंसिडेंट ने, उस घटना ने हम सबको हिला दिया था, अंदर से झंझोर दिया था.
1: मुंबई का जो आतंकी हमला था
0: वो भूल नहीं सकते. और ये जो आपने कविता ये सिंबलाइज करके उसको, जो वो हम भावनाओं को प्रकट किया, ये एक लेखक ही कर सकते हैं कि उस प्रकार से भी उस बात को कहा जाता है, हम सोच नहीं सकते. आपका बहुत बहुत धन्यवाद है अलका जी. मुझे लगता है आपकी इतनी कहानियां, इतनी सारी बातें हैं, अभी संभव नहीं है सब कुछ इन एक घंटे में समेट पाना, लेकिन फिर भी जो आपने जो आज सुनाया है वो हमारे सिर्फ आज तक नहीं, मुझे लगता है आगे तक वो प्रेरणा बन के हमारे साथ रहने वाला है.
1: अगर एक मिनट होगा तो खाली आदर्श, एक हमने फिल्म लिखी थी और आदर्श पे फिल्म के ऊपर हमने नॉवेल लिखी थी.
0: अच्छा.
1: तो उसमें मैंने क्यों इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर उसमें एक न्यूक्लियर फैमिली, जो एकल परिवार होते हैं ना, एकल परिवार का बच्चा कैसे अपने आप को, कई बार तो हम बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती तो वो कुछ ऐसा होता है, तो ये जो है परिवारों को बचाना कैसे जरूरी. तो आदर्श फिल्म जो है उस तरह से वो मैंने लिखी थी और वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. बल्कि मैं तो चाहूंगी मैं आपको लिंक भेज दूंगी अपनी,
0: जरूर जरूर,
1: तो आप वो देखिएगा. तो मुझे लगता है कि ना हम लेखकों का एक दायित्व ये भी है कि सिर्फ लिखने के लिए ना लिखें, है ना, एक कुछ ना कुछ बदलाव, और जो कृतित्व और व्यक्तित्व है ना लेखक का वो एक हो, ये मैं चाहती हूँ कि आप लिख कुछ रहे हैं, कुछ वो मत करिए, जो आप हैं वो लिखिए, और समाज में बदलाव की चेतना के लिए जरूर लिखें. आप समाज सुधारक नहीं है हम, पर कोशिश करें कि कुछ तो बदले, कुछ तो अच्छा लिखें हम. तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपके रेडियो मधुबन में, और क्योंकि यहाँ बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हम लेकर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे हम कि प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम आगे भी जुड़े रहें और अपने घरों में भी उसी शांति के प्रकाश को फैला सकें. आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है, आपकी मुस्कान के लिए मैं आपको बाद में कविता लिख भेज दूंगी. बहुत बहुत आभार आपका, शुक्रिया.
0: मैं चलकर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय आपने निकाला हमारे.
1: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद
0: सो मच. तो दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो गया इजाजत लेने का, लेकिन मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि आज कुछ आप अपने साथ जरूर लेकर जा रहे होंगे, कुछ ऐसा जो आपको जीवन के सफर में मददगार साबित होगा. फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: चार बच्चा कोई करे?
1: चार बच्चा में तीन तो लड़का है और एक लड़की है।
0: तीन लड़का आपने कहा करे?
1: तीनों लड़का एक सरकारी नौकरी में, दो लड़का जो मतलब बाहर कंपनी में काम करे।
0: आप बेटी है?
1: हाँ बेटी मेरी है, यही अबूढ़ में रह साई विहार कॉलोनी में। मेरे जमाई साहब जो मतलब पालनपुर के पास जेथी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट है।
0: अच्छा, तो मैं आपने पूछूंगा, चलो आप क्यों भाई क्या आप बेटी है, बेटी ने आप पढ़ाई थी?
1: हाँ मेरी बेटी है जो बीए पास कर रखी है मेरी बेटी ने।
0: अच्छा, नौकरी वोकरी करे?
1: ना नौकरी नहीं करे वह।
0: अच्छा
1: हाँ, घरेलू स्त्री है, अच्छा, है?
0: चलो ठीक है, तो चलो आप परिचय वो आपको भाई के आप दादाजी हटाया था और दो तीन पीढ़ी थी अटे रेवरिया।
1: हाँ
0: ठीक है, चलो तो आप गुर्जर समाज के बारे में आज आपको बात करवा जा रही हूँ, तो आप बताओ गुर्जर समाज के बारे में इतिहास बताओ कहने बारे में अपने श्रोता बंधुओं ने कि गुर्जर समाज गुर्जर की कण केवोना और एक कटाती उठिया था अन बारे में सब।
1: गुर्जर समाज को इतिहास सारो बिखरे पड़े है, संकलित बराबर है नहीं
0: जी।
1: और अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन्हें अलग अलग अपनी बात कही है। कुछ इतिहासकार ने पहला कियो कि जो गुर्जर जब हूण भारत में आया तो हूणन के साथ है जो मतलब एक शाखा थी खजर, हाँ वो खजर की एक शाखा थी गुर्जर, वे यहाँ आया और यहाँ आके फिर हिंदुस्तान में बस गया। बस के उनने जो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को सनातन धर्म को ग्रहण कर लियो।
0: आपको भाई के हूण आया था अनुशासक, हूण हाथ एक खजर आया था, एक शाखा थी उनोरी वनमाती जो अट एक परिवार रिया था वह गुर्जर कहवाया। तो और गुर्जर के बारे में बताओ कि गुर्जर आप मतलब आप आराध्य देव कौन है और थोड़ा सो अन टाइप का इतिहास बताओ।
1: अब हमारे गुर्जर जाति का जितनी समस्त गुर्जर जाति है भारत में उनका आराध्य देव है जो देवनारायण जी हैं।
0: हाँ जी।
1: देवनारायण जी को जन्म है जो मतलब आसिंध के पास में मालाखेड़ी डूंगरी है,
0: मालाखेड़ी
1: डूंगरी, वहाँ उनको है जो मतलब प्रकट हुआ, जन्म तो नहीं लियो, साढ़ू माता थी, विधवा होगी थी
0: जी जी।
1: और उनको सपना में दर्शन दिया
0: जी जी।
1: कि पहाड़ी में है जो मतलब यहाँ मैं मौजूद हूँ, तो वहाँ पहाड़ी में वो गया तो वहाँ एक कमल पुष्प वहाँ मिलियो, उन कमल पुष्प पे है जो मतलब एकदम छोटा बाढ़ रूप में है जो मतलब खेल रिया था
0: जी।
1: उनको साढ़ू माता उठाए घर ले आई।
0: हाँ।
1: उनको स्वप्न में दर्शन दिया उनने।
0: हाँ।
1: और अपना परिचय बतायो
0: जी।
1: इस तरह जो मतलब हमारी जाति का आराध्य देव बन गया।
0: अच्छा, तो गुर्जर समाज का आराध्य देव देवनारायण भगवान है और माता साडू ने मतलब परचो दी दो तो और एक तरह उन्होंने बेटा बनिया पर मतलब प्रकट हुआ था है, जन्म नहीं ली दो तो। और बताओ कि चलो कि मैं गुर्जर और जो कहन पहला कौम कहा तो
1: गुर्जर जाति सबसे पहला तो भारत में है जो मतलब शासक के रूप में रही
0: जी।
1: और 900 ईस्वी से और 1300 ईस्वी के बीच में उनको खूब वर्चस्व रही और राजा मिहिर भोज गुर्जर सम्राट राजा मिहिर भोज ये गुर्जर जाति का बहुत ही प्रबल और बहुत ही शक्तिशाली शासक था। उनकी धाक अरब देश तक थी और उनने अब 300 साल तक
0: जी
1: गुर्जरन ने मुसलमानों को भारत में घुसबा से रोकया
0: जी जी।
1: यह जो गुर्जर इतिहास बतावे या घट यह बात
0: आप मतलब पहला जो बड़ा बूढ़ा और इतिहासकार है बातों बतावे है कि पहला गुर्जर समाज में एक शासक भी वेता राजा था जो अपने एरिया में गुर्जर शासक मतलब 300 साल तक राज की तो
1: 300 साल तक उन्हें राज कियो।
0: अच्छा।
1: और बाहर का जो भी आता जाता था उनको सब उनको रोकता था वे
0: जी जी।
1: उनसे लड़ाई लड़ी और उनने ये धारणा बना ली थी कि जब तक गुर्जर है जो मतलब यहाँ शासन कर रहे हैं तब तक हमारा घुसना मुश्किल है भारत में
0: जी जी।
1: और फिर बाद में धीरे धीरे करके आपस में फूट पड़ती चली गई लोगों के अंदर
0: जी जी।
1: मुस्लिम शासक घुस गया बीच में
0: जी।
1: उन्होंने आकर के यार कुछ उनको तोड़ लिया, बीच में अपनी तरफ मिला लिया
0: जी जी।
1: छोटा तबका का था उनको थोड़ा प्रलोभन दिया, उनने प्रलोभन दे के उनको अपने साथ मिला लिया
0: जी।
1: तो लालच में आए कुछ लोग इतको बिखर गया उसको बिखर गया। जिन राजा ने कई राजा था उनने जो मतलब अपना धर्म परिवर्तन कर लियो। आपने देखे होगा कि भारत के अंदर राजपूत शब्द 1300 ईस्वी के बाद में हुई है, उनके पहला नहीं थो
0: जी जी। चलो बताओगे हमें आप इतना बताया पर मैं तो पूछू के गुर्जर आज का करे मतलब जो पहला कहता शासक था मरने बाद में का कौम हाथ में ली था
1: उनके बाद फिर गुर्जर जो मतलब जब बिखर गया।
0: हाँ।
1: राजपाट चले गया
0: जी।
1: उनके बाद वे जंगलन में नदी किनारे जहाँ बहुत अच्छी सघन जमीन थी वन था।
0: हाँ।
1: वहां जाके बस गया।
0: हाँ।
1: और बस के उनने जो मतलब पशुपालन को काम शुरू कर दियो।
0: आप मतलब जड़े जमीन देखी बटे जमीन ले बैठे बटे धंधो पौने मतलब पशुपालन रो काम की दो।
1: हाँ पशुपालन को काम चालू कर दियो। फिर मुस्लिम शासक आया तो मुस्लिम शासक ने गुर्जर जाति का लोगों को इतना बाध्य कराया कि उनको जो मतलब मुस्लिम धर्म को मतलब स्वीकार करें वे।
0: वो एक पुराना टाइम तो माने अलग बात है, चलो ठीक है वह समय अलग तो, पर आज जो गुर्जर जाति है जो कई काम कर रही है,
1: आज की तारीख में गुर्जर जाति है जो मतलब एक तरह से आज वो स्थिति में आ गई जैसे आदिवासी स्थिति में आ गई है।
0: जी जी,
1: दूर दूर जंगलों में रहना है, भेड़ बकरी पालना है, जानवरों को मवेशियों को पालना है और अपना गुजारा करना है। कईयों के पास जमीन है, कईयों के पास नहीं है जमीन।
0: गुर्जर जाति लोग का पहना हुआ है,
1: गुर्जर जाति है जो घाघरो लुगड़ी चोली
0: ठीक है
1: ये पहरे हैं, पगन में है जो मतलब कड़ा पहरे हैं, नेवरी पहरे हैं, बाजू बंद पहरे हैं, हाथन में गजरा पहरे हैं, लाख को चूड़ो पहरे हैं।
0: आज भी पहने?
1: आज भी पहरे।
0: अच्छा, गांव में रिवाज है आज भी?
1: गांव में आज भी रिवाज है और आज गांव की लुगाइयां है जो आज की तारीख में भी बिल्कुल पूरा हमारा मतलब जो पोशाक है उनके अंदर ही मतलब रहे हैं। शहर में जो लोग आ गए उन्होंने अपना परिवर्तन कर लिए थोड़े बहुत।
0: अच्छा, ठीक है। आप के बारे मतलब गांव में आज भी आप जो परंपरा है जो भी वेशभूषा है गुर्जर समाज रही वेश पहने, ठीक है। तो मैं आपने पूछे हूँ कि आज जमाना में जो बच्चा पढ़े लिखे होशियार हुआ है वे पढ़ाई कर रहा है वे आप जो पुरानी वेशभूषा है परंपरा रही वे पहरे या नहीं पहरे, और अगर नहीं पहरे तो कोई समाज में कोई ऐसी कहवत तो नहीं है?
1: देखो साहब, हमारे समाज में ऐसा कोई प्रतिबंध है नहीं।
0: जी, जी।
1: बच्चा जो पढ़ गया लिख गया है वे अपना हिसाब से जो मतलब अपना अनुसार रहे हैं, वे पैंट भी पहरे हैं, बुशर्ट भी पहने हैं, जीन्स भी पहरे हैं। गांवन में भी यही पोशाक बच्चा आज का युवा वह हैं वे पहरे हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं है पुरानी पद्धति का लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वे है जो मतलब धोती कुर्तो है साफो है पहरे।
0: तो श्रोता बंधु, गुर्जर समाज के बारे में आपको बात करता था भैरव सिंह जी। गुर्जर अपने अनोर समाज के बारे में बताता था कि गुर्जर समाज गुर्जर का था पहला, गुर्जर पहला मतलब एक शासक रूप में काम की दे तो, और वरने बाद में जो जो समय बदलतो गया और वे पछे वे अपने खेती बाड़ी रो काम हाथ में ली दो, और आज भी वे मतलब गाँव में आज भी जो अनोर एरिया है वे खेती बाड़ी करे और नवी पीढ़ी है जो पढ़ लिख कर होशियार वेगी, ठीक है। हाँ, तो श्रोता बंधुओं, अपने मेहमान भैरव सिंह जी गुर्जर साहब है जो अपने समाज का रीति रिवाज बता रहा है। पर आपो अनोरा समाज रीति रिवाज और आपो अनोती जोड़ोला प्रवंती पहला एक छोटो सो ब्रेक लो हों, और ब्रेक ती पहला एक अपील है आपती के आपरा माती कोई आपरा समाज रा रीति रिवाज अपना अनुभव समाज रे माए कुरुतियों है तो वन ऊपर बात करवो चाहे तो रेडियो रे नंबर माते जरूर मैसेज कर जो। रेडियो रे नंबर है 94 14 15 14 15। आप सुन रहा हो रेडियो मधुबन, सुनता रहो, मुस्कुरात।

0: मैं सलमा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: ब्रेक रे बाद में अपनो समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुनवा वाला सगला श्रोताओं रो स्वागत है ने अपने मेहमान भैरू सिंह जी गुर्जर उन्होंने भी स्वागत है जो हाल फिलहाल गांधीनगर में रह रिया है और अपने सेवानिवृत्ति लेन आराम से अपने घरे बैठा है और कुछ समाज सेवा का कार्य भी कर रिया है और समाज में कुरूतियों ने कम करने वास्ते समाज में विकास ला वास्ते कोशिश कर रिया है। तो आप अनौती और अनोरा समाज रा रीति रिवाज जानवा की कोशिश करो हूँ। तो भैरू सिंह जी मु आपने पूछू हूँ कि अपने समाज में कोई बच्चा रो जन्म वे तो क्या रिवाज करो?
2: और हमारे यहाँ कहीं है सब कि हम जो आबू रोड में रह रिया हैं, मतलब मारवाड़ जंक्शन से लेकर के और कलोल तक,

0: अच्छा,
1: रेलवे लाइन के नजदीक जितना गुजर एरिया है वे गुजर सारा शेखावाटी का गुजर है।
0: ठीक है,
1: जयपुर दौसा बांदीकुई के आसपास का एरिया से है, भरतपुर का एरिया से है, यहाँ से ये आके यहाँ बस गया। जब रेलवे लाइन डली तो वहाँ साथ साथ काम करते करते आगे जहाँ उनको सरकार ने परमानेंट कर दिया वहीं बस गया। जमीन तो बहुत पड़ी थी उस टाइम में, तो उस टाइम में वहीं घर बना लिया, थोड़ी बहुत जमीन है जो मतलब अपने नाम करा ली और खेती बाड़ी को धंधो कर दिया, साथ में जो मतलब अपनी नौकरी करते रहिया।
0: तो मतलब जो गुर्जर है रिवाज करे, कोई बच्चा जन्म ले तो
1: बच्चा को जन्म हुए तो हमारे यहाँ पर जो बिंदनी है जो बहू है जो मतलब पीहर नहीं जावे शेखावाटी में।
0: आपने के बारे मतलब आपने जो शेखावाटी जो गुर्जर है उनमें मतलब जो भी बहू रे डिलीवरी करावनी हुए तो वे मतलब वन ससुराल में जुए। ठीक है, पर बच्चा रो जन्म हुआ तो वन बात का रिवाज करे, कोई जलवा पूजन करे, कोई अलग अलग रिवाज हुए, आपने का रिवाज?
1: हमारे यहाँ कहीं सबसे पहला तो मुहूर्त निकाले पंडित, मुहूर्त निकाल के और सूरज को छींटा देवे, सूरज की पूजा करें।
0: सूरज की पूजा कर कितना दिन बात करें?
1: वो जो मतलब पंडित उमें 9 दिन को मुहूर्त भी निकले, 11 दिन को मुहूर्त भी निकले, 21 दिन को भी निकल सके, वो पंडित के ऊपर डिपेंड करे कितरो निकाले वो।
0: और सवा महीना बाद में कोई जलवा पूजन करे?
1: हाँ, उनके बाद सवा महीना पूरा हो जाए उनके बाद जो मतलब जलवा पूजन करें। हमारे यहाँ को कुओ पूजन भी खेवे, जलवा पूजन भी खेवे।
0: तो कोई खर्चा वर्चा करे, कोई खाना आना करे समाज ने की?
1: हाँ, उमें जो मतलब समाज के आसपास का लोग सगा संबंधी है उनको बुलावे और बहू का पीर का लोग भी आवे।
0: अच्छा।
1: और वे जो मतलब अपना कपड़ा अपना जो सगा संबंधी को पहनानी पहनना है, उड़ावनी करनी है, वे सब करें
0: जी।
1: और सुबह प्रीति भोज रखे जाओ खूब जोरदार।
0: अच्छा, मतलब खर्चा पानी करे कोई बच्चा जन्म हुए तो। ठीक है, तो आपने जो कोई बच्चा रहा जन्म हुए तो कोई कहन के लड़को हुए तो मरे के थाली बजावे, लड़की हुए तो कह के हुपड़ो बजावे, तो आपने कोई रिवाज है?
1: हाँ, यह बात बिल्कुल सही पूछी आपने कि जब छोरा को जन्म हुए तो जो मतलब थाली बजावे हैं।
0: हाँ।
1: और बेटी को जन्म हुए तो सुपड़ बजावा का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है।
0: मैं कहूँ कि अगर बेटा हुए जरा आप थाली बजाओ तो बेटी वजह क्यों नहीं बजावता थाली?
1: अब यह पुरानी परंपरा चली आ रही है, आजकल का लोग इसको माने नहीं, आजकल का लोग तो जो मतलब बेटा बेटी को एक सो ही माने हैं हमारे यहाँ।
0: अच्छा, अपने समाज में बेटा बेटी समान माने?
1: हाँ, आज की तारीख में जो मतलब जितना भी पढ़ा लिखा लोग हैं सब बेटा बेटी को एक सो ही महत्व देवे, जितना बेटी को महत्व है उतना बेटा को महत्व है।
0: चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो श्रोता बंधुओं, अपने मेहमान भैरव सिंह जी गुर्जर साहब है जो अपने समाज रा रीति रिवाज बता रहा है। पण आपो अनोरा समाज रीति रिवाज और आपो अनोती जोनोला, पर वंती पहला एक छोटो सो ब्रेक लो हो, और ब्रेक ती पहला एक अपील है आपती के आपरा माती कोई आपरा समाज रा रीति रिवाज अपना अनुभव समाज रे माय कुरुतियों है तो वन्ना ऊपर बात करवो चाहे तो रेडियो रे नंबर माते जरूर मैसेज कर जो। रेडियो रे नंबर है 94-14-15-14-15। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, हम सुनता रहो मुस्कराता रहो।
2: मैंने घोड़ा लियो मन

0: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: ब्रेक रे बाद में अपनो समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुनवा वाला सगला श्रोताओं रो स्वागत है। ना अपने मेहमान भैरव सिंह जी गुर्जर उन्हों रो भी स्वागत है जो हाल फिलहाल गांधीनगर में रह रिया है और अपने सेवानिवृत्ति लेन आराम से अपने घरे बैठा है और कुछ समाज सेवा का कार्य भी कर रिया है और समाज में कुरूतियों ने कम करने वास्ते समाज में विकास ला वास्ते कोशिश कर रिया है। तो आप अनौती और अनोरा समाज रा रीति रिवाज जानवा की कोशिश करो हूँ। तो भैरव सिंह जी मु आपने पूछू हूँ कि बच्चा रो जन्म वो पचे होली आवे कोई त्यौहार आवे तो कोई ढूंढ वूंढ करे।
2: हाँ, होली को त्यौहार आए तो फिर जो मतलब बच्चा को ढूंढ हुए और उमें जो मतलब गांव का आसपास का लोग है वो बच्चा को ढूंढ के जावे उमें फिर जो मतलब जो भी मिष्ठान वगैरह जो भी उनको बांटो वो बांटा हम लोग फूली पतासा वगैरह ये सब।
3: तो होली रे बे तीन दिन पहला कोई मतलब गीत वीत गाए।
2: गीत वीत भी गावे।
3: अच्छा,
2: सारो सिस्टम है।
3: गीत गाओ तो बड़े कई के मतलब
2: बस यह है कि बच्चा को उत्सव ढूंढ आ रही हो ढूंढ पे जो मतलब उत्सव मनावा उनके लिए गीत गावा।
3: हाँ, तो जन दिन ढूंढो होली दिन ढूंढो
2: धुरंडी के दिन ढूंढा।
1: तो बताओ आपने ढूंढ करे जरे का रिवाज करे तो होली दिन जो ढूंढे तो की कन ढूंढे।
2: धुरंडी के दिन जब होली जल जाए उनके दूसरे दिन उसके दूसरे दिन जो मतलब गाँव का मोहल्ला का लोग आवे है ढूंढवा के लिए और बच्चा को नीला दुला के अच्छा कपड़ा पहरा करके
1: दुला जिकन सजावे।
2: हाँ, सजा के और उनको ऐसे मतलब कोई भी मतलब लड़को है भतीजो है काको है बेटा छोरा बच्चा को
3: जी
2: बुआ है कोई भी उनको लेके दरवाजा के बीच में बैठ जावे और गांव का लोग है जो मतलब एक लकड़ी आड़ी रख देवे दरवाजा के माड़े और ऊपर सब टक टक टक लकड़ी बजाता रहे।
1: टक टक बोले तो कई बोले है
2: अब यहाँ का तो ज्यादातर गोड़वाड़ का लोग आवे तो वे बोले ढूंढू ढूंढू ढोकड़ो मोटो वही छोकरो ऐसे ईशा आज मतलब बोले हैं।
3: अच्छा,
1: अटारा मतलब मारवाड़ी मनक वे ढूंढ जाए तो यारी भाषा बोले।
2: हाँ, यहाँ का लोग भी ढूंढ के जावे और यहाँ की भाषा बोले।
1: भाषा पचा बोले पगे लगावे जाओ वरना बात
2: नहीं है ऐसा कोई रिवाज नहीं है हमारे।
1: आप मतलब सुबह ढूंढन किया वरना बात छुट्टी हुई यू नहीं कि भाई मोर मारवाड़ी लोगों में अटिन है कि एक बच्चा ने जिकन पगे लगा होली रह जाए जब फेरा खबरावे।
2: नहीं, इसको कोई रिवाज हमारे है नहीं
3: जी।
2: हमारे तो बस ढूंढ हुए बच्चा को उनके बाद फ्री
1: बस मेहमान खाना खाए आप रहे
2: घर घर का लोग रहे में मेहमान लोग आस पास का समाज का लोग आ जावे तो वो भोजन वोजन करा गए छुट्टी कर।
1: मतलब आप वे रिवाज नहीं है जो कोई समाज रे में मतलब के पासे वाले पगे लगाओ होली रे पगे लगाओ जो आप रिवाज है नहीं है।
2: ऐसा कोई रिवाज नहीं हमारे कोई रिवाज नहीं इसमें।
1: तो हमें बताओ कि कोई बच्चा रे सगाई करो तो क्या रिवाज करो।
2: सगाई के लिए तो मतलब जैसे समाज बच्चों पढ़ लिख गई है नौकरी कर रही हो है या पढ़ रही हो है सगा संबंधी के द्वारा या सीधा अपनी मतलब जिनकी बच्ची है वो भी संपर्क कर सकें और या अगर वो खुद संपर्क नहीं करे तो उनके सगा संबंधी जो हमारा हमारा भी सगा संबंधी हो उनके थ्रू है जो मतलब संबंध पूछताछ करे इनको बच्चों का कहीं कर रही हो कहीं नहीं कर रही हो कतरो पढ़ रही हो है कहीं नौकरी कर रही हो है पूछताछ करके फिर वह जो मतलब अपनी पहल शुरू करें।
3: अच्छा,
2: और अगर लड़का वाला चाहे तो ईश्वर नहीं हमारे की मतलब लड़की वाला ही पहल करें।
3: अच्छा,
2: लड़का वाला भी है जो मतलब देखे हुए लड़की अच्छी है परिवार अच्छा है तो वे भी है जो मतलब पहल कर दे अपनी तरफ से वे भी बात कर ले।
1: मतलब एक बेचारा पूछे भाई आप बेटो बेटी पढ़ी लिखी है तो एक बेचारा रिश्तेदार थ्रू पूछे रिश्तों करे तो रिश्तों करे तो यू है एक गणित को मांग करे कि मारे बेटो अत्रो भणियोड़ो है तो के अत्रो पियो देना पड़ी 50,000 1,000 रुपये तिलक रो देना पड़ी ला तो आप रे कोई रिवाज हाले समाज रे में शेखावटी समाज में।
2: अच्छा है, हमारे यहाँ पर इसको कोई रिवाज नहीं है
3: जी।
2: पुरानी पद्धति हमारे यहाँ थी कि लोग बहुत ही ज्यादा गरीब था
3: जी।
2: पैसा नहीं था उनके पास में तो लड़का वाला वे लड़की वालों को पैसा देता था अगर लड़की वालों कमजोर है।
3: अच्छा,
2: तो उनकी मदद करता था ब्याह करवा के लिए।
3: अच्छा,
2: उनको पैसा देता था भले तुम पैसा लो हमसे और आप लड़की को ब्याह करो
3: जी।
2: या सिस्टम चल रही है तो पहला लड़का वालों को पैसा देता लड़का वाला पैसा देता लड़की वाला को।
3: अच्छा,
2: जहाँ अगर संपन्न है लड़की वालों को नहीं लेता था।
3: अच्छा,
2: और कमजोर स्थिति में है तो उनको सगो संबंधियों की मदद करते तो और उन पैसा को फिर मांगते नहीं तो वापस।
3: बस वैसे पैसा देता है कि बेटी रे शादी वास्ते आपो देवर या
2: वो मदद थी एक उनको बस
3: मदद थी।
2: हाँ
1: घना समाज में देखो हूँ कि भाई अगर रिश्ता नहीं मिले तो मतलब माँ बाप ने पिया देन रिश्ता करे तो आप रे रिवाज मतलब आपको कहने रिश्तों करना वे तो वरना माता पिता ने कहता कि पिया लोन आप रे बेटी री शादी करो तो वे तो एक मदद वेगी। घनी ठोकड़े माँ बाप पिया मांग करता भाई के मैं तो 50,000 लो या 1,00,000 रुपया लो बेटी रे वास्ते तो रिश्तों करो एरो है
2: नहीं इसी कोई हमारे पद्धति नहीं है।
3: हाँ।
2: हमारे यहाँ तो मतलब सिर्फ मदद के तौर पे वो भी जब करता कि देखो कि सामने वाले लड़की को परिवार जो मतलब कमजोर है
3: जी जी।
2: तो ही मदद करता था वरना नहीं भी करता था
3: जी।
2: वो कहता वाले हमको साहब कोई आवश्यकता नहीं हम कर लेंगे और नहीं कर सकता तो उनकी मदद करता था।
1: आप कोई साटा पड़ता है आटा साटा वे
2: आटा साटा की प्रथा तो नहीं है हमारे यहाँ पर लेकिन फिर भी है जो मतलब अगर बच्चा बच्ची अगर उनको अच्छा लग रही है बन जाए संबंध तो कर सके कोई प्रतिबंध नहीं है।
1: दूसरे परिवार में आटा साटा करे है क्या?
2: हाँ कर सके।
1: हाँ। पुराने जमाने में आप कोई प्रथा नहीं थी?
2: आज भी प्रथा नहीं है पहला भी नहीं थी
3: अच्छा।
2: लेकिन कोई कोई परिवार जज जाए तो कर ले
1: वो अलग बात है। तो चलो आप बताए भाई के आप समाज में आटा साटा प्रथा नहीं है और कोई लेन देन रिश्ता करो तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल सादा रिवाज आप समाज में और कोई तरह की कुरूति आप समाज में नहीं है ठीक है अच्छी बात है। तो श्रोता बंधुओं आज आपको भैरू सिंह जी गुर्जर है जो गुर्जर समाज रीति रिवाज बता रही है और गुर्जर जो सेखावटी गुर्जर है वो ज़्यादातर ये सेखावटी एरिया से उठियोड़ा है और आज भारत देश में जगह जगह जटा उन्होंने कॉमली वटे जान बसिया है। चलो मैं उन्होंने पूछू आबू रोड में कतरा परिवार है गुर्जर समाज रहा?
2: आबू रोड में लगभग 60 परिवार है यहाँ पर
3: जी।
2: जो सभी सेखावटी एरिया का आर बसा हुआ है यहाँ पर
1: 60 परिवार। कोई काम जो भी फंक्शन वे समाज में तो भेड़ा वे?
2: हाँ कोई परिवार को किसी भी परिवार में हमारे कोई फंक्शन हो रही हो है कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रही हो है तो हम उनको नौतो देवा तो वे सब आवे हैं
3: जी।
2: परिवार के साथ आवे हैं
3: जी जी।
2: और सहयोग भी करें काम भी सहयोग करें
3: जी।
1: तो श्रोता बंधु अनोरा जो गुर्जर समाज रिवाज है वन बारे में आप अगले हफ्ते बात कर रही हूँ और हमें अपने मेहमान ने समय देखता खातर आप विदाई दो हों वंती पहला अनोरा आभार प्रकट करो हूँ अपना मूल्य समय दीदो है और मुकेश जिनकर अपनी वाणी ने विराम देव हूँ। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 9 तारो मुस्कुराता।
4: नमस्कार मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ माने आवे पिया जी हिचकी मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752 9001313752 ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से पसंद किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा खड़ताल ढोलक हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक आकम खान

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: मैं गायक कलाकार हाकम खान ढोलक पे साथ दे रहे हैं। मदन खान खरताल पे संगीतकार, शौकत खान मौनशिया। ये खरताल लकड़ी की बनी हुई होती है, शीशम की लकड़ी की चार खुली लकड़ी होती है और हाथों के अंदर ये खुले अंगूठे और अंगुलियों के सहयोग से ये बजाया जाता है। शौकत खान है राजस्थान, इन्होंने खरताल के माध्यम से अपना कुछ नाम कमाया है। हर स्टेज पे इनका कार्यक्रम होता है। हकीम लोक संगीत संस्थान केसुमिला के अंदर ये बच्चों को संगीत की खरताल में सिखलाई देता है, खुद गाता है। इस संगीत संस्थान में हमारे कलाकारों खरताल ढोलक कमायचा सारंगी मोरचंग मुरली अलगोजा सहनाई ये सिखलाई दी जाती है। काफ़ी कलाकार हमारे इस संस्थान के माध्यम से संगीत को आगे बढ़ावा दे चुके हैं और विदेशों में भी काम कर रहे हैं। तो आपके सामने अभी पेश किया जा रहा है निमूड़ा। ये निमूड़ा हमारे मांगनिया लोगों का गाया हुआ है, प्रस्तुत करना जा रहा है हाकम खान।

0: नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? क्या कहा? अरे भाई जरा जोर से बोलो, मजे में हो ना सब? ये हुई ना बात। चलो इसी बात पे मिलते हैं अपनी प्यारी मीना से।
1: लाल में नीला मिलाया तो संतरी, नहीं नहीं, लाल में पीला मिलाया तो गुलाबी। ओहो, मुझे ये याद क्यों नहीं हो रहा?
2: मीना?
1: अरे महेश भैया, आप?
2: क्या बात है मीना, तुम कुछ परेशान लग रही हो।
1: देखो ना महेश भैया, मैं बेला दीदी से ये किताब लेके आई थी।
2: ये तो और... रंगों की किताब है।
1: हाँ, इस किताब में दो अलग अलग रंगों को मिला के एक नया रंग बनाने की विधियाँ लिखी हैं, लेकिन मुझे एक भी विधि याद नहीं हो रही।
2: मीना, दो रंगों को मिला के एक नया रंग बनाने की विधि याद करना तो बहुत आसान है। उसके लिए तुम्हें एक तरकीब लड़ानी होगी।
3: तरकीब लड़ानी होगी, बुद्धि चलानी होगी।
1: महेश भैया, आप किस तरकीब की बात कर रहे हैं?
2: अभी समझाता हूँ। हाँ मीना, जरा किताब पढ़ के बताओ तो कि सबसे पहले कौन सा रंग बनाने की विधि लिखी हुई है?
1: लाल रंग में पीला रंग मिलाने से संतरी रंग बनता है।
2: ठीक है मीना, अब जरा सोचो कि तुम्हारे सामने फलों की एक टोकरी पड़ी है जिसमें है सेब, केले और संतरे।
1: लेकिन महेश भैया, फलों का रंगों से क्या लेना देना?
2: तुम सोचो तो सही।
1: ठीक है, सोच लिया।
2: अब दो तीन बार जोर जोर से बोलो, सेब केला संतरा।
1: सेब केला संतरा, सेब केला संतरा।
2: बस हो गई तुमको विधि याद।
1: कैसे? मैं कुछ समझी नहीं।
2: अरे भाई सीधी सी बात है, सेब लाल केले पीले, इन दोनों को जोड़ा तो बन गया संतरा।
3: बन गया संतरी रंग, मिठू तो है दबंग।
1: महेश भैया, रंग याद करने की तरकीब तो बहुत अच्छी है।
2: मीना, अब तो तुम ये विधि नहीं भूलोगी ना?
1: कभी नहीं भूलूंगी,
3: कभी नहीं भूलूंगी, झूले झूलूंगी।
0: और फिर मीना और महेश बेला की किताब वापस करने गए उसके घर। बेला घर पे नहीं थी, इसलिए मीना ने वो किताब बेला के पिता पोंगाराम जी को दे दी। मीना और महेश वापस जाने ही वाले थे कि तभी पोंगाराम जी ने महेश को आवाज दी।
4: महेश
2: जी। चाचा जी।
4: भाई ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
2: क्या चाचा जी?
4: यही कि तुम शादी कर रहे हो।
2: क्या?
4: महेश बेटा, अभी तो तुम सिर्फ 19 साल के हो। अरे भाई पहले पढ़ाई लिखाई तो पूरी कर लो, अभी से शादी करके क्या।
2: चाचा जी,
4: पिछले हफ्ते बेला के लिए भी एक रिश्ता आया था, लेकिन मैंने तो उन लोगों से साफ साफ कह दिया, भैया मेरी बेला पहले पढ़ लिख ले, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, तब करूँगा मैं उसकी शादी।

0: महेश बेटा, शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं। बहुत जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं शादी के बाद।
1: लेकिन चाचा जी।
0: महेश बेटा, अभी ना तुम्हारे पास कोई नौकरी है ना कोई काम धंधा, ऐसे में तुम शादी कर लोगे तो परिवार का खर्चा कैसे चलाओगे?
1: अरे चाचा जी, मैं कोई शादी वादी नहीं कर रहा, मैं तो अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। उसके बाद किसी स्कूल में शिक्षक बनूंगा, तब कहीं जाके शादी के बारे में सोचूंगा।
0: लेकिन तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी शादी कराने के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं।
1: क्या?
0: हाँ बेटा, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में तुम्हारे पिताजी से बात करनी चाहिए। चलो।
2: पोंगा राम जी महेश और मीना को साथ लेके महेश के पिताजी के पास गए।
3: अरे पोंगा राम जी, आइए आइए। महेश बेटा, अपने पोंगाराम चाचा जी के लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आओ। क्या हुआ, तुम अभी तक गए क्यों नहीं?
1: पिताजी, क्या ये सच है कि आप मेरी शादी कराने के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं?
3: हाँ।
1: लेकिन पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता।
3: क्यों?
0: मैं बताता हूँ बनवारी भाई, महेश अभी पढ़ना लिखना चाहता है, स्कूल में शिक्षक बनना चाहता है।
3: स्कूल का शिक्षक? अरे पोंगा राम जी, इस साल ये 12वीं क्लास पास कर ले, उसके बाद ये मेरे साथ खेती बाड़ी करेगा।
1: ऐसा मत कहिए पिताजी, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है।
4: महेश भैया ठीक कह रहे हैं चाचा जी, इन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे रंग बनाने की विधि बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी।
3: मुझे कुछ नहीं पता, कुछ दिनों में तुम 12वीं पास कर लोगे, उसके बाद मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा और फिर तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे, बस।
2: पोंगा राम जी ने महेश के पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। पोंगा राम जी निराश होके वहां से चले गए। मीना भी वापस जाने ही वाली थी कि तभी वहां पे रानो के पिताजी आ गए।
4: चाचा जी नमस्ते।
1: नमस्ते कमल चाचा।
5: नमस्ते मीना, जीते रहो महेश बेटा।
3: और बताओ कमल भाई, कैसे आना हुआ?
5: क्या बताऊं बनवारी भाई, इस साल मकई की फसल अच्छी नहीं हुई। तुम्हारे कहने पे मैंने मकई के साथ साथ खेत में कुछ सब्जियां भी बोई थी, लेकिन पता नहीं अब क्या होगा।
3: तुम चिंता मत करो कमल, चलो तुम्हारे खेत पे चलते हैं।
1: पिताजी, क्या मीना और मैं भी आपके साथ कमल चाचा के खेत पे?
3: हाँ महेश बेटा, मैं तो चाहता ही यही हूँ कि तुम खेती बाड़ी की बातों में ध्यान दो। चलो कमल भाई।
2: महेश के पिताजी सबको लेके खेत पे पहुँचे।
5: ये देखो बनवारी भाई, तुम्हारे कहने पे मैंने मकई के साथ साथ टमाटर भी बोए थे।
1: पिताजी, मकई के साथ टमाटर कभी नहीं बोने चाहिए।
3: अच्छा महेश बेटा, अब तुम हमें खेती सिखाओगे?
1: पिताजी, पिछले हफ्ते हमें स्कूल में एक पाठ पढ़ाया गया था, उस पाठ में साफ साफ लिखा था कि मकई की फसल के साथ टमाटर कभी नहीं बोने चाहिए। हाँ, अगर मकई के साथ खीरे बोए जाए तो फसल बहुत अच्छी होती है।
5: बनवारी भाई, तुम्हारा महेश तो बहुत समझदार है। महेश बेटा, खूब दिल लगा के पढ़ना ताकि तुम हम जैसे किसानों की मदद कर सको।
1: पता नहीं कमल चाचा, मैं आगे पढ़ भी पाऊंगा या नहीं।
5: क्या मतलब?
1: पिताजी चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं और।
5: क्या बनवारी भाई, क्या महेश सच कह रहा है?
3: वो मैंने सोचा कि
5: 21 साल से पहले लड़के की शादी करना कानूनी अपराध है, और फिर तुमने ये नहीं सोचा कि अभी इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है।
3: कमल, ये तुम क्या?
1: कमल चाचा भी वही कह रहे हैं पिताजी जो पोंगाराम चाचा जी ने कहा था। पिताजी, मैं पढ़ाई पूरी करके शिक्षक बनना चाहता हूँ।
4: हाँ चाचा जी, महेश भैया सच में बहुत अच्छे शिक्षक बनेंगे, इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है।
5: सुना बनवारी, अरे इसे पढ़ने लिखने दो, कुछ बन जाने दो। अगर अभी से इस पे शादी की जिम्मेदारियां डाल दोगे तो फिर ये कुछ नहीं बना पाएगा, ना अपना भविष्य और ना ही एक सुखी परिवार।
3: तुम ठीक कह रहे हो कमल, मैं ही गलत था। महेश बेटा, तुम्हें जितना पढ़ना लिखना है पढ़ो, जो बनना चाहते हो बनो।
1: सच पिताजी?
3: हाँ।
4: महेश भैया, थोड़ी देर पहले आपने मुझे रंगों के बारे में समझाया था, लेकिन अब मैं आपको एक रंग के बारे में बताती हूँ। बताओ तो, इस समय आपके चेहरे पे कौन सा रंग है?
1: मेरे चेहरे पे रंग?
4: नहीं समझे, मैं बताती हूँ, इस समय आपके चेहरे पे है खुशी का रंग,
6: खुशी के रंग मीना और मिट्टू के संग।
2: भाई वाह, मीना से मिलके मजा तो आता ही है, साथ ही कोई ना कोई जरूरी बात भी पता चल जाती है। चलो दोस्तों, अब सुनते हैं मीना और मिट्टू की नई कविता।
4: शादी तब करना जब हो जाओ तुम बड़े,
6: पढ़ लिख जाओ और हो जाओ अपने पैर पे खड़े।
2: मजा आ गया, क्या कविता लिखी है मीना और मिट्टू ने। चलो अब सुनते हैं एक गुदगुदाता मुस्कुराता कह कहे लगाता हुआ गीत।

0: गाना तो बहुत बढ़िया था और अब समय है हाँ खेलने का।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली तोड़। हाँ मैं तुम्हें तीन कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी बहन जी।
1: तो सुनो पहली कड़ी। श से मेरा नाम शुरू है, ज पे खत्म हो जाता। भारत में मेरा जन्म हुआ, मैं दुनिया को खेल खिलाता।
3: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है शाहरुख खान, क्योंकि उनका नाम श से शुरू होता है।
1: रानो, क्या शाहरुख खान का नाम ज पे खत्म होता है?
3: ओ हाँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
1: बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी। महल मेरा 64 कमरों का, गोरे काले साथी, मेरे पास है राजा रानी और है घोड़े हाथी।
4: जो तो मैंने सोचा ही नहीं था। कुछ समझ में नहीं आ रहा।
5: बहन जी ये पहेली तो बहुत मुश्किल लग रही है, तीसरी कड़ी भी बताइए ना।
1: ठीक है दीपू। बच्चों अब सुनो तीसरी कड़ी। मेरी बाजी जीतने वाला कहता है एक बात, मैंने तुमको दे दी शह और हुई तुम्हारी मात।
3: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है शतरंज।
1: हाँ मीना बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो बच्चों मजा आया ना?
2: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
3: दोस्तों मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूंगी। मेरा पता है।

कलाकार रजवाड़ों में लोक गीतों का कार्यक्रम देते हैं, शादी विवाह जन्मदिन पर ढोल हारमोनियम बजाने का कार्यक्रम करते हैं। हमारे संगीत का वो गायकी जीवित रहे ताकि हमारे बच्चे संगीत सीख अपनी कला को देश विदेश में प्रोग्राम करवा सकें, अपने आजीविका कमाकर परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ केसरिया बालम पधारो म्हारे देश, राग मांड साजन आहे हे सखी मैं कहीं मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतियां ऊपर नैन धरूं, साजन आवत देख कर तोड़ दियो गलहार, लोक जाने मोती चुगे झुकझू करे नमन। तो ये केसरिया बालम जो मांड राग में गाया जाता है जब कोई मेहमान घर पे आती है या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उसमें केसरिया बालम पधारो म्हारे देश शुरुआत करने जा रहा हूँ। केसरिया बालम पधारो म्हारे देश।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहे, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।
2: मिसाइल मैन जैनुलाब्दीन रामेश्वरम कस्बे के एक मध्यवर्गीय परिवार के मुखिया थे। उनका बेटा अबुल बड़ा ही प्रतिभावान लड़का था। बचपन से ही इस बच्ची की रुचि विज्ञान विषय में रही।
3: बेटा अबुल, सभी तुम्हारी प्रतिभा की बड़ी तारीफ करते। मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ। बेटा हमेशा याद रखना, परेशानियाँ हमें आत्मविश्लेषण का मौका तो देती है, इसलिए उनसे घबराना नहीं बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना।
4: जी पिताजी, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगा और आपको भविष्य में कुछ बनकर दिखाऊंगा।
2: अपने सपनों को साकार करने के लिए अबुल इंजीनियरिंग में दाखिला लेना चाहते थे। वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला का प्रयास करने लगे। एक दिन बहन जोहरा के घर अबुल कुछ सोच में बैठे थे।
5: अबुल, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आगे क्या करना है, कुछ सोचा है? क्या हुआ, इस तरह उदास क्यों बैठे हो?
4: मेरा सपना इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करके कुछ कर दिखाने का है। दाखिल के लिए चुने गए लड़कों में मेरा नाम भी है, लेकिन पढ़ाई इतनी खर्चीली है कि पिताजी के पास इतने रुपए होने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता।
5: अबुल, मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर पूरा यकीन है। फीस की चिंता ना करो, बस मन लगाकर पढ़ने की तैयारी करो। तुम्हारी बहन है ना?
2: जोहरा ने अपने जेवर बेचकर फीस का इंतजाम किया और अबुल ने भी इस त्याग का पूरा मान रखते हुए अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाई का एक वर्ष पूरा करने के बाद अबुल ने एरोनॉटिकल विषय को चुना। इस दौरान उन्हें विशेषज्ञों का भरपूर सहयोग और ज्ञान मिला। इस प्रेरणा से अबुल भी विषय में गंभीरता से डूबते गए।
6: अबुल, अब हम सभी तुम्हारी मेहनत और लगन से बहुत खुश हैं। अबुल, अब तुम्हें एक बहुत खास काम सौंपा जाएगा। तुम्हें लड़ाकू विमान का डिजाइन तैयार करना है। इस काम को भी पूरी मेहनत और लगन के साथ करना।
2: अबुल पूरे मनोयोग से विमान के डिजाइन तैयार करने में जुट गए। उनका काम थोड़ा धीमा चल रहा था, जिससे उनके प्रोफेसर उन पर नाराज होते हुए भड़क गए।
6: अबुल, ये क्या है, तुम्हारा काम निराशाजनक है। अगर तुमने 3 दिनों के अंदर यह काम पूरा नहीं किया तो तुम्हारी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी।
4: अब 1 माह का काम मुझे 3 दिन में करना ही होगा। अगर छात्रवृत्ति रुक गई तो मुसीबत हो जाएगी।
2: वह दिन रात अपने काम में जुट गए। तीसरे दिन उनका काम पूरा होने ही वाला था, तभी उनके प्रोफेसर आ गए, जिन्होंने उन्हें डांटा था।
6: अबुल, तुम वाकई तारीफ के काबिल हो। मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर तनाव पैदा हो रहा है और तनाव में तुमसे ये काम नहीं हो सकेगा। भारी तनाव के बाद भी तुमने कम समय में ये काम पूरा करके कमाल कर दिया।
2: कई बार उन्हें असफलताओं का स्वाद भी चखना पड़ा और निराशाएं भी उनके जीवन में आई। यही नहीं, एक बार वायुसेना में नौकरी पाने में वे चूक गए थे, लेकिन पिता की बातों को याद करते हुए वे आगे बढ़ते गए। निराशा में भी आशा का दामन को न छोड़ने वाले अबुल अपने ज्ञान में विस्तार करते गए। विज्ञान की गहराइयों में डूबकर वे देश के कई बड़े बड़े कार्यक्रमों में जुड़े और देश के रक्षा अनुसंधान के लिए कई कार्य किए। भूतकाल में यही अबुल देश के महामहिम राष्ट्रपति थे। इन्हें हम बच्चे कलाम चाचा और मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं और लोग इन्हें APJ अब्दुल कलाम के नाम से संबोधित करते हैं।

0: सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू। पांचवां पाठ, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। पृष्ठ 52, गप्पू की हवाई यात्रा। गप्पू एक छोटा सा बहादुर चूहा था। एक दिन उसने देखा कि बच्चे बड़े से गैस के गुब्बारे के साथ खेल रहे हैं। गुब्बारा उड़ा और कमरे की छत से जा टकराया। गप्पू खुशी से झूम गया। तभी उसे कुछ सूझा। अगले दिन जब बच्चे स्कूल चले गए तो गप्पू गुब्बारे के धागे से ऊपर चढ़ गया। अब वो ऊपर से पंखे की पंखुड़ियां देख सकता था। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर दाहिनी तरफ छत का चित्र है जहां पंखा लगा है और गप्पू को गैस के गुब्बारे के ऊपर चढ़ते हुए दिखाया गया है। गप्पू बोला,
1: ओ इन पंखुड़ियों पर कितनी धूल जमी है, नीचे से तो कितने साफ दिखते हैं।
0: पंखा नीचे से कैसा दिखता है बनाकर देखो। अब गप्पू ने नीचे देखा, उसे बिस्तर दिखाई दिया, कुर्सी दिखाई दी, एक मेज किताबों से भरी हुई और दूसरी मेज पर बोतल, जग और फल आदि रखे हुए थे। चित्र में इन चीजों को पहचानो। पृष्ठ के बीच वाले हिस्से में कुछ कुर्सियां, टेबल और कुछ सामान रखा है। गप्पू बोला,
1: ये बुद्धू चिंकी पनीर ढूंढ रही होगी, देख भी नहीं सकती कि वो जग के ऊपर रखा है।
0: शिक्षकों के लिए निर्देश, अलग अलग दृष्टिकोणों से और दूरियों से देखने पर वस्तुओं की आकृति और लंबाई चौड़ाई अलग दिखती है। इस पर बच्चों को पर्याप्त चर्चा की जरूरत है, लेकिन ध्यान रखें कि कहानी का आनंद बना रहे। पृष्ठ 53, क्या तुम सोच सकते हो कि गप्पू को जग के ऊपर रखा पनीर कैसे नजर आ गया जबकि चिंकी उसे नहीं देख पाई। गप्पू सोचने लगा,
1: जब मैं घर में घूमता था तो घर बहुत बड़ा लगता था, लेकिन यहां से इतना छोटा दिख रहा है, ऐसा क्यों?
0: तभी जोर से हवा चली और गुब्बारा कमरे से बाहर उड़ गया। गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ने लगा, साथ ही गप्पू भी आसमान में उड़ने लगा। जब उसने देखा तो उसे अपना घर नजर आया। जैसे जैसे गप्पू ऊपर उठता गया, उसे घर के आसपास की चीजें भी दिखने लगीं। पार्क, गुरुद्वारा, रेल की पटरी, मिठाई की दुकान और सुहासिनी का घर, जिसकी छत पर बड़ी सी पानी की टंकी रखी थी। गप्पू बोला,
1: ये रेल की पटरी पर कौन कूद रहा है, कहीं मोटी बिल्ली मोंटी तो नहीं? यहां से तो ये एक बड़े सफेद चूहे जैसी नजर आ रही है। ये गुरुद्वारा ही होगा, अमरजीत रोज यहीं जाता है। अरे यहां मिठाई की दुकान भी है, मुझे नहीं पता था। यम यम यम यमी, यम यम यमी।
0: पृष्ठ के अंतिम हिस्से में आसमान से लिया गया एक चित्र है जिसमें नीचे धरती पर बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं और साथ ही गप्पू को गुब्बारे की रस्सी पर लटका हुआ दिखाया गया है। पृष्ठ 54, सोचो तुम्हारी कक्षा ऊपर से कैसी लगती होगी, उसका चित्र बनाने की कोशिश करो और चित्र में बेंच, ब्लैक बोर्ड, दरवाजे, खिड़कियां आदि भी बनाओ। गुब्बारा ऊपर की ओर बढ़ता रहा और छोटा गप्पू हैरान होकर सोचता रहा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। अब उसे बहुत सारे घर दिख रहे थे, गलियां, सड़कें और गाड़ियां भी। गप्पू कहने लगा,
1: अरे क्या ये रेलगाड़ी है, यहां से तो एक लंबे बॉक्स जैसी लग रही है। यहां से ये कारें और बसें कितनी छोटी दिखती है, बिल्कुल खिलौनों की तरह, और आदमी चींटियों जैसे नजर आते हैं।
0: यहां पर एक दृश्य दिखाया गया है जहां रेलगाड़ी को चलते हुए और बहुत सारी बसें और कारें दिखाई गई हैं। अचानक एक जोर से आवाज हुई, फट, गुब्बारा फट गया और नीचे गिरने लगा, नीचे और नीचे। सभी चीजें बड़ी बड़ी नजर आने लगी। धप, गप्पू रेल की पटरी पर जा गिरा और वो डरावनी मोंटी से बचने के लिए भागा, जो गप्पू और दूसरे चूहों के पीछे पड़ी थी। जब गप्पू ने ऊपर से रेल की पटरी को देखा तो वो कुछ ऐसी लग रही थी। यहां पर आसमान से लिया गया रेल की पटरी का चित्र है, पृष्ठ 55। लेकिन जब वो पटरी पर गिरा तो पटरी कुछ इस तरह दिख रही थी। यहां पर रेल की पटरी का चित्र बना है। रेल की पटरी आगे से चौड़ी और पीछे से संकरी दिखाई गई है। रेल की पटरी पर गप्पू और मोंटी का चित्र भी बना है। गप्पू बोला, ओह, ऊपर से और सामने से देखने पर चीजें कितनी अलग दिखती हैं। इन चित्रों को देखो और चर्चा करो कि चीजें क्यों एक सिरे पर चौड़ी और बड़ी दिखाई देती हैं, जबकि दूसरे सिरे पर संकरी और छोटी। यहां पर दो चित्र बने हैं। एक रेल की पटरी का है जो आगे से चौड़ी और बड़ी दिखाई दे रही है और पीछे से संकरी दिखाई दे रही है, और साथ ही मोमबत्ती की दो पंक्तियों का चित्र बना है जो आगे से चौड़ी और बड़ी हैं और पीछे से संकरी दिखाई गई हैं। एक आसन के दो चित्रों का मिलान करो। ऊपर से लिए इस चित्र में एक लड़की योग आसन में बैठी है। यहां पर एक लड़की का चित्र है जिसे ऊपर से योग आसन करते दिखाया गया है। नीचे दिए गए चित्रों में उसी योग आसन से केवल एक का ही मिलान किया जा सकता है। पहचान करो। यहां पर एक ही आसन की चार मुद्राओं को अलग अलग तरफ से दर्शाया गया है और आपको इन चारों चित्रों में से ऊपर से लिए गए चित्र से इसका सही मिलान करना है। पृष्ठ 56। इन चित्रों में कटोरों को दो अलग अलग तरह से दिखाया गया है। यहां पर दो चित्रों में तीन तीन कटोरों का चित्र है, चित्र एक और चित्र दो। कौन से चित्र में कटोरे पलट कर रखे गए हैं? रिक्त स्थान। जवाब खोजने के लिए चित्र तीन में देखो, कटोरे साइड से कैसे लगते हैं। यहां पर चित्र तीन दिखाया गया है जिसमें तीन अलग अलग प्रकार के कटोरे रखे हैं। इन चित्रों की ऊपर से दिखने वाली आकृति और साइड से दिखने वाली आकृति का मिलान करो। एक नली और एक कुप्पी, यहां पर चार चित्र दर्शाए गए हैं। आपको इन दोनों से इनका सही मिलान करना है। एक जूते का एक तरफ से ऊपर से सामने से दिखने वाले चित्र बनाने की कोशिश करो। यहां पर एक खाली जगह है जहां पर आप जूते का चित्र बनाएं, जो एक तरफ से ऊपर से और सामने से दिखे। शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चों को यह सोचना और मालूम करना मजेदार होगा कि अलग अलग वस्तुएं अलग अलग कोणों से कैसी दिखती हैं। यह गतिविधि उनकी स्थान संबंधी समझ को विकसित करने में मदद करेगी। पृष्ठ 57। गप्पू के घर के पीछे का पार्क। क्या तुम्हें गप्पू के घर के पीछे का पार्क याद है? यहां पार्क की एक बड़ी सी तस्वीर है। इसको ध्यान से देखो और प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करो। यहां पर एक चित्र है जिसमें गप्पू के घर के पीछे का पार्क दिखाया गया है और साथ ही गप्पू का घर भी बना है। ये चित्र ऊपर से लिया गया है। अब इन प्रश्नों के उत्तर दो। मिठाई की दुकान के सबसे पास वाले गेट पर निशान लगाओ, ए, बी, सी या डी। कौन सा गेट गप्पू के घर के सबसे पास है? अगर तुम गेट बी से अंदर जाओ तो हरा बेंच किस तरफ होगा, दाएं, बाएं या सामने? जब सुहासनी पार्क में घुसी तो फूलों की क्यारी उसके दाईं तरफ थी। वो कौन से गेट से अंदर आई होगी। अगर तुम गेट सी से घुसो तो तुम्हारे सबसे पास क्या होगा? एक, बास्केटबॉल कोर्ट, दो, फूलों की क्यारी, तीन, हरा बेंच और चार, सी सॉ झूला। शिक्षकों के लिए निर्देश, छोटे बच्चे अक्सर बाएं, सामने आदि दिशा निर्देशों को निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट मान लेते हैं। स्थान संबंधी समझ विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें यह अवगत कराया जाए कि दिशाएं अपनी स्थिति के सापेक्ष होती हैं। कोई वस्तु किसी के संदर्भ में बाईं ओर है, किसी और के संदर्भ में दाईं ओर हो सकती हैं। कक्षा में इस अवधारणा पर आधारित और भी क्रियाएं कराई जा सकती हैं। पृष्ठ 58। इस्माइल का घर। इस्माइल ने श्रीजाता को टेलीफोन पर उसके घर से अपने घर का रास्ता समझाया। रास्ते का नक्शा यहां पर दिया गया है। यहां पर एक नक्शा दिखाया गया है जिसमें इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर तक का जाने का मार्ग दिखाया गया है और बीच में पार्क और दूध की दुकान भी दिखाई गई है। साथ में एक पुल भी है। इस्माइल ने श्रीजाता को यह बताया, अपने घर से दूध की दुकान तक पहुंचो और फिर बाएं मुड़ जाओ, दूसरे चौराहे से दाएं मुड़ जाओ और पुल को पार करो, वहां से सीधे जाओ और फिर पहले दाएं मोड़ से मुड़ जाओ। लगभग 100 मीटर जाने के बाद तुम्हें एक बड़ा पार्क दिखाई देगा। जैसे ही पार्क को पार करोगी तुम्हें बराबर में एक छोटी गली दिखाई देगी। उस गली का पहला घर ही मेरा है। क्या इस्माइल कुछ गलत बता गया? क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? वो रास्ता दिखाओ। यदि श्रीजाता इस्माइल के बताए रास्ते पर चलती तो वो कहां पहुंचती? अब इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर जाने के लिए रास्ता बताओ। पृष्ठ 59। गिबली और बड़ा बक्सा। क्या तुम्हें कक्षा 3 की किताब गणित का जादू में गिबली नाम की चींटी याद है? गिबली ने एक दिन रास्ते में एक बड़ा बक्सा देखा। वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। गिबली उसके सामने से गई और बाएं मुड़ गई। अब वो उस बड़े बक्से की दूसरी सतह देख सकती थी। यहां पर एक ही बक्से के 3 चित्र बने हैं जिसमें बक्से की अलग अलग सतह को दर्शाया गया है। पहले बक्से में 4 लिखा है और उस पर गिबली दिखाई गई है। दूसरे बक्से में 5 लिखा है और वहां भी गिबली दिखाई गई है। अर्थात गिबली एक तरफ से दूसरी तरफ आगे बढ़ती दिखाई गई है। और बक्से के तीसरे चित्र में सबसे ऊपर की सतह पर 1 लिखा हुआ दिखाया गया है और सामने 4 और दाहिनी तरफ 5 लिखा हुआ है। गिबली को कुछ समझ नहीं आया। ये बक्सा क्या था? वो एक कप पर चढ़ गई और वहां से देखने लगी। बक्सा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। क्या तुम सोच सकते हो कि वो बक्से जैसी चीज क्या थी? इस बक्से की आमने सामने वाली सतहों पर लिखी संख्याओं का जोड़ हमेशा 7 होता है। अब तुम इन प्रश्नों के उत्तर दो। संख्या 5 के आमने सामने कौन सी संख्या होगी? चित्र में सबसे नीचे कौन सी संख्या लिखी होगी? अगर गिबली एक बार फिर 5 से बाईं तरफ मुड़े तो उसे कौन सी संख्या दिखेगी? क्या तुम सोच सकते हो कि अगर तुम इस बक्से को खोल दो तो वो कैसा लगेगा? सही चित्र पर निशान लगाओ। यहां पर 4 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है क। यहां पर 2 पट्टियां बनी हैं, एक खड़ी पट्टी और एक लेटी पट्टी। खड़ी पट्टी पर नीचे से ऊपर की तरफ 6, 4, 1 और 3 लिखा है और लेटी पट्टी पर बाएं से दाईं तरफ 2, 1 और 5 अंकित है। पट्टी नंबर ख में खड़ी पट्टी में नीचे से ऊपर 2, 4, 1 और 3 और लेटी पट्टी में बाएं से दाएं 6, 1 और 5 अंकित है। पट्टी ग में नीचे से ऊपर 3, 5, 1 और 4 लिखा है और लेटी पट्टी में बाएं से दाएं 2, 1 और 6 अंकित है और पट्टी घ में नीचे से ऊपर 4, 6, 1 और 3 लिखा है और लेटी पट्टी में बाएं से दाईं तरफ 2, 1 और 5 अंकित है। अब आपको इन चारों पट्टियों को देखकर ऊपर दिए गए बक्से से सही मिलान करना है कि ऊपर दिए गए बक्से वाली सही पट्टी क, ख, ग और घ में से कौन सी है। पता लगाओ। इस तरह की आकृति एक मोटे कागज पर बनाओ, उसे काटो और उसकी अलग अलग सतहों पर अलग अलग रंग भरो। क्या तुम इस बक्से का प्रयोग कोई खेल खेलने के लिए कर सकते हो? इसी के साथ 5वां पाठ दुनिया कुछ ऐसी दिखती है अब यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलेंग लिंगदो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

बोल हल्के, बोल न हल्के हल्के, बोल न हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल न हल्के।

ना हल्के, बोल ना हल्के हल्के, बोल ना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल ना हल्के।

बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के।

0: के, होंठ से हल्के हल्के बोलना, हल्के बोलना, हल्के हल्के बोलना, हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना, हल्के बोलना, हल्के हल्के बोलना, हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना, हल्के बोलना, हल्के हल्के बोलना, हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना।
1: तो आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM में। अच्छा, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन कौन है?
2: मेरा नाम है अर्षिता, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम है अमिक्षा, मैं क्लास 7th में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम है अनुष्का, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
5: मेरा नाम है कृष्णाली राणा और मैं 4 में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम है शिवन्या, मैं 2nd में पढ़ती हूँ।
1: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में हूँ।
7: मेरा नाम रूहानी है और मैं क्लास 8th में हूँ।
1: और आज हम करेंगे बच्चों की दुनिया में बच्चों से बातें। और आज बच्चों की दुनिया में हम मोबाइल रील्स वगैरह इसी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो चलो बताओ कौन कौन फ़ोन में क्या क्या देखता है?
8: मैं फ़ोन में कभी कभी एक्सपेरिमेंट देखती हूँ, कभी कभी रील्स, वीडियोस, मूवीज और बहुत कुछ देखती हूँ।
1: और आप लोग नहीं देखते?
3: हम लोग देखते हैं, अपन बहुत कम देखते हैं।
1: अच्छा, आप लोग फ़ोन नहीं चलाते?
6: मैं चलाती हूँ।
1: अच्छा, तो फ़ोन में क्या देखते हो?
6: मैं कार्टून देखती हूँ।
1: कौन सा कार्टून देखते हो?
6: वी।
1: अच्छा लगता है आपको? कितना अच्छा लगता है?
6: 500।
1: इतना ज़्यादा अच्छा लगता है? फेवरेट कार्टून है आपका। अच्छा, और क्या देखता है कोई? बताओ क्या देखते हो?
6: मैं डोरेमोन कार्टून देखती हूँ।
1: अच्छा, और आप नहीं देखते हैं? मिक्षा, आप नहीं देखते कुछ? अच्छा, तो आप बताओ।
3: मैं तो रील्स देखती हूँ।
1: हाँ, कौन से रील्स देखते हो?
3: आ जाती है, देखते हैं कोई।
1: अच्छा, खुद से नहीं लगाते?
3: कभी कभी खुद से लगा लेते हैं।
7: अच्छा, तो कभी मोबाइल में कुछ काम की चीज देखी है किसी ने?
3: हाँ, मैंने देखी।
8: हाँ, मैंने भी देखी है।
7: बताओ अपनी अपनी।
8: मैं ना कभी कभी ग्रामर देखती हूँ, कुछ समझ में नहीं आती, एजुकेशनल वैसे वीडियोस में कभी कभी देखती हूँ।
7: और अमिक्षा, आप?
3: मैं कभी कभार, मुझे अगर आर्ट सीखनी होती है तो मैं आर्ट की वीडियो लगाती हूँ। कभी कभार वैकेशन होते हैं, उसमें मैं मेहंदी की वीडियोस देखती हूँ।
7: और कोई देखता है? क्या देखते हो?
5: किरण कटेव,
7: साइंस के एक्सपेरिमेंट्स।
6: और मैं टेबल पढ़ने के लिए टेबल लगाती हूँ वीडियो।
7: वाह, बहुत अच्छे एजुकेशन के देखते हो रील्स। और अनुष्का, आप?
3: मैंने तो अभी कोई ड्राइंग अगर टीचर ने बोला है वो हमको नहीं आते तो हम वो फोन में देख के थोड़ा बना लेते हैं।
7: मतलब मोबाइल से सीखने की भी चीजें दिखती है ना?
1: हाँ। अच्छा, कितनी देर तक फोन चलाते हो?
8: मैं तो सिर्फ आधा घंटा चलाती हूँ।
1: आधा घंटा चलाते हो? आधे घंटे तक फोन में रील्स ही देखते हो बस?
8: नहीं, हम कभी कभी वीडियोस देखते, कभी कभी एजुकेशनल वीडियोस और बहुत कुछ।
1: अच्छा, आधे घंटे से ज्यादा भी हो जाता होगा कभी कभी तो?
8: कभी कभी 45 हो जाता है, फिर बाद में मम्मी डांटती है मुझे।
1: अच्छा, और कितने कितने टाइम तक देखते हो सब लोग?
3: और मैं तो बस 5 मिनट मोबाइल देखती हूँ।
1: बस 5 मिनट में हो जाता है? अच्छा, और आप लोग?
6: मैं 8 घंटे के लिए।
1: 8 घंटे के लिए? 8 घंटे क्या देखते हो 8 घंटे में?
6: रील्स।
1: बस रील्स ही देखते जाते हो 8 घंटे तक? नींद नहीं आती? अरे, इतना फोन चलाते हो आप लोग?
6: मैं 1 घंटा चलाती हूँ।
1: 1 घंटा?
6: 1 घंटे में मैं ड्राइंग ही देखती हूँ और कुछ रीले देखती
1: हूँ। और आप?
3: मैं आधा घंटा।
1: आधा घंटा? हाँ, अच्छी बात है वैसे, पर ज्यादा फोन नहीं चलाना चाहिए, फोन चलाने से आंखें खराब होती हैं।
8: वो तो बराबर है, पर आधे घंटे से एक दिन में क्या होने वाला है?
1: ऐसे तो आप डेली चलाते होगे।
8: डेली मतलब जब स्कूल से आते कभी कभी लेट हो जाते तो फिर पढ़ाई करते, फिर रात को जितनी टाइम मिलता है उतनी टाइम चला लेते हैं।
7: थोड़ा मोबाइल देखना तो अच्छा है, लेकिन ज्यादा नहीं देखना चाहिए। कौन कौन देखता है ज्यादा?
8: मैं तो आधे घंटे से ऊपर नहीं देखती, कभी कभी हो जाता है।
7: कभी कभी
8: मतलब कभी कभी 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो फिर मम्मी बहुत डांटती है।
7: सिर्फ 5 मिनट में डांट?
8: फिर।
7: और अमिक्षा, और कितना देखती है?
3: मैं तो बस अगर एजुकेशनल की वीडियो देख रही हूँ तो मैं बस 5 मिनट और एक्स्ट्रा करती हूँ।
7: अच्छा, तो एजुकेशनल के अलावा और क्या क्या देखते हो?
8: एजुकेशन के अलावा ऐसे बोले तो फिर हम कभी कभी गूगल पे सर्च करते कोई चीजें, कोई अगर क्वेश्चन होता है तो फिर हम गूगल पे सर्च कर लेते।
7: रियल रील्स?
8: रील्स में नहीं, मतलब अगर सपोज मेरे को अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, वो चैप्टर मैम ने सिखाया नहीं और मुझे उसमें से क्वेश्चन आ गया तो मैं गूगल में सर्च कर लेती हूँ।
7: और अमीक्षा, आप
3: एजुकेशनल के अलावा अगर हमारे स्कूल में अगर कोई होमवर्क दिया है तो मैं वो गूगल में से कर लेती हूँ।
7: और अनुष्का, आप
4: हमको कोई अगर चीज़ रियल में वो होती है कि नहीं अगर उनको विश्वास नहीं होता तो हम गूगल से पूछते।
7: अच्छा, मतलब न्यूज़ वगैरह।
5: और आप लोग? मैं कुछ वगैरह वगैरह देखती हूँ, ड्राइंग का, वैसे कार्टून का, जो कुछ बनाता है ना सीमेंट से, कुछ मिट्टी से, वो देखती हूँ।
7: और आप?
9: मैं जैसे कि रील्स देखती हूँ।
7: रील्स में क्या देखते हो?
9: क्या क्या रील्स में? रील का कार्टून रील्स।
1: अच्छा, आप लोग फनी वीडियोस भी देखते होंगे?
8: हाँ।
1: फनी वीडियोस किसको अच्छे लगते हैं?
0: मुझे।
1: सबको अच्छे लगते हैं फनी वीडियोस?
0: हाँ।
1: अच्छा बताओ, फनी वीडियोस कैसे देखते हो?
8: फनी वीडियोस में ना मैं IUPU का चैनल देखती हूँ ज्यादातर, उसमें ना बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं।
1: अच्छा, आपको चैलेंजेस देखना पसंद है?
8: हाँ, ऑफकोर्स, वो ट्विन टेलीपैथी चैलेंज करते हैं और बहुत कुछ।
1: अच्छा, तो आपको तो चैलेंज कोई दे तो मजा आएगा करने में।
8: हाँ जरूर, वो तो एक्शन ट्विंट वाले चैलेंज भी मैंने देखा हुआ है, उसमें सब जन एक्शन करते हैं और वो एक्शन सेम होनी चाहिए भाई बहन की।
1: अच्छा, यानी कि आपको चैलेंजेस बहुत पसंद है।
0: हाँ।
1: और आपको?
3: मुझे हेयर स्टाइल देखना बहुत पसंद है।
1: अच्छा, आपको फनी चीजें नहीं पसंद?
3: पसंद है।
1: अच्छा, मतलब आप हेयर स्टाइल, एजुकेशन वगैरह ऐसा ही देखते हैं?
3: हाँ।
1: आप?
4: वो तो जो रील्स होती है उसके अंदर जो कैट होती है उसको पता नहीं कैमरे से कैसे डांस करती है वो कैट, उसको बहुत बार बार देखने में मजा आता है।
1: अच्छा, आपको वो कैट देखने में मजा आता है? आपको कैट्स पसंद है? अच्छा,
4: कैट, डॉग।
1: अच्छा, आपको एनिमल्स पसंद है? आपको?
5: मुझको डॉग पसंद है।
1: अच्छा, आपको डॉग पसंद है, फनी वीडियोस नहीं पसंद?
5: नहीं, फनी वीडियो में वो डॉग आते हैं ना, और बिल्ली भी आती है, वो कभी कभी ऐसा कुछ करती है।
1: अच्छा, आपको फनी एनिमल्स पसंद है जो रील्स में आते हैं?
5: एनिमल्स।
1: हाँ, आपको?
9: मुझे हर एनिमल से डर लगता है।
1: डर क्यों लगता है? एनिमल्स तो कितने क्यूट होते हैं।
9: मुझे डर लगता है क्योंकि वो काट लेते हैं।
1: अच्छा, काट लेते हैं इसलिए डर लगता है। अच्छा, होता है किसी किसी को डर भी लगता है, पर एनिमल क्यूट होते हैं।
7: अच्छा, तो कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि कभी मोबाइल देखने का टाइम नहीं मिला?
8: कभी कभी स्कूल में एग्जाम होती है या फिर कभी कभी होमवर्क का इसका उसका लोड आ जाता है, तो उस टाइम में मोबाइल देखना बिल्कुल नहीं होता है।
7: टाइम निकालते हो उसके लिए?
8: नहीं मिलता है।
7: और अमीक्षा, आप?
3: मैं तो एग्जाम के टाइम पे फोन ही नहीं चलाती।
7: किसी के मम्मी पापा मना करते फोन देखने का?
5: मेरे पापा और मम्मी मना करते हैं और मेरी नानी मना।
7: तब भी आप देखते हो?
5: हाँ, थोड़ा सा देख लेती हूँ।
7: कोई डांटता है किसी को कभी?
5: मेरे पापा डांटते हैं।
7: फिर भी देखते हो?
5: हाँ,
7: 8 घंटे?
5: नहीं, 8 घंटे नहीं, थोड़ा सा देख लेती।
7: और आप?
9: मेरे पापा कुछ नहीं कहते, ऐसे ही मोबाइल दे देते हैं और मम्मी चिल्ला चिल्ला के मारती है।
7: तो 8 घंटे मोबाइल देखते हो, तो स्कूल कब जाते हो?
9: 7 बजे।
1: अच्छा, एक बात बताओ, किस किस को लगता है मोबाइल बहुत इम्पोर्टेंट है? किसी को नहीं लगता मोबाइल इम्पोर्टेंट है?
8: बिल्कुल नहीं,
5: मैं बिल्कुल नहीं, मुझे लगता।
1: अच्छा, क्यों लगता है कि मोबाइल इम्पोर्टेंट है?
5: हमको कुछ क्वेश्चन जो स्कूल में से मिलते हैं ना, तो हमको नहीं आते, तो उसमें फोन में रिसर्च करके हम लिख सकते हैं उसमें।
1: लेकिन वो तो स्कूल में टीचर भी बता सकते हैं।
5: हाँ, कभी कभी टीचर नहीं पढ़ाती तो हमारा रह जाता है, तो हम देख लेते हैं।
1: अच्छा, आप हमेशा?
3: फोन में और भी एजुकेशन की वीडियोस होती है, जैसे कि नीट के एग्जाम की तैयारी के लिए एजुकेशन की वो होती है, वीडियोस होती है, उससे देख के हम लर्न भी कर सकते हैं।
8: पर फोन में अगर कभी कभी हम ऐसे ही चलाते बैठे तो 2-3 घंटे ऐसे आराम से निकल जाते हैं, इसलिए फोन कभी भी उसको टाइमर सेट करके चलाना चाहिए। और जब एग्जाम होती है, कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है, तब पहले फोन चला लूँ फिर बाद में कर लूँगा, वैसे करना नहीं चाहिए।
1: अनुष्का, आपको नहीं लगता फोन इम्पोर्टेंट है?
4: लगता है।
1: क्यों लगता है?
4: क्योंकि उसमें कुछ जो हमको नहीं आता है वो बता देते हैं।
1: अच्छा, इसलिए इम्पोर्टेंट लगता है फोन। अच्छा, तो यानी कि फोन होना चाहिए सबके पास।
5: यस।
7: और किसको लगता है फोन हार्मफुल भी है?
8: मुझे, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया कि फोन चलाते चलाते आराम से टाइम बीत जाता है, इसलिए आपको टाइमर सेट करके चलाना चाहिए।
7: हार्मफुल क्यों है?
8: हार्मफुल इसलिए क्योंकि अगर हम ज्यादा देर फोन चलाएंगे तो पहले बात तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारी पढ़ाई नहीं होगी और हमारी आंखें भी खराब होगी, उसको चश्मा भी लग सकता है।
7: हाँ अनुष्का, आप बताओ,
3: फोन चलाने से ज्यादा आँख तो खराब ही होती है, साथ में वो जब ज्यादा चलाते हैं तो आँख में कुछ धुंधला दिखता है।
7: हाँ, और आप?
5: मैं कभी कभी ज्यादा देख लेती हूँ, इसलिए मुझे कुछ यहाँ पे डार्क सर्कल हो जाते हैं आँख के नीचे।
7: अमीषा, आप कहना चाहते हैं?
3: हाँ, अगर हम फोन चलाते हैं ना तो हमारी आंखें दर्द होती है और हम आंखों को मसलना चालू करते हैं और मसलते तो हमें चश्मा लगता है।
7: और फोन से एडिक्शन नहीं होता?
8: हाँ, जरूर होता है। बहुत सारे बच्चों को अपने मम्मी पापा ऐसे ही फोन दे देते और वो चलाते बैठते, शांत बैठने के लिए मम्मी पापा फोन देते हैं और फिर क्या, वो चलाते हैं, उनको एडिक्शन हो जाता है। मेरे भाई को भी गेम की बहुत एडिक्शन है।
7: तो उसको दूर कैसे कर सकते, कोई आइडिया है?
8: हाँ है ना, जरूर। मम्मी पापा के मतलब फिंगरप्रिंट जो होते हैं फोन का लॉक करने के लिए, वो वैसे कर देते हैं। इससे वजह से उसका कंट्रोल थोड़ा बहुत रहता है। अगर उसका कंट्रोल वैसे नहीं रहता तो फिर वो दिन भर फोन चलाता, 8 घंटे 7 घंटे 9 घंटे से वो चलाते बैठता अगर उसका कंट्रोल नहीं होता, उसमें मम्मी का अगर फिंगरप्रिंट नहीं होगा।
7: लेकिन आजकल के बच्चे तो कुछ ऐसे भी है कि उनसे मोबाइल ले लो तो भड़क जाते हैं।
8: हाँ ऑफकोर्स, बहुत भड़कते हैं। मेरा भाई भी तो भड़कता है, वो मम्मी पापा में नहीं भड़कता, ऐसे मम्मी को बोलता है मम्मी दो ना मुझे 2 मिनट देख रहे हैं, वैसे भड़क जाता है। और उसकी वजह से उसका जो छोटा भाई है 2 साल का, उसको भी फिर लगता है कि भैया फोन में देख रहा है, फिर वो क्या देख रहा है, तो मुझे भी देखना है, वो भी फिर 2 मिनट मांगता है मम्मी से।
5: और मेरा भाई दिन भर गेम खेलता है फोन में, उनसे मम्मी ले लेती है ना तो ऐसे जीत करता है तो मुझे दे दो क्यों लिया।
7: तो आप उसे समझाते नहीं हो?
5: नहीं, मेरी मम्मी इसको कहती है ते मारूंगी, सीधा बैठ जा, पढ़ाई करने बैठ जा, एग्जाम आ रहे हैं।
3: मेरी मम्मी तो ऐसे नहीं है, मेरी मम्मी जब बाहर जाती है तो वो चलाता है, फिर मेरी मम्मी आती है तो अंदर उसको कुछ नहीं बोलती, अगर कोई ज्यादा देर हो जाती है तो चिल्लाती है पर मारती नहीं मेरी मम्मी। कोई कोई बच्चे तो अपनी मम्मी को मारना चालू कर देते हैं कि मुझे फोन दो नहीं तो मैं मारूंगा।
7: हाँ, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खुद को ही हार्म करना शुरू कर देते हैं।
8: हाँ, वो कभी कभी ऐसे चिड़चिड़ हो जाते फिर ऐसे खुद को ऐसे सिर पे मारने लगते जो छोटे बच्चे होते हैं।
7: हाँ, लेकिन फोन को लॉक कर देना तो सल्यूशन नहीं है ना।
8: फिर वो चिड़चिड़ करेगी ऐसा हो सकता है, पर मेरी बुआ तो वैसे ही करती है। या फिर उनके एडिक्शन ये करने के लिए उनको ऐसे कभी कभी फोन के बिना रखने की उनको कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि फोन दूर ही रहे। वो जो बच्चे स्टडी करते थे उनके लिए एक मतलब उस पे आप टाइमर सेट कर दोगे ना तो 99 आवर्स वो फोन लॉक रहेगा, कितना टाइमर सेट करोगे उतना लॉक रहेगा। एक यूट्यूबर का वैसा ही हुआ था, उसे उस पे लॉक कर दिया, 99 आवर्स लॉक था और जिससे उसका पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट बहुत हो गया और उसने टॉप भी किया।
7: और आपका क्या ख्याल है?
5: जब मैं ज्यादा देर के लिए मोबाइल देखती हूँ तो फिर और देर के लिए देखने देते हैं,
7: और देर के लिए देखने देते हैं, बंद नहीं करते मोबाइल आपका?
5: एक दीदी थे उनने लॉक कर दिया था।
7: फिर आपने क्या किया?
5: मैंने छुपके से पासवर्ड देख लिया।
7: लेकिन ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, फोन से एडिक्शन होता है।
10: अच्छा, कौन कौन फोन के लिए जिद करता है कि मुझे फोन देखना है?
11: मैं तो नहीं करती।
10: नहीं करते? नहीं, फोन मिले तो चलेगा, है ना ऐसा?
11: मतलब
10: आपको फोन नहीं मिले फिर भी आप रह सकते हो फोन के बिना?
11: हाँ, वैसे जब वाईफाई नहीं होता तभी

0: हाँ, कौन कौन से गेम्स खेलते हो?
1: हम कार रेसिंग खेलते
0: हैं। हाँ, कार रेसिंग खेलते हो आप?
2: मैं जो बॉल आते है ना रंगीन, उसको वो कलर होता है ना, तो ब्लू वाला, तो ब्लू अगर मारने का।
0: अच्छा, और आप?
3: मेरे को मेकअप सेट पसंद है, इसलिए मेकअप वाला गेम खेलते हैं।
0: अच्छा, मेकअप वाला गेम खेलते हो। किसका मेकअप करते हो गेम में?
3: डॉल का।
0: अच्छा, डॉल का मेकअप करते हो। डॉल बहुत पसंद है आपको। अच्छा, बहुत सुंदर मेकअप करते होगे फिर तो। अच्छा, तो फिर हमारा भी मेकअप करना, ठीक है? अच्छा, तो यानी कि सबको गेम्स भी पसंद है फ़ोन में, और सब लोग एजुकेशन की वीडियोस भी देखते हैं। और क्या क्या पसंद है फ़ोन में आप लोगों को?
4: और ज़्यादा कुछ नहीं, पर सिर्फ थोड़ी देर यही देखते हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं।
5: और मुझे ना, अगर हमारे पास कोई टाइम होता है तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग भी कर सकते हैं।
0: अच्छा, फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं फ़ोन पे?
5: अगर हम बोर हो रहे हो तो।
0: अच्छा, आप लोग भी फ्रेंड से बात करते हैं?
2: मैं, मेरे स्कूल में एक फ्रेंड है, तो उसके पास से मैंने इसका नंबर ले लिया और फ़ोन पे बात करती हूँ अभी।
0: अच्छा, आप भी फ्रेंड से बात करती हो?
3: बाहर मैं अपनी फ्रेंड से रोज जाती हूँ, वहीं से मैं उससे मिलती हूँ, तो उसकी मम्मी क्या कि नंबर लेती तो मैं उससे बात करती हूँ।
0: अच्छा, आप भी फ्रेंड से बात करते हो?
6: नहीं, हम फ़ोन पे नहीं करते, स्कूल में या फिर कभी घर पे आते हैं तब करते।
0: अच्छा, फ़ोन पे नहीं करते हो बात।
4: हमने सुना है कि थोड़े बच्चे ना फ़ोन पे ऐसे नंबर ले लेते हो, कॉल करके पूछते कि हाँ आज का होमवर्क क्या है, फिर वो होमवर्क ले लेते। कुछ से तो करते ना, फिर एग्ज़ाम के टाइम मुश्किल होता है।
7: और आप लोग फ़ोन के बिना कितनी देर रह सकते हो, ये बताओ। अपना अपना बताओ आप।
3: मैं 4 घंटे।
7: सिर्फ 4 घंटे रह सकते हो, बाकी और नहीं रह पाओगे। और आप?
2: मैं 10 दिन कर नहीं देखती हूँ। मैं
7: नहीं देखते हो?
2: नहीं, देखती नहीं हूँ, कभी कभी देखती हूँ फिर नहीं देखती हूँ।
7: और आप अनुष्का?
8: मैं तो 1 महीने तक भी नहीं देख सकती।
7: इतनी देर तक रोक सकते हो फोन को?
8: और अमीक्षा? टीवी तो है ही ना। टीवी तो है ही ना।
7: और अमीक्षा आप?
5: मैं तो 2 महीने तक रह सकती हूँ
7: बिना फोन के।
5: हाँ, क्योंकि मेरी नानी अगर कहीं जाती है तो अगर 2 महीने के लिए जाती है तो मैं रह सकती हूँ।
7: और आप?
8: मैं 2 महीने के आसपास। वैसे
7: तो आप सिर्फ 4 घंटे के लिए रह सकते हो। क्यों, आपको मोबाइल में इतना क्या पसंद है?
3: वीर कार्टून पसंद है।
0: अच्छा, आप वीर कार्टून देखे बगैर नहीं रह सकते, इसका मतलब इतना पसंद है आपको। अच्छा, वीर करता क्या है?
3: वो वीर रोबोट है, तो अच्छा। उसके बाद सारे सूट्स है, एक का नाम है चोर है, एक का नाम है मैड मैक्स। वही एक रोबोट बना के वीर को खत्म करना चाहता है, लेकिन वीर उससे जीत जाता है।
0: अच्छा, आपको वीर को जीतते हुए देखना पसंद है। अच्छा, हम आपको वीर बनाते तो आप उड़ोगे अच्छे वीर के तरह, एक्शन करोगे? अच्छा, अच्छा लगेगा।
3: हाँ।
7: और क्या क्या पसंद है सबको फोन में?
4: बस इतना ही, जो भी हमारे एजुकेशन के वीडियोस होते हैं। पर मुझे तो गेम्स खेलना बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि गेम से मोबाइल कभी कभी गर्म भी हो जाता है, और फिर गेम खेलते खेलते इतना एडिक्शन उसमें ज्यादा होता है गेम में।
2: मैं फोन में देखती हूँ, गाने सुनती हूँ, कभी कभी गाने अच्छे लगते हैं मुझे कभी।
0: अच्छा, गाने भी अच्छे लगते हैं, आप लोग गाने भी सुनते हैं?
4: हाँ।
0: अच्छा, कौन कौन से गाने सुनते हैं?
4: मैं कभी ना वो यमुना जी का, वो गंगा का, वो राधा रानी का जो गाना है ना, वो वाला देखती हूँ, वो बहुत अच्छा है।
0: अच्छा, आपको गाने सुनने से शांति मिलती है?
2: यस।
0: अच्छा, अच्छा लगता है गाना सुनना?
4: हाँ, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। और मेडिटेशन के टाइम पे भी हम सॉन्ग्स लगाते हैं, जो भी हमारे मेडिटेशन के सॉन्ग्स होते हैं उसमें भी अच्छे से मेडिटेशन होता है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है।
7: अच्छा, तो आप सभी बताइए हमारे श्रोताओं को कि फोन से बचने के लिए कौन कौन सी टिप्स दे सकते हैं आप लोग।
4: पहले मैंने जो बताया था कि वो फ़ोन का वो लॉक करने का एक आता है, वो 99 आवर्स के आगे लॉक कर सकते हैं, 2 महीने 3 महीने के लिए लॉक कर सकते हैं, वो आप बाय कर सकते हो, वो कभी भी नहीं खोला, चाहे आप उसको फोड़ो, कुछ भी करो।
7: और अमित साहब?
5: हम अगर फ़ोन ज़्यादा ना चलाए तो हमें एडिक्शन नहीं हो सकता, हमारी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे लग सकता।
8: कोई फ़ोन ज़्यादा देखता है तो उनको कोई ऐसी वीडियो दिखानी चाहिए जिससे वो डर जाए और फ़ोन ना चलाए, जैसे कि फ़ोन चलाने में से आँखों में क्या हो जाता है ऐसे।
7: हाँ, अच्छा आइडिया है। और आप?
2: मैं तो से वो लॉक कर देते हैं, जो पासवर्ड होता है ना उसमें उंगली लगाना, फिर पासवर्ड ऐसे वो करना, तो वो ऐसे कुछ बता के नहीं है बच्चों को, ऐसे चुपके से लगा देते हैं।
7: मतलब पासवर्ड लगा देना?
2: हाँ, पासवर्ड लगा देते।
3: मेरे को तो डर ही नहीं लगता फ़ोन देखने से।
7: नहीं, मतलब फ़ोन ना चलाने के लिए कौन सी टिप्स कर सकते हैं हम लोग?
3: मैं तो अगर मेरा मन ना हो तो मैं नहीं चलाती।
7: अच्छा।

0: हो तो चलाने का, ना हो तो नहीं चलाने का।
1: ऐसे तो मन हमारा पूरे दिन होगा, तो हम क्या पूरे दिन वो फोन चलाएंगे?
0: तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों को पहले बच्चों के साथ खेलें, क्या पता बच्चे लोनलीनेस में फोन चलाते हो।
1: और पहले से जो बच्चे छोटे होते हैं उनको फोन से दूर ही रखना चाहिए, बताना ही नहीं चाहिए कि फोन में क्या होता है।
0: हाँ, फिर बड़े होते होते एडिक्शन हो जाता है।
1: पर बड़े होने के बाद हम उनको बता सकते कि फोन में क्या हो, फिर उससे वो जो हम उनको बताएंगे कि बाद में फोन में इतना ही सर्च करना है, इतना ही करना है, वो कर सकते हैं। या फिर सपोज हम यूट्यूब को कैलकुलेटर से बदल सकते हैं, अगर वो यूट्यूब को खोले तो वो कैलकुलेटर आएगा, वैसे होता है भी है।
0: अब तो गुड बाय करने का समय आ गया है। आप लोग फोन देखते हो क्या? फोन देखते हो तो थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए, ज्यादा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छी चीजें भी आती है और बुरी चीजें भी आती है। आज के एपिसोड के लिए लेते हम इजाज़त, अगले वीडियो में मिलेंगे हम आप लोगों से। इस बार तो दीदी नहीं आई है, लेकिन अगले एपिसोड में ज़रूर आएगी दीदी। आज के एपिसोड में नहीं मिले, अगले एपिसोड में दीदी से भी बातें करेंगे। फिलहाल के लिए

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वो बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वो सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वो भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पहला पाठ, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। पृष्ठ 1। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। क्यों होता है ऐसा, सोचकर बताओ। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। है ना जानवरों की भी अजीब दुनिया। पृष्ठ 2, कैसे पहचाना साथी को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी, अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। सोचो और बताओ, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की हैं? पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? करके देखो और लिखो। चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज जमीन पर रखो। अब इंतजार करो चींटियों के आने का। अब देखो चींटी कितनी देर में आई। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया? चींटियां खाने की चीज का क्या करती हैं? वे उस जगह से कहाँ जाती हैं? क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं? पृष्ठ 3, अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। देखो अब चींटियां कैसे चलती हैं। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। क्या अब बता सकते हो, जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो? मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो, कुत्ता क्या क्या सूंघता होगा? सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। यहाँ एक रेशम के कीड़े का चित्र बना है। वह कहता है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। पृष्ठ 4। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? किन किन मौकों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए, खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलना, किसी चीज के जलने का पता चलना। तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? उनके नाम लिखो। किन्हीं 5 ऐसी चीजों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन्हीं 5 ऐसी चीजों के नाम भी लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती। क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं? पृष्ठ 5। चर्चा करो। क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है? किसके? कभी किसी भीड़ से भरी जगह, जैसे मेले में, बस में, ट्रेन आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है? बताओ कैसा लगा? ऐसा क्यों? आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मज़े की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी यानी लैट्रिन कर दी। अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वह दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। सोचो और चर्चा करो। सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनता है। क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है, या इस पर हमारी सोच का भी असर पड़ता है? पृष्ठ 6। कैसे दिखा? किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तुम भी अलग अलग तरीकों से देखो। तुम अपनी दाईं आंख बंद करो या हाथ से ढको। इसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया? पृष्ठ 7। अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके। किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा? सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी? मजेदार बात। और जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे? जैसे जिस चित्र में हमें गुलाबी, लाल, हल्का हरा, गहरा हरा, पीला, काला ये रंग दिखाई पड़ते हैं चिड़िया को भी ये रंग दिखाई देते हैं और कुत्ते को केवल हरा और पीला और चूहे को तो कोई रंग ही दिखाई नहीं देता, उसे तो बस काला और सफ़ेद दिखता है। आम तौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। पृष्ठ 8। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। लिखो 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। सोचो तुम्हें क्या लगता है क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? करके देखो। स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो। वहां एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले, बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले और बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। किस बार आवाज़

ज्यादा साफ सुनाई दी। अपने साथियों से भी पता करो, तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज सुनाई देती है ना। पृष्ठ 9। एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज आती है? अब जैसे चित्र में दिखाया गया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज आती है? क्या दोनों आवाजों में कुछ अंतर है? सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। आवाजें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। पृष्ठ 10। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। लिखो, क्या तुम कुछ जानवरों की आवाजें समझ सकते हो? किस किस की? क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन से? आओ खेलें एक मजेदार खेल। जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाजों की भाषा बना लो। ध्यान रहे, बोलना नहीं है, केवल आवाजें निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे? जैसे कक्षा में टीचर के आने पर कितना सोएं? बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहाँ गुम हो जाती हैं? सोचो, वे ऐसा क्यों करती होंगी? पृष्ठ 11। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। 24 घंटों में से स्लॉथ केवल 6 घंटे जागता है और 18 घंटे सोता है। घड़ी बनाकर इन जानवरों का
सोने और जागने का समय दिखाओ। छिपकली, गाय, अजगर, जिराफ और बिल्ली। अपने आसपास किसी जानवर को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कौन से? कोई 10 प्रश्न बनाओ और लिखो। पृष्ठ 12। यहाँ पर बाघ का एक चित्र दिया गया है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। और आज 20 जुलाई है। जी हाँ, आज के दिन विशेष जन्मे उन लोगों के बारे में अगर बात करूं तो राजेंद्र कुमार, नसरुद्दीन शाह, काले कोपुल, गणेश वासुदेव जोशी, समता प्रसाद, गुलाम मोहम्मद शाह, बी डी मिश्रा, अरुणा मणि सिन्हा, शारदा देवी, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही गीता दत्त, बालकृष्ण भट्ट, मीरा बहन, चंद्रनाथ शर्मा, दक्षिणी वेल योधन, अन्ना चंडी, बटुकेश्वर दत्त, हाशिम अंसारी, शीला दीक्षित, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए, आज के इस कार्यक्रम में कुछ खास बातें आपसे शेयर करने वाला हूं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं अभी एक विचार के साथ। तो आइए विचार सुनते हैं अभी। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो एक बार विचार पर मंथन करके 94-14-15-14-15 इस नंबर पर आप अपना विचार सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो लीजिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत आपके नाम कार्यक्रम के शुरुआत में। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और सफर कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। आइए कुछ खास लोगों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा और अब बात करते हैं एक विशेष व्यक्ति के बारे में, गणेश वासुदेव जोशी के बारे में। जी हाँ, गणेश वासुदेव जोशी ये एक अपने समय के बहुत ही पॉपुलर सार्वजनिक कार्यकर्ता थे। गणेश वासुदेव ने मुख्तार वकील की परीक्षा पास करने के बाद पुणे में रहकर वकालत की। न्यायमूर्ति रानाड़े के साथ मंत्रणा कर गणेश वासुदेव ने 1872 में स्वदेशी आंदोलन का श्री गणेश किया था। देशी व्यापार उत्तेजक मंडल की स्थापना पर स्थाई साबुन, मोमबत्ती, छाते आदि स्वदेशी वस्तुओं का उत्पाद करने का प्रोत्साहन भी इन्होंने दिया। गणेश वासुदेव जोशी का जन्म आज ही के दिन 20 जुलाई 1828 को सातारा, महाराष्ट्र में हुआ। ये अपने समय के बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति रहे। सार्वजनिक जो सभा होती थी उसके संस्थापक रहे। सार्वजनिक काका के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। गणेश जी के पिता ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, किंतु उनका असमय ही निधन हो गया। गणेश जी की औपचारिक शिक्षा केवल मराठी भाषा में हो पाई। बड़े होने पर वो निजी तौर पर उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। मुख्तार वकील की परीक्षा पास की और पुणे में वकालत करने लगे। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करना आरंभ किया। इस उद्देश्य से 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। इस सभा में उस समय के लगभग सभी प्रमुख के व्यक्ति शामिल हो गए। महादेव गोविंद रानाडे भी इसके सदस्य बने। इस तरह से इनका सभा का उद्देश्य जनता की भलाई का था और अंग्रेजी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करके उनके निवारण का प्रयत्न भी करना था। तो ऐसे अपने सार्वजनिक सभा के कार्य में काफ़ी हद तक वो सफल भी हुआ है और नमक पर जो टैक्स था वो कम हुआ। किसानों की दशा का जांच करने के लिए कमीशन बैठा गया और 1876 के बैंकर अकाल में सरकार से सहायता प्राप्त करने में कामयाबी मिली और सार्वजनिक सभा के प्रयास से सरकार जागरूकता का आरंभ हुआ, जिसकी 1885 में स्थापना हुई और देश के सामने आई। इन सभी कार्यों के कारण गणेश वासुदेव जोशी का नाम भी सार्वजनिक काका पड़ गया था। तो 25 जुलाई 1880 को गणेश वासुदेव जी का देहांत हो गया। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा संगीत आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ काली को पुल की बात अगर करें तो ये भी एक ऐसे व्यक्ति रहे, बहुत ही पॉपुलर अरुणाचल के राजनीति कर रहे हैं और 8वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम भी किया। तो काली पुल को जन्म आज के दिन 20 जुलाई 1969 को अरुणाचल प्रदेश में हुआ। वे कमान मिशमी जातीय समूह में थे और समूह भारत चीन सीमा के दोनों तरफ पाया जाता था। 13 महीने की छोटी सी उम्र में इन्होंने माँ की मौत देखी और 6 साल की उम्र में पिता इनके साथ से निकल गए थे। और पुल अपनी जो है कालिको पुल को अपनी चाची के घर रहकर स्कूल की पढ़ाई पूरी की और स्कूल जाने के बजाय वो कुछ समय तो मुश्किल से पढ़ाया करते थे और स्कूल से ज़्यादा ये जंगलों से लकड़ियाँ काट कर लानी होती थी।

छोड़ने की जो ललक थी, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। और 12 साल की उम्र में काम सीखते वक्त कालिखो ने एक कोचिंग सेंटर में दाखिला ले लिया और वहीं से काम भी करते और पढ़ाई भी करते। तो इस तरह से उन्होंने दोनों काम पूरा करते हुए आगे बढ़े। और फिर कालिखो पुल ने 2.74 लाख रुपए में अपना एक घर भी बनाया उसी पैसे से। और उन दिनों वो राजनीतिक जो है माहौल था, तो छात्रों के साथ वो भी उसमें जुड़ गए। और फिर इस तरह से बहुत सारे छात्रों के साथ जुड़ने के बाद विधानसभा का टिकट भी उनको मिल गया। और कालिखो पुल 2003 से लेकर 2007 तक फिर मुख्यमंत्री गंगम आपंग के मंत्रालय में राज्य वित्त मंत्री रहे। उल्लेखनीय ये भी है कि राज्य में राजनीतिक संकट की शुरुआत दिसंबर 2015 में तब हुई जब 47 विधायकों में से 21 ने बगावत कर दी और नाबम टूखी की अगुवाई वाली सरकार आपत में आ गई। और इस तरह से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और 16 फरवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश के बाद राज्यपाल जेपी राजखोवा ने ईटानगर में राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद एक गोपनीय की शपथ दिलाई। और मुख्यमंत्री कालिखो पुल के साथ 19 बागी भारतीय जनता के 11 और 2 निर्दलीय विधायक थे। कालिखो पुल के नेतृत्व में गठित सरकार को अवैध ठहराया गया और इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंच गई शिकायत। तो इस तरह की कई चीज़ें हुई। और 9 अगस्त 2016 को कथित तौर पर घर के पंखे से लटक कर कालिखो पुल ने आत्महत्या कर ली। वो मुख्यमंत्री आवास में ही रह रहे थे और यही उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर अपना जीवन समाप्त कर लिया। कालिखो पुल अंग्रेजों कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। बताया जाता है कि सत्ता जाने के बाद वो मानसिक यातना, मन के जो कंट्रोल है वो खो दिया और उस वजह से वो आत्महत्या कर लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलता हूँ। कभी कभी राजनीति जो है हमें सुख भी देता है तो वो चीज़ें दुख भी देता है, इसीलिए हर चीज को संभल कर और मानसिक शांति के साथ करना चाहिए ताकि ऐसा कोई गलत कदम ना हो। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति, मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो है ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह। और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। कभी कभी मैंने कहा ना, जीवन कहानी को सुनकर बहुत सारी चीज़ें आपके मानस पटल पर आ रही होगी, तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। अब एक और शख्सियत के बारे में बात करेंगे। आज दो एक्टरों का जन्मदिन है, उनके बारे में बात करना चाहूँगा अभी।
2: ये एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने रंगमंच के अभिनय का विधिवत प्रशिक्षण लिया और फिर सिनेमा की एक्टिंग भी सीखी। नाम नसीरुद्दीन शाह।
3: कितने रावण कितने कंस मिट गए जुल्मों सितम की राह में, तो तू क्या उसे मिटाएगा जो है उसकी पनाह में।
2: जन्म 20 जुलाई सन 1949 में हुआ। नसीरुद्दीन शाह का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी इलाके में हुआ था और पढ़ाई लिखाई हुई सेंट एंसल्म्स अजमेर और सेंट जोसेफ्स कॉलेज नैनीताल। हालांकि नन्हे नसीर पढ़ाई लिखाई की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे और बड़े ही शर्मीले बच्चे थे। सेंट जोसेफ्स में इनके नतीजे अच्छे नहीं आए और तब इनके वालिद ने इन्हें सेंट एंसल्म्स अजमेर में दाखिल करा दिया। ये वो स्कूल रहा जहाँ पे ये पूरी तरह से खुले। इनका व्यक्तित्व एक नई उड़ान भर रहा था। स्कूल में नाटक हुआ द मर्चेंट ऑफ वेनिस और उस नाटक में जब इनके अभिनय की तारीफ हुई तो बस ये समझ गए कि अब एक्टिंग का ही दामन थामना होगा।
3: अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपना अलग एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से जिंदगी कब मिलती है दोस्त, अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर।
2: स्कूल की पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद नसीरुद्दीन शाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे साल सन 1971 और उसके बाद सन 1971 में ये पहुंचे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। यहाँ पे अब्राहम अलकाजी साहब ने इन्हें प्रशिक्षण दिया और फिर इन्होंने मन बनाया कि अब पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट की तरफ जाना होगा। पर अभी भी नसीरुद्दीन शाह का भविष्य अधर में ही था। NSD और FTII में इनके बड़े ही गहरे दोस्त ओमपुरी भी इन्हीं के साथ पढ़े। इनकी एक्टिंग की तो तारीफ हो रही थी पर इनके चेहरे मोहरे को देखकर कोई भी इन्हें बतौर हीरो लेने को तैयार नहीं था। सन 1973 में श्याम बेनेगल साहब की एक फिल्म आई जिसका नाम था अंकुर। इस फिल्म को देखने के बाद नसीरुद्दीन शाह समझ गए कि ये जो पैरेलल सिनेमा है ये नए दरवाजे खोलेगा बहुत सारे एक्टर्स के लिए। और ठीक वैसा ही हुआ। सन 1975 में श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत में ये नजर आए। हालांकि ये छोटे छोटे किरदार निभा रहे थे जैसे कि प्रकाश मेहरा साहब की फिल्म आन बान में ये नजर आए थे, पर निशांत फिल्म में निभाए हुए इनके किरदार ने इन्हें काफी ख्याति दी। फिर पैरेलल सिनेमा का तो ये हिस्सा ही बन गए, चाहे वो मंथन रही हो या फिर मिर्च मसाला, भूमिका रही हो या फिर जुनून। 70 और 80 के दशक में जो आर्ट सिनेमा की लहर चली उसमें नसीरुद्दीन शाह चमक उठे।
4: तुम जो कहोगे हम करेंगे। तुम ये चाहते हो ना कि हम इस मासूम को उस कसाई के हाथों सौंप दें, हमें मंजूर है। लेकिन ये मत कहो कि किसी अनाथ को अपने सीने से न लगाना, क्योंकि तुम्हारी तरह हमने भी इस अनाथ को अपने सीने से लगाया है।
2: 1979 तक आते आते नसीर साहब ने कोशिश की कि ये जरा ऐसे सिनेमा में भी काम करें जिसे मेनस्ट्रीम समझा जाता है, और तब हिरेन नाग साहब की फिल्म सुनैना में ये नजर आए थे। देवानंद साहब ने भी नसीरुद्दीन शाह को सन 1982 में अपनी फिल्म स्वामी दादा में एक किरदार दिया। फिर कर्मा, त्रिदेव, इन फिल्मों से इन्हें अच्छी मकबूलियत हासिल हुई। नसीर साहब के अभिनय की तो तारीफ की जा रही थी पर कमर्शियल सिनेमा की तरफ इनके झुकाव को देखते हुए आर्ट सिनेमा ने इन्हें अपने से जरा दूर कर दिया।
3: पुरानी रोशनी में और नई में फर्क इतना है, उसे कश्ती नहीं मिलती, इसे साहिल नहीं मिलता।
2: नसीरुद्दीन शाह के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि ये जब मात्र 20 बरस के थे तभी इन्होंने शादी कर ली थी। शादी की थी मनारा सीकरी से, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थी। इस शादी से इन्हें एक बेटी भी हुई जिसका नाम रखा गया हिबा। पर शादी चली नहीं और एक दूसरे से अलग हो जाने के बाद मनारा सीकरी अपनी बेटी हिबा को लेकर ईरान चली गई। उसके बाद वो दौर आया जब नसीरुद्दीन शाह का रोमांस शुरू हुआ मशहूर मारूफ अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह के साथ। ये वो वक्त था जब FTII से अपना कोर्स खत्म कर लेने के बाद नसीरुद्दीन शाह बांद्रा इलाके में रहा करते थे। महान रंगकर्मी सत्यदेव दुबे के एक नाटक में ये काम मांगने गए और वहीं पर इनकी मुलाकात हुई रत्ना जी से। 6 बरस तक इनकी मोहब्बत परवान चढ़ती रही और फिर इन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद नसीर साहब ने अपने अतीत के कुछ पन्ने अपनी बीवी रत्ना के साथ बांटे। बताया कि 20 साल की उम्र में शादी हुई थी, 12 साल की बेटी है, इतने बरसों से मैंने उसे देखा नहीं, मालूम नहीं कि वो भी मुझे पहचानती है या नहीं। पर नसीर साहब की पहली बीवी मनारा के गुजर जाने के बाद इनकी बेटी हिबा इन्हीं के पास आके रहने लगी। एक लंबा अरसा बीत गया था, दूसरी शादी से इन्हें 2 बेटे हो चुके थे। बात जरा अटपटी जरूर थी पर जिंदगी अपना रास्ता बना रही थी। फिर वो लम्हा भी आया जब नसीरुद्दीन शाह ने अपनी बेटी और अपनी बीवी को अपने नाटक में डायरेक्ट किया, नाम इस्मत आपा के नाम। महान लेखिका इस्मत चुगतई की कहानियों पर आधारित ये नाटक बड़ा मकबूल हुआ। एक लंबे संघर्ष के बाद नसीरुद्दीन शाह ने वो नाम बना लिया जो बहुत कम एक्टर्स कर पाए थे।
5: बहुत झेल ली तुम लोगों की बेवकूफियां, बहुत झेल ली, अब और नहीं झेलूंगा। और कान खोल के सुन लो, जिस तरह दौलत के लिए खून करना हम लोगों का पेशा है, वैसे ही दौलत के लिए लूटपाट करना इन डाकुओं का। और जैसे कोई हमारे काम में दखल दे ये हमें मंजूर नहीं, उसी तरह चाहे कुछ भी हो जाए हम में से कोई भी इनके मामले में टांग नहीं अड़ाएगा।
2: नसीरुद्दीन शाह को इस बात का भी दुख रहा कि अपने वालिद से इनकी बातचीत जरा कम रहा करती थी और चूंकि उस रिश्ते में कड़वाहट थी तो पिता पुत्र के बीच गुस्सा ही ज्यादा रहा। हालांकि इनके बचपन में इनके मामा जान इनके हीरो हुआ करते थे। वो एक अलग माहौल था, बंदूकें वगैरह चलाई जाती थी, लेदर जैकेट पहने जाते थे, घुड़सवारी हुआ करती थी, आम के बाग कितने में बिके ये सारी बातें हुआ करती थी और इन चीजों ने गहरा असर डाला था नन्हे नसीर पर।
1: तो ये थी कहानी नसीरुद्दीन शाह की। आइए इसके साथ ही मैं आपको जोड़ना चाहूँगा एक और गीत के साथ। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक और शख्सियत के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, जिनका आज जन्मदिन है, एक्टर राजेंद्र कुमार के बारे में। जी हाँ, राजेंद्र कुमार भारतीय अभिनेता। राजेंद्र कुमार 1960 और 70 के दशक में फिल्मों में सक्रिय थे। फिल्मों में अभिनय करने के अलावा कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी इन्होंने किया। हिंदी फिल्मों में अपने सफल अभिनय और बेमिसाल अदाकारी की वजह से राजेंद्र कुमार ने जो स्थान बनाया है वो अब तक पहचान वहाँ तक पहचान हर अभिनेता का सपना होता है कि मेरा भी पहचान वैसे ही बने। राजेंद्र कुमार की हर फिल्म इतनी हिट होती थी कि हर कोई सालों तक बेहतरीन बिजनेस किया करते थे और यही वजह थी कि लोग इन्हें जुबली कुमार के नाम से भी पुकारते थे। अपने रोमांटिक व्यक्तित्व की उन्होंने सिनेमा जगत में ऐसी छटा बिखेरी थी कि उनकी फिल्में एक यादगार बन गई। फिल्म आरजू हो या आई मिलन की बेला, हर फिल्म में राजेंद्र कुमार का एक अलग ही स्वरूप दर्शकों को देखने को मिलता था। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। तो आइए उनकी कहानी आपको अभी सुनाते हैं।
2: हुस्न वाले

0: यूं तो दुनिया इन्हें आर के तुली के नाम से जानती थी, पर जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो ये बन गए राजेंद्र कुमार तुली और ऑडियंस ने बना दिया इन्हें जुबली कुमार। ये दास्तां है जबरदस्त अभिनेता राजेंद्र कुमार की।
1: चलो कमल बेटा, किसी के रंग में भंग डालना अच्छी बात नहीं।

0: राजेंद्र कुमार साहब का जन्म 20 जुलाई सन 1929 में हुआ। इलाका सियालकोट पंजाब, ये वो इलाका है जो भारत के विभाजन के बाद अब पाकिस्तान में है। इनके दादाजी एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे और इनके पिता का टेक्सटाइल बिजनेस था कराची और सिंध में। पर जैसे ही तकसीम का वक्त आया, भारत का विभाजन हुआ, मारकाट मची, तो सब कुछ छोड़कर ये अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली पहुंच गए।
1: पिताजी, सर नीचा करके इस तरह इच्छा भगवान की कहने की बजाय सर ऊंचा करके अगर आपने अपनी इच्छा चलाई होती तो आज इस घर की यह हालत ना होती।
0: राजेंद्र कुमार दरअसल कभी हीरो नहीं बनना चाहते थे, पर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ इनकी दिलचस्पी थी। एक दिन अपने कलाई पे बंधी घड़ी 65 रुपए में बेचकर इन्होंने दिल्ली से फ्रंटियर मेल पकड़ी और पहुंच गए सीधा मुंबई। चूंकि हीरो बनने की तमन्ना नहीं थी पर फिल्म इंडस्ट्री से राबता रखना था, तो ये बन गए HS रवेल के असिस्टेंट डायरेक्टर। तकरीबन 5 बरस तक ये बतौर असिस्टेंट काम करते रहे। फिल्म रही पतंगा, सगाई, पॉकेट मार और जोगन। जोगन फिल्म में इन्हें दिलीप कुमार और नरगिस जैसे जबरदस्त अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। हालांकि इस फिल्म में राजेंद्र कुमार का रोल बहुत ही छोटा था, पर जब फिल्म वचन बनाई गई तब इन्हें एक बड़ा किरदार मिला। उसके बाद वी शांताराम ने इन्हें फिल्म तूफान और दिया में एक जबरदस्त किरदार दिया। अभी गाड़ी आगे चली ही थी कि आ गई महबूब खान साहब की फिल्म मदर इंडिया, जिसमें सुनील दत्त और नरगिस के साथ इनके अभिनय को भी बहुत सराहा गया। इसके बाद तो इन्होंने कभी पलट के देखा ही नहीं। मीना कुमारी और माला सिन्हा जैसी बड़ी अभिनेत्रियां इनके साथ फिल्मों में काम कर रही थीं।
2: जानती हूँ मेरा जी क्या चाहता है?
3: क्या?
2: बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे पास बैठा रहूं और तुम्हारी आंखों में देखता रहूं।
0: 60 के दशक में इन्होंने सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल की। बीआर चोपड़ा की फिल्म धूल का फूल रही या फिर दिल एक मंदिर, मेरे महबूब और संगम को कौन भूल सकता है। राजेंद्र कुमार उन जबरदस्त अभिनेताओं में से रहे जो ट्रेजिक रोल्स भी करते थे तो रोमांटिक भी। और इनकी एक सबसे बड़ी खासियत थी कि हमेशा अच्छी स्क्रिप्ट्स का इन्होंने चयन किया। फिल्म मेरे महबूब से जुड़ा एक बड़ा जबरदस्त किस्सा है। जब अभिनेत्री साधना से कहा गया कि वो इस फिल्म में बतौर हीरोइन आए तो उन्होंने इनकार कर दिया था। तब ऋषिकेश मुखर्जी ने साधना जी को समझाया और कहा कि देखो, ये फिल्म राजेंद्र कुमार ने साइन की है और हो ना हो इसकी स्क्रिप्ट वाकई बहुत अच्छी होगी, तुम आंख बंद करके साइन कर दो, क्योंकि अपना जुबली कुमार अच्छी स्क्रिप्ट्स पर ही हाथ रखता है। और ठीक वैसा ही हुआ।

फिल्म इंडस्ट्री में राजेंद्र कुमार की गहरी दोस्ती रही राज कपूर साहब के साथ। ये बात मशहूर रही कि अगर कोई दोस्त है इंडस्ट्री में तो वो ये दो हैं। राज कपूर साहब जब फिल्म संगम बना रहे थे तो शुरुआत में सोचा था कि दिलीप कुमार को साइन करें, पर

0: इनके निजी जीवन की तरफ हम रुख करें तो हमें पता चलता है कि इनकी शादी हुई शुक्ल से, जो कि फिल्म मेकर ओपी रलहन की बहन रही। किस्सा यूं भी मशहूर रहा कि जब इन्हें ले जाया गया और शुक्ल जी से मिलवाया गया तो इन्होंने फौरन हाँ कर दी। यहाँ तक बता दिया कि देखो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो एक पीजी अकोमोडेशन में रहता हूँ, तुम मेरे साथ जीवन व्यतीत कर सकोगी तो हाँ बोलना। शुक्ल जी ने भी हाँ कह दी। इस शादी से इन्हें 3 बच्चे हुए, एक बेटा और 2 बेटियाँ।
1: अगर आप इस घर में रिश्ते की मर्जी से आए हैं तो गोल कर दीजिए। क्यों जी? हमारे घर की हालत बहुत पतली है, कंपनी का दिवाला निकलने वाला है। बाकी रहा मैं, बिल्कुल नकाराज में, महीने में 4 पैसे नहीं कमाता।
2: पर साहब, मैंने तो सुना है कि पिछले साल आप लोगों ने 2,00,000 रुपए इनकम टैक्स में दिए हैं।
1: अजी, आप पिछले साल की बात कर रहे हैं, मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। ये इनकम टैक्स, ये सुपर टैक्स, ये एडवांस टैक्स, श्रीमान जी क्या बताएं, बस टैक्स ही टैक्स रह गया है।
2: ये तो होते ही रहता है, बिजनेस में ऊंच नीच तो हमेशा का कायदा है, इसमें फिक्र की कौन सी बात है?
1: फिक्र की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है।
0: फिल्मों में एक्टिंग करते करते राजेंद्र कुमार बन गए प्रोड्यूसर भी। अपने बेटे मनोज को इन्होंने लॉन्च किया फिल्म लव स्टोरी में। जी हाँ, उनका नाम बदल के रख दिया गया था कुमार गौरव। ये फिल्म बड़ी मकबूल हुई। उसके बाद फिल्म नाम प्रोड्यूस की, वो भी बॉक्स ऑफिस पे छा गई। कुमार गौरव ने जब सुनील दत्त साहब की बेटी से शादी की, उस दिन मदर इंडिया के रामू और बिरजू बन गए रियल लाइफ के समधी।

0: राजेंद्र कुमार साहब को सन 1969 में पद्मश्री से नवाजा गया। अपने उसूलों के पक्के काम से काम रखने वाले राजेंद्र कुमार साहब को पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने सलाम किया और सन 1999 वो तारीख लेकर आया। कैंसर से पीड़ित जुबली कुमार ये दुनिया छोड़ चल बसे। तारीख थी 12 जुलाई सन 1999। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ही जुबली कुमार था और एक ही रहेगा हमेशा हमेशा। पीपल एंड हिस्ट्री।
1: तो चलिए, ये थी कहानी राजेंद्र कुमार की, डांस, ड्रामा, मेलोडी और सब कुछ। तो इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त और जाते जाते आपके लिए एक सुंदर विचार। कहते हैं, जहाँ सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है और जहाँ प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर सफ़र। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। सलाम नमस्ते खमा गणिसा। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

मैं ढूंढे गांव से हूँ, आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

मटक एक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बांह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली परी हरी बोली।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल भाई, स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

سکھاتی ہے، بشر غلطی کا پتلا ہے، یہ اکثر ہو ہی جاتی ہے۔

गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम बिताने आई हूं और सवाल भी लेकर आई हूं। दो बेहतरीन कहानियां जिसमें सबसे ताकतवर इंसान और बुद्धिमान रामू और लालची। कौन है लालची? ये दोनों कहानियां जरूर सुनाएंगे आपको। आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहना और सवाल का जवाब देना 9414151514 पर। आप सुन रहे उड़ान, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन

0: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
3: Tell Malish.

तेल मालिश। शाम का वक्त है, चाय की चुस्की है और आज का सवाल भी है। सवाल है, ये कुछ ऐसे नाम जो किसी कला के साथ जुड़े हुए हैं। ये हैं सबसे पहले जो है वो है आप दोस्तों के लिए, पहला नाम इम्प्रोव, दूसरा है स्केच, तीसरा है स्टैंड अप और चौथा पंचलाइन। ये चारों शब्द किस कला से जुड़े हुए हैं? इम्प्रोव, स्केच, स्टैंड अप और पंचलाइन, ये किस कला से जुड़े हुए शब्द हैं? ए, क्या ये संगीत के ही शब्द हैं, या फिर बी, ये कॉमेडी के शब्द हैं, या फिर सी, ये किसी डांस परफॉर्म के शब्द हैं? तीनों में से सिर्फ एक सही जवाब है। देर मत कीजिएगा दोस्तों, मैं मोना इंतजार कर रही हूँ आपके सही जवाब का। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। वेल, अभी जो गीत आपने सुना उसी से जुड़ा ये सवाल है। जी हाँ, ए संगीत है, या फिर बी कॉमेडी, या फिर सी नृत्य। सही जवाब झटपट दीजिए 94 14 15 14 15 पर दीजिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

भले धींगा मुश्ती हुई खूब झगड़े हुए आधे लूले हुए आधे लंगड़े हुए धूम धड़का चील का बट्टा बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े सारे अरमान शादी के ठंडे पड़े ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े घूसे डंडे दे घूसे डंडे दे घूसे डंडे दे बाप दौलत लूटा।

0: वेल दोस्तों, वेलकम बैक।
1: अरे दीदी, क्या कॉमेडी से भरा हुआ गीत था।
0: ओहो दोस्तों, कॉमेडी लग रहा था इसको गीत में। खैर, आज का सवाल एक बार दोहरा देते हैं। इम्प्रूव, स्केच, स्टैंड अप और पंचलाइन शब्द किस कला से जुड़े हुए हैं? ए
1: संगीत, बी है कॉमेडी, सी है नृत्य।
0: अर्थात ये जो शब्द हैं वो कौन सी कला से हैं? Well, आज मैंने सोचा इसी से जुड़े सारे गीत सुना दो, ठीक है ना? मजा आएगा ना लोगों को। चलिए दोस्तों, आज इसी से जुड़ी इन तीनों में से शब्द जो जुड़ा हुआ है इस, ये जो तीनों शब्द हैं संगीत, कॉमेडी और नृत्य, इन्हीं से जुड़े यानी इन्हीं से मिलते जुलते गीत मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। यदि आपको ये हिंट सफिशियंट है तो हमारा नंबर है
1: 9414151415।
0: चलिए दोस्तों, एक कहानी आप तक पहुंचा देते सबसे ताकतवर इंसान की।

आज कितनी गर्मी है, बाप रे बाप। मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, सारा दिन इतना काम कर करके थक गया। यदि अगर एक नरम बिस्तर मुझे मिल जाता। नहीं, ऐसा सौभाग्य मेरे नसीब में नहीं है। जाता हूँ, जाके ये पत्थर गांव में बेचने की कोशिश करता हूँ। लगता है आज अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ,

0: दफ्तर काटने में कितनी मुश्किल होती है, पूरा शरीर दुख जाता है।
1: अरे वो तो मैं समझता हूँ भाई, लेकिन पत्थर में से मूर्ति बनाना भी तो उतना ही मुश्किल है, और काफी दिनों से मेरी एक भी मूर्ति बिक भी नहीं रही है। तो फिलहाल तो मैं तुम्हें सिर्फ इतने ही पैसे दे पाऊंगा, ठीक है?

उफ़, अगर मैं उस आदमी जैसा अमीर होता तो कितना अच्छा होता ना। मेरे पास भी बहुत बड़ा एक घर होता, नौकर चाकर होते, और तो और नरम बिस्तर में सो पाता।

0: मेरा शरीर तो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है।
1: नहीं, हाँ शरीर नहीं चल पा रहा है मेरा। आज थोड़ा पानी पीकर सो जाता हूँ, कल सुबह कुछ खा के काम पे चला जाऊंगा।

0: थोड़ा थोड़ा पानी पिला दो बेटा, बहुत प्यास लगी है।
1: पानी पियेंगे? अरे इसमें क्या बात है, मैं अभी देता हूँ।
0: बचा लो बेटा, ऊपर वाला तुम्हारा मंगल करेगा।
1: और क्या मंगल होगा बूढ़े बाबा, सारा जीवन तो पहाड़ से पत्थर काटने में ही बीत गया, लेकिन बड़ा आदमी नहीं बन सका।
0: सुनो बेटा, तुमने मेरी प्यास तृप्त की है तो मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बताता हूँ। जिस पहाड़ को तुम रोज काटने जाते हो ना, वहाँ पर एक अच्छी आत्मा वास करती है। उस आत्मा से जो भी इंसान कुछ मांग लेता है, वो आत्मा उसकी मनोकामना पूरी करती है। तुम भी जाकर एक बार उससे कुछ मांगने की कोशिश करना, शायद तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं।
1: अरे वाह वाह, आपने तो हंसने वाली बात कह दी बूढ़े बाबा। ऐसा कुछ होता है क्या? मेरे इस बुरे नसीब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है बूढ़े बाबा। अच्छा चलता हूँ मैं, देरी हो रही है मुझे, ध्यान रखिए। हाँ आज पता नहीं हाथ क्यों नहीं चल रहे हैं मेरे। अच्छा बूढ़े बाबा ने क्या बताया था?
0: तो मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बताता हूँ। जिस पहाड़ को तुम रोज काटने जाते हो ना, वहाँ पर एक अच्छी आत्मा वास करती है। उस आत्मा से जो भी इंसान कुछ मांग लेता है, वो आत्मा उसकी मनोकामना पूरी करती है। तुम भी कोशिश करो।
1: अच्छा एक बार करके देखता हूँ क्या होता है। हे पहाड़ी आत्मा, मुझे बहुत बड़ा आदमी बना दो। हे पहाड़ी आत्मा, मुझे बहुत बड़ा आदमी बना दो।
0: तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम जरूर बड़े आदमी बनोगे।
1: कौन बोला? ये कौन बोला? मैं तो किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है ये मेरे ही मन का वहम है। आज कुछ काम नहीं होगा मुझसे, मेरा शरीर तो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। आज मैं घर जाता हूँ, यही ठीक रहेगा। अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी टूटी झोपड़ी गई किधर? और ये बड़ा घर किसका है?
2: मालिक मालिक, अंदर आइए अंदर आइए, चलिए ना।
3: आइए सेठ जी आइए।
1: ये सब यहाँ आया कैसे? ये कहीं मेरा सपना तो नहीं है? या फिर बूढ़े बाबा ने जो मुझे बताया था वो सब कुछ सच हो गया? क्या मैं सच में बड़ा आदमी बन गया? ये क्या, ये सब सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा? वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ नरम बिस्तर।

0: पर आदमी तो मैं हो गया हूँ, लेकिन अगर मैं राजा हो गया होता तो कितनी अच्छी बात होती ना। हे पहाड़ी आत्मा, मुझे इस राज्य का राजा बना दीजिए।
1: ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, राजा बनोगे राजा।
0: कितना बढ़िया है, मैं राजा बन गया हूँ। मेरे से ज्यादा शक्तिशाली और इस दुनिया में कोई नहीं है। कितनी गर्मी है, मेरा मुंह जल रहा है।
2: सूरज, तुझ में इतनी साहस कि तूने मेरा मुंह जला दिया,
0: क्या तुम मुझसे भी बड़ा शक्तिशाली है?
2: ठीक है ठीक है,
0: मैं भी होऊंगा शक्तिशाली। हे पहाड़ी आत्मा, मुझे भी सूरज जैसा शक्तिशाली बना दीजिए।

0: मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है।
1: ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या,
2: ये तुच्छ बादलों की इतनी हिम्मत की मुझसे ज्यादा बड़े हैं।
0: हे पहाड़ी आत्मा, मैं समझ चुका हूँ, इन बादलों की शक्ति मुझसे ज्यादा है, मुझे भी इन बादलों जैसे शक्तिशाली बना दीजिए पहाड़ी आत्मा।
3: तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, आज के बाद तुम बादल बन जाओगे, बादल।
1: कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, अभी मैं बादल सबसे ज्यादा शक्तिशाली, पृथ्वी का सबसे ज्यादा शक्तिशाली, पूरे संसार को मैं ढक सकता हूँ।
4: अरे ये क्या हो रहा है, हवा के बहाव में मैं कहाँ बहे जा रहा हूँ, बापरे बाप, अरे बापरे, अरे बापरे, हवा के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कहाँ बहे जा रहा हूँ।
1: क्या पहाड़ की शक्ति मुझसे ज्यादा है,
0: ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरी शक्ति सबसे ज्यादा है।
1: हे पहाड़ी आत्मा, मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे आप जैसा बलवान, मुझे आप जैसा शक्तिशाली पहाड़ बना दो पहाड़ी आत्मा।
3: आज और अभी तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी, आज के बाद तुम पहाड़ बन जाओगे।
0: इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता, मैं पहाड़ जैसा शक्तिशाली हूँ।
1: ये क्या, पृथ्वी का ये तुच्छ मनुष्य की इतनी क्षमता कि मेरे शरीर से पत्थर काट के निकाल रहा है, मतलब यही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इतना बड़ा मूर्ख हूँ मैं। हे पहाड़ी आत्मा, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, दया करके मुझे मुझे फिर से मनुष्य बना दीजिए, मुझे फिर से इंसान बना दीजिए पहाड़ी आत्मा।
3: तुम्हें खुद को ही अपनी गलती का एहसास हुआ, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं तुम्हारी ये आखिरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। एक बात समझ लो, सुख कभी भी बाहर की चीजों में नहीं होता, सुख हमेशा अपने अंदर होता है। जो मनुष्य साधारण जीवन जीता है वो हमेशा सुखी होता है। तुमने जो राजपाट त्याग कर साधारण मनुष्य बनने की इच्छा व्यक्त की है, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। साधारण मनुष्य बन जाओ, साधारण मनुष्य बन जाओ।
1: समझ गया पहाड़ी आत्मा, मैं सब समझ गया, मेरे भीतर अब किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, आज मैं सब समझ गया। जय पहाड़ी आत्मा की जय, जय पहाड़ी आत्मा की जय, जय पहाड़ी आत्मा की जय।

0: वेल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और पुनः आज का सवाल दोहरा देते हैं। इम्प्रूव, स्केच, स्टैंड अप और पंच लाइन जो है, ये किसके किस कला से जुड़े हुए हैं? कौन कौन से ऑप्शन है? ए
1: संगीत, ऑप्शन बी है कॉमेडी, ऑप्शन सी है नृत्य।
0: जी हाँ, सही जवाब देना 9414151415 पर देना। और अगला मजेदार गीत आपसे पहुंचाने से पहले, कॉमेडी भरे गीत को पहुंचाने से पहले, नो टू टोबैको,
2: नशे की कहानी।
3: पहला नशा, पहला खुमार,
2: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
3: किसी की याद सताए, शराब पीने ना,
2: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
1: की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
0: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया तो आवाज

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाएं। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह

0: ऑल इज वेल तो है ही, और हमारी रूहानी लेकर आ गई है आज का होमवर्क। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का होमवर्क आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। भाई हमारे वो जो साथी जो अक्सर हमें सवाल का जवाब देना पसंद करते हैं, तो क्या कर रहे हैं? चलिए होमवर्क के बाद जरूर कॉल करेंगे इसी उम्मीद के साथ। सोमवार की खूबसूरत शाम मैं मोना, रूहानी और आप सभी बिता रहे हैं उड़ान के साथ।
1: ये ललित का वाघ दूसरा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगा सांकल बंद द्वार के। इन पंक्तियों में कवित्री ने जीवन में संतुलन के महत्व और स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग उपभोग से लिप्त रहने से कुछ किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा। जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग कर त्यागी बन गया तो वह अहंकारी बन जाएगा, जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा। अगले पंक्तियों में कवित्री ने संतुलन पे जोर डालते हुए कहा है कि न तो व्यक्ति को ज़्यादा भोग करना चाहिए ना ही त्याग, दोनों ही बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे संभाव उत्पन्न होगा। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने पराये से उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोल लेंगे।
0: तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सवाल एक बार पुनः दोहरा देते हैं। सवाल है, इम्प्रूव, स्केच, स्टैंड अप और पंचलाइन किस कला से जुड़े हुए शब्द हैं? ए संगीत, बी स्टैंड अप कॉमेडी या फिर सी नृत्य। सही जवाब देना आप 9415 1415 पर। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं सर?
1: ओम शांति, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
1: हमारे सभी बाल कलाकार, हमारे सभी श्रोते भाई बहने, रेडियो मधुबन परिवार का, सुभाष भाई का नमस्कार।
0: शुक्रिया।
1: और नमस्कार। और दीदी, सवाल का जवाब ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन बी हो सकता है।
0: चलिए शुक्रिया। और अगला गीत से पहले आपके लिए लेकर आते हैं आज की कहानी। थैंक यू, नमस्कार।
2: गोपालगंज नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां रामू नाम का एक गरीब और मेहनती किसान रहता था। एक साल सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल खराब हो गई। रामू ने कर्ज चुकाने के लिए लाला धनी राम से समय मांगा, लेकिन लालची लाला उसकी जमीन हड़पने की फिराक में था।
3: अरे ओ रामू, कहाँ छुपा बैठा है, बाहर निकल। पूरे 6 महीने बीत चुके हैं और तूने अभी तक मेरे ब्याज का एक पैसा भी नहीं चुकाया है। तुझे क्या लगता है कि लाला धनी राम की गाड़ी कमाई को तू ऐसे ही हजम कर जाएगा? अगर आज तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तेरी इस बंजर जमीन पर कब्जा कर लूंगा और तुझे इस गांव से बाहर निकाल दूंगा।
4: राम राम लाला जी, आप तो भगवान रूप हैं, ऐसे गुस्सा मत कीजिए। इस साल सूखे के कारण मेरे खेत में अनाज का एक दाना भी ठीक से नहीं उगा। मैंने दिन रात मेहनत की लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। आप तो जानते ही हैं कि मैं आपका पैसा कभी नहीं मारूंगा। मुझे बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। जैसे ही अगली फसल अच्छी होगी, मैं आपका एक एक पैसा सूद समेत वापस कर दूंगा।
3: समय? समय तो अब खत्म हो चुका है रामू। तुम्हारी ये मीठी बातें सुनकर मेरा पेट नहीं भरने वाला। मुझे या तो अभी के अभी अपने 5,000 रुपए चाहिए या फिर तुम्हारी इस जमीन के कागजात। और अगर तुम दोनों में से कुछ नहीं दे सकते तो चलो मेरे साथ मुखिया जी के पास, वहीं पंचायत बैठेगी और फैसला होगा। मुझे पता है कि तुम जैसे आलसी किसान सिर्फ बहानों के सहारे जीते हैं।
2: रामू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने लाला के लालच को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बनाई। दोनों मुखिया जी के पास पंचायत में पहुँचे, जहाँ रामू ने लाला के सामने एक अनोखी शर्त रखी।
4: मुखिया जी, मैं लाला जी का कर्ज चुकाने में असमर्थ हूँ, ये बात सच है, लेकिन मैं अपनी पुरखों की जमीन ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं लाला जी के सामने एक व्यापारिक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। मैं अगले 1 साल तक इस जमीन पर जी तोड़ मेहनत करूंगा और जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा मैं लाला जी को दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है जिसे लाला जी को अभी चुनना होगा।
3: शर्त? कैसी शर्त? जल्दी बोल रामू, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। वैसे भी तेरी जमीन पर जो कुछ उगेगा उस पर पहला हक मेरा ही है। बता, क्या शर्त है तेरी?
4: लाला जी, शर्त ये है कि इस साल फसल का जो हिस्सा जमीन के ऊपर उगेगा वो आपका होगा और जो हिस्सा जमीन के नीचे उगेगा वो मेरा होगा। या फिर आप इसका उल्टा चुन सकते हैं, यानी जमीन के नीचे का हिस्सा आपका और ऊपर का मेरा। आप बड़े हैं इसलिए पहला चुनाव आपका है। बताइए, आपको फसल का कौन सा हिस्सा चाहिए, जमीन के ऊपर का या जमीन के नीचे का?
3: हम गेहूं, धान, मक्का, ये सब तो जमीन के उगते हैं, नीचे तो सिर्फ बेकार की जड़ें होती हैं। ये रामू सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है, ये खुद ही अपनी बर्बादी को दावत दे रहा है। ठीक है रामू, मुझे मंजूर है। मुखिया जी को गवाह मानकर मैं ये तय करता हूं कि इस साल खेत में जो भी फसल उगेगी उसका जमीन के ऊपर का पूरा हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तेरा। अगर तू मुकरा तो तेरी जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी।
2: समझौता पक्का होने के बाद रामू ने खेत में गेहूं के बजाय आलू और मूंगफली बो दी। जब फसल काटने का समय आया तो लाला खुश होकर खेत पर आ धमका।
5: हाँ भाई रामू, साल पूरा हुआ। देखो, मैं अपनी बैलगाड़ी और बोरे लेकर आया हूँ। तुम्हारी शर्त के मुताबिक जमीन के ऊपर की सारी फसल मेरी है। चलो जल्दी से काटो और मेरे बोरे।
4: अवश्य लाला जी, शर्त तो शर्त होती है, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। ये देखिए मैंने सारी फसल काट दी है। जमीन के ऊपर जितने भी पत्ते और सूखी झाड़ियां थीं, वे सब मैंने आपके लिए एक तरफ इकट्ठा कर दी है। आप इन्हें खुशी खुशी ले जा सकते हैं।
6: ये क्या बकवास है रामू, ये तो सिर्फ बेकार के पत्ते और हरी झाड़ियां हैं। अनाज कहाँ है? गेहूं और मक्का कहाँ है? तूने खेत में क्या बोया था?
4: लाला जी, मैंने इस बार खेत में आलू और मूंगफली बोई थी, और हमारी शर्त के अनुसार जमीन के ऊपर का हिस्सा आपका था, तो ये सारे पत्ते आपके हुए, और जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा था, इसलिए ये सारे कीमती आलू और मूंगफली मेरी हैं। मैंने कोई बेईमानी नहीं की, मुखिया जी के सामने यही तय हुआ था।
2: रामू ने आलू बेचकर आधा कर्ज चुका दिया। अपनी हार से तिल मिलाया लाला अगले साल फिर आया। इस बार उसने रामू को फंसाने के लिए शर्त को पूरी तरह बदल दिया।
7: रामू, तूने पिछले साल मुझे धोखा दिया।

0: लेकिन इस बार मैं तेरी चालाकी समझ गया हूं। इस साल भी हमारा समझौता जारी रहेगा, लेकिन शर्त बदल जाएगी। इस बार फसल का जमीन के सबसे ऊपर का हिस्सा और जमीन के सबसे नीचे का हिस्सा मेरा होगा। तू सिर्फ बीच का हिस्सा रख सकता है। अब बता, क्या तू तैयार है या फिर अभी के अभी बाकी का कर्ज चुकाएगा?
1: लाला जी, आप तो बहुत समझदार हैं। मुझे आपकी ये नई शर्त भी मंजूर है। ऊपर का हिस्सा आपका, नीचे की जड़ें आपकी और बीच का हिस्सा मेरा। इस बार भी मैं आपके हिस्से की फसल पूरी ईमानदारी से आपको सौंप दूंगा।
0: आओ मुखिया जी, आज देखो कि कैसे ये रामू अपनी जमीन मेरे नाम करता है। हाँ भाई रामू, निकालो मेरी फसल। इस बार तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों हिस्से अपने नाम करवाए हैं। अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है?
2: लाला जी, जरा ध्यान से देखिए। इस बार मैंने अपने खेत में गन्ने बोए थे। हमारी नई शर्त के मुताबिक जमीन के सबसे ऊपर का हिस्सा यानी गन्ने के ये नुकीले पत्ते आपके हुए और जमीन के सबसे नीचे का हिस्सा यानी गन्ने की ये बेकार जड़ें भी आपकी हुई। और जो ये बीज का पूरा मोटा और मीठा गन्ना है, ये शर्त के अनुसार मेरा हुआ।
3: क्या गन्ना? ये नहीं हो सकता। तूने फिर से मेरे साथ चालाकी की।
0: मुखिया जी, देखिए इस रामू को, ये मुझे बर्बाद कर रहा है।
4: चुप रहो लाला धनी राम, रामू ने कोई बेईमानी नहीं की है। शर्त तुमने खुद तय की थी और पूरे होश हवास में कागज पर दस्तखत किए थे। रामू ने अपनी बुद्धि और सूझबूझ का इस्तेमाल किया है। शर्त के मुताबिक बीच का सारा गन्ना रामू का है और ऊपर नीचे का बेकार हिस्सा तुम्हारा है। अब तुम्हें चुपचाप यहाँ से जाना होगा।
5: लाला शर्मिंदा होकर भाग गया। रामू ने गन्ने बेचकर सारा कर्ज चुकाया और बहुत मुनाफा कमाया। उसने साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। दो बार मुंह के खाने के बाद भी लाला धनीराम का लालच और गुस्सा शांत नहीं हुआ था। गांव भर में अपनी थू थू से बौखलाए लाला ने रामू को पूरी तरह बर्बाद करने की एक आखिरी और भयानक साजिश रची। वो इस बार अपने साथ सरकारी पटवारी को लेकर सीधे रामू के घर पहुंच गया।
0: रामू, तूने गन्ने बेचकर मेरा पुराना कर्ज तो चुका दिया, लेकिन तू भूल गया कि तेरे दादा ने मेरे पिता से एक और गुप्त कर्ज लिया था, जिसके दस्तावेज ये रहे। इस बार कोई पंचायत नहीं होगी, सीधे अदालत में बात होगी, या फिर तुझे मेरी आखिरी शर्त माननी होगी।
2: लाला जी, आप बताइए, इस बार आपकी कौन सी अनोखी शर्त है?
0: इस बार मैं कोई ऊपर नीचे या बीच का चक्कर नहीं रखूंगा। इस साल तू जो भी फसल बोएगा, उसका ऊपर का हिस्सा, नीचे की जड़ें और बीच का तना, यानी पूरी की पूरी फसल मेरी होगी। तू सिर्फ जमीन खाली करके जाएगा। अब बोल, क्या हिम्मत है इस शर्त को स्वीकार करने की?
2: लाला जी, मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है। इस बार फसल का हर हिस्सा आपका होगा, ऊपर नीचे और बीच का भी। लेकिन एक छोटी सी बात लिखवा लेते हैं कि फसल से मिलने वाली हर चीज आपकी होगी, पर खेत की मिट्टी और उसकी साफ सफाई मेरी जिम्मेदारी होगी।
0: लिखो पटवारी जी, लिखो। इस बार ये मूर्ख चारों खाने चित है। जब पूरी फसल ही मेरी है तो ये कुछ नहीं बचा पाएगा। रामू, अगले 6 महीने में मैं अपनी बारात लेकर आऊंगा पूरी फसल उठाने।
5: लाला फूले नहीं समा रहा था कि इस बार फसल का तना, पत्ते और जड़े सब कुछ उसका है। लेकिन रामू इस बार एक कदम और आगे था। उसने इस बार कोई अनाज, सब्जी या फल नहीं बोया, बल्कि उसने पूरे खेत में नील और औषधीय जड़ी बूटियां उगाई, जिनका इस्तेमाल जमीन को उपजाऊ बनाने और जहरीले कीड़ों को मारने के लिए किया जाता था। और जब 6 महीने बाद लाला आया तो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए।
3: रामू, ये क्या है? यहाँ तो कोई खाने वाली फसल ही नहीं है, ये तो सिर्फ अजीब से कड़वे पौधे हैं।
2: लाला जी, आपका स्वागत है। शर्त के मुताबिक खेत में उगे पौधों का ऊपर का हिस्सा, बीज का हिस्सा और नीचे की जड़ें सब आपकी हैं। आप इन कड़वे और जहरीले जंगली पौधों को आराम से काट कर ले जा सकते हैं।
3: लेकिन इन पौधों का मैं क्या करूंगा? ये तो मवेशी भी नहीं खाते।
1: लाला जी, शर्त के अनुसार फसल आपकी थी, मैंने तो बस अपने खेत का इस्तेमाल इन्हें उगाने के लिए किया था। आप अपनी फसल समेट लीजिए।
4: वाह रामू वाह। लाला जी, शर्त के मुताबिक पौधे आपके हुए, इन्हें ले जाइए और बाजार में बेचिए, अगर कोई खरीदे तो।
3: हाय राम, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। रामू, तू इंसान नहीं जादूगर है, मुझे माफ कर दे भाई, मैं अब कभी तेरी जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा।
5: तो देखा दोस्तों, जब तक हमारे पास हमारी बुद्धि

0: Best Writer Award goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकते फिर भी।
2: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच एक और श्रोतागण है, बात कर लेते हैं। नमस्कार।
3: हेलो।
2: नमस्कार, कैसे हैं फिरोज जी?
3: बस एकदम अच्छे जी। और अभी थोड़ी सी यहाँ पर हमारे वड़गांव एरिया के पालमपुर एरिया के अंदर, पालमपुर तो नहीं लेकिन मेरा जो गांव है वहाँ का बूंदा बूंदी हुई है।
2: हम तो गिन सकते हैं ऐसी बूंदा बूंदी यहाँ पर हुई है, इतना तो गिन ही सकते हैं हम, ऐसा इतनी कम बूंदा, मतलब लास्ट तीन हफ्ते हो गए हैं बारिश की एक बूंद के लिए भी तरस रहा है ये धरती। चलिए आपको मुबारक हो
3: जी।
2: और आज के सवाल का आप जवाब देंगे?
3: बी ऑप्शन है।
2: बी ऑप्शन है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलिए
3: एक और सभी रेडियो मधुबन परिवार को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
2: ओके, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार। चलिए दोस्तों, हमारे बीच साथी थे और फिरोज जी ने कॉल करके आज के सवाल का जवाब दिया। और जब हम बात कर रहे हैं मैंने गीतों की, तो क्यों नहीं एक मस्ती भरा गीत सुना देते हैं। और कौन सा गीत है ये, किस प्रकार का गीत है ये?
4: कॉमेडी वाला।
2: ओहो,
5: बिल्ली।
6: आर ए टी रैट, रैट माने चूहा।
7: सी ए टी कैट, कैट माने चूहा। अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ।
8: एम ए डी मैड, मैड माने पागल। बी ओ बॉय, बॉय बॉय माने लड़का। अरे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ।
7: सी ए टी कैट, कैट माने बिल्ली। आर ए टी रैट, रैट माने चूहा। अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ।
8: मैड, मैड माने पागल।

0: G-O-A-T, goat. Goat माने बकरी, L-I-O-N, lion. Lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: M-A-D, mad. Mad माने पागल, B-O-Y, boy.

0: बी-ए-डी बैड, बैड माने बुरा, बी-यू-टी बट, बट माने लेकिन, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ।
1: द बेस्ट राइटर अवार्ड गोज टू मिस सुरेखा।
2: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
1: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
3: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
4: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: बिल्कुल, विकलांगता जो है वो श्राप नहीं, बल्कि वो ऐसी एक स्थिति है जिसे उभरा जा सकता है, और विकलांगता से हम जूझ कर आगे भी बढ़ सकते, दिव्यांग साथियों का सदा हम आदर कर सकते हैं। और आज के सवाल का अब जवाब देने का वक्त भी आ गया। इम्प्रूव, स्केच, स्टैंड अप और पंचलाइन किसके शब्द हैं? कौन सी कला के शब्द हैं? संगीत के?
7: नहीं।
6: तो क्या नृत्य के या डांस परफॉर्मेंस के?
7: नहीं।
6: तो क्या कॉमेडी के?
7: हाँ, ऑप्शन बी, कॉमेडी।
6: हाँ जी दोस्तों, पंचलाइन, स्टैंड अप, ये सब कॉमेडी के एक्चुअली शब्द हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम
7: 6 बजे।
6: तब तक के लिए उड़ान से कहेंगे
7: गुड बाय।
6: सुनते रहो,
7: मुस्कुराते रहो,
6: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते तो आज हमें खुशी है क्योंकि राजकीय विद्यालय और ईश्वरीय विद्यालय दोनों विद्यालय का मिलित सहयोग से आज बच्चों का भावना भाव को और उनका पास जो विकास जो अंदर में छुपी हुई प्रतिभा है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच दे रही है क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा प्रयास है। तो हर विद्यालय की तरफ आज हम राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय झामर में पहुंचे तो आज बच्चों का हुनर को बारी बारी आपको सुनने को मिलेगा क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और खासकर वनांचल जो कि आदिवासी बेल्ट में बच्चे जो रहते हैं तो पूरा अनुशासन में रहते हैं, उनको चुप्पी कराने में कोई मेहनत नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि वो इशारा से समझ जाते हैं। और शहर बच्चे तो पूरा उदम मचाते हैं लेकिन ग्रामांचल बच्चे बहुत शांत हैं, स्वभाव है और जो कहेंगे उस तो बैठे हो तो बैठे रहेंगे और शहरी बच्चे तो बहुत आनाकानी करते इधर उधर करते लेकिन हमारा बच्चे सभी बच्चे अच्छे हैं। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए सभी को स्वागत करते हैं और इस संस्था का जो HM सर को भी धन्यवाद देते हैं और सभी स्टाफ गाइडेंस में उनका परमिशन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी बच्चे भी तत्पर है। तो सभी अपना अपना नाम का साथ और ये प्रस्तुति सुनाएंगे लेकिन कोई भी कार्य शुरू करते तो पहले प्रार्थना होता है तो हर विद्यालय में प्रार्थना सत्र में बच्चे प्रार्थना करते तो आज इस कार्यक्रम में रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल में भी बच्चों का प्रस्तुति पहला प्रस्तुति होगी खासकर एक सरस्वती वंदना। तो इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में हमारा सभी देख रहे हैं और हमारा शिक्षकगण भी उपस्थित है तो हम उनको थोड़ा सा परिचय देंगे, बच्चों को वार्म अप करा देंगे, सर अपना परिचय देंगे क्योंकि आपको देखकर बच्चे भी अपना आवाज को बुलंद करेंगे। आप अपना परिचय थोड़ा दीजिए।
1: मेरा नाम अर्जुन से है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जामर में छात्रों को अध्यापन कराता हूँ।
0: जी सर।
1: विद्यालय में करीबन 218 छात्र छात्रा अध्ययन रहते हैं।
0: जी सर।
1: और पूर्णतया आदिवासी विद्यालय है, दूसरी जाति के कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता है, सभी आदिवासी बच्चे ही पढ़ते हैं।
0: जी सर।
1: और आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आप बता रहे आपका स्वागत है और आप बच्चों को जो गाइडेंस दे रहे हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है।
0: जी सर। तो वार्म अप करा दिया मेरा अर्जुन सर, नाम जैसे अर्जुन तो काम भी अर्जन करते हैं और बच्चों को जो अर्जन करते हैं सबको पहुंचाते हैं। मैंने बहुत साल से सर को देखे हैं इस विद्यालय में, पूरा कंस्टेंट और ईमानदार से काम करते हैं बच्चों को जो सर्वांगीण उन्नति के लिए, पढ़ाई हो चाहे नैतिकता हो चाहे बौद्धिक ज्ञान हो चाहे सामाजिक ज्ञान हो, सब में तत्पर रहते। तो बच्चों को वार्म अप करा दिए तो बहुत खुशी लग रहा है, सभी इन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे लेकिन अल्प विराम के बाद हम सुनेंगे बच्चों का आवाज को लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा सर को धन्यवाद, आभार।

0: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है और बच्चों को वार्म अप कराने के लिए हमारा अर्जुन सर पूरा सबको अर्जित करा देंगे। और जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण का कितना शिक्षा महाभारत में, अर्जुन जो भी प्रश्न पूछेगा श्री कृष्ण भगवान पूरा गीता ज्ञान सुनाते हैं। तो हमारा अर्जुन सर आज ज्ञान का जिज्ञासा हिसाब से सभी बच्चों को भी इस कार्यक्रम का माध्यम से वार्म अप करा दिए और अर्जुन करते हैं अर्जुन सर, तो जो अर्जुन करते हैं वो सबको देते हैं। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो छात्र है हमारा उपस्थित है वो प्रार्थना के रूप में शुरू करेंगे, अपना नाम बताएंगे और कौन सा क्लास। तुम्हारा नाम?
2: मेरा नाम ममता है, मैं राजकोट प्राथमिक विद्यालय दामर से हूँ।
1: वेरी गुड, नेक्स्ट। आज तो खुशी लगा।
3: नाम लीला है, मैं राजकोट प्राथमिक विद्यालय जामर में पढ़ती हूँ।
1: क्या बात, क्या सुंदर आवाज है।
4: मेरा नाम अंजलि है और मैं राजकोट प्राथमिक विद्यालय।
5: मेरा नाम सीमा है, मैं राजकोट प्राथमिक विद्यालय जामर में पढ़ती।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सीमा अंजलि और साथियों को, क्योंकि उनका आवाज उनका पहचान होगा। खुशी लगता है बच्चों को एक मंच जो आवश्यकता था आज वो मंच मिल रहा है। कभी सोचा नहीं था भाई हमें आकाशवाणी में हमारा आवाज जाएगा, रेडियो में माइक में हम पकड़ कर हम बात करेंगे। ये तो सरकार को धन्यवाद देते, सरकार का मंचा जो है एक कम्युनिटी रेडियो कम्युनिटी को दिए, आप लोग का रेडियो है आपको दिए है सरकार ने आप अपना आवाज को बोलने के लिए। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं पहला प्रार्थना के रूप में। सभी अपना साथ हम है और हमारा श्रोता मित्र भी अपना वॉल्यूम को तेज करते हुए इस स्कूल के विद्यार्थियों का होनहार विद्यार्थियों का जो प्रतिभा है वो आज आपको सुनेंगे, लेकिन स्वर लय और ताल का साथ जो संगठित रूप में अपना प्रस्तुत करेंगे। तो लीजिए।
6: हे

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति की। और खासकर जब इस तरह कार्यक्रम में माँ सरस्वती को याद करते हैं, बस कोई भी देवी देवता को याद करते हैं, ना कुल देवी कुल देवता को याद करते हैं, तो हमारा कार्यक्रम सुंदर और सरस होता है, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी हो जाता है। तो बच्चे को एक मंच मिल रहा था, कभी रेडियो में बोलने के लिए कभी मौका मिला था तुम लोग को?
1: नहीं,
0: लेकिन आज मौका मिला है। खुशी लग रहा है माइक में बोलने के लिए? खुशी लग रहा है
1: जी।
0: कितना खुशी लग रहा है? अच्छा, सुनने वाले को खुशी लग रहा है? कितना खुशी लग रहा है बच्चे? बहुत खुशी। खुशी खुशी में रहना है और खुशी बांटना है। आज हमारा बच्चिया खुशी बांट रहे हैं, तो खुशी बांटने के लिए आप सबको धन्यवाद देते हैं। और बच्चे भी हमारा तन के लिए थोड़ा ताली बजा दो बच्चे, क्योंकि ताली बजाने में एक्सरसाइज हो जाता है और चेहरा गोलाप फूल जैसे खिलता है। कोई मायूस नहीं, कोई नाराज नहीं, सब झिझक दूर करके आज रेडियो कार्यक्रम में सुंदर रूप में सजा रहे हैं। तो
1: अंजलि,
0: अंजलि तुम्हारा दोस्त का नाम बताओ?
1: सीमा।
0: हाँ, इसलिए दोनों मिलकर गीत गाए। तो अंजलि नाम कौन रखा है? बहुत सुंदर नाम है, बहुत सुंदर। अंजलि कौन रखा है?
1: मम्मी पापा ने रखा।
0: मम्मी का नाम क्या है?
1: रेखा बहन।
0: और बाप का? बाप रो
1: देवा भाई।
0: क्या करते बाप जी? बाप क्या करते हैं?
1: डीजे का काम करते हैं।
0: ओ बाप रे, पूरा इसलिए तो आवाज का दुनिया में है, इसलिए ये भी आवाज का माइक में गीत गा रहे हैं ना। उसका पिताजी आवाज का दुनिया में डीजे चलाते हैं, बहुत अच्छा। और बड़े होकर क्या बनेगी अंजलि?
1: पुलिस बनेगी।
0: पुलिस? वाह, लगता तो इतना जो बच्ची है सबसे हट्टा कट्टा तो यही है, पर पुलिस के लिए फिट है ना, बहुत अच्छा। पुलिस का काम क्या होता है अंजलि?
1: लोगों की रक्षा करनी।
0: हाँ, कोई बोलता है चोर को पकड़ना, ये लोग को रक्षा करना है, सेफ्टी। वाह, इसलिए कराटे भी सीखना होता है ना। खेल खेलते हैं
1: जी?
0: हाँ, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट हमारा साथ। और सीमा तुम बताओ, तुम्हारा अच्छा टीचर कौन है? कौन अच्छा सीखे तुम्हारा? मैम हो चाहे सर, बताइए कौन सा सर ना? सभी सर अच्छे लगते हैं
1: जी,
0: सभी सर अच्छे लगते हैं। अरे वाह, बहुत होशियार बच्ची जी, हम कॉपी कर लिए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। ये था खासकर बच्चों का दिल का भावना, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है और उनका फेवरेट क्या क्या है पसंदीदा, वो भी बताए। ऐसे बच्चों को मौका मिलता है तो चौका छक्का लगा देते हैं, और आज इस कार्यक्रम का पूरा है चार चांद लगा दिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा न करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सुनते हैं और एक प्रस्तुति और अंजलि एंड दोस्त, अंजलि एंड पार्टी सब मिलकर पुनः उनको स्वागत करेंगे। चार छात्राएं हैं और ये स्कूल का नाम रोशन करेंगे क्योंकि कर रहे हैं और करेंगे आगे के लिए भी। जहां भी रहे, जैसे भी रहे, जितना दूर भी रहे, फिर भी खुद का कल्याण, परिवार का कल्याण, विद्यालय का भी कल्याण और नाम रोशन गांव का भी करेंगे। तो और एक प्रस्तुति, अंजलि एंड पार्टी को स्वागत करते हैं रेडियो कार्यक्रम में। और हमारा बच्चे सुन रहे हैं, बड़े सुन रहे हैं, प्रशासन सुन रहे हैं।

सीबीओ साहब हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे हमारा प्रशासन ने जो जो इस कार्यक्रम को सुन रहे जहीं पर भी, चाहे इंटरनेट का माध्यम से, चाहे आपका माध्यम से, चाहे लिंक का माध्यम से, चाहे एफएम का माध्यम से सब तक पहुंच रहे, कोई भी भामाशाह हो, कोई भी हमारा हिताधिकारी हो, जनहित में जो तत्पर रहते स्कूल को जरूर याद करेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ आप भी देखिए, आइए उनका आवाज को सुनिए। तो लीजिए अगला प्रस्तुति।

0: राम है।
1: सही में बच्चा बच्चा राम है। और आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम काल तक हम पहुंच रहे हैं, जब भारत का आजादी का 100 साल बनाएंगे। हमारा देश का बच्चे जो हमारा विद्यार्थी आज इस तरह कार्यक्रम के माध्यम से अपना भाव को भावना को और देश प्रति जो भावनाएं देखने को मिलता है, और हर विद्यालय में बच्चों को इस तरह देशभक्ति में ओतप्रोत होकर आगे बढ़ाने के लिए मौका देते हैं, और उनको देखकर छोटे बच्चे भी, उनका छोटे छोटे कक्षा के बच्चे भी सीख जाते हैं बड़ों को देखकर, क्योंकि ये लोग तो पास आउट हो जाएंगे। अंजलि अभी कौन सा क्लास में तुम? अंजलि
0: 8th class।
1: अगला बार तो यहाँ पर 9th क्लास नहीं, फिर मुंतला की कहाँ पर जाना पड़ेगा। तो अंजलि को अभी जो सुन रहे, अगला बार नेक्स्ट अंजलि फिर अगला साल तैयार हो जाए गीत गाने के लिए, है ना सीमा? ऐसे बच्चों को गीत सिखा कर जाना, अगला साल तक हो जाना चाहिए, है कि नहीं? सभी बच्चे अगला साल आप लोग कर पाएंगे? हाँ हाँ जी, क्या बोलेंगे? हाँ ऐसे, क्योंकि अंजलि तो चला जाएगी अगला साल। कहाँ जाएगी अंजलि?
0: मुंतला।
1: गुड, क्योंकि नजदीक मुंतला सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और वहाँ पर सब सुविधा पीएम श्री हो गया है ना, पीएम श्री ना सर? क्या बात है, आपका अब्रोड में पीएम श्री कितना स्कूल है? एक ही है ना, कितना स्कूल सर अब्रोड में? वाह, ताली बजा रहे मुंतला के लिए। मैंने गया था पीएम श्री स्कूल में, जब गए पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगतला में रिकॉर्डिंग किए बच्चों का, और वहाँ पर क्या सुविधा है, ब्यूटी पार्लर बच्चों के लिए, ऑटोमोबाइल सब कुछ सीखने के लिए फ्री में, नौकरी मिले चाहे नहीं मिलेगी लेकिन हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। हम सब आत्मा है ना, आत्मनिर्भर, क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर बन पाएंगे, खुद कमाएंगे, किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, खुद कमाएंगे। कमाएंगे कि नहीं?
0: कमाएंगे।
1: अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छा लिखेंगे पढ़ेंगे तो जरूर हमारे पास साधन आएगा और हमें अच्छा रह पाएंगे और देश के लिए बहुत अच्छा काम में आएगा। हम एक एक अच्छे हैं, सभी विशेष यूनिक है, हमारा जैसे कोई है नहीं, ऐसे सोचो। हम सबसे अच्छे, क्या बोलेंगे? हम सबसे
0: अच्छे,
1: क्यों? हम सच्चे मन से पढ़ते हैं, क्योंकि हम सच्चे मन से पढ़ते हैं।
0: लीला
1: लीला बात, भगवान का लीला अपरंपार कहते हैं, भगवान जो रचा संसार अपरंपार, लीला उनका अपरंपार प्ले ड्रामा है ना। तो लीला बड़ा कर, तुम क्या बनेगी?
0: टीचर बनूंगी।
1: वेरी गुड, टीचर। टीचर का काम क्या होता है?
0: पढ़ाई करना।
1: हाँ, टीचर भी काम नहीं है, पुलिस भी काम नहीं है, क्योंकि ये सब देश के लिए काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, सुरक्षा हो। और छोटे बच्चे जैसे आप लोग आते हैं, आपको कच्चा मिट्टी जैसे आते हैं, शिक्षक टीचर लोग क्या करते हैं, मूर्ति बना देते, सुंदर सुंदर मूर्ति है ना, तब भी टीचर का इसलिए महिमा ज्यादा है। शिक्षक को कभी भूलना नहीं चाहिए, माता पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए, और अपने को भी कभी भूलना नहीं चाहिए। चलिए और एक दोस्त है, हेलो, नाम बताओ।
0: ममता।
1: हाँ, क्या ममता है? ममता मतलब क्या है? स्नेह, प्यार है ना, ममता, माँ का ममता, माँ की ममता, प्यार, दुलार। कौन रखा ममता, नाम कौन रखा है?
0: मेरी मम्मी पापा ने।
1: मम्मी पापा ने रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मम्मी पापा भी सुन रहे तो जरूर स्कूल के बच्चों का भी आवाज को सुन पा रहे होंगे और खासकर सोचेंगे यार हमारा ममता तो आज नाम रोशन किया, हमारा नाम भी आज रेडियो में बताया, सभी लोग सुन रहे ममता जैसे, सभी बच्चे भी सुन रहे। लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक अंतिम प्रस्तुति लेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: ओ जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, और अगला कड़ी में पुनः स्वागत करते हैं अंजलि एंड सीमा को और उनका दोस्त लोग भी, जो कि ममता और लीला, ममता और अंजलि सीमा को पुनः स्वागत करते हैं, क्योंकि ये बच्चे ही आज इस कार्यक्रम को पूरा स्ट्रांग कर रहे हैं। तो देर किस बात की, अगला प्रस्तुति के लिए सभी को स्वागत करते हैं, और हमारा सर भी उसको उपस्थापना करने में मोटिवेशन किए। सर अपना परिचय देंगे। सर
4: मेरा हितेश कुमार नाम है, मेरा प्रतिष्ठापन प्राथमिक विद्यालय झामर में है।
3: सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं?
4: मैं प्रॉपर गिरवर गांव में आबू ब्लॉक में, पास में यहाँ से 8 किलोमीटर वहाँ से बिलोंग करता
3: हूँ। गिरवर तो बहुत अच्छा, बड़े एकल गांव है, ग्राम पंचायत है उसके पास, कोई जिसे झामर लेना पड़ता है मुंगथला को, लेकिन गिरवर एकल गांव है जो बहुत बड़ा गांव है।
4: सही है, जैसे पंचायत में 3 गांव है तो बाबा गिरवर प्रॉपर एक गांव है, वो पूरी पंचायत है, वो
3: पूरा पंचायत में आता है। तो गिरवर का विशेषता क्या सर?
4: गिरवर में एक तो अपने वहाँ पे गिरवर गांव में पाटनाथ धाम का, कृष्ण भगवान का बहुत पुराना मंदिर है
3: जी।
4: बाकी लोग सब अच्छे है, सुविधा वगैरह अच्छी है गाँव में वगैरह।
3: लेकिन आपका जो स्कूल जो पंचायत है वहाँ रॉपर्ट में पानी वगैरह कभी आता, दिक्कत होता
4: सब
3: है?
4: सब सुविधा हो गई है, अब सभी रॉपर्ट बन गए, अब इस को दिक्कत है नहीं।
3: हाँ पानी जो बारिश के टाइम में
4: बन गए,
3: ठीक है, पोल हो जाए तो और अच्छा है।
4: हाँ जो स्कूल में जाते हैं वहाँ पे थोड़ा है, तो उसके लिए बात चल रही है गांव वालों, तो उसमें भी वो कोशिश कर रहे हैं पुल से पुलिया बन जाए ताकि बच्चों को परेशानी नहीं हो।
3: सर पुलिया होकर जो आगे जाते कहाँ से निकलते हैं स्कूल से? आगे जो एक रोड है,
4: पुलिया जो एक रास्ता जो गांव का है वो सीधा निकलता है पाटना मंदिर, मतलब गणेश मंदिर, स्कूल का मैदान है वहाँ पर, और फिर बड़ी स्कूल है, और फिर पाटना धाम। दूसरा रास्ता है वो सीधा निकलता है चन्नार गांव जाता है, वहाँ पर निकलता है
3: चन्नार के लिए। तो दो रास्ता है, तो खासकर गिरवर में कितना मैंने समुदाय के लोग रहते हैं जाति का?
4: गिरवर में अधिकतर जो लोग है लगभग 5-6 हजार पब्लिक है वहाँ पर, और उसमें से कम से कम 70% एसटी वर्ग के अपने आदिवासी लोग है ग्रासिया, और बाकी आदिवासी प्रजापत
3: मिलकर मिक्स
4: है, ये सब मिक्स
3: मिक्स में आते हैं। तो बहुत अच्छा गांव है, और गिरवर नाम सुनते तो बहुत सुंदर लगता है, जब भी जाते बच्चे तरह होशियार भी होते करते हैं प्रोग्राम, और साथ तो वार्म अप करा दिए बच्चों को, साथ बच्चे बन के अपना आवाज को सुना, और बच्चों का अंदर में जैसे बालक और बालिका जैसे छोकरा छोकरा में जो डिफरेंस यहाँ को देखने को मिलता है आपका यहाँ पे?
4: नहीं इतना कुछ नहीं, सही
3: सभी मिलकर
4: सब साथ में,
3: चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सभी को बराबर अधिकार मिलता है। स्कूल में तो देते हैं आप लोग सिखाते हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन जो भी करना चाहे लड़का कर सकते हैं,
4: ये सब मिक्स में करते हैं सभी, ऐसा नहीं कि लड़की करेगी ऐसा कुछ नहीं, सब लड़के और लड़कियां साथ में काम करते हैं।
3: सर आपका एक दिन बच्चा था ऐसे स्टूडेंट लाइफ जीवन ऐसे बच्चे होकर पढ़ रहे थे, लेकिन आज पढ़ा रहे हैं टीचर,
4: बहुत अच्छा लगता है।
3: देखो मैं पहले बोलने का पहले सर को लगता है पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे के साथ हम जो बच्चे बनते थे हमारा बचपन का याद आता है, हम भी बचपन में ऐसे नटखट करते थे, पढ़ाई करते थे, खेल करते थे, और ऐसे रेडियो में हो चाहे कोई भी पार्टिसिपेंट करने भाग मिलता है, भाग लेने के लिए मौका मिलता तो मौका को हम छोड़ते नहीं थे, क्योंकि हमारा उसमें कला और जो हमारा अंदर में जो टैलेंट है वो निखारता है। सर आप बचपन में कुछ खेल कूद वगैरह कुछ में इंटरेस्ट था?
4: बस वो कभी क्रिकेट वगैरह खेल लेते थे, और उस टाइम जो खेलते जो अपने फोन वगैरह नहीं थे, तो उस टाइम वो लंगड़ी वगैरह खेलना, ना कोई गिल्ली डंडा खेलना, ना कंची खेलना, वो ज्यादा अच्छा लगता था।
3: हाँ उस समय का बिना मैंने वो सब डिजिटल नहीं था, उस समय मैनुअली सब कुछ, जैसे सर ने बताया बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बच्चे इस कार्यक्रम को सजेंगे और एक मोटिवेशनल हो गया संग गाएंगे,
0: शुरू करो।

0: मत बैठो।
1: क्या बात, सही में कुछ करना है तो ऐसे मन को मत मारो, मन को पूरा शांत मत करो, मन को थोड़ा उमंग उत्साह दिलाकर कोई भी काम करो तो जैसे सभी अपना अनुशासन में चलते हैं, बच्चे भी अनुशासन में चलते हैं तो अच्छे बन पाएंगे। सुबह उठना, स्नान पानी करना और मंजन करना, इसके बाद फ्रेश होकर स्कूल को आना, फिर स्कूल में अच्छा पढ़ाई करके फिर घर जाना, फिर होमवर्क करना, फिर एक दिनचर्या होता है दिन भर उनका एक काम रूटीन, जिसे सूरज भी चांद भी अपना नियम में चलता है। हम भी अपना नियम में चलेंगे, अनुशासन में चलेंगे तो जरूर हमारा लक्ष्य स्थल में पहुंच पाएंगे, जो चाहे वो कर सकते हैं। जैसे चांद का उदाहरण दिए, सूरज का उदाहरण दिए, सब अपना अपना, जैसे हवा भी अपना गति से, पानी भी अपना गति से जाती है, तो हम भी अपना गति को क्यों रोके। तो हमारा मन को कभी मारना नहीं है, हमारा मन और बुद्धि को सशक्त बना के उमंग उत्साह भर के हर काम में दिल के साथ प्यार के साथ नियमित करेंगे तो जरूर कामयाबी होंगे। जो लक्ष्य रखे बड़े होकर, कोई बोलता टीचर बनेंगे, कोई पुलिस, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई कलेक्टर भी बन सकते हैं। इस कार्यक्रम का माध्यम से सुंदर में प्रस्तुति दिए सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। और एक प्रस्तुति सार का इच्छा है करने के लिए, एक गीत प्रार्थना के रूप में और एक गीत होगा, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है इसके कारण ये बुराइयों बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहाँ से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा, भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है। ये समझ में आएगा, ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद भोगवाद ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं चंगलवाद भोगवाद के कारण।

0: अगला कड़ी में हम सब पुनः मिल रहे हैं। आप सब सुन पा रहे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झामर का आवाज, बारी बारी प्रस्तुतियां मिल रहे हैं। और सीमा, अंजलि, ममता, लीला, चारों हमारे होवनहार बच्चे, सभी सिलेक्टेड बच्चे, उनका माँ बाप को धन्यवाद और उनका शिक्षकगण को भी धन्यवाद। इतना उमंग उत्साह देकर आगे बढ़ाते हैं, बच्चों को एक मौका मिलता है जो मौका आज ले रहे हैं। तो चलिए पुनः और अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल रहे हैं और इसमें एक प्रार्थना के रूप में सुनाएंगे अपना आवाज। ओके, अंजलि एंड ममता रेडी,
1: शुरू।

बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नाम का साथ अंतिम प्रस्तुति में प्रार्थना के रूप में अपना दिल का बात को रखें और हमारा श्रोता मित्र भी इसको आत्मसात किए और अपना भाव और भावना को परमात्मा तक पहुंचाएं। और खुशी लग रहा है इस तरह बच्चों को मौका जब मिलता है बच्चे सच्चे होते हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। यह था खासकर बच्चों का साथ हमारा कार्यक्रम जो कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय का मिलित सहयोग से बच्चों का विद्यार्थी विकास में आज अपना भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाए। सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, संस्था का संस्था प्रधान, हम सभी स्टाफ और सभी बच्चों को। तो लेते हैं आप सबसे इजाजत।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, की कैन हो, सभी मेरे प्यारे दोस्तों को मेरी तरफ से, यानी कि मैं हूं आपका दोस्त, केवल मेरी तरफ से आप सभी को राम राम। यहां दोस्तों हम लौट चुके हैं वापस और आप सभी के बीच में है, आपका प्यार, आपकी यादें हमें खींच लाई वापस से। यहां दोस्तों एक हफ्ते की छुट्टी पे थे लेकिन फिर लौट आए हैं, लेकिन कुछ तबीयत खराब, जैसे कि आप सुन सकते हैं मेरी इस वक्त आवाज़, मेरा गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, नासाज है, सर्दी भी हो रही है। तो आज हम कोशिश करेंगे, हम ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे लेकिन बातें बहुत सी है करने के लिए, और कोशिश करेंगे कि कल जब हम आपसे फिर मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सी ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है। और जो भी मुझे सुन रहा है इस वक्त, हमारे सभी को नाम से, सुरेश भाई, भूरीलाल जी, बुराराम जी, मनोज भाई, जो भी हमें सुन रहे हैं सबको, सुभाष जी, जो भी हमें सुन रहे हैं, मदन लाल जी, हमें जो भी सुन रहे हैं, उन सभी को प्यार भरा मेरा नमस्कार। और आशा करते हैं कि आप जब हमें सुन रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे हम आपसे कल बात करें, आज हम कोई बातें नहीं करेंगे, आज सिर्फ गाने सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि गानों की अगर हम कुछ बातें अगर हम आपको बता सकते, अगर मेरे गले ने साथ दिया तो, अदरवाइज़ आज कोशिश करें सिर्फ गाना सुनेंगे प्यार भरे, और कल फिर हम कोशिश करेंगे फरमाइशें सुनने की आपकी, और आपकी फरमाइशें आपके लिए सुनाएंगे। तो चलिए वक्त है सबसे पहले गाना सुनने का, सुनते हैं ये पहला गाना, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

जी हाँ दोस्तों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। और जी हाँ, बहुत ही प्यारा भी हमने गाना सुना, और जो दिल लगाकर आपसे पछता रहे जो अभी आपने गाना सुना, बहुत ही आइकॉनिक मूवी से है ये गाना। और अगर आपको पता है, ये गाना था अराउंड द वर्ल्ड 1967 में आई शंकर जयकिशन हसरत जयपुरी जी, जिसने इसे अपना म्यूज़िक दिया था, जिसने इसे लिखा था, गाया था मुकेश जी ने, लेकिन आवाज़ बिल्कुल उन्होंने राज कपूर की तरह निकाली, राज कपूर जी की तरह निकाली है। तो सब बातें बहुत सी है करने के लिए, लेकिन गला साथ नहीं दे रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। और एक दो गाने के बारे में मैं आपको शायद कोशिश करूँगा बताने की, लेकिन बीच बीच में खांसी आ रही है, मुझे म्यूट करना पड़ रहा है। और उस वक्त जब आपको ऐसा लग रहा है कि दो मिनट की शांति हो रही है, रेडियो में कोई कुछ आवाज़ नहीं आ रही, तो समझ जाना कि उस वक्त या तो मैं खांस रहा हूँ या तो गला ठीक कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए अगला गाना एक और सुनते हैं। बहुत ही प्यारा गाना है, हाँ मैंने भी प्यार किया ये गाना है, और मूवी है। इस मूवी के बारे में मैं आपको बताऊँ तो 1967 की ही है, बूंद जो बन गए मोती मूवी से ये गाना है। चलिए सुनते हैं पहले ये गाना, फिर आपसे फिर से एक बार मिलते हैं और आप सभी से विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा इस ध्यान रखने के लिए, और फिर मिलेंगे हम आपसे।

प्यार किया, प्यार से कब इनकार किया। जी हाँ दोस्तों, जैसी भी आवाज़ आ रही है इस वक्त आप लोगों को मेरी, बस ऐसी ही आवाज़ है और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बस आपको ये बता सकते हैं इस गाने के बारे में कि मूवी जैसे हमने बताई बूंद जो बन गए मोती, सुमन कल्याणपुर और मुकेश जिन्होंने इसे गाया है, सतीश भाटिया जो इसके गीतकार रहे और भरत व्यास जी इसके गीतकार रहे, सतीश भाटिया जी जिसने संगीत दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये गाना था उस मूवी का। और चलिए बढ़ते हैं, फिर से खांसी आई थी, सॉरी दोस्तों आपको नहीं सुनाना। और अगले नगमे की ओर, अगला नगमा हम आपसे सुनते हैं और हम आपसे लेते हैं विदा, बिकॉज खांसी कुछ ज़्यादा हो रही है और नहीं हो पा रही है बात। तो मिलते हैं फिर से आपसे ठीक 8 बजे और कोशिश करेंगे गला ठीक हो तो हम आपसे फिर कल भी काफ़ी बातें करेंगे। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए और आपका इसी तरह से ढेर सारा प्यार हमें देते रहिए। और रेडियो में अगला जो कार्यक्रम है वो है सहज स्वास्थ्य और कंटिन्यू चलता रहेगा, तो रेडियो सुनते रहिए 107.8 FM। तब तक हम आपसे लेते हैं विदा, गुड नाइट, शबा खैर।

हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: भाई रुको, भाई रुको, ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति, ओ एक बाइक पे तीन हैं, ओ तुम लोगों को शर्म नहीं आती, ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, ओ तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको, ओ अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्रीज बोर्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।
1: पवन करे सोर।
0: हाँ।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त राजेश्री और यह कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों को अगर हम सही समय पर समझ लें और उसके अनुसार अगर हम अपने जीवन शैली में वो परिवर्तन ले आए तो स्वस्थ रहना संभव है। कई बार हम ये समझ लेते हैं कि स्वस्थ रहना तो असंभव सी बात है, कोई ना कोई प्रकार की व्याधि या बीमारी आती ही रहेगी, ऐसा कई लोग मानते हैं। मगर कुछ चीजें जो हम खुद अपनी गलतियों की वजह से अपने स्वास्थ्य में तब्दीलियां ले आते हैं या अस्वस्थता या रोग को निमंत्रण दे देते हैं, उससे तो कम से कम हम अपने प्रयासों से बच ही सकते हैं। सहज स्वास्थ्य के हर एक कड़ी में हमारा प्रयास यही होता है कि हम स्वास्थ्य को अपने करीब बनाए रखें और रोगों को दूर रखने के लिए जो प्रयास हम कर सकते हैं वो प्रयास हर कोई करने में सक्षम हो, और सही जानकारी से यह संभव भी है। आज इन्हीं विषयों पर हमें सही जानकारियां देने के लिए स्वास्थ्य जगत के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़ रहे हैं। पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के जाने माने एक्सपर्ट हैं और भारत के सुप्रसिद्ध ऑस्टियोपैथ्स में से एक हैं। भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पे उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और अभी भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो ये बात समझने वाली है कि अगर हम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सही जानकारियां हमारे पास रखते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र का काम करते हैं रोगों से लड़ने के लिए और रोगों को दूर रखने के लिए। सही जानकारी के अभाव में लोग गलत चीजें कर लेते हैं और फिर उसके खामियाजा रोग के रूप में या व्याधि के रूप में भुगतना पड़ता है। आज एक ऐसा ही बड़ा रोग या ये कहें एक ऐसी बीमारी जिससे लोग ग्रस्त हैं वो है डायबिटीज। डायबिटीज को जब हम नाम सुनते ही हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो ऐसी बीमारी है, इसके साथ जीवन भर रहना है। अब जीवन भर रहने के बारे में सोचें न सोचें तो भी कम से कम डायबिटीज के मरीजों को क्या करना चाहिए, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ये चीज समझने वाली बात है। प्रायः ये चीज सुनाया जाता है कि भाई अभी आपको अपने खान पान को बदलने की जरूरत होगी, आपका जो फूड सिस्टम है उसे चेंज करना है, ये चीज बताया जाता है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जब डायबिटीज के मरीजों को अपने आहार पद्धति में बदलाव लाने की बात कही जाती है तो क्या बदलाव है, किस चीज को बदलने की जरूरत?
1: डायबिटीज का मरीज जब पहली बार उस बीमारी से ग्रसित होता है या उसे मालूम चलता है कि वो ग्रसित है और उसके परिवार में किसी को भी ये समस्या नहीं है या उसकी हम उम्र जो मित्र हैं उनमें से किसी को ये समस्या नहीं है, तो उसको एक बहुत बुरा झटका लगता है। उसको ऐसा लगता है कि वाय मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, और वो अपने आप को कोसता है और तुरंत एक प्रण करता है कि मैं अपने आप को अब सुधार के रखूंगा, मैं अपने आप को ठीक से रखूंगा। और अमूमन लोगों में, भैया मुझे कहना नहीं चाहिए, वो इस मोटिवेशन को हार्डली 15 दिन 20 दिन एक महीना रख पाते हैं। और वो जैसे ही उनको डायबिटीज होती वो तुरंत भोजन पे कंट्रोल करना शुरू करते हैं और उनको उससे अच्छा लगने लगता है। फिर वो जब बाहर समाज में निकलते हैं या वो अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं या घर पे भी देखते हैं कि सब लोग तो खा रहे हैं यार, मैं क्यों नहीं खा पा रहा, तो वो अपना संयम जो है उसको छोड़ देते हैं और फिर से खाने लगते हैं। और एक बहुत गलत सोच वो अपने दिमाग में विकसित करते हैं कि अरे मैं दवा तो खा रहा हूं, भोजन को कंट्रोल क्यों करूं। एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा, मेरे एक बहुत अच्छे पेशेंट हैं, उनको मैं बहुत रेगुलरली देखता हूं। वो डायबिटीज से ग्रसित हैं, वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, वो इंजेक्शन लगाने के बाद चॉकलेट खाते हैं कि मेरी इंसुलिन गिर रही है। मैंने एक दो बार उनको धीरे से समझाने की कोशिश करी कि आप इंसुलिन की यूनिट कम कर दीजिए, आपको चॉकलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर वो कहते नहीं नहीं मेरी शुगर गिर रही है। उनका मन जो है वो कंट्रोल में ही नहीं है, वो बिना चॉकलेट खाए रह नहीं पा रहे हैं और उस स्वाद के लिए वो अपने शरीर को नुकसान दिए चले जा रहे हैं। सो सबसे पहली बात, अगर आपको ये बीमारी हुई है तो ये आपको संयम से इसका जो अपना भोजन है, आपका दिनचर्या है, आपके रहन सहन को संयम से रखना पड़ेगा। कल मैंने अपने लेक्चर के दौरान, बातचीत के दौरान आपसे बोला था कि डायबिटीज एक अपॉर्चुनिटी की तरह है अपने आप को फिट रखने के लिए। आपने जो भी गलत करना था कर लिया, जिस उम्र तक आप बेछूट खा रहे थे, बिना एक्सरसाइज के रह रहे थे, जब मन चाह रहा था तब खा रहे थे, जितनी बार मन कर रहा था खा रहे थे, जो आपको अच्छा लग रहा था वो खा रहे थे, जो आपको दिख रहा था वो खा रहे। डायबिटीज एक अपॉर्चुनिटी है आपको फिट रखने के लिए। आप पहले जो भी खा रहे थे, जितना भी खा रहे थे, जैसे भी खा रहे थे, उसको अब छोड़ दीजिए, संयम से खाना शुरू करिए। आप अच्छा खा कभी हमारे मन कुछ, हमको अब ये ध्यान देना है कि पहले हम जो खाते थे, जितना खाते थे, जितनी बार खाते थे, जो हमारा मन करता था वो हम खाते थे, उस पे अब हमको संयम रखना है। हमको बहुत कुछ अपने शरीर के लिए अब खाना है, न कि मन के लिए। कभी कभार महीने दो महीने में एक बार थोड़ा बहुत मन का जरूर खा लीजिए, मगर प्लीज अपने शरीर की अब सुनना शुरू करिए। आपके शरीर ने आपको बताया है कि उसको एक समस्या हो रही है, और उस समस्या का निवारण सिर्फ अपनी जिह्वा पे कंट्रोल करना है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने यह भी कहा है कि वाणी से व्यवहार, वाणी से व्यापार। मतलब अगर आपकी जिह्वा ठीक है तो आपका व्यापार भी बढ़ेगा और आपका व्यवहार भी बढ़ेगा। और मैं एक डॉक्टर होकर उसमें सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि आपकी जिह्वा से अब स्वास्थ्य भी है। अगर आप अपनी जिह्वा पे कंट्रोल कर लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और आप डायबिटीज रिवर्सल भी अपने साथ कर सकते हैं।
0: ये बात प्रायः पूछी जाती है कि भाई ठीक है, हम पहले जैसे तो चीजें नहीं खाएंगे, या हम पहले जितनी मात्रा में खा रहे थे या जितने बार खा रहे थे उन चीजों को बदलने पर तो लोग प्रयासरत होते हैं। अक्सर लोग फ्रूट्स के बारे में ये बात करते हैं कि भाई पहले बड़े चाव से हम फ्रूट खाते थे। अब प्रश्न उठता है कि भाई अब क्या मेरे को फ्रूट्स खाना छोड़ देना पड़ेगा? चीनी तो लोग समझ लेते हैं कि चलिए चीनी के बिना चाय पीना शुरू करते हैं, या मीठे चीजों से परहेज करना शुरू करते हैं। फ्रूट्स के बारे में क्या ख्याल है? फ्रूट्स को तो हम बहुत ही हेल्दी चीजें समझते हैं।
1: सबसे पहली बात पे कहना चाहूंगा कि आपको जो चीज हमेशा के लिए छोड़नी चाहिए वो है चीनी। आपने खुद ही बोला भैया, चीनी के साथ साथ कॉर्न, शुगर सिरप और चीनी के जो भी डेरिवेटिव्स हैं, जैसे शहद या हनी हुआ, गुड़ हुआ, इन सब चीजों को आपको छोड़ देना चाहिए। आप फल जो हैं, वो कोई भी फल जो आप खा रहे थे उसमें भी आपको कुछ फलों के लिए थोड़ा सा संयम करना पड़ेगा। और इसमें भी जो दो सबसे जरूरी फल हैं, जिसको हम रोकने को कहते हैं, वो है केला और आम। ये भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कभी केला मत खाइए या कभी आम मत खाइए, मगर एक भाग आम और आधा केला आप खा सकते हैं। आपके लिए सबसे अच्छी बात ये हुई कि आप सेब हुआ, नाशपाती हुआ, वाटरमेलन हुआ, खरबूजा हुआ, पपीता हुआ और जामुन हुआ, ये सारी चीजें आप बहुत आराम से खा सकते हैं। सुबेरे आप सेब खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, आप चेरीज खा सकते हैं, ब्लूबेरीज खा सकते हैं। आपके एरिया में जो आपको फल मिलता है वो आप जरूर खा सकते हैं। ये चीज का ध्यान बस देने लायक है कि हमें फल खाना है, हमें फल का रस जो है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा चीनी होती है और उसमें फाइबर जो है वो जीरो होता है। इसीलिए जब हम फ्रूट खाते हैं तो हमें फ्रूट के साथ फ्रूट शुगर, उसके न्यूट्रिएंट और उसके सारे के सारे जो खुज्जा या फाइबर है वो भी हमें मिलता है, और ये हमको बहुत आराम देता है। एक चीज का हमको पहले फल खाने से भी या भोजन करने से भी पहले हमको सबसे जो चीज ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि हम रिफाइंड ग्रेन्स जो हैं, जो ज्यादा पिसे हुए अनाज हैं, खासकर मैदा, उससे बनी हुई चीजें उसको अवॉइड करें। हम जितनी भी उससे बनी हुई चीजें, जैसे क्या, केक, पेस्ट्री, डोनट, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें जो प्रोसेस्ड फूड है उसको छोड़ें। जितने भी फ्राइड फूड्स हैं, मतलब जो तल के ही बन रहे, जैसे बर्गर हुआ, फ्रेंच फ्राई हुआ, उसको बंद करें। जो बहुत ज्यादा हाई फैट कंटेंट है जिनमें या हाई शुगर कंटेंट है, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इसको हम प्लीज बंद करें और इसको हम रिप्लेस किस चीज से करें, चेंज किस से करें, होल ग्रेन से, मतलब जो भी मोटे अनाज है और जो पूरे अनाज है उससे इसको रिप्लेस करें। सिंगल ग्रेन, एक बार में एक ही अनाज का हम सेवन करें। जो सब्जी हमें पसंद है हम हर सब्जी खा सकते हैं, हम जो फल हमें पसंद है संयम में हम सारे फल खा सकते हैं, और हमको कोशिश करना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा ऑयल, बहुत ज्यादा सॉल्ट, बहुत ज्यादा फ्राइड, ये सारी चीजें छोड़, और आप अगर इसे छोड़ देंगे तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। डायबिटीज की जो सबसे खराब बात यह है कि वो मालूम चलने के बाद भी शरीर में कुछ बहुत परिवर्तन या चेंजेस नहीं आते हैं, तो आदमी ये मानने को तैयार नहीं रहता कि उसके साथ कुछ हो गया है। वो थोड़ा सा थक रहा है तो वो कहता, अरे ज्यादा काम कर लिए थक गए हैं, आपको थकान लग रही है आप उसका बहाना बनाने लगते हैं, आपके शरीर में स्फूर्ति नहीं है आप बोलते हैं हमने आज ज्यादा काम कर लिया या आज मैं ज्यादा चल दिया हूं। आपको झटका कब लगता है, या तो उसकी वजह से आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, या आपकी कोई फोड़ा या फुंसी आपके शरीर में, या कोई कट लगा है या चोट लगी है वो ठीक नहीं हो रही हो, हील नहीं हो रही हो, या आपकी आंख पे चश्मा का नंबर बार बार बदल रहा हो, आपको पेशाब पे कंट्रोल छूट गया हो, आपको बाथरूम पे कंट्रोल छूट गया हो, आप एकदम परेशान होने लगे, तब आप फ्रोजन शोल्डर हो जाए, आपको पता चला अपना दांत निकलवाने गए, वहां डॉक्टर ने टेस्ट किया और मालूम चला अरे आपको तो डायबिटीज है, तब आपको झटका लगा कि अरे ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। तो जो आपके शरीर में कोई जब बदलाव नहीं आ रहा होता है तो आप फिर से बेछूट खाने लगते हैं। तो प्लीज, ये एक शांति से अंदर चल रहा हुआ एक बीमारी है, इसको शांत ही रहने दें, अपने भोजन को कंट्रोल करके रखें। इवन भैया ये तक कहा जाता है अगर आप बीमार होंगे, वायरल इन्फेक्शन होगा, आप बहुत स्ट्रेस में होंगे तब भी आपका शुगर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए एक्सरसाइज करिए, संयम से भोजन करिए और आप एकदम ठीक रहेंगे।
0: एक अवधारणा जो डायबिटीज के बारे में अक्सर पूछी जाती है या कई लोग अपने मन में पाल के रखते हैं, डॉक्टर साहब जैसे आप ये कह रहे थे कि एक साइलेंट बीमारी है, ये एक पता नहीं चलता, यकायक पता चल गया कि कोई दांत के दर्द के लिए गया, वहां दांत निकालवाना था तो उन्होंने ब्लड टेस्ट करने को बोला तो शुगर निकल आया, और इत्यादि अनेक चीजों में लोगों को ये चीजें पता चलती है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि भाई हमारे परिवार में तो किसी को डायबिटीज है नहीं, तो हमें भी आएगा नहीं, हमें होगा नहीं, वैसे भी हमारी उम्र तो अभी है, हम अभी जवान है, हम 30-40 साल के हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, हमारे घर में भी किसी को डायबिटीज नहीं है और ना मुझे हो सकता है क्योंकि मैं जवान हूं, ये भी लोग कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए कि हमें क्या इन चीजों के बारे में सजग होने की जरूरत है।
1: ये एक ऐसी बीमारी है जो माँ के पेट में भी आपको मिल सकती है, जेस्टेशनल डायबिटीज उसे कहते हैं, और ये आपके जीवन के अंतिम पड़ाव में भी आपको मिल सकती है, और मैं सबसे कहता हूं इससे मिलना भी नहीं है, और अगर बाई चांस ये आपको मिल गई है तो भोजन में संयम करके इसको अपने एकदम कंट्रोल में रखना है, आपको इसको अपने कंट्रोल में रखना है, न कि इसके कंट्रोल में आप चले जाइए। और ये जो बीमारी है वो आपकी जिह्वा से ही आपको परेशान करती है, जितना आप उसको संभाल लेंगे उतना आप इससे बचे रहेंगे। एक एग्जाम्पल से इसको समझाना चाहूंगा, मेरे चिकित्सालय में आज ही एक डॉक्टर आए हैं, उनको डायबिटीज हो गया है, ही इज ओनली 32, 32 साल के हैं मात्र, और ये मालूम चला कि वो अल्कोहल के सेवन की वजह से उनको डायबिटीज है, और उनके घर वाले बहुत परेशान है, वो एक मतलब 32 साल के यंग डायनेमिक और एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, और घर वाले तो ये बोल रहे हैं कि इनको 6 महीने से ये आदत पड़ी और जिसकी वजह से वो डाउनहिल चले गए, उनको डायबिटीज हो गया। ये किसी को भी हो सकती है, और आपको अपने पैंक्रियास को बचा के रखना है। मैंने बोला वायर, आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से आपका पैंक्रियास गड़बड़ हो सकता है, आपको हो सकती है, आप बेछूट खाए चले जा रहे हैं। आप देखिए ना, आप एक बड़ी सीधी बात समझिए कि आप सोचिए, चौकीदार है आपके पास कोई, आप उसको रात में ड्यूटी करने के लिए उठा के रखे हैं, वो रात में ड्यूटी कर रहा है, पर जब उसके सोने का समय आ गया तब भी आप उसको हर 15 मिनट पे उठा दे रहे हैं, वो कैसे काम करेगा? हम और आप ही हैं, हम लोग अगर 4 घंटा या 6 घंटा सोते हैं और हर 15 मिनट में कोई उठा रहा है हमको या 20 मिनट पे हिला रहा है, तो हम कैसे सो पाएंगे? ये और आप ये समझिए, हिलाना या उठाने का मतलब है हम कुछ भी मुंह में भोजन डालते हैं, पैंक्रियास को उठ उसके लिए काम करना पड़ता है। और आप जितना ज्यादा मीठा, जितना ज्यादा रिफाइंड, जितना ज्यादा प्रोसेस खाएंगे उतना ज्यादा उसको इंसुलिन निकालना पड़ेगा। तो आपको ये कभी भी मिल सकती है, ये एकदम भेदभाव नहीं करती है, न पुरुष में, न महिला में, न अमीर में, न गरीब में, न उम्र में, न लिंग में, ये किसी चीज में कोई भेदभाव नहीं करती है, किसी को भी मिल सकता है। आपके माता पिता को नहीं है तो आपको इसके मिलने के चांसेस बहुत बहुत कम है। मैंने अपने अपने ही एक क्लिनिक में ही देखा कि माता पिता को नहीं है, बच्चे को हो गया, वो बड़े परेशान है क्यों हो गया, पर वो उनके खान पान, उनकी बहुत सारे अननोन कॉजेस भी हैं। तो अगर हम अपने भोजन को कंट्रोल कर लें तो हम इससे बच सकते हैं, और अगर हमें हो भी गई है डायबिटीज तब भी हम अपने भोजन को कंट्रोल कर लें तो हम इससे बचे रह सकते हैं। आप मेरी बात मान लीजिए, अगर आप 80-85 किलो के हैं और आपको डायबिटीज हो गई है, आप अपना 7 से 8 किलो वजन कम कर लेंगे, आप नॉर्मल हो जाएंगे, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा, आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: यानी ये बात स्पष्ट होती है कि अगर मैं बार बार खा रहा, बीच बीच में खा रहा हूँ, भले मैं छोटी मात्रा में खाऊं, अगर मैं सतत ये कार्य कर रहा हूँ तो मैं अपने पैनक्रियास को आराम करने का मौका ही नहीं दे रहा, और उसकी वजह से ये मुझे हाई रिस्क पर डालती है, डायबिटीज के मार्ग पर मुझे अग्रसर करती है। साथ ही साथ अगर मैं अपने जीवन शैली के बारे में जागरूक नहीं हूँ, अपने वजन के बारे में जागरूक नहीं हूँ, अगर हमारे घर में डायबिटीज की हिस्ट्री हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को ये चीज हो सकता है, ये बात समझ में आ रहा है, और इससे ये पता चलता है कि हम सबको जागरूक रहने की जरूरत है। एक और चीज मैं आखिर में पूछना चाहूंगा, वो ये है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो डायबिटीज के मरीजों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए या उसे बिल्कुल छूने की जरूरत नहीं होनी चाहिए?
1: नंबर वन, जो सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं वो है कोल्ड ड्रिंक। नंबर दो, मिठाई और आइसक्रीम। नंबर तीन, मैदे से बनी हुई सारी प्रोसेस चीजें। और इन सब जो भी चीज आप देख रहे हैं उसमें एक इंग्रेडिएंट कॉमन है, वो है केन शुगर। केन शुगर, कॉर्न सिरप शुगर और किसी भी तरह का स्वीटनर जो आप जो नेचुरल है वो आपके लिए जहर है, इसको छोड़ देना चाहिए। और ये सब छोड़ने के साथ साथ भोजन की क्वांटिटी भी कंट्रोल में खानी चाहिए। इतना आप कर लीजिए, आप इस समस्या से पूरा बाहर निकल आएंगे।
0: बहुत ही ज्ञानवर्धक और फायदेमंद बातचीत आज हमारी हुई है दोस्तों। डॉक्टर राहुल मोदी जी ने बड़ी स्पष्टता से हमें डायबिटीज से बचाव के लिए, अगर आप डायबिटीज के शिकार नहीं है तो कैसे उसके रास्ते पे शिकार बनना नहीं है, उसके लिए कौन सा मार्ग चुनना है ये भी बताया। साथ ही साथ अगर आप डायबिटीज के मरीज हो चुके हैं तो भी आप इससे बचकर बाहर कैसे निकल सकते हैं और क्या हमें करने की जरूरत है,

0: देगी। आज डॉक्टर राहुल मोदी जी ने हम सबके मन के अंदर जो भी प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर दिया और हमें सहज स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करने के लिए, डायबिटीज से बचने के लिए मार्गदर्शन दिया। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज हमने डायबिटीज और उससे संबंधित विषयों पर जानकारी हासिल की है। ये सिर्फ जानकारी जानकारी ना होकर हमारे जीवन की धारणा बने, हम एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ विश्व, एक स्वस्थ राष्ट्र को बना सकें, इसकी ओर हम सभी अग्रसर हों। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बच्चों चलो चलो, बारिश के मौसम को लेकर के सपनों की सैर कार्यक्रम में परी और मनी दीदी आ गए हैं।
1: हाँ बच्चों, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
0: तो बच्चों, बारिश की सीजन चल रही है, मजा तो कर रहे हो ना बारिश में?
1: हाँ परी, मुझे तो बड़ा मजा आता है, और अभी तो पहली पहली बारिश की बूंदें, बहुत बहुत बहुत मजा आता है।
0: बिल्कुल मनी दीदी, पहली बारिश में तो नहाने का क्या मजा आता है।
1: तो परी, क्या आप जानते हैं मानसून क्या होता है?
0: मनी दीदी, मानसून ऐसी मौसमी हवाएं हैं जो वर्ष के अलग अलग समय में अपनी दिशाएं बदलती है और अपने साथ वर्षा लाती है।
1: हाँ, और भारत में खेती, पेयजल और पर्यावरण के लिए भी मानसून का बहुत महत्व है।
0: तो बच्चों, पता है ना, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से आया है, जिसका अर्थ है ऋतु या मौसम।
1: हाँ, और बच्चों पता है कि भारत में मानसून कब आता है?
0: बच्चों, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक होता है, और उत्तर पूर्व मानसून अक्टूबर से दिसंबर तक होता है।
1: हाँ, और ये मुख्यतः तमिलनाडु और दक्षिण पूर्वी भारत में वर्षा करता है, और जो दक्षिण पश्चिम वाला होता है ना, जून से सितंबर तक, वो मेन मुख्य वर्षा ऋतु होती है।
0: बिल्कुल बच्चों, तो ये थी मानसून की जानकारी।
1: हाँ, तो अभी और भी जानकारियाँ हम देंगे, और अभी तो हमें वापस आना है ना, परी की कहानी भी सुननी है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
0: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आ जाओ बच्चों रेडियो के पास, गाना तो हमने सुन लिया, जानकारी भी मिल गई, अब शुरू करते हैं कहानी। आज एक कौवे की कहानी सुनेंगे। एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर गरुड़ रहता था। पहाड़ की तलहटी में एक बड़ा पेड़ था। पेड़ पर एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। एक दिन तलहटी में कुछ भेड़े घास चरने आई। गरुड़ की नजर बच्चों एक मेमने पर पड़ी। वो पहाड़ की चोटी से उड़ा, तलहटी में आकर मेमने पर झपटा मारा, उसे चंगुल में लेकर उड़ते हुए फिर घोंसले में लौट गया। तो देखा बच्चों, गरुड़ कितने चालाक होते हैं। गरुड़ का ये पराक्रम देखकर कौवे को भी जोश आ गया। सोचो बच्चों, कौवे ने क्या प्लान किया होगा? उसने सोचा, यदि गरुड़ ऐसा पराक्रम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बच्चों सोचो कौवे ने क्या किया। दूसरे दिन कौवे ने भी एक मेमने को तलैटी में चरते हुए देखा। उसने भी उड़ान भरी और आसमान में जितने ऊपर जा सकता था उड़ता चला गया। फिर उसने मेमने को पकड़ने के लिए गरुड़ की तरह जोर से झपटा मारा। क्या हुआ होगा बच्चों, मगर मेमने तक पहुंचने के बजाय वो तो एक चट्टान से जाकर टकरा गया। उसका सिर फूट गया, चोंच टूट गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देखा बच्चों, दूसरे की नकल करने का हाल क्या होता है। इसलिए बिना सोचे समझे किसी की नकल करने से बुरा हाल होता है, तो ऐसा नकल मत करना, वरना पकड़े जाएंगे तो बुरा हाल होगा। तो चलो अब सुनते हैं प्यारा सा गाना। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
0: जी वो अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से, मनी दीदी आ गई है लेकर तेनाली रामा की अनोखी दुनिया की किताब। और इसमें हम पढ़ रहे हैं मित्र की पहचान नाम की कहानी, और जिसमें तेनाली राम को पता लगाना है कि महाराज के दोनों मित्र में से सच्चा मित्र कौन सा है। तो उसके लिए तेनाली राम राजभवन में ही ठहरा हुआ है और ऐसी व्यवस्था की है कि बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट पकवानों से भरी हुई थाल उनके दोनों मित्रों के कक्षों में पहुंचाई जाए। और उसी समय ये कहा जाए, ये बातें फैला दी जाए कि महाराज का स्वास्थ्य अचानक ही खराब हो गया, तो अब क्या होगा। महाराज ये बहुत जिज्ञासा भरे स्वर में तेनाली से पूछ रहे हैं कि क्या होगा। तो तेनाली राम ने महाराज को भी कहा कि भाई सुबह तक प्रतीक्षा करें। तो अब आगे पता चलेगा बच्चों कि क्या हुआ। तो चलो

बिना देर किए मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। रात्रि के भोजन का समय था। राजभवन में अतिथि के रूप में रह रहे प्रसन्नजीत और वज्रबाहु के कक्ष में भोजन लाकर रखा गया था। भोजन से भूख जगाने वाली सुगंध उठ रही थी, जिससे आसपास का वातावरण महक उठा था। प्रसन्नजीत और वज्रबाहु अभी भोजन करने के लिए तैयार हुए ही थे कि दो प्रहरी दौड़ते हुए आए और बोले, महाराज का स्वास्थ्य बहुत खराब है। राज वैद्य उनकी सेवा में लगे हैं, मगर उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। ये सूचना देकर दोनों प्रहरी लौट गए। वज्रबाहु तत्काल भोजन की थाल से उड़ गए और अपना हाथ वस्त्र से पोंछते हुए महाराज के कक्ष की ओर दौड़ पड़े। जबकि प्रसन्नजीत ने जी भर के भोजन किया और थोड़ी देर लेटने के बाद महाराज के कक्ष की ओर गया। तेनाली राम ने दोनों के जाने के बाद उनके कक्षों में जाकर भोजन की थाल में भोजन की स्थिति देखी। प्रसन्नजीत की थाल रिक्त हो चुकी थी, जबकि वज्रबाहु की थाल में भोजन जो का त्यों था, एक निवाला तैयार था, जैसे उसे हाथ में उठाकर फिर से थाल में रख दिया गया हो। तो बच्चों, अब क्या निकालेगा निष्कर्ष तेनाली राम इससे, वो तो पता चलेगा हमें अगली कड़ी में। तब तक तो थोड़ा करना पड़ेगा इंतजार। तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना और लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: बच्चों चलो चलो, बहुत सारी बारिश के बारे में हमने बातें की, कहानियां सुनी, तेनाली राम की किताब भी पढ़ ली और अब बारी शुरू हो गई है पहेलियों की। याद है ना, पिछली कड़ी में हमने पूछा था, जंगल का राजा कहलाए, गर्जन से सबको डराए, भारत का राष्ट्र पशु, बताओ उसका नाम जरूर।
2: तो बच्चों उसका नाम है बाघ। हाँ तो चलो भाई, जंगल का राजा है और अपनी दहाड़ से सबको डराता है, तो सही जवाब है बाघ। और आप सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने सही जवाब भेजा, और ऐसे ही आप सही जवाब हमें भेजते रहिएगा। नंबर तो आपको याद ही है।
1: हाँ बिल्कुल बच्चों, 94-14-15-14-15। और इस पहेलियों से तो आपके दिमाग के घोड़े तो दौड़ते हैं कम से कम।
2: हाँ सही कहा परी। अच्छा परी, आज की पहेली क्या है?
1: बच्चों जल्दी से डायरी पेन उठाओ और नोट करो आज की पहेली। रंग बिरंगी पंख फैलाए, बारिश में नाच दिखाए, भारत का है राष्ट्र पक्षी, बताओ उसका नाम सच्ची सच्ची।
2: हाँ बच्चों, परी की तो पहले इतनी इजी है, आप तो सुनते ही आपको जवाब आ गया होगा। और आपको जल्दी से हमें 94-14-14-15 पर वॉइस नोट या मैसेज करके अपना सही जवाब भेज देना है। तो चलो चलो जल्दी से भेजना शुरू करो भाई, लेकिन भले हम अगली कड़ी में इसका सही जवाब बताएंगे। तो बच्चों अभी क्या करना है परी? आगे
1: आगे बच्चों याद है ना, आपको काम करना है भगवान जी को सारे दिन के कारनामे बताना और उनको सॉरी कहना।
2: हाँ और जो भी अच्छा अच्छा हुआ उसके लिए थैंक यू,
1: और उनकी गोदी में सो जाना।
2: हाँ और चलो भाई, समय हो रहा है हमारा भी जाकर सोने का, तो चलो भाई करते हैं गुड नाइट।
1: स्लीप टाइट,
2: गुड बाय।
1: सुनते रहो,
2: मुस्कुराते रहो,
1: रेडियो मधुबन
2: 107.8 FM पर।

का समय तब बनता है खास जब उषा आती है अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार। राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति मिल ही जाती है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ भाई, दीपावली जल्दी ही आने वाली है और घरों में साफ सफाई का काम चल रहा है, तो पित्तल और तांबे के बर्तनों को कैसे साफ करेंगे, ये टिप्स आपको जरूर देंगे, ठीक है। और आज की युवा पीढ़ी शादी तो कर लेती है परंतु रिश्ते टिका नहीं पाते। इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार हो ना आप सभी, तो जरूर तैयार रहिएगा और बनाएंगे गर्मा गर्म कुछ खास। वो क्या, वो सस्पेंस रहेगा भाई। आप आशियाना सुनिए, सब कुछ जान जाएंगे और प्रश्न भी पूछने वाली हूँ, तो तैयार रहिएगा आशियाना में प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो अभी सुन लेते हैं गीत, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति मिल ही जाती है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति मिल ही जाती है। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक कहानी के साथ करना चाहूँगी। स्पष्ट कि एक समय एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठ शास्त्र अध्ययन में बहुत ही निपुण था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और सौम्य थी। घर में सिर्फ ब्राह्मण और उनकी पत्नी ही रहते थे। इस कारण घर के पूरे काम का बोझ उसके पत्नी पर पड़ता था। कुछ समय बाद काम करते करते पत्नी थकने लगी और काम से तंग आने लगी। काम के बोझ को कम करने के लिए वह उपाय सोचने लगी। उसने अपने पति से कहा, आप वेदों शास्त्रों में पंडित है, कोई ऐसा यज्ञ रचिए जिससे एक काम करने वाला व्यक्ति उस यज्ञ से उत्पन्न हो। यदि कोई नौकर रखेंगे तो पूरा समय उसके पीछे रह करके काम कराना पड़ेगा, परंतु यदि अपनी ही रचना का कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो सारा दिन हमारे साथ रहे, सब काम करे और आज्ञाकारी भी हो तो अच्छा होगा। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पसंद आई और उसने इस बारे में सोचना शुरू किया। ब्राह्मण ने अपने घर में पड़े हुए पुराने ताल पत्रों का अध्ययन करना शुरू किया। अचानक एक पत्र में उसे जिन्न को तैयार करने की यज्ञ प्रक्रिया मिली। ब्राह्मण ने खुश होकर के यज्ञ आरंभ किया। कुछ समय बाद यज्ञ की अग्नि से एक जिन्न प्रकट हुआ। काम करने के लिए जिन्न को पैदा किया था, इसलिए उसका नाम काम का जिन्न पड़ा। जिन्न ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को आदर सहित प्रणाम किया और उन दोनों को अपना मालिक माना, परंतु साथ ही साथ जिन्न ने एक शर्त रखी कि उसको सदा कुछ न कुछ काम मिलते ही रहना चाहिए। यदि एक क्षण के लिए भी काम नहीं मिला तो जिन्न ब्राह्मण को खा जाएगा। ब्राह्मण ने जिन्न की ये शर्त मान ली और सोचा कि करने के लिए काम तो बहुत है, इसलिए इसको सदा काम में व्यस्त रखने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। उसी क्षण से जिन्न ने मालिक का काम करना शुरू किया तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी तो बड़े प्रसन्न हुए, पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जिन्न को चाहे जितना भी बड़ा काम दो, एक पल में उसे पूरा करके वह ब्राह्मण के पास पुनः आकर के खड़ा हो जाता और कहता कि और कोई काम है, कोई काम चाहिए, कोई काम चाहिए। ब्राह्मण ने जिन्न को बड़े बड़े पतीले बर्तन पुराने सामान सब साफ करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने सोचा कि ये काम करने के लिए जिन्न को एक दिन तो लगेगा और कम से कम एक दिन के लिए तो वह जिन्न से छुटकारा पा सकेगा। लेकिन जिन्न ने सारा काम एक पल में ही पूरा कर लिया और फिर कहने लगा कि काम चाहिए, कोई काम दो। ब्राह्मण का घर बड़ा था, बहुत ही बड़ा था, सो घर का पूरा काम करके झाड़ू और पोछा करने के लिए कहा गया। ये काम भी जिन्न ने एक पल में पूरा कर लिया और फिर बोलने लगा कि काम चाहिए, काम चाहिए। इस बार ब्राह्मण ने सुराख वाले घड़े दिए और कुएं से पानी भरने के लिए कहा। ब्राह्मण को मालूम था कि ये काम भी जिन्न एक पल में कर लेगा, इसलिए होशियार ब्राह्मण ने एक युक्ति रची। जब जिन्न अपना काम पूरा करके फिर से ब्राह्मण के पास आया तो उसने उसे सीढ़ी उतरने और चढ़ने की आज्ञा दी। अब जिन्न सीढ़ी चढ़ने और उतरने में व्यस्त हो गया। जब तक ब्राह्मण बुलाएगा नहीं तब तक जिन्न वही काम करता रहेगा। जब जरूरत पड़ेगी तब उसे बुलाया जाएगा और काम करने की आज्ञा दी जाएगी। इस तरह से ब्राह्मण ने युक्ति से मुक्ति पा ली और जिन्न को व्यस्त कर दिया। इसलिए प्यारे श्रोता बंधुओं, कहने का भाव यही है कि कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति जरूर मिलती है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया आप हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर टिप्स। देखिए, दीपावली के दिन चल रहे हैं भाई, दीपावली बहुत ही जल्दी आने वाली है और घरों में साफ सफाइयाँ शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले हम साफ सफाई करेंगे, घर हमारा चमकेगा, तभी तो दीपावली पर हम माता लक्ष्मी जी का आह्वान कर पाएंगे ना। तो स्वाभाविक है कि घर की साफ सफाई में हम बर्तनों को तो मांजते ही हैं, सब कुछ पूरे घर को हम अच्छा से स्वच्छता से साफ करते हैं, सारे ही सामान को उथल पुथल करके वहाँ से हटा के साफ करके उस जगह को साफ करके फिर वहाँ पर वापस व्यवस्थित रखते हैं। तो भाई, पित्तल के बर्तन की तो वैल्यू बहुत है, स्टील के बर्तन तो अभी चले हैं, पहले के समय में पित्तल के बर्तन ही चलते थे और हमारे दादी नानी के ज़माने में पित्तल के बर्तन में ही भोजन पकाया जाता था, खाया जाता था। पित्तल के, तांबे के ये बर्तन सबसे ज़्यादा चलते थे। आप पनियारे पर देख लीजिए, तांबे के घड़े रखे जाते थे पानी भर के, वो भी कुएं से ला करके। तो अभी समय के साथ परिवर्तन हुआ है, माताएं बहनें थोड़े काम धंधे में नौकरी में व्यस्त हो गई है, भाई लोग भी, तो पित्तल और तांबे के बर्तन को हटा ही दिया गया, क्योंकि उसमें मांजने की मेहनत है ना, स्टील के बर्तन में कोई मेहनत ही नहीं है और मेहनती काम आजकल कोई करना नहीं चाहते। सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, ऐसा मत सोचना है कि मैं सभी के लिए कह रही हूँ। आज भी बहुत जने पित्तल और तांबे के बर्तन रखते हैं और बड़े ही उसको प्यार से साफ करते हैं। तो आपको बहुत ही सरल टिप्स देती हूँ ताकि तांबे और पित्तल के बर्तनों को फिर से चमका सको। देखिए, मैंने तो देखा है बहुत जगह पर, विशेष करके गुजरात में, कि पित्तल के बर्तन और तांबे के बर्तन को बहुत ही अच्छी तरह सजा करके रखते हैं दीपावली के दिनों में। वो माँज माँज के थक जाते हैं, बोलते कि बहन जी क्या करे, लेकिन जब ये चमकते तो बड़े अच्छे लगते हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो सही कहा है कि भाई मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी टिप्स देने वाली हूँ कि उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपके बर्तन ऐसे चमकेंगे कि बस आने वाले देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। मैं आपको टिप्स दे रही हूँ बहुत ही सुंदर की, देखिए, बाजार में पीताम्बरी पाउडर आता है बर्तन मांजने के लिए, जो पित्तल और तांबे के बर्तन है उसमें आप पीताम्बरी पाउडर को यूज़ करेंगे तो बर्तन बहुत ही अच्छी तरह चमकेंगे। इसमें खास मेहनत नहीं है, आपको क्या करना है, पीताम्बरी पाउडर लाना है और जो अपने बर्तन मांजने का स्क्रब होता है ना, जिसको हम देसी भाषा में कुच्चा कहते हैं, लोखन वाला, ठीक है, तो उस कुच्चे से आप उस पीताम्बरी पाउडर को लगाइए और साफ करिए। ज़्यादा आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं, आप हल्के हल्के हाथों से पित्तल और तांबे के बर्तन को रगड़ेंगे ना, घिसेंगे तो भी बर्तन चमक उठेंगे, ठीक है। तो ये टिप्स आपको मिल गई है। पीताम्बरी पाउडर का पैकेट आता है मार्केट में और आप इससे आसानी से पित्तल और तांबे के बर्तन को मांज सकते हैं। अब मैं दूसरी टिप्स आपको दे रही हूँ। नींबू तो देखिए सभी लाते हैं, नींबू का रस निचोड़ दीजिए, इसमें नमक मिला दीजिए, फिर कुच्चे से इस कुच्चे को पूरा भिगो दीजिए अच्छी तरह, और फिर तांबे और पित्तल के बर्तन को हल्के हल्के हाथों से रगड़िए, 5 मिनट के बाद फिर से घिसिए साफ। ना आपको पाउडर ना लिक्विड लगाने की ज़रूरत है, बस नींबू में नमक डाल दीजिए नींबू के रस में और कुच्चे से इसको अच्छी तरह घिस दीजिए, तो पित्तल और तांबे के बर्तन चमक उठेंगे और बर्तन चमकेंगे तो हमारे चेहरे के मुस्कुराहट भी बढ़ेगी, क्योंकि इतने सरल तरीके से साफ हो गए। पहले तो हम बहुत घिसते थे, घंटों घंटों लग जाते थे, और एक 5 मिनट में बर्तन चमक उठे तो खुशी तो होती है ना। और लास्ट टिप्स ये कि अगर आप नींबू यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो विनेगार और नमक ये आप यूज़ करिए। विनेगार और नमक को मिक्स करके कुच्चे से फिर आप मांजिए बर्तन को, तो इससे भी बर्तन तांबे और पित्तल के चमक उठेंगे। तो ये टिप्स आपको मिली है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इसको आजमा सकते हैं। अब मैं आज का प्रश्न पूछने जा रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। चूंढावत मांगी सेनाणी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। बस इससे आगे नहीं बोलूँगी। चूंढावत ने जब अपनी पत्नी से निशानी मांगी युद्ध पर जाते समय, तो क्षत्राणी ने सिर ही काट के दे दिया, तो उस क्षत्राणी का नाम आपको बताना है, ठीक है। रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए बढ़ते हैं एक गीत की ओर, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: किसी ने कुछ ठीक ही लिखा है कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग के खा रहा हूँ। तो ये विषय आपको दिया है, आप चर्चा में राय अपनी व्यक्त कर सकते हैं कि शादी ब्याह, आज की पीढ़ी शादी ब्याह तो करने के लिए उत्सुक रहती है परंतु रिश्ते टिका नहीं पाती है। देखते हैं कि समाज में ज़्यादातर रिश्ते टूट रहे हैं, सहन शक्ति कम होती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है। बहुत कुछ देखते हैं आजकल शादी ब्याह में। लड़की वाले तो इतना कुछ देखते हैं कि लड़के के घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, भले अपने घर में कुछ हो ना हो लेकिन मेरे अपनी बेटी की शादी जहाँ करूँ वहाँ पर सब कुछ होना चाहिए, और फिर भी करते भी हैं लेकिन उसके बाद भी रिश्ते टूट जाते हैं, उसके बाद भी लड़कियाँ टिक नहीं पाती अपने ससुराल में और तलाक ले लेती हैं। तलाक के पीछे बहुत सारे बातें भी होती है, वो आप सभी जानते हो कि खर्चा भी लेती है, घर का हिस्सा भी लेती है। तो समाज में ये क्या हो रहा है? देखिए, आप सभी सामाजिक प्राणी हैं, हम सभी, आप भी, तो आप भी देखते हैं आपके आसपास या कहीं पर तो इस तरह की बातें होती होगी, तो आप भी चर्चा में राय व्यक्त कर सकते हो। नंबर हमारे है 94-14-15-14-15। और आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है कि चूंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। जब चुंडावत ने युद्ध में जाते समय अपनी पत्नी से निशानी मांगी तो उनकी पत्नी ने सिर काट करके दे दिया। तो ऐसी क्षत्राणी का आपको नाम बताना है, ऐसी रानी का नाम आपको बताना है। नंबर 94141514-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब भी आपको देना है और विषय में भी आप भाग ले सकते हो। हेलो,
2: जय माता दी, जय श्री हरी।
1: जय श्री हरी, नमस्कार, स्वागत आपका।
2: सभी सुनने वाले और सुनाने वाले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार
1: जी।
2: टॉपिक तो बहुत ही सुंदर लेके आई है। सबसे पहले तो मैं एक विश करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ?
1: हाँ जी,
2: आपकी इजाजत हो तो।
1: जी जी, कहिए।
2: मेरे पति का जन्मदिन है तो उनको जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं।
1: जी जी, हम भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आपके भतीजे के जन्मदिन पर। बहुत बहुत खुश रहे वो, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे बढ़े और हमेशा स्वस्थ रहे।
2: भाई नाम है उसका। और आज का टॉपिक है तो देखिए, अभी जो कुछ हो रहा है ना उसी पे आपने टॉपिक लिया, बहुत सुंदर टॉपिक है
1: जी।
2: शादियाँ हो जाती है फिर मतलब तलाक भी लेना नहीं चाहती है और उनको खर्चा भी चाहिए
1: जी।
2: ऐसे भी मैटर देखे है
1: जी।
2: तो मैं कहना चाहूंगा अगर वो ज्यादा सैलरी कमा रहा है तो चलो दे सकता है, मगर कोई बंदा ऐसा भी होते है जो 10-15 हजार महीने के कमाता है
1: जी,
2: और वहाँ वो खर्चा पहुँचाएगा तो वो खुद पर घर कैसे चलाएगा, खाएगा क्या
1: जी।
2: तो मैं जो भी, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच गई है उन सभी बहनों से यही मेरी गुजारिश है कि आप अगर शादी कर रहे हो, आपको पसंद नहीं है तो तलाक करके छुट्टी कर सकते हैं
1: जी।
2: केशबाजी में भी कोई बेनिफिट नहीं है और ऐसे मतलब गरीब परिवारों को दुखी करने में भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि परमात्मा देख रहा है
1: जी।
2: अगर वो कोई मतलब उनकी गलती है तो आप उनको सजा दे सकते हो, मगर कोई उसमें गलती नहीं है, वो राजी खुशी रखना चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी ये गलत फहमियाँ कुछ हो जाती है, तो ये गलत है ना कि किसी को बिना कसूर के फिर दर्द दुख देखना पड़े
1: जी।
2: तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, और रही बात की शादी करे तो देख के मतलब थोड़ा बहुत देख के मतलब कुछ समय के बाद में जल्दबाजी में शादी की जाना
1: जी
2: तो सही रहेगा। और रही बात दूसरी तो मैं सभी बहनों और भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मतलब कई ऐसे कुछ रहम वगैरह भी हो जाए ना तो उसका सही मुजारा करना चाहिए, उसकी सही जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाए।
1: जी जी
2: तो दूरियां बनी मतलब नजदीकियां बनी रहेगी नहीं तो दूरियां आ सकती है। और बस कुछ बहनों मेरे देखने की भी बात हुई है तो यही मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे कदम उठाने से पहले लाखों बात सोचिए। थैंक यू
1: जी जी बहुत बहुत आभार आपका। तो बहुत ही सुंदर आपने स्पष्ट किया है। देखिए शादी ब्याह तो होते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और एक दूसरे को देख करके परख करके समझ करके ही शादी करते हैं। क्योंकि पहले के समय में तो ऐसा होता था कि एक दूसरे को देखते नहीं थे, परिवार वाले ही फाइनल करते थे कि भाई आपकी लड़की हमें पसंद है और शादी फाइनल हो जाती थी। लेकिन लड़के लड़के आपस में मिलते नहीं थे, एक दूसरे को देखते नहीं थे, फिर भी रिश्ते टिकते थे। कभी पहले के समय में सुना आपने कि भाई वो छोड़ के चली गई या उनका तलाक हो गया, अब वो मायके जा कर के बैठ गई? बिल्कुल नहीं, वो 100-200 में एक आध केस ऐसे होते थे तो ये समस्या आती थी। और आज तो आप देख लीजिए 100 में से कुछ ऐसे है जहाँ पर रिश्ते टिके रहते, बाकी अधिकतर लड़ाई झगड़े और फिर तंग आ करके घर परिवार छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही बढ़ता जा रहा है। और ये भी है कि देखिए, हम एक बार बात करेंगे अपने श्रोता बंधु से। हेलो
3: दीदी नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी, हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में सुरेश भाई।
3: जी दीदी बहुत अच्छी बात हो रही है
1: जी।
3: और अभी अभी जो आपने दीदी बताया कि बिल्कुल सही बात है कि पहले जमाना में कोई देखता नहीं था, लड़की लड़का नहीं देखता, माँ बाप करते वो सही हो जाता था
1: जी।
3: और कभी भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता था
1: जी,
3: तो पूरी जिंदगी तक सबर सीखते थे
1: जी।
3: लेकिन आज नहीं, पता नहीं, आज इतने सब कुछ देखते हैं, सब कुछ तय होने के बाद ही शादी करते हैं, बाद में भी ऐसा होता है। तो इसका मतलब तो देती यही है कि अभी लोग को सहन शक्ति भी बिल्कुल नहीं है, कुछ बात हो जाती है तो तुरंत बोल देते हैं हमको रिश्ता नहीं रखना है, हमको ये नहीं करना है
1: जी।
3: तो और दूसरी बात कि आप कितना ही दो लड़के वाले को, फिर भी वो तो बस यही बात करता है, ये हमारे पास नहीं है तो ये दे दो, ये हमारे पास नहीं है तो ये दे दो, हरदम नाचने की ही बात करते है
1: जी।
3: तो माँ बाप भी कई ऐसी प्रॉब्लम होते थे, माँ बाप का आंसर दे सकते हैं
1: जी।
3: तो ये मांग भी सही नहीं है, इसीलिए भी रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि माँ बाप के पास कुछ नहीं होता है तो
1: जी जी जी
3: सामने वाला मांगता है, तो बेटी को दुख तो होता है कि मेरे घर को पास कुछ नहीं है, फिर भी ये मांग करता है तो
1: जी जी
3: सही नहीं है,
1: बिल्कुल सही कहा।
3: माँ बाप भी कई बार माँ बाप भी कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है तो सामने वाले को हमको इतना बेटी को, वो हमारी बेटी को ये चाहिए, हमारी बेटी को ये चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ये भी एक बात सही है। इसी कई बार क्या होता है हमारे घर में कुछ नहीं होता, वो सामने वाले को हम सब कुछ बोलते हैं, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास बंगला नहीं है, उसके पास कोई अच्छा टैलेंट नहीं है, जॉब नहीं है
1: जी।
3: लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि सामने वाले पास कुछ ना हो लेकिन इसके पास रिश्तेदारी हो, खानदानी हो, उसका लड़का अच्छा हो, अच्छी तरह से वो करका जो पूरा कर सकते हो, और लड़का सीधा साधा हो तो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है
1: जी।
3: हम कई बार क्या होता है ज्यादातर बहुत बड़े लोग भी शादी करते हो तो यही भी प्रॉब्लम रहता है
1: जी जी।
3: तो हम बराबरी का रिश्ता करें तो यही रिश्ता सीख सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत आभार आपका।
3: मैं तो यही कहूँगा बस बराबरी में रिश्ता करिए और सब चेती पे सब देख के करिए तो अच्छा रहेगा
1: जी जी जी। बहुत सुंदर जी, नमस्कार, बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही सुंदर स्पष्ट किया आपने। अब यहाँ पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप जरूर जुड़िएगा, प्रश्न का जवाब भी दीजिएगा। चूंडा वत्त मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। तो ऐसी कौन सी क्षत्राणी है जिसने निशानी के तौर पर अपना सिर ही काट करके दे दिया? तो प्रश्न का जवाब भी दीजिए और विषय में भी जरूर भाग लीजिए। नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और रेडियो मधुबन से आप जुड़ सकते हो। आइए सुनेंगे एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: चूंढावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। बहुत सुंदर ये प्रश्न है, इस पर आपको जवाब देना है कि ऐसी कौन सी क्षत्राणी है जिसने निशानी के तौर पर अपने पति को सिर काट करके ही दे दिया। ऐसी क्षत्राणी का नाम आपको बताना है। भाई आप सभी देखिए राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान का ही ये इतिहास है और ये इतिहास तो आपने पढ़ा ही होगा। तो आप जो भी आशियाना सुन रहे हैं ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि इतिहास की बातें हैं तो इतिहास में तो अगर हम बात करते हैं तो और हमारे देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है ज़्यादा, क्योंकि वैसे तो होती है लेकिन कुछ ऐसे हम टॉपिक को लेकर आते हैं या फिर अच्छे अच्छे से गीत सुनते हैं तो उससे और भी हमारे मन में देश के प्रति प्रेम बढ़ता है। और ये राजस्थान का इतिहास है कि ऐसी कौन सी क्षत्राणी है जिसने अपने पति को निशानी के तौर पर सिर काट करके दे दिया है। तो जिन्होंने भी पढ़ाई की हो ज़रूर आप जवाब दे सकते हैं, और पढ़ाई नहीं की है तो ठीक है, फिर तो आपको हम बताएंगे, जवाब देंगे ताकि आप इतिहास को जान सको। तो देखते हैं अब किन्होंने पढ़ाई की है, जवाब आएगा, फ़ोन कॉल्स आएंगे तो पता चल जाएगा। और विषय भी बहुत सुंदर है कि भाई शादी ब्याह तो कर लेते हैं लेकिन रिश्ते नहीं टिक पा रहे हैं, क्या करें। बहुत से पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि बच्चों को इतना उमंग उत्साह से शादी करवाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, माता पिता बेचारे पूरे कहते हैं ना जिंदगी भर की कमाई लुटा देते हैं, उसके बाद रिश्ते नहीं टिकते और इस तरह लड़कियां घर छोड़ करके चली जाती है, बेटा वापिस कुंवारा। बेटी के भी माता पिता को कोई कम दिक्कतें नहीं आती है, दोनों ही परिवार को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर वो दूसरी जगह देखते हैं कि कहीं अच्छा मिल जाए। तो देखिए जीवन में थोड़ा बहुत तो सबके जीवन में तकलीफ होती ही है, और कहते हैं कि कुछ समस्याएं आती है तो हमें भी उस समस्याओं का सामना करने का अवसर मिलता है। अगर समस्या नहीं आती है तो कैसे जिंदगी का आभास होगा कि जीवन में उतार चढ़ाव भी है, एक रस जीवन सभी के जीवन में नहीं होता है। तो कहते हैं कि रिश्ता टूटे उससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत वही सहन कर लो, और सहन शक्ति अगर हाँ वो कहते हैं ना कि लिमिट से बाहर हो जाती है तो स्वाभाविक है एक रबड़ को आप कितना खींचेंगे, ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूटेगा ही। तो रिश्ते भी ऐसे हैं कि अगर मजबूरी से निभाए जाए तो फिर वो टिकेंगे नहीं, टूट जाते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर देखिए अलग अलग समाज की अलग अलग बातें हैं, जैसे सुरेश भाई ने कहा कि भाई दहेज बहुत मांगते हैं और डिमांड पूरी नहीं होती है तो भी इस तरह रिश्ते टूट रहे हैं, तो इस तरह भी होता है। हेलो
2: हेलो नमस्कार जी।
1: हाँ जी नमस्कार नमस्कार, कैसे हो आप बोरीलाल जी? जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या बात है, आप तो हमेशा मुस्कुराहट के साथ ही आते हैं, बहुत अच्छा है। तो आज के विषय के बारे में आप क्या कहेंगे? आज के विषय
2: सवाल भी बहुत अच्छा है, प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है
1: जी।
2: क्या है कि रिश्ते में तो टिकते ही नहीं है ज्यादातर,
1: क्यों नहीं टिकते?
2: लोगों में एक चीज जो सहनशीलता है ही नहीं
1: जी,
2: इसलिए रहते ही नहीं है
1: जी।
2: इसलिए कह रहा हूँ कि दो ही पार्टी को बराबर रहना चाहिए, समानता का अधिकार रखना चाहिए और ज्यादा दहेज वहेज के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ना चाहिए
1: जी जी।
2: ये मेरा कहने का है
1: जी जी, बहुत सुंदर बात है।
2: वो पद्मावती होनी चाहिए मेरे ख्याल से।
1: अच्छा ठीक है,
2: ये मेरा सवाल था।
1: ठीक है तो भूरीलाल जी आप आशियाना कार्यक्रम सुनिए, हम जवाब जरूर देंगे आपका। ठीक है
2: जी, ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम मिलेगा मैं रुकूंगा
1: जी जी,
2: बाकी चला जाऊंगा।
1: नहीं नहीं जाना नहीं है आपको, रुकना है।
2: धंधा करना ही पड़ता है सर।
1: नहीं नहीं धंधा तो देखिए बिजनेस तो पहले वो करिए आप, लेकिन आप ईयरफोन लगा के रखिएगा और सुनते भी रहिए कार्यक्रम, ठीक है, बीच बीच में समय मिले तो जी। बहुत बहुत आभार आपका। तो बहुत ही सुंदर बात कही है कि देखिए सहनशीलता होना जरूरी है, लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं कि लड़कियां भी, एक हमारे ही लिसनर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उनके साथ भी इस तरह की परेशानी हुई है और उन्होंने कहा है कि लड़कियां शादी कर तो लेती है लेकिन फिर वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है, इसलिए थोड़े से अनबन करके घर से चली जाती है और पैसे ऐंठती है पति से, और रहना नहीं है साथ में सास ससुर की सेवा। अरे सास ससुर की सेवा क्या, देखे आजकल तो बूढ़े बूढ़े माता पिता भी अपना काम खुद कर रहे हैं, अपना ही नहीं पूरे घर परिवार का काम कर रहे हैं, तो कौन से हम उनकी सेवा कर रहे हैं। और जरूरत पड़ने पर हम भी तो बीमार हो जाते हैं ना, तो हमारी भी सभी मदद करते हैं, ऐसे वो भी बीमार होते तो उनके मदद उनके सेवा करना बहुत जरूरी है। हेलो
3: जी नमस्कार, ओम शांति।
1: हाँ जी नमस्कार कुपाराम जी, ओम शांति, कैसे हो आप?
3: बस बहुत अच्छे कार्यक्रम सुन रहे
1: जी।
3: पहले तो वो आपका प्रश्न बता देता, वो तो हांडी रानी है
1: जी,
3: और एक बटालियन भी बनी हुई है हांडी बटालियन
1: जी,
3: इसके नाम से हांडा परिवार में हुई है
1: जी।
3: की स्टोरी तो बहुत लंबी है, फिर आप भी बताना
1: जी जी जी।
3: और ये विषय चल रहा है मेरे हिसाब से क्या नए नए होते हैं ना।
1: हाँ जी,
3: ये उनको अभी ये मालूम नहीं, लेकिन तो पूरी दुनिया में ऐसा होता रहा, खटपट वाली बात तो छोड़ना नहीं है, उसके साथ संघर्ष करना है
1: जी।
3: जैसे कोई भी गाड़ी आती है तो ड्राइवर होशियार होगा ना
1: जी,
3: उनको ठिकाना लाता है वो, और रिश्ते तोड़ के वो फिर दूसरी जगह जाएगी भी कहाँ
1: जी,
3: वहाँ भी परेशानी तो वो भी वो खड़ी होगी
1: जी। लेकिन वो कहते हैं कि बहुत ही परेशानी होती है घर में, तो फिर क्या करना चाहिए, बहुत जैसे कोई समझने को तैयार नहीं, लड़ाई झगड़े ताने मारना, तो फिर क्या होगा,
3: वो तो ऐसे करना पड़ता है थोड़ा सा
1: संघर्ष।
3: हाँ संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, वो तो ऐसे थोड़े दिन एक बार पियर रूट के जाते हैं
1: जी,
3: उनकी आदत होती है, वो तो वहाँ भी उनको वो भी परेशानी रहती है
1: जी।
3: फिर या तो उसको मजबूर करेंगे दूसरी जगह जाओ, तो नहीं मुझे तो दूसरी जगह से वही जाना है, तो फिर वो वापस आके तो सीधी होने वाली है
1: जी। चलिए बहुत बहुत आभार आपका।
3: देखो एक बहन जी बात करेगी मेरी
1: जी,
3: आदमी ज्ञाति लेके दो काम करता है ना
1: जी,
3: तो भी घर को नहीं सुधार दे सकता, और महिला बहन है जो सुई लेके काम पे लगे ना
1: जी,
3: तो भी घर को सुधार देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
3: महिला में वो ताकत है
1: जी,
3: लेकिन
1: जी,
3: वो उसकी उसको सोचना है कि मेरे घर को बिगाड़ना है कि सुधारना है, वो उसके ऊपर है
1: जी जी जी।
3: इसलिए समय तो निकल जाएगा, थोड़े दिन उधर गए ना, थोड़े दिन उधर गए ना, फिर के हम तो पीछे रह गए
1: जी,
3: ऐसे तो वो पीछे ही रहेंगे
1: जी जी जी। बहुत बहुत आभार आपका।
3: नमस्कार नमस्कार
1: नमस्कार, बहुत सुंदर बात आपने कही है, आभार आपका। और देखिए ये टॉपिक ऐसा है कि जितनी बात करे उतनी कम है, हर प्रकार के पहलू हुए इसमें, कहीं पर दहेज की डिमांड है, तो कहीं पर पति की ज्यादती है, कहीं पर नशे में ग्रत रहते हैं वो भी पत्नी के साथ अत्याचार करते हैं, और कहीं कहीं पर पत्नियां भी कम नहीं होती है, वो भी पैसे ऐड करके चली जाती है, कोई पैसे मतलब ऐडने के लिए आती है तो फिर वो एट के चली जाती है, लेके चली जाती है, मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि तलाक तो लेती नहीं है भाई, साइन नहीं करूंगी लेकिन मैं रहूंगी नहीं तुम्हारे घर में, और फिर भरण पोषण देना ही पड़ेगा। तो ये भी हर प्रकार के पहलू है, ऐसा नहीं है कि एक तरह की समस्या है, लेकिन सभी का तोड़ यही है कि थोड़ा सा सहन कर लीजिए और समझाने की कोशिश करिए, अगर नहीं समझते हैं, बेसिर पैर की बातें होती है और बिल्कुल समझ ते नहीं है, देख लेते हैं कि साल दो साल तीन साल या पाँच साल में भी अगर ससुराल वाले नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप डिसीजन ले सकते हो। और मैं तो हर माता पिता से भी यही कहना चाहूँगी कि बेटी को अगर आप विदा करते हैं तो उनको यही शिक्षा दीजिए कि भाई आप घर में शांति से और प्यार से रहिए, क्योंकि अगर बेटी की शादी होती है तो वो सिर्फ पति ही उसका सब कुछ नहीं होता है, पति का जो पूरा परिवार होता है वहाँ पर, सास ससुर ननंद भाई देवर जेठ जो भी होते हैं, सभी को सम्मान देना बहुत ज़रूरी होता है, तो ही रिश्ते टिकते हैं। बाकी ठीक है, मैं तो पति का कहना मानूंगी, बाकी सभी का कुछ भी नहीं करूँगी, सामने बोलूँगी जबान लड़ाऊँगी, वो नहीं चलता है। इसलिए परिवार में अगर रहना है, परिवार को टिका के रखना है, तो सभी के साथ प्यार से रहना होगा, और सभी का सम्मान करेंगे तो सभी का प्यार भी मिलेगा। इसलिए पति के घर वालों को भी कहना चाहूंगी कि वो भी आने वाली बहू का दिल से स्वागत करें और उसको एक बेटी की तरह प्यार देवे। मैं जानती हूं कि बहू बहू ही रहेगी, बेटी नहीं बन सकती, लेकिन बेटी का प्यार तो दे सकते ना। कहीं कहीं पर तो देखने को मिलता है कि बेटियों से भी बढ़कर के बहुएं होती है, और पूरे ही अपने पूरे ससुराल वालक जो परिवार का पूरा ही ध्यान रखते हैं, तो हर तरह की बातें आती है इसमें। लेकिन बस थोड़ा सा सहन कर लीजिए, थोड़ा सा एक दूसरे को पहचानिए, एक दूसरे को समझिए, तो ये रिश्ते टिकेंगे और बहुत ही अच्छा भी लगेगा। बाकी तो कहते हैं कि रिश्ते टूटने में तो कोई देरी नहीं लगती, भड़काने वाले कितने ही आ जाते हैं, लेकिन स्वयं को सोचना होता है कि हमें क्या करना है। हमें अपने परिवार को टिका के रखना है, अपने घर गृहस्थी की गाड़ी को टिकाए रखनी है या तोड़नी है। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ। चूंढावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी, तो ऐसी कौन सी क्षत्राणी है जिसने निशानी के तौर पर अपना सिर काट करके दे दिया? जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए बढ़ते हैं गीत की ओर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो भाई, इतने बड़े बड़े त्यौहार आ रहे हैं, कल शरद पूर्णिमा है, फिर दीपावली, दीपावली के आसपास तो कितने सारे त्यौहार होते हैं, और त्यौहारों की तैयारी तो पहले ही कर लेते हैं, इसमें मिठाइयाँ वगैरह भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना करके रखते हैं। कहते हैं ना कि भाई दीपावली का त्यौहार ऐसा है कि बहुत सारे टू मच मिठाइयाँ, नमकीन आइटम बना बना करके रखते हैं, ताकि मेहमान जब दीपावली पर आना शुरू करे तो उनको हम मिठाइयों और नमकीन आइटम के साथ उनका वेलकम करते हैं, है ना। आते हैं तो बहुत प्यार से उनको बिठाते हैं, खिलाते हैं। तो सोचा कि क्यों ना आपको मैं इमरती सिखा दूँ, ताकि आप ऐसे बड़े त्यौहार पर आप इमरती बना सको और अपने गेस्ट को खिला सको। तो सामग्री आपको लिखवा रही हूँ, जलेबी की तरह ही होती है इमरती, लेकिन फिर भी टेस्ट में फ़र्क है, क्योंकि जलेबी बनाते हैं मैदे की, और ये बनाएंगे हम उड़द की दाल की इमरती, और ये भी बहुत टेस्टी लगती है। जलेबी टेस्टी लगती है, इसी तरह इमरती भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो सामग्री आप सभी को लिखवा रही हूँ, 250 ग्राम लेंगे आप उड़द की दाल, ठीक है। फिर आप लीजिए 1 किलो चीनी। अब आप 50 ग्राम दूध ले लीजिए, और 25 ग्राम लेना है मैदा। फिर आप आवश्यकता के अनुसार घी लीजिए, और खाने का मीठा रंग लेना है, ठीक है, जिसको नारंगी रंग भी कहते हैं। तो बस सामग्री फिर से दोहरा रही हूँ, इतनी सी ही सामग्री है, 250 ग्राम उड़द की दाल, 1 किलो चीनी, फिर आप लीजिए 25 ग्राम मैदा, आवश्यकता के अनुसार घी, और 50 ग्राम दूध। फिर आप खाने का ले लीजिए मीठा रंग, ठीक है। अब बनाने का तरीका भी आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ कि इमरती कैसे बनाई जाती है। आप क्या करेंगे, दाल को अच्छी तरह धो करके भिगो दीजिए, ठीक है। दाल कम से कम 4 घंटे भीगी रहने दीजिए, ताकि वह अच्छी तरह से फूल जाए। इसके बाद दाल का छिलका निकालिए, उसे खूब बारीक पीस लीजिए। अगर मोगर है तो आप मोगर को गलाइए, ठीक है। इस तरह आप कपड़े में पानी डाल करके गला कर रखिए, और अगर मोगर नहीं है तो फिर छिलके वाली दाल को भी आप भिगो सकते हैं। 4 घंटे में तो सारे छिलके निकल जाएंगे, तो इन छिलकों को निकाल दीजिए, फिर बारीक पीसना है, ठीक है। पीसी हुई दाल में मैदा और रंग मिला करके परात में आप डालिए, जिसको गुजराती में कचरोट कहते हैं। तो कचरोट में डाल करके काफ़ी देर तक अच्छी तरह उसको फेंटिए। इतना फेंटना है कि फेंटते फेंटते दाल का हल्कापन आ जाए। पहले जब हम फेंटेंगे ना तो हमको भारी भारी लगेगा, लेकिन अच्छी तरह जब फेंटेंगे, फेंटते ही जाएंगे, तो फिर हल्कापन आ जाएगा। इतनी देर तक आपको फेंटना है। फिर एक तवी लीजिए, समतल कढ़ाई भी कहते हैं इसको, तवी जिसमें मालपुआ भी बनाते हैं, तो ऐसी तवी आपको लेनी है, ठीक है। तवी में ही हम ये बना सकते हैं इमरती। तो फेंटी हुई दाल को एक कपड़े में रखिए, स्वच्छ कपड़ा लीजिए, उसमें भरिए फेंटी हुई दाल, ठीक है। इतना लीजिए कपड़े के आवश्यकता के अनुसार, भाई कपड़ा छोटा और दाल का खीरा ज़्यादा भर देंगे ना तो ऊपर से निकलेंगे, जब आप दबाएंगे तो ऊपर से निकल जाएगा सारा खीरा, इसलिए आप कपड़ा ऐसा लीजिए और उसमें आवश्यकता के अनुसार ही इस खीरे को भरना है, ठीक है। और नीचे से काना कर दीजिए, काना बोले तो खड्डा, ठीक है। और फिर ऐसे छोटा सा छेद कर लिया। अब आप तवी में घी डाल दिया, घी गर्म हो जाए तो फिर आप बस कपड़े को चारों तरफ से अच्छी तरह पकड़ लीजिए ऊपर से, और थोड़ा सा प्रेशर दे करके एक अपन चूड़ी कैसे पहनते हैं ऐसे गोल गोल गोल गोल आप डालिए तवी में, ठीक है। जो साइज आपको पसंद है उस साइज में डाल करके फिर आप दूसरी डालिए, फिर तीसरी डालिए, फिर चौथी डालिए, घी के अनुसार, तवी के अनुसार, जो साइज है उसके अनुसार आप इस तरह इमरती डालिए। फिर इसको आप पलटी लगाइए अच्छी तरह, एक तरफ से सिक जाए तो दूसरी तरफ से पलटी लगाइए। पलटी लगाने के बाद इधर आपने जो शक्कर ली है ना, तो उसके आप चाशनी बना लीजिए, ठीक है। चाशनी बनानी है, फिर इस चाशनी ज़्यादा देखिए कड़क नहीं करनी है चाशनी को, एक तार की चाशनी बनानी है, जैसे कि गुलाब जामुन की बनाते ऐसी, ठीक है। और फिर इस चाशनी में आप इमरती को डालते जाइए, तो इस तरह सारी इमरती बना लीजिए। बहुत सरल तरीका है ना। हाँ, ज़रूर आप बना करके देख सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी। और एक नई आइटम बनाते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं, गुलाब जामुन नहीं, इमरती और जलेबी हम बाज़ार से लाते हैं, घर पर बनाते नहीं है। लेकिन घर पर अभी दीपावली का त्यौहार है, बाज़ार से कितना लाएंगे, घर पर बनाएंगे तो अच्छा है ना, थोड़े से क्वांटिटी में बनेगी वही चीज़ और क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि हम अब खुद अपने हाथ से बना रहे हैं, ईश्वर की याद में, प्रभु की याद में बनाते हैं, स्वच्छता से बनाते हैं, तो वो क्वालिटी वाली भी हो जाती है और क्वांटिटी तो बढ़ती ही है। एक किलो आप बाज़ार से लाइए और एक किलो ही आप घर पर बनाइए, देखो कितना बैठती है, तो सस्ती पड़ती है घर पर। ठीक है, तो इस तरह इमरती बनाई जाती है। फिर से मैं तरीका समझा रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह बना सको, तो आप ध्यान से सुनना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो उड़द की दाल ली है ना, उसको आप पानी में डाल करके भिगोइए। अगर मोगर है तो मोगर भिगोइए, नहीं है तो छिलके वाली दाल भी भिगोइए। 4 घंटे तक पानी में भिगो के रखना है, ठीक है, ताकि अच्छी तरह ये दाल फूल जाए। 4 घंटे के बाद जो छिलके हैं ऊपर आ जाते हैं, सारे हटा दीजिए, निकाल दीजिए और फिर इसको बारीक पीस लीजिए। ठीक है, पीसी हुई दाल में फिर आप मैदा और रंग डालिए, खाने का जो रंग लिया है ना वो डालिए, और एक परात में, चौड़े बर्तन में, जिसको कचरोट भी कहते हैं, परात कहते हैं राजस्थान में, हिंदी भाषा में भी परात कहते हैं, गुजराती में कचरोट कहते हैं, चौड़े बर्तन में आप निकालिए और अच्छी तरह इसको फेंटिए। फेंटते समय थोड़ा भारीपन महसूस होगा, जब फेंटते जाएंगे तो हल्कापन आ ही जाएगा, तो इतनी देर तक आपको फेंटना है। ठीक है, अब फेंटने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको अच्छा से इकट्ठा कर लीजिए, और कढ़ाई नहीं तवी रखनी है आपको गैस में, और इसमें घी डालिए आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, और इस खीरे को आप क्या करेंगे, एक स्वच्छ कपड़ा लीजिए, वाइट सूती, ठीक है, इसमें आप भरिए और भर करके चारों ही कोनों को लपेट करके हाथ से पकड़ लीजिए मुट्ठी में। ठीक है, नीचे से एक छेद कर लीजिए और फिर थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर देते हुए तवी में जब घी गर्म हो जाए तो मध्यम आँच पर आप चूड़ी की तरह गोल गोल गोल गोल गोल गोल डालते जाइए। तो जो आपने घी डाला है, तवी की साइज है, उस अनुसार इमरती आप बनाइए, 3, 4, 5 डालिए। ठीक है, फिर आप जाले से इसको पलटी मारिए, जब दोनों तरफ से अच्छी तरह लाल लाल हो जाए तो फिर आप एक तरफ चाशनी बना दीजिए एक तार वाली, और उस चाशनी में फिर आप इन इमरती को डालते जाइए। तो ये इमरती तैयार है। फिर चाशनी जब पी ले वे इमरती, तो फिर आपको निकाल देना है, चाशनी में ही नहीं रखना है। गुलाब जामुन को हम चाशनी में रखते हैं लेकिन इमरती को चाशनी में नहीं रखते हैं। अच्छी तरह वो जब चाशनी पी लेवे तो आप निकालते जाइए, दूसरी इमरती डालते जाइए, उनको निकालिए, फिर तीसरा पाया डालिए, इस तरह इमरती आपको बनानी है। ठीक है, तो चलिए इमरती बन चुकी है हमारी। अब भाई मीठा सिखाया है तो कुछ नमकीन तो ज़रूर बनाना पड़ेगा, परंतु एक ब्रेक के बाद। ठीक है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ मा, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: हो क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में ला।
4: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे इमरती। अब बना देते हैं भाई नमकीन आइटम में चीज की पकौड़िया। बहुत तरह की आपको पकौड़ियाँ सिखा चुकी हूँ, तरह तरह की। देखिए पकौड़ी तो ऐसी है कि बहुत अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं और हर जिस भी तरीके से हम बनाते हैं सभी स्वादिष्ट ही लगती हैं। तो आपको रतालू की, कच्चे केले की, न जाने कौन कौन सी आपको पकौड़ियाँ सिखा चुकी हूँ। आज सोचा कि चीज़ की पकौड़ी आपको सिखाऊँ। तो इसके लिए सामग्री ले लेंगे आप, 25 ग्राम मक्खन, 50 ग्राम मैदा, आधी कटोरी पानी ले लीजिए और 1/4 छोटा चम्मच लेना है लाल मिर्च, चुटकी भर स्वाद के अनुसार नमक और 40 ग्राम के आसपास बारीक कसा हुआ चीज़। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री, ध्यान दीजिएगा। 25 ग्राम मक्खन, 50 ग्राम मैदा, आधा प्याला माने आधी कटोरी पानी, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च, चुटकी भर नमक या फिर नमक और मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालिए, क्योंकि कोई तीखा पसंद करते हैं, कोई मोरा पसंद करते हैं, तो आप पर छोड़ा। फिर 40 ग्राम के आसपास लीजिए बारीक कसा हुआ चीज़। ठीक है, ये तो हो गई सामग्री। बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि पानी में मक्खन डाल दीजिए और पकने के लिए रख दीजिए। जैसे ही उबाल आने लगे एकदम से सारा मैदा डाल दीजिए और लगातार घुमाते जाइए, जब तक कि देखिए आँच को तो आपको स्लो करना है, ठीक है, मध्यम आँच पर ही आपको बनाना है, बिल्कुल बराबर मुलायम न हो जाए तब तक आपको चम्मच से हिलाते रहना है। उसके बाद के इसको बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। लगातार हिलाते हुए एक एक करके कसा हुआ चीज़ और नमक मिर्च मिला दीजिए इसमें। फिर ना अच्छी तरह खीरा तैयार हो गया है। अब आप कढ़ाई में तेल गर्म करिए, फिर मैदे और चीज़ के मिश्रण को एक छोटे चम्मच से गिराते जाइए, ठीक है, और पकौड़ियाँ सुनहरे रंग की तल लीजिए। निकालने के बाद ऊपर से कसा हुआ चीज़ बुरक दीजिए और गरम पेश करिए। तो ये बन गई चीज़ की पकौड़ियाँ। फिर से दोहरा रही हूँ विधि को, ध्यान से सुनिएगा। पानी में मक्खन डाल दीजिए और पकने के लिए रख दीजिए। जैसे ही उबाला आने लगे एकदम से सारा मैदा डाल दीजिए और लगातार घुमाते जाइए, जब तक कि बिल्कुल बराबर मुलायम न हो जाए तब तक इसको हिलाते रहना है। फिर गैस बंद करके इसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने तो देना है लेकिन फिर भी लगातार हिलाते रहना है और एक एक करके कसा हुआ चीज़ और नमक मिर्च मैदा सब इसमें मिला दीजिए, ठीक है। मैदा तो ऑलरेडी हम इसमें गरम कर चुके हैं और अब आप सभी अच्छा मिश्रण ये तैयार हो गया, मसाला इसमें डाल दिया, नमक मिर्च वगैरह। तो फिर आप कढ़ाई में तेल गरम करिए, तेल गरम हो जाए तो मैदे और चीज़ के मिश्रण को एक छोटे चम्मच से पकौड़े की तरह डालिए अगर हाथ से पसंद करते हो तो हाथ से डालिए, तो पकौड़ियाँ सुनहरे रंग की तल लीजिए और निकाल दीजिए। निकालने के बाद ऊपर से और भी आप किसा हुआ चीज़ बुरक सकते हैं। तो ये बन गई गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। तरह तरह के स्वाद की, अलग अलग प्रकार की पकौड़ियाँ आपको सिखाते रहते हैं, तो चीज़ की पकौड़ी भी आप बना करके ज़रूर खाइएगा, बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट है। तो चलिए, इमरती और पकौड़ियाँ तैयार है, तो देर किस बात की, लीजिए एक स्वच्छ थाली। थाली में आप ये एक प्लेट में इमरती रखिए, एक प्लेट में चीज़ पकौड़ी रखिए और जो भी कुछ आपने बनाया है रखिए। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास पर के भी रखिएगा। ऊपर से थाल पोश ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद ले सकते हो चीज पकौड़े का, ठीक है। और आज का प्रश्न बड़ा सुंदर था, लेकिन हमारे श्रोता बंधु लगते हैं कि या तो शरद पूर्णिमा की तैयारी कर रहे हैं या फिर दीपावली की साफ सफाई में खोए हुए हैं। इसलिए देखे, हमारी बहनें तो जुड़ी नहीं पाती है क्योंकि वो साफ सफाई कर रही है घर की। चलिए, वो भी बहुत जरूरी है। प्रश्न था कि चूंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो क्षत्राणी। ये राजस्थान का बहुत अच्छा इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। बहुत ही बड़ी बात है कि चूंडावत ने जब सेनानी के तौर पर, निशानी के तौर पर अपनी पत्नी से मांगा, युद्ध में जा रहे थे और युद्ध में जाते जाते याद आ गई पत्नी की, तो फिर से लौट आए और लौट करके पत्नी से निशानी मांगी। और पत्नी ने सोचा कि अगर ये मेरे ही याद में खोए रहेंगे तो युद्ध को क्या खाक जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि न रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, और उन्होंने अपना सिर काट करके दे दिया। ऐसी क्षत्राणी का नाम है हाड़ी रानी, जो आप सभी ने सही जवाब दिया है। सिर्फ एक भूरी लाल जी का जवाब गलत है, उन्होंने पद्मावती कहा है। पद्मावती ने जौहर किया है, उन्होंने शीश को नहीं काटा है, यह हाड़ी रानी ने करके दिखाया है। तो सबसे पहले जवाब दिया है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, फिर सुरेश भाई झोटाना से और फिर कुपाराम जी ने। आप सभी ने सही जवाब दिया है, बोरीलाल जी का जवाब गलत है। तो आप सभी के लिए, जिन्होंने सही जवाब दिया है, आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। और अब मैं दहेज प्रथा पर एक सुंदर कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। नारी का न करो व्यापार, नारी का न करो व्यापार, स्वयं जिसे कहते तुम लक्ष्मी क्यों कर रहे फिर उस पर तुम अत्याचार। स्वयं जिसे कहते तुम लक्ष्मी क्यों कर रहे फिर उस पर तुम अत्याचार। दौलत के तराजू पर तोल के, दौलत के तराजू पर तोल के छीना तुमने उसका अधिकार। नारी बिन जीवन है सुना, नारी बिन जीवन है सुना, थोड़ा तो करो विचार। कभी संगिनी कभी भगिनी बन, उसने लुटाया तुम पर प्यार। कभी संगिनी कभी भगिनी बन, उसने लुटाया तुम पर प्यार। दौलत के नशे में डूबे ए मानव, लूट लिया तुमने उसकी खुशियों का संसार। अब भी समय शेष है देखो, अब भी समय शेष है देखो, करो स्वयं में जागरूकता का संचार। कुरुतियों से ग्रसित समाज का, कुरुतियों से ग्रसित समाज का तुम करो अब बहिष्कार। त्यागो कुंठित सोच को अपनी ए मानव, त्यागो कुंठित सोच को अपनी ए मानव, करो परिवर्तित अपना व्यवहार। हो सके जिससे समाज में, हो सके जिससे समाज में स्वस्थ मानसिकता का निर्माण। बंद करो दहेज प्रथा, नारी का न करो व्यापार, बंद करो दहेज प्रथा, नारी का न करो व्यापार। स्वयं जिसे कहते तुम लक्ष्मी, स्वयं जिसे कहते तुम लक्ष्मी क्यों कर रहे फिर उस पर अत्याचार, क्यों कर रहे फिर उस पर तुम अत्याचार।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार श्रोता बंधुओं, आपका अपना सामुदायिक रेडियो मधुबन 107.8 FM जो प्रस्तुत करता है कार्यक्रम हिंसा को नो, मैं आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों, अक्सर समाज में देखने को मिलता है कि अगर पत्नी पति से ज्यादा पढ़ी लिखी होती है तो पति उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और बात बात पर शक करता है और गलत शब्द व मारपीट से प्रताड़ित करता है। अगर महिला व्यवसाय या फिर नौकरी के लिए कहती है तो फिर पूछे मत कि उसके साथ क्या नहीं होता। हिंसा की सारी हदें पार हो जाती है। इससे महिलाओं के जीवन पर तो गहरा असर पड़ता ही है, साथ ही साथ बच्चों के बाल मन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। समाज मजबूत होने के बजाय कमजोर पड़ने लगता है। तो सुनेंगे एक ऐसा नाटक जिसका विषय है हिंसा का महिलाओं व समाज पर पड़ने वाला प्रभाव।
1: आज आपको आबू के एक गांव में ले चलते हैं, जहां पत्नी काजल अच्छी पढ़ी लिखी और समझदार है, प्रेग्नेंट भी है, और पति विक्रम काजल से थोड़ा कम पढ़ा लिखा होता है। वह बात बात में काजल पर शक करता है, प्रताड़ित भी करता है, गलत शब्दों का प्रयोग भी करता है। तो चलिए चलते हैं इस परिवार में और देखते हैं क्या हो रहा है।
2: कठे जा रही है पूनम?
3: मारे नौकरी लागी है, इन वास्ते मैं काम पे जा रही हूँ।
2: कतरो बढ़िया है तू नौकरी करे और हमेशा मस्त रहे।
3: तो काई हुओ, तू भी तो पढ़ी लिखी है, काम काज कर सके।
2: मैं नौकरी नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं कौन ही कर सकूं नौकरी, मने तो बारे जाता भी धरप लागे।
3: क्यों काई भियो, क्यों नहीं कर सके? तू भी तो पढ़ी लिखी है, कटे तारा हस्बैंड तो मना नहीं करे?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, दरअसल मैं प्रेग्नेंट हूँ।
4: काजल, बाने क्या कर रही, घर में आओ, सुबह सुबह बाने गप मारवा पड़ेगी।
2: पूनम, मैं जाऊँ, घर में काम है।
3: हाँ हाँ, मैं भी जाऊँ, चल बाय।
4: क्या कर रही है बाने?
2: मारे आपने कहीं कहनो है?
4: हाँ कहीं के बोल।
2: मैं भी कहीं काम करवा चाहूँ, पढ़ी लिखी हूँ, आप दो ही मिलना काम करो तो आपनो घर अच्छो चाली।
4: कई बोली, घर को काम तो होवे को नहीं थारती, अनन चाली काम करवा। आज का बात लोगा ने देखन, एडी बात सोची ने, तुम्हारती बुरो कोई नहीं वेला। हाँ समझी, आई बड़ी काम करवा वाली, दूसरा पुरुषा का मुंडा लागना, जो काम करवा जानो थारे, मैं सब जान रही हूँ थारे लोगाया ने।
2: ओथे कोई, मैं तो एड़ो कदी सोचो ही को नहीं सको।
4: मैं थार सो कम पढ़ियो लिखियो, इन वास्ते अभिमान करे खुद पे।
5: क्या हुआ आपके साथ, आप कैसे गिरी?
2: मैं मुझे
5: साफ साफ बोलो, हुआ क्या है?
2: मारो पाँव फिसल गयो, मैं पड़ गई।
5: संभल कर चलो, अब तुम्हारा बच्चा नहीं रहा।
1: तो देखा आपने, इतनी हिंसा सहन करने के बाद भी महिला अपने पति के आंख दिखाने की वजह से डर गई और डॉक्टर के सामने झूठ बोल दिया। यहां पर भी स्वयं को दोषी समझ रही है महिला। जब तक हिंसा सहती रहेगी तब तक पुरुष किसी न किसी प्रकार से महिला को टॉर्चर करता रहेगा। आइए देखते हैं पूनम और पूनम के पति क्या बात कर रहे हैं।
6: पूनम, काले थो विक्रम की वाइफ से बात कर रही ही, तो विक्रम क्यों चिल्ला रहे हो?
3: तेरी को नाम मत लो, एकदम जंगली इंसान है, जंगली।
6: अरे भाई काई बताओ तो ठा पड़े।
3: काई बोलू, काले काजल और मैं खाली हुई कामकाज की बात कर रहा हा, तो विक्रमान चिल्लावा लाग गयो और घर में जान काजल के थप्पड़ मारी। धक्को भी दी दो जिकाऊ विके 4 महीना को गर्भ पड़ गयो, केवा को मतलब गर्भपात हो गयो। अभी हाल ही में हॉस्पिटल से आ रही हूँ। और सुनो, काजल का पति का आंख दिखावा सु काजल डर गई और डॉक्टर का सामने भी झूठ बोली कि मारो पैर फिसलवा की वजह से मैं पड़ी।
6: या तो कोमल की गलती है, जत्री दर पी वत्री दर पाई, एड़ी बात है पूनम की, कोई अपनी पत्नी ने आगे बढ़ावो छावे तो कोई दर्पान रखे, कते मारी पत्नी आगे बढ़ जाए तो मारी वैल्यू कम हो जाए। तो एड़ा पुरुष महिला ने मानसिक आर्थिक रूप से टॉर्चर करन कमजोर बना देवे है, ताकि वह कतरी भी पढ़ी लिखी क्यों न वे, फिर भी वह हर पल दरबती रहे, अंदर ही अंदर कमजोर हो जावे, काम करवा की सारी इच्छा ही मर जावे, न किने बता सके न कोई विने महसूस कर सके, जीण पे बीते विने ही था पड़े। एड़ा माहौल सु कतरी बार महिला के तो डिप्रेशन को शिकार हो जावे के पछे सुसाइड कर लेवे।
1: नारी शक्ति में भी गजब की ताकत होती है सहन करने की। पति कितना भी जुल्म क्यों न करे, पत्नी चुप रहेगी, सब कुछ सहती रहेगी। तो देखते हैं इसका समाज पर किस तरह प्रभाव पड़ता है। ले चलते हैं एक और परिवार में। यहाँ दादी और पोते के बीच क्या बात हो रही है। दादी अपने पोते से थोड़ी नाराज भी है, क्यों सुनते हैं।
7: दादी मुझे अपना गाँव अच्छा नहीं लगता है।
8: क्यों कई हुआ चोरा जो आपनो गांव खराब लागे थाने।
7: मैंने जहाँ पढ़ाई की वहाँ का माहौल देखते हुए मुझे यहाँ रहने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है।
8: अरे क्यों बोले बेटा।
7: मैंने अपने मामा के गांव में रहकर पढ़ाई की है, वहाँ पर खेल के बड़े बड़े मैदान हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉलेज हॉस्पिटल सिनेमा घर हर तरह की फैसिलिटी है। अपने यहाँ दादी ऐसा क्यों नहीं है।
8: समाज में शिक्षा की कमी है बेटा।
7: मतलब दादी मैं समझा नहीं।
8: देख बेटा अपना गांव में पढ़ा लिखा लोग तो कम है, पर शराबी तने हर घर में मिल जाए।
7: तो उससे शिक्षा और समाज का क्या मतलब है दादी।
8: पुरुष लोग नशा में डूबा रहे बेटा, तो ना बच्चा को ध्यान रख सके ना परिवार को।
7: ओहो अब समझा, इस वजह से शिक्षा का अभाव है यहाँ पर। अच्छा दादी यहाँ की महिलाएं तो खुश है ना।
8: काहे की खुश बेटा, रास्ते में जब चार जना मल शराब पीवे तो महिला तो वटू निकल भी नहीं सके, और घर में तो शराब पीन महिलाओं का साथ में मारपीट करे, हिंसा करे, विको प्रभाव महिला पे तो पड़े और बच्चा पे भी जबरदस्त पड़े है बेटा। जेड़ देखे वेड़ो सीखे या कहावत है, और आगे चालन वे भी एड़े ही काम करे, और ये सब कारणों समाज कमजोर पड़े।
7: क्या दादी मारपीट भी होती है, यह तो हिंसा है, यह तो बहुत ही गलत है। मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मैं आगे की पढ़ाई वही करूँगा, मुझे नहीं रहना ऐसे गाँव में।
8: अरे बेटा एड़ो क्यों सोचे, थारे अपना गाँव सु वाकिफ होना भी तो जरूरी है बेटा।
7: दादी शराबियों से तो मुझे बड़ा डर लगता है, महिला और लड़कियाँ तो अपने आप को अनसेफ महसूस करती होंगी, वह घर से बाहर भी कैसे निकलेगी और कोई काम भी कैसे करेगी, फिर जब किसी घर या गांव का यह हाल होगा तो समाज पर तो इसका बुरा प्रभाव पड़ना ही है।
8: हाँ बेटा सही बात है, तू भाग्यशाली है जो तने अच्छो माहौल मिलियो है।
7: हाँ दादी जहाँ मैंने पढ़ाई की वहाँ के सभी लोग अच्छे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, महिलाएं भी काम करती हैं, और पुरुष महिलाएं एक दूसरे की मदद करते हैं और इज्जत भी करते हैं।
8: मैं थारा सु नाराज हूँ, मैं कह रही हूँ अपना गावरी एड़ी दशा है, फिर भी तू जिद पकड़ रखी है कि मारे हटे कोनी पढ़नो। खुद को स्वार्थ छोड़, अपना गावरी सोच, तू एक अच्छो इंसान है, अगर एक इंसान भी कोशिश करे तो देख दूसरा भी धीरे धीरे भी ने देखन बदलू, और एक दिन समाज भी अच्छो हो जाए, थारा मामा को गाँव है वेड़ो अपनो गाँव भी हो जाए। बेटा तो तू मने के आगे की पढ़ाई तू अटे ही करी, और सुन तू कोई भी एड़ो वेड़ो कई काम मत कर जे जिससे समाज पर बुरो प्रभाव पड़े।
7: हाँ दादी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े, और मैं इतनी पढ़ाई करूँगा कि एक दिन बड़ा आदमी बन सकूँ और अपने गांव में बदलाव ला सकूँ। और दादी गुस्सा छोड़ो, 11वीं 12वीं की पढ़ाई मैं यही करूँगा।
8: वाह बेटा वाह, जीता रो।
1: बीजू ने अपने गांव के बदलाव के लिए आखिरकार दादी की बात मान ली और गलत काम नहीं करने का वायदा भी किया। तो दोस्तों इस तरह हर एक व्यक्ति सोच ले कि मुझे अपने गांव के विकास में योगदान देना है, तो वह दिन दूर नहीं जब घर परिवार समाज और गांव सब कुछ मजबूत होगा और उस गांव में खुशहाली बनी रहेगी।
0: तो देखा दोस्तों आपने कि आखिरकार दादी अपने पोते बीजू को गांव में रहने के लिए मना ही लेती है और उसको ये भी समझाती है कि भविष्य में वह कभी भी गलत काम नहीं करे। बीजू भी अपने गांव के तरक्की के लिए रुक जाता है और गलत काम नहीं करने का प्रॉमिस करता है। तो इस तरह हर युवा सोच ले कि मैं कभी भी गलत काम नहीं करूंगा और मेरे गांव के विकास में योगदान करूंगा तो सचमुच एक मजबूत समाज का विकास हो सकता है। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो ठीक इसी तरह के कार्यक्रम लेकर के और भी आपसे मिलेंगे। अभी के लिए आप सभी से अनुमति चाहेंगे। सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। इसको और अधिक समझने के लिए सुनेंगे एक गीत आरजे उषा के द्वारा। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में आशा मामा सब हार्दिक नमस्कार कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरा संपर्क हो तब से मना जिंदगी को एक नयो दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इन्हें सब मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारा लोगों ना बोलूंगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगाकर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाना। फिर

0: रुक, ओए रुक का रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सर सरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, ओए इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं होलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते तो आज हमें खुशी है क्योंकि राजकीय विद्यालय और ईश्वरीय विद्यालय दोनों विद्यालय का मिलित सहयोग से आज बच्चों का भावना भाव को और उनका पास जो विकास जो अंदर में छुपी हुई प्रतिभा है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच दे रही है क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा प्रयास है। तो हर विद्यालय की तरफ आज हम राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय झामर में पहुंचे तो आज बच्चों का हुनर को बारी बारी आपको सुनने को मिलेगा क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और खासकर वनांचल जो कि आदिवासी बेल्ट में बच्चे जो रहते हैं तो पूरा अनुशासन में रहते हैं, उनको चुप्पी कराने में कोई मेहनत नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि वो इशारा से समझ जाते हैं। और शहर बच्चे तो पूरा उदम मचाते हैं लेकिन ग्रामांचल बच्चे बहुत शांत हैं, स्वभाव है और जो कहेंगे उस तो बैठे हो तो बैठे रहेंगे और शहरी बच्चे तो बहुत आनाकानी करते इधर उधर करते लेकिन हमारा बच्चे सभी बच्चे अच्छे हैं। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए सभी को स्वागत करते हैं और इस संस्था का जो HM सर को भी धन्यवाद देते हैं और सभी स्टाफ गाइडेंस में उनका परमिशन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी बच्चे भी तत्पर है। तो सभी अपना अपना नाम का साथ और प्रस्तुति सुनाएंगे लेकिन कोई भी कार्य शुरू करते तो पहले प्रार्थना होता है तो हर विद्यालय में प्रार्थना सत्र में बच्चे प्रार्थना करते तो आज इस कार्यक्रम में रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल में भी बच्चों का प्रस्तुति पहला प्रस्तुति होगी खासकर एक सरस्वती वंदना। तो इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में हमारा सभी देख रहे हैं और हमारा शिक्षकगण भी उपस्थित है तो हम उनको थोड़ा सा परिचय देंगे, बच्चों को वार्म अप करा देंगे। सर अपना परिचय देंगे क्योंकि आपको देखकर बच्चे भी अपना आवाज को बुलंद करेंगे, आप अपना परिचय थोड़ा दीजिए।
1: मेरा नाम अर्जुन से है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जामन में छात्रों को अध्यापन कराता हूँ।
0: जी सर।
1: विद्यालय में करीबन 218 छात्र छात्रा अध्ययन रहते हैं।
0: जी सर।
1: और पूर्णतया आदिवासी विद्यालय है, दूसरी जाति के कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता है, सभी आदिवासी बच्चे ही पढ़ते हैं।
0: जी सर।
1: और आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आप बता रहे आपका स्वागत है और आप बच्चों को जो गाइडेंस दे रहे वो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है।
0: जी सर। तो वार्म अप करा दिया मेरा अर्जुन सर, नाम जैसे अर्जुन तो काम भी अर्जन करते हैं और बच्चों को जो अर्जन करते हैं सबको पहुंचाते हैं। मैंने बहुत साल से सर को देखे हैं इस विद्यालय में, पूरा कंस्टेंट और ईमानदार से काम करते हैं बच्चों को जो सर्वांगीण उन्नति के लिए, पढ़ाई हो चाहे नैतिकता हो चाहे बौद्धिक ज्ञान हो चाहे सामाजिक ज्ञान हो, सब में तत्पर रहते। तो बच्चों को वार्म अप करा दिए तो बहुत खुशी लग रहा है, सभी इन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे लेकिन अल्प विराम के बाद हम सुनेंगे बच्चों का आवाज को लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा सर को धन्यवाद, आभार।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है और बच्चों को वार्म अप कराने के लिए हमारा अर्जुन सर पूरा सबको अर्जित करा देंगे। और जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण का कितना शिक्षा महाभारत में, अर्जुन जो भी प्रश्न पूछेगा श्री कृष्ण भगवान पूरा गीता ज्ञान सुनाते हैं। तो हमारा अर्जुन सर आज ज्ञान का जिज्ञासा हिसाब से सभी बच्चों को भी इस कार्यक्रम का माध्यम से वार्म अप करा दिए और अर्जुन करते हैं अर्जुन सर, तो जो अर्जुन करते हैं वो सबको देते हैं। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो छात्र है हमारा उपस्थित है वो प्रार्थना के रूप में शुरू करेंगे, अपना नाम बताएंगे और कौन सा क्लास तुम्हारा नाम।
1: मेरा नाम
0: हाँ
1: ममता है, मैं राजकोट प्राथमिक विद्यालय दामर से हूँ।
0: वेरी गुड, नेक्स्ट। आज तो खुशी
1: मेरा
0: लग रहा,
1: नाम लीला है, मैं राजकोट प्राथमिक विद्यालय जामर में पढ़ती हूँ।
0: क्या बात, क्या सुंदर आवाज है।
2: मेरा नाम अंजलि है और मैं राजकोट प्राथमिक विद्यालय में।
3: मेरा नाम सीमा है, मैं राजकोट प्राथमिक विद्यालय जामर में पढ़ती हूँ।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सीमा अंजलि और साथियों को, क्योंकि उनका आवाज ही उनका पहचान होगा। खुशी लगता है बच्चों को एक मंच जो आवश्यकता था आज वो मंच मिल रहा है। कभी सोचा नहीं था भाई हमें आकाशवाणी में हमारा आवाज जाएगा, रेडियो में माइक में हम पकड़ कर हम बात करेंगे। ये तो सरकार को धन्यवाद देते, सरकार का मंचा जो है एक कम्युनिटी रेडियो, कम्युनिटी को दिए आप लोग का रेडियो है, आपको दिए है सरकार ने आप अपना आवाज को बोलने के लिए। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रार्थना के रूप में सभी अपना साथ हम है और हमारा श्रोता मित्र भी अपना वॉल्यूम को तेज करते हुए इस स्कूल के विद्यार्थियों का होबनहार विद्यार्थियों का जो प्रतिभा है वो आज आपको सुनेंगे, लेकिन स्वर लय और ताल का साथ जो संगठित रूप में अपना प्रस्तुत करेंगे। तो लीजिए।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति की। और खासकर जब इस तरह कार्यक्रम में माँ सरस्वती को याद करते हैं, बस कोई भी देवी देवता को याद करते हैं, ना कुल देवी कुल देवता को याद करते हैं, तो हमारा कार्यक्रम सुंदर और सरस होता है, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी हो जाता है। तो बच्चे को एक मंच मिल रहा था, कभी रेडियो में बोलने के लिए कभी मौका मिला था तुम लोग को?
1: नहीं,
0: लेकिन आज मौका मिला है। खुशी लग रहा है माइक में बोलने के लिए? खुशी लग रहा है
1: जी।
0: कितना खुशी लग रहा है? अच्छा, सुनने वाले को खुशी लग रहा है? कितना खुशी लग रहा है बच्चे? बहुत खुशी। खुशी खुशी में रहना है और खुशी बांटना है। आज हमारा बच्चिया खुशी बांट रहे हैं, तो खुशी बांटने के लिए आप सबको धन्यवाद देते हैं। और बच्चे भी हमारा तन के लिए थोड़ा ताली बजा दो बच्चे, क्योंकि ताली बजाने में एक्सरसाइज हो जाता है और चेहरा गोलाब फूल जैसे खिलता है। कोई मायूस नहीं, कोई नाराज नहीं, सब झिझक दूर करके आज रेडियो कार्यक्रम में सुंदर रूप में सजा रहे हैं। तो
1: अंजलि,
0: अंजलि तुम्हारा दोस्त का नाम बताओ?
1: सीमा।
0: हाँ, इसलिए दोनों मिलकर गीत गाए। तो अंजलि नाम कौन रखा है? बहुत सुंदर नाम है, बहुत सुंदर। अंजलि कौन रखा है?
1: मम्मी पापा ने रखा।
0: मम्मी का नाम क्या है?
1: रेखा बहन।
0: और बाप का? बाप रो
1: देवा भाई।
0: क्या करते बाप जी? बाप क्या करते हैं?
1: डीजे का काम करते हैं।
0: ओ बाप रे, पूरा इसलिए तो आवाज का दुनिया में है, इसलिए भी आवाज का माइक में गीत गा रहे हैं ना। उसका पिताजी आवाज का दुनिया में डीजे चलाते हैं, बहुत अच्छा। और बड़ोकर क्या बनेगी अंजलि?
1: पुलिस बनेगी।
0: पुलिस, वाह, लगता तो इतना जो बच्ची है सबसे हट्टा कट्टा तो यही है, पर पुलिस के लिए फिट है ना, बहुत अच्छा। पुलिस का काम क्या होता है अंजलि?
1: लोगों की रक्षा करनी।
0: हाँ, कोई बोलता है चोर को पकड़ना, ये बोलते लोग को रक्षा करना है, सेफ सेफ्टी। वाह, इसलिए कराटे भी सीखना होता है ना। खेल खेलते हैं
1: जी?
0: हाँ, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट हमारा साथ। और सीमा तुम बताओ, तुम्हारा अच्छा टीचर कौन है?
1: ममता।
0: कौन अच्छा शिक्षक तुम्हारा? मैम हो चाहे सर, बताइए कौन सा सर ना? सभी सर अच्छे लगते हैं
1: जी।
0: सभी सर अच्छे लगते हैं? अरे वाह, बहुत होशियार बच्ची जी, हम कॉपी कर लिए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ये था खासकर बच्चों का दिल का भावना, बड़ों को क्या बनना चाहते, इसका श्रेय किसको जाता है और उनका फेवरेट क्या क्या है, पसंदीदा वो भी बताए। ऐसे बच्चों को मौका मिलता है तो चौका छक्का लगा देते हैं, और आज इस कार्यक्रम को तो पूरा है चार चांद लगा दिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सुनते हैं और एक प्रस्तुति और अंजलि एंड दोस्त, अंजलि एंड पार्टी सब मिलकर पुनः उनको स्वागत करेंगे। चार छात्राएं हैं और ये स्कूल का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि कर रहे हैं और करेंगे आगे के लिए भी। जहां भी रहे, जैसे भी रहे, जितना दूर भी रहे, फिर भी खुद का कल्याण, परिवार का कल्याण, विद्यालय का भी कल्याण और नाम रोशन गांव का भी करेंगे। तो और एक प्रस्तुति, अंजलि एंड पार्टी को स्वागत करते हैं रेडियो कार्यक्रम में। और हमारा बच्चे सुन रहे हैं, बड़े सुन रहे हैं, प्रशासन सुन रहे हैं, हमारा सीबीओ साहब हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे हमारा प्रशासन ने जो जो इस कार्यक्रम को सुन रहे, जहीं पर भी, चाहे इंटरनेट का माध्यम से, चाहे आपका माध्यम से, चाहे लिंक का माध्यम से, चाहे एफएम का माध्यम से सब तक पहुंच रहे, कोई भी भामाशाह हो, कोई भी हमारा हिताधिकारी हो, जनहित में जो तत्पर रहते स्कूल को जरूर याद करेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ आप भी देखिए, आइए उनका आवाज को सुनिए। तो लीजिए अगला प्रस्तुति।

0: राम है।
1: सही में बच्चा बच्चा राम है। और आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम काल तक हम पहुंच रहे हैं, जब भारत का आजादी का 100 साल बनाएंगे। हमारा देश का बच्चे जो हमारा विद्यार्थी आज इस तरह कार्यक्रम के माध्यम से अपना भाव को भावना को और देश प्रति जो भावनाएं देखने को मिलता है, और हर विद्यालय में बच्चों को इस तरह देशभक्ति में ओतप्रोत होकर आगे बढ़ाने के लिए मौका देते हैं, और उनको देखकर छोटे बच्चे भी, उनका छोटे छोटे कक्षा के बच्चे भी सीख जाते हैं बड़ों को देखकर, क्योंकि ये लोग तो पास आउट हो जाएंगे। अंजलि अभी कौन सा क्लास में तुम? अंजलि
0: 8th क्लास।
1: अगला बार तो यहाँ पर 9th क्लास नहीं, फिर मुंतला की कहाँ पर जाना पड़ेगा। तो अंजलि को अभी जो सुन रहे, अगला बार नेक्स्ट अंजलि फिर अगला साल तैयार हो जाए गीत गाने के लिए, है ना सीमा? ऐसे बच्चों को गीत सिखा कर जाना, अगला साल तक हो जाना चाहिए, है कि नहीं? सभी बच्चे अगला साल आप लोग कर पाएंगे? हाँ हाँ जी, क्या बोलेंगे? हाँ ऐसे, क्योंकि अंजलि तो चला जाएगी अगला साल। कहाँ जाएगी अंजलि?
0: मुंतला।
1: गुड, क्योंकि नजदीक मुंतला सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और वहाँ पर सब सुविधा पीएम श्री हो गया है ना, पीएम श्री ना सर? क्या बात है, आपका अब्रोड में पीएम श्री कितना स्कूल है? एक ही ना, कितना स्कूल सर अब्रोड में? वाह, ताली बजा रहे मुंगतला के लिए। मैंने गया था पीएम श्री स्कूल में, जब गए पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगतला में रिकॉर्डिंग किए बच्चों का, और वहां पर क्या सुविधा है, ब्यूटी पार्लर बच्चों के लिए, ऑटोमोबाइल, सब कुछ सीखने के लिए फ्री में, नौकरी मिले चाहे नहीं मिलेगी, लेकिन हम

0: आत्मनिर्भर बन पाएंगे। हम सब आत्मा है ना, आत्मनिर्भर क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर बन पाएंगे, खुद कमाएंगे, किसका ऊपर डिपेंड नहीं है, खुद कमाएंगे। कमाएंगे कि नहीं,
1: कमाएंगे।
0: अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छा लिखेंगे पढ़ेंगे तो जरूर हमारे पास साधन आएगा और हमें अच्छा रह पाएंगे और देश के लिए बहुत अच्छा काम में आएगा। हम एक एक अच्छे हैं, सभी विशेष यूनिक है, हमारा जैसे कोई है नहीं, ऐसे सोचो। हम सबसे अच्छे क्या बोलेंगे, हम सबसे
1: अच्छे,
0: क्यों हम सच्चे मन से पढ़ते हैं, क्योंकि हम सच्चे मन से पढ़ते हैं।
1: लीला
2: लीला बात,
0: भगवान का लीला अपरंपार कहते हैं, भगवान जो रचा संसार अपरंपार, लीला उनका अपरंपार प्ले ड्रामा है ना। तो लीला बड़ा कर तुम क्या बनेगी,
1: टीचर बनूंगी।
0: वेरी गुड, टीचर। टीचर का काम क्या होता है,
1: पढ़ाई करना।
0: हाँ, टीचर भी काम नहीं है, पुलिस भी काम नहीं है, क्योंकि ये सब देश के लिए काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, सुरक्षा हो। और छोटे बच्चे जैसे आप लोग आते हैं, आपको कच्चा मिट्टी जैसे आते हैं, शिक्षक टीचर लोग क्या करते हैं, मूर्ति बना देते, सुंदर सुंदर मूर्ति है ना। तब भी टीचर का इसलिए महिमा ज्यादा है। शिक्षक को कभी भूलना नहीं चाहिए, माता पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए, और अपने को भी कभी भूलना नहीं चाहिए। चलिए और एक दोस्त है, हेलो नाम बताओ।
1: ममता।
0: हाँ क्या ममता है, ममता मतलब क्या है, स्नेह प्यार है ना, ममता माँ का, ममता माँ की ममता, प्यार दुलार। कौन रखा है ममता, नाम कौन रखा है?
1: मेरी मम्मी पापा ने।
0: मम्मी पापा ने रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मम्मी पापा भी सुन रहे तो जरूर स्कूल के बच्चों का भी आवाज को सुन पा रहे होंगे और खासकर सोचेंगे यार हमारा ममता तो आज नाम रोशन किया, हमारा नाम भी आज रेडियो में बताया, सभी लोग सुन रहे ममता जैसे, सभी बच्चे भी सुन रहे। लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक अंतिम प्रस्तुति लेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: ओए रुका, रुक।
1: हाँ कहिए।
0: अजी कहना सुनना, आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, और अगला कड़ी में पुनः स्वागत करते हैं अंजलि एंड सीमा को और उनका दोस्त लोग भी जो कि ममता और लीला ममता।

0: सर आप बचपन में कुछ खेल कूद वगैरह कुछ में इंटरेस्ट है?
1: बस वो कभी क्रिकेट वगैरह खेल लेते थे, और उस टाइम जो खेलते, जो अपने फोन फोन वगैरह नहीं थे, तो उस टाइम वो लंगड़ी वगैरह खेलना, ना कोई गिल्ली डंडा खेलना, ना कंचे खेलना, ना वो ज्यादा अच्छा लगता था उस टाइम।
0: हाँ, उस समय का बिना मैंने उस समय डिजिटल नहीं था, उस समय मैनुअली सब कुछ, जैसे सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बच्चे इस कार्यक्रम को सजेंगे और एक एक मोटिवेशनल हो गया संग गाएंगे।

0: मत बैठो।
1: क्या बात, सही में कुछ करना है तो ऐसे मन को मत मारो, मन को पूरा शांत मत करो, मन को थोड़ा उमंग उत्साह दिलाकर कोई भी काम करो तो जैसे सभी अपना अनुशासन में चलते हैं, बच्चे भी अनुशासन में चलते हैं तो अच्छे बन पाएंगे। सुबह उठना, स्नान पानी करना और मंजन करना, इसके बाद फ्रेश होकर स्कूल को आना, फिर स्कूल में अच्छा पढ़ाई करके फिर घर जाना, फिर होमवर्क करना, फिर एक दिनचर्या होता है दिन भर उनका एक काम रूटीन, जिसे सूरज भी चांद भी अपना नियम में चलता है, हम भी अपना नियम में चलेंगे, अनुशासन में चलेंगे तो जरूर हमारा लक्ष्य स्थल में पहुंच पाएंगे, जो चाहे वो कर सकते हैं। जैसे चांद का उदाहरण दिए, सूरज का उदाहरण दिए, सब अपना अपना, जैसे हवा भी अपना गति से, पानी भी अपना गति से जाती है, तो हम भी अपना गति को क्यों रुके। तो हमारा मन को कभी मारना नहीं है, हमारा मन और बुद्धि को सशक्त बना के, उमंग उत्साह भर के हर काम में दिल के साथ प्यार के साथ नियमित करेंगे तो जरूर कामयाबी होंगे। जो लक्ष्य रखे बड़े होकर, कोई बोलता टीचर बनेंगे, कोई पुलिस, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई कलेक्टर भी बन सकते हैं। इस कार्यक्रम का माध्यम से सुंदर में प्रस्तुति दिए, सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। और एक प्रस्तुति सार का इच्छा है करने के लिए, एक गीत प्रार्थना के रूप में, और एक गीत होगा लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है, इसके कारण ये बुराइयों बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद, भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहां से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहां है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा, भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है। ये समझ में आएगा, ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद, भोगवाद, ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है, उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं, चंगलवाद, भोगवाद के कारण।

0: अगला कड़ी में हम सब पुनः मिल रहे हैं। आप सब सुन पा रहे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झामर का आवाज, बारी बारी प्रस्तुतियां मिल रहे हैं। और सीमा, अंजलि, ममता, लीला, चारों हमारे होवनहार बच्चे, सभी सिलेक्टेड बच्चे, उनका माँ बाप को भी धन्यवाद और उनका शिक्षकगण को भी धन्यवाद। इतना उमंग उत्साह देकर आगे बढ़ाते हैं, बच्चों को एक मौका मिलता है जो मौका आज ले रहे हैं। तो चलिए पुनः और अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल रहे हैं और इसमें एक प्रार्थना के रूप में सुनाएंगे अपना आवाज। ओके, अंजलि एंड ममता रेडी,
1: शुरू।

बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नाम का साथ। अंतिम प्रस्तुति में प्रार्थना के रूप में अपना दिल का बात को रखें और हमारा श्रोता मित्र भी इसको आत्मसात किए और अपना भाव और भावना को परमात्मा तक पहुंचाए। और खुशी लग रहा है इस तरह बच्चों को मौका जब मिलता है, बच्चे सच्चे होते। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। यह था खासकर बच्चों का साथ हमारा कार्यक्रम, जो कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय का मिलित सहयोग से बच्चों का विद्यार्थी विकास में आज अपना भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाए। सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, संस्था का संस्था प्रधान, हम सभी स्टाफ और सभी बच्चों को। तो लेते हैं आप सबसे इजाजत।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड. मधुबन अनप्लग्ड यानी कि संगीत का वो सफर, यानी कि शेर व शायरी, क्रिएटिविटी और पंक्तियों का सफर. जी हाँ, जब एक गाना बनता है तो शब्द मोतियों की तरह पिरोए जाते हैं. बातें वही होती हैं, लेकिन कहने का अंदाज इतना अलग होता है कि वो दिल में घर कर जाते हैं. और ऐसी ही कुछ बातें, ऐसी ही कुछ पंक्तियां, ऐसी ही कुछ लाइंस आज आपको मिलेंगी कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में. और इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आज हमारे समक्ष है एक ऐसी अतिथि, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने लेखन जगत में अपना नाम ही नहीं कमाया बल्कि ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जो प्रेरणा का स्रोत है. जी हाँ, हमारे समक्ष हैं डॉक्टर अलका अग्रवाल सिकतिया जी, जिन्होंने बीएससी की, फिर अंग्रेजी में भी उन्होंने पढ़ाई करी, हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडलिस्ट रही, पीएचडी की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की. उनका शोध रहा हरिशंकर परसाई पर, लघु शोध और प्रबंधन शोध उन्होंने किया. कई प्रकाशन उनके नाम हैं. वैसे तो हम कुछ के नाम आपको जरूर लेकर सुनाते हैं. मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, अदृश्य, मेरी तेरी, सबकी, मीराकुल, व्यंग संग्रह है ये. कई पत्र पत्रिकाएं भी उनकी प्रकाशित हुई और इसके साथ साथ उन्होंने लेखन क्षेत्र में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है. उनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, चाहे वो गोदरेज कंज्यूमर फिल्म फेस्टिवल सम्मान हो, दुष्यंत सम्मान हो, रचनाकार आयोग द्वारा बिस्मिल्ला खां पुरस्कार हो, ऐसे कई अवार्ड भी उन्हें प्राप्त है. वैसे तो उनके करियर की लंबी व्याख्या है, लेकिन चलिए पहले उनका स्वागत करते हैं और उनके बारे में और जानने का आज अवसर हमें मिलेगा. आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है अलका जी.
1: जी बहुत बहुत आभार. और ये मेरे लिए हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि आज ब्रह्मा कुमारी के रेडियो मधुबन में मुझे ये अवसर मिला है. और बचपन से हम सुनते आए हैं और मैं 90s में एक बार यहाँ पर आई भी थी.
0: अच्छा.
1: और उस समय बहुत से, हम जो मनुष्य होते हैं, जिज्ञासा तो हमारे भीतर होती है.
0: बिल्कुल.
1: तो बहुत से जिज्ञासाएं थी, तो मैं लगातार प्रश्न पूछती जा रही थी क्योंकि उस समय छोटी भी थी थोड़ी सी. तो वो जो दीदी थे तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आपके भीतर इतनी जिज्ञासा है, आप कहाँ रहती. मैंने बताया मुंबई, बॉम्बे, तब तो बॉम्बे था
0: जी.
1: तो उन्होंने कहा कि हमारे सेंटर पर जाइएगा. और कुछ ऐसा होता है ना कि हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर कई बार परेशान भी हो जाते हैं, तो वो कुछ कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जिज्ञासा और परेशानी दोनों थी. और मुझे पता नहीं क्यों मैं, मेरे कदम उठ गए आपके जो मलाड में सेंटर है वहाँ उठ गए.
0: okay.
1: और वहाँ पर फिर मुझे बहुत से प्रश्नों का उत्तर भी मिला और मेरे मन की परेशानियों का समाधान भी हुआ था. तो मैं लगातार कई बार गई, लेकिन फिर बहुत सी बातें होती कि अगर आपने परिवार चुना है तो कुछ प्रायोरिटीज हो जाती हैं कि वी कांट गो अगेंस्ट दैट. तो ठीक है, मतलब फिर मैं गई नहीं, लेकिन हाँ, मैं जो आपके सिस्टर बी के शिवानी जी हैं, उनको तो सुनना किसको अच्छा नहीं लगता
0: जी, जी.
1: तो बहुत बार जब हम कहीं अटकते हैं ना, तो हम जब उन सुनने लगते हैं तो हमको बहुत से प्रश्नों का समाधान मिल जाता है
0: जी.
1: और अभी शिव बाबा ने, पता नहीं उनकी क्या मंशा है, मुझे नहीं मालूम है, फिर से उन्होंने बुलाया. और यहाँ पर भी जो आपका आर्ट एंड कल्चर का, आप ये जो 3 दिन का पूरा कॉन्फ्रेंस होता है, राष्ट्रीय सम्मेलन, तो उसमें क्योंकि विषय इतना अच्छा था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको समाज को बचाना है, देश को बचाना है और विश्व को बचाना है, तो परिवार को बचाना सबसे अधिक आवश्यक है.
0: बिल्कुल.
1: तो जो विषय था, और मेरा विषय था संस्कृति, संस्कार और परिवार के मूल्यों के संवर्धन की कला, तो ये बहुत आवश्यक है कि जैसे मुझे ये लगता है कि हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं और जो दूसरे देश के लोग हैं वो हमारी संस्कृति की ओर आ रहे हैं. तो खैर, ये तो मैंने बताया कि स्पीकर यहाँ आई थी, लेकिन आज आप सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है, तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ.
0: वैसे तो बहुत सारे प्रश्न है मेरे मन में, लेकिन मैंने आपकी बहुत सुंदर प्रोफाइल जो पढ़ी उसमें आप ये भी लिखा था कि आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग की.
1: सॉरी,
0: आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग.
1: जी जी, हाँ.
0: जी, तो अगर उसके बारे में कुछ बताएं.
1: जी जरूर. क्रिएटिव राइटिंग, देखिए क्या होता है, जो लेखक होता है ना, नजर और नजरिए का फर्क होता है. अब सामने ये पेड़ दिख रहा है मुझे, है ना, मैं भी देख रही हूँ, कोई और भी देख रहा है, किसी को सिर्फ लगेगा कि उसमें पत्तियां हैं, लेकिन एक जो लेखक होता है उसमें अलग दृष्टिकोण से देखता है. एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है. तो बहुत से लोग कोविड में खास तौर पर बहुत, क्योंकि कोविड में लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे थे, अंतर यात्रा कर रहे थे. और कई लोग जब बहुत परेशान थे तो कई लोगों ने हमसे संपर्क किया
2: जी.
1: मेरे साथ में दिनेश शाकुल जी हैं, जो चंद्रगुप्त बनते थे चाणक्य सीरियल में, और काफी बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं
2: जी.
1: तो कई लोगों ने हमसे कहा कि लिखा कैसे जाता है, हम लिख तो रहे हैं. तो फिर हमने क्रिएटिव राइटिंग का जो है वो शुरुआत करी.
2: ओके.
1: और उसमें हमने कहा कि जो कविता क्या होती है, कविता में अलग अलग भाव होते हैं, नाद होता है, और उसमें किस तरह से आप उसको लिखते हैं. तो फिर हमने ये काफी सारी पूरा सिलेबस बनाया था. पांच मॉड्यूल्स थे उसके, पांच मॉड्यूल्स में हमने वो सिलेबस बनाया था.
2: अच्छा.
1: और उसमें हम उनको वो पूरी क्लासेस लेते थे और उसके बाद उनको हम होमवर्क देते थे. तो कई लोगों ने उसमें बहुत अच्छी कविताएं लिखना सीखा. और क्योंकि मैं महिला काव्य मंच है, अंतर्राष्ट्रीय है, जिसके फाउंडर है नरेश नाथ जी, तो उन्होंने मुझे महाराष्ट्र मकाम का अध्यक्ष बनाया. तो उसमें बहुत सी महिलाएं जुड़ी. और उसमें आरुषि जी क्या है कि मन से मंच तक.
2: अच्छा.
1: है ना
2: जी.
1: तो ये जो आपने कहा क्रिएटिव राइटिंग और मन से मंच तक, तो मन में बहुत से लोगों के भाव होते हैं ना. आप अनुभूति को जब अभिव्यक्ति में ढाल देते हैं, उसको उतार देते हैं कागज के कैनवास पर, तो वो कविता, कहानी, गजल कुछ भी बन जाती है
2: जी.
1: तो इसी तरीके से जब बहुत सी महिलाएं आई जिनको लिखना नहीं आता था और वो केवल कुछ भी है तो किसी की पढ़ देती थी, फिर हमने उनको थोड़ा सा और गाइड किया. तो इस तरह से एक जो क्रिएशन, क्योंकि देखिए कलाकार तो क्रिएशन करता है.
2: बिल्कुल.
1: और यहाँ पर एक चीज मैंने बड़ी अच्छी सुनी कि कलाकार यानी जो कल को आकार देता है.
2: क्या बात है.
1: तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो हम ये नहीं कहते कि हम सचमुच पूरा कल को आकार दे सकते हैं, एक चेतना जरूर पैदा कर सकते हैं. तो एक क्रिएटिव राइटिंग के क्रिएशन कैसे था, राइटिंग तो है लेकिन क्रिएशन क्रिएटिव कैसी हो, रचनात्मकता कैसे आए उसमें, तो ये जो है हमने पूरा मॉड्यूल बनाए हैं और उसको लेकर के हमने पूरी कविता के ऊपर क्रिएटिव राइटिंग की. इसी तरह से कहानी पर भी हम मॉड्यूल बना रहे थे लेकिन किसी अच्छा. कारण से छूट गया. क्योंकि मैं कहती हूँ कहानी एक घटना से नहीं होती. जैसे जब हम छोटे थे, मैं बहुत छोटी उम्र से लिख रही हूँ, पहले तो मैं बता दूँ 6-7 साल के लिए जब से मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया था. उसके रीजंस भी हैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी.
2: बिल्कुल. खैर जाना चाहेंगे.
1: तो क्या होता है ना कि जैसे मैंने एक घटना कहीं देखी, दूसरी घटना कहीं देखी, तीसरी घटना कहीं देखी, तो हम जब सबको सिंक्रोनाइज करते हैं, क्योंकि जो रचनात्मकता होती है, रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग होती है, वो रिपोर्टिंग नहीं होती है. उसमें आप यथार्थ के साथ में कल्पना का भी उसमें सम्मिश्रण रहता है.
2: बिल्कुल.
1: तो ये जो होता है, ये तो क्रिएटिव राइटिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड. और उसमें ये वाली बात है. और एक बात बहुत आवश्यक है कि क्रिएटिव राइटिंग कोई मशीनी तो वो होती नहीं. उसमें आपको भावनाओं में जब तक पगी नहीं हो ना, तो उसमें वो बात नहीं आ पाती है. तो मुझे लगता है कि हर जो रचनाकार है उसके अंदर भावनाएं तो होनी चाहिए, और वो अपने दुख के साथ दूसरे के दुख को भी उसी तरह से अनुभव कर सके,
2: संवेदनशील
1: कर सके. बिल्कुल. तो क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है और जिंदगी हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, तो उस जिंदगी को जब आप रचनात्मकता में ढालते हैं, वो क्रिएटिव राइटिंग.
2: क्या बात है. कितनी सुंदर डेफिनेशन दी है आपने.
1: थैंक यू.
2: आपने फिल्मों के लिए लिखा है, आप रेडियो की बात करें या फिर कविताओं की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, कहानी, मतलब बहुत बहुत कुछ लिखा है आपने. आपके कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं. कुछ एक किसी प्रकाशन के बारे में आप जरूर बताएं. जैसे मान लीजिए, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल लगा, मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो इसके पीछे का क्या कहानी है, ये कैसे लिखा या क्या, उसके बारे में कुछ
1: मैं बताती हूँ. एक तो आपने रेडियो की बात की, उस पर फिर मैं मुर्दे पे आऊंगी. तो रेडियो लेखन के लिए मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जैसे मैं बॉम्बे से हूँ, तो एक बार किसी ने कहा कि बम्बई के में संयुक्त परिवारों पर आप कुछ एक लिखो.
2: अच्छा.
1: तो मुझे किसी ने चैलेंज किया कि आपको बॉम्बे में संयुक्त परिवार मिलने वाले ही नहीं है. लेकिन बोलते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ. और मुझे तो करना था. आप मानेंगे नहीं आरुषि, जब मैं जब ढूंढने लग गई, 13 परिवार की जगह मुझे इतने परिवार मिलते चले गए. और वो मैं आज भी गूज़बम्प्स आते हैं मुझे जब मैं वो अनुभव शेयर करती हूँ. तो जिनके भी परिवार में गई, तो क्या होता है ना कि जैसे एक जगह अगर जब इकट्ठा होता जाता है पानी तो सड़ने लगता है. इसी तरह से ना परिवारों में भी कई बार कुछ भावनाओं में एक दूसरे से क्लैशेस होने लगते हैं. तो लेकिन जब मैं उनसे मिली, और एक परिवार अंधेरी का मैं आपको बताती हूँ, दुबे परिवार था, तो वहाँ बड़े भाई भाभी ने ही उनके पूरे मतलब छोटे भाई बहनों को बड़ा किया था और बहुत अच्छे से सारा कुछ उनका किया था. तो जब हमने ये किया तो वो लोग लिटरली रोने लग गए. और मुझे गले लगा लिया और उनने कहा कि जैसे एक विरेचन होता है ना, जिसको कैथासिस कहते हैं, एरिस्टोटल ने जो दिया था, कि उन्हें कहा हमारे अंदर की सारी जो गलत भावनाएं आने लगी थी वो सब खत्म हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से एक हमने जो काम किया, तो रेडियो लेखन में एक ये अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। और ये रापा सीरियल अवार्ड होता है, रापा यानी जो टेलीविजन और दूरदर्शन में जो बेस्ट होता है, तो उसको बेस्ट रापा सीरियल अवार्ड भी मिला था।
2: क्या बात है
1: जी,
2: क्या बात।
1: अब आपने मुझसे मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो आपको जैसे शीर्षक बहुत अच्छा लगा, तो दरअसल ये एक मेरे एक दोस्त हैं, तो वो पहले फिल्मों में एक्टिंग करते थे, अब वो बिहार में कहीं रहते हैं। तो क्या हुआ था कि मेरी कहानी पढ़ के उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि मुझे बहुत अपनी अपनी सी वो कहानी लगी, बहुत मैं कनेक्ट हुआ हूँ उससे, तो फिर उनसे बातचीत होने लग गई। तो जो क्योंकि बॉम्बे में तो बॉलीवुड और बॉम्बे की लाइफ, तो बॉम्बे या तो मतलब ऐसे कहते गरीब से गरीब को भी भूखा नहीं सुलाता, अमीर से अमीर को भी। तो बॉम्बे एक ऐसी मिस्ट्री है कि जिसको हर कोई हल करना भी चाहता है, जिसमें जाकर फंस भी जाता है। तो ये हुआ कि वो रवि नाम है उनका, तो उनसे मेरी फिर अच्छी बातचीत होने लग गई। और वो फिल्मों में सीरियल्स में सब स्ट्रगल कर रहे थे, फिल्मों में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बन गए तो बन गए, नहीं तो बहुत खत्म भी हो जाते। खैर, तो वो जो बताते थे, फिर उनकी कविता थी मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, और अच्छा। तो इस तरीके से तो वो फिर बाद में उनसे ही, क्योंकि उनकी लाइफ थी, तो वो स्ट्रगल करते हुए दो दोस्तों की कहानी है। फिर अंत में ये होता है कि जो दो दोस्त हैं, मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त को संभालता है, फिर दूसरा दोस्त जब परेशान होता है तो ये संभालता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि वो कुछ ऐसा समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है और रूम से चला जाता है। उस समय पेजर हुआ करते थे जब मैंने ये कहानी लिखी थी, तो पेजर पर ये कबीर जो है पहला वाला दोस्त, वो आदित्य को मैसेज करता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, इतिहास वो लिखते हैं जो धारा के विरुद्ध चलकर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो अब मैं ये शीर्षक कैसे है, देखिए कई लोग कहते हैं मुर्दे, मतलब तुम्हारे शीर्षक मुझे समझ नहीं आए, जो समझ सकता है जैसे आपको अच्छा लगा। अब आप मुझे बताइए कि जो जीते जी मर जाएगा वो तो मुर्दा हो गया ना, और जीते जी जिसके अंदर जिजीविषा है, एक संघर्ष की कामना है, तो वो कभी मुर्दा नहीं हो सकता।
2: बिल्कुल,
1: इतिहास उनका ही लिखा जा सकता है,
2: और हार नहीं मानता
1: है ना, उसका इतिहास तो कभी नहीं लिखा जाएगा। तो ये बात है, और यही मैं अपने जिंदगी में भी कहती हूँ कि हार कभी मत मानो, है ना, जैसे एक वो है ना कि हार के आगे जीत है, तो यही वाली बात है कि अपने आप को हारने नहीं दो। और खास करके यहाँ आने के बाद इस डिवाइन में कि मतलब जब हम अपने आप से संवाद करते हैं, परमात्मा से खुद को जोड़ते हैं और अपने असत्य को पहचानते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं हार तो कहीं है ही नहीं। तो कुछ इसी तरीके से कि इतिहास आप लिख सकते हैं, आप अपने जीवन में अपने आप को एक हमेशा कर्मठ बना के रखिए।
2: जी बिल्कुल, ये जब कभी कभी बहुत बड़ी मुश्किलें आती हैं तो उसको जीवित रखना बहुत जरूरी होता है, जो हमारे अंदर की आग है, जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं। मैं एक और प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि आप कई अपने उपन्यास भी लिखे, कई कहानी संग्रह हैं, तो कहानियां लिखने के लिए अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड है, कोई युवा है जो क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अगर आप कुछ टिप्स दें, कुछ ऐसी बातें जो मदद करें, जैसा आपने कहा ना अनुभूति को अभिव्यक्ति मिलाने के लिए, आपकी ओर से कुछ ऐसे,
1: मतलब आपका प्रश्न है कि कौन सी बातें कहानी लिखने में मदद करें।
2: जी जी जी,
1: हमारा जो मैका है वो कटनी एमपी में है, और वहाँ एक फार्म हाउस है हमारा। तो मेरे पापा जो थे उन्होंने पूरी अपना सारा एकदम रात से लाइफ छोड़ के, उनको फार्मिंग बहुत पसंद आई, तो वो हम मतलब 400 एकड़ जमीन थी, बंगला था, तो हम लोग वहाँ रहते थे। तो वहाँ जो गांव की लड़कियां आया करती थी उनसे हमारी दोस्ती हो जाती थी, और वो लड़कियों को देख करके ना मेरे जहन मतलब वो अंकित होती चली गई। उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्योंकि मैंने छोटी उम्र में कहानी भी लिखनी शुरू कर दी थी, तो वो कहीं ना कहीं मतलब जैसे एक शिवरात्रि नाम की लड़की थी, हाँ उसका नाम ही शिवरात्रि था, और आज भी मुझे वो वैसे की वैसे याद है, एकदम लंबी छरहरी सांवले रंग की, बड़ी बड़ी आंखें, तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में अंकित हो गई, है ना। इसी तरह से हमारे यहाँ पर एक गाल बाबा थे, तो उनकी बेटी का नाम था अमसा था, अमसा। अब आप बोलेंगे अमसा कोई नाम होता है ना, है ना। अब वो उसका रीजन क्या था कि मेरी दीदी ने उनकी बेटी का नाम रखा था अंशा।
2: अच्छा।
1: अब अंशा तो वो नहीं बोल सकते थे तो अमसा बोलते थे, तो एक कैरेक्टर मेरी अमसा बनी, एक कैरेक्टर मेरी शिवरतिया बनी, और फिर उनकी कहानी दूसरों कहीं से आए, जैसे जैसे मैंने बताया आपको कि कटनी की हूँ मैं, तो कटनी में ना चूने के भट्टे बहुत होते हैं, तो चूने के भट्टों में जो लोग काम करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ उनको टीबी बहुत हो जाती है, तो वो जो सारी जो चीजें थी वो उसके बाद में रेलवे लाइन पर जैसे गरीब लोग हैं वो कोयले बिन रहे हैं, कोयले के जो वैन निकलती है ना कोयले गिरते हैं, तो वो कोयले बिनते बिनते ट्रेन से कट जाते हैं, कई बार उनको नहीं पता चलता था। तो ये जो मेरा जो एकदम मासूम सा मन था ये बहुत मुझे परेशान करती थी ये चीजें, और वो फिर सब मेरी कहानी में ना मतलब एक चीज वहां में जैसे बताया ना एक घटना ये एक घटना वो, तो ये जैसे कि जो मतलब मेरी कहानी में अमसा जो है वो गांव से शहर आती है, फिर वो इस तरह से उसकी और वो अमसा से मिलती है ये जो राइटर है, और वो चूने भट्टे के वहां जाती है, तो वो बोलती है कि दीदी हम ना कक्का भाई, क्योंकि मैं वहां की तो मुझे भाषा भी आती, दीदी हम कब ना चूने के भट्टे में काम करीबे। तो वो फिर वो बोलती, लेकिन जब दूसरी बार जाती तो देखती कि वो अमसा खांस रही है बुरी तरीके से, तो वो बोलती कि तुमको क्या हो गया, तब वो कहती कि दीदी हम कहे थे ना कि हम अम्मा वाला काम कभी ना करेंगे, लेकिन हमारे घर में खाने को नहीं बचा, दद्दा भूखे मर रहे हैं, दीदी भूखी मर रही, तो क्या करें, काम तो करवे को पड़ा थे। तो वो सारी जो चीजें थी, तो वो मतलब वो मैंने वो भाषा वहां की, क्योंकि बचपन में उनके बीच में जाते थे, तो ये ना जो लेखक होता है ना वो बहुत ज्यादा ग्रहणशील होता है और उसका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होता है और संवेदनाएं कहीं, और उस पर जो संवेदनाएं होती है ना, तो कहते हैं ना जैसे कि हीरे पॉलिश कर दिया है, तराशती है संवेदनाएं, इस तरह से कहानियां हमारी बनती हैं। जैसे आपसे ही मैं बात कर रही हूँ, अब आपकी स्माइल पर ही मैं कुछ कविता लिख दूंगी तो ये तो देखिए क्या होता है कि नजर की बात है,
2: नजर और नजरिया जो आपने कहा,
1: बिल्कुल।

0: जैसा आपने कहा था कि आपने बहुत कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था, तो क्या ऐसी कहानियां थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, या फिर क्या कोई ऐसा क्षण था जिसने आपको इंस्पायर किया, या कहां से लिखन की शुरुआत इतनी कम उम्र में कैसे हुई?
1: क्या हुआ था ऋषि जी के बचपन में, मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, अक्सर मैं साक्षात्कार में ये बात तो आती है कि लोग पूछते हैं कि लिखना कैसे शुरू किया, क्या किसी ने, जैसे आपने पूछा क्या किसी ने इंस्पायर किया या कोई ऐसा क्षण आया, तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी। तो मतलब हम लोग पांच बहन थे और मैंने अपना बहुत, दीदी लोगों ने मेरा नाम जल्दी लिखा दिया था, तो मैं, मम्मी पापा फार्म हाउस में रहते थे तो मैं दीदी लोग के साथ यहाँ रहती थी और मैं बहुत छोटी सी थी, तो मेरी दीदी जो थी सबसे बड़ी, वो खुद 18 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी, और वो मेरे लिए माँ समान थी कि मम्मी फार्म हाउस पे रहते थे मम्मी पापा। तो उसके बाद मतलब उन्होंने मुझे डांस वगैरह, हम लोग का पिक्चर हॉल हुआ करता था तो डांस वगैरह करती थी, तो उनने कहा कि इसको डांस सिखाया जाएगा। तब तो लिखने जैसा कुछ सोचा भी नहीं था, मैंने नहीं सोचा ही नहीं था, मतलब 5-6 साल की बच्ची क्या सोचेगी ना उस वक्त। तो मैं क्या करती थी, पिक्चर हॉल से आती थी, फिर वो लाइट लगा के फिर गा के अंदर, तो बोले करती क्या अंदर ये, तो दीदी लोग ने देखा तो इसको डांस सिखाया जाएगा, और वो ही गा के सिखाते थे मुझे क्योंकि क्लासेस नहीं थी, कथक बेस है लेकिन मेरे डांस का। तो खैर फिर वो दीदी की शादी बहुत जल्दी हो गई, 19वें साल के पहले ही, मतलब कहते हैं डाउरी डेथ थी उनकी, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मतलब आज भी कई बार आंसू आ जाते हैं उनकी बात करते हुए मेरे आंखों में। तो उनसे जो छोटी दीदी थी उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में जो आता है ना याद करके लिखा करो, और डांस, शशि दीदी नाम था शशि, तो उनने कहा कि शशि को मतलब उनका मन था कि तुम डांस करो, तो मेरी जो प्रभा दीदी वगैरह थी उन्होंने मुझे लगातार डांस, तो मतलब मैंने कई सारे डांस में भी अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बहुत सारे जीते हुए हैं, सरस्वती माँ की कृपा है जो उन्होंने मुझे कला दे करके भेजा। और मैं कहती हूँ लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा, अब बोलती हूँ क्योंकि तब तो मालूम नहीं था मुझे। तो मैं जो भी मन में कुछ भी आता था पेंसिल से लिखती जाती थी उसको, फिर धीरे धीरे टीन एज की जब हुई तब तक मैं कहानियां लिखने लगी थी जी। तो उस टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पब्लिकेशन था सारिका, धर्मयुग अगर आपने सुना होगा, सारिका, ये दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन हुआ करते थे, तो सारिका में मेरी पहली कहानी छपी नवांकुर विशेषांक में। उसके बाद तमाम जगहों से पत्र आने लग गए और बात और मंगाई जाने लग गई कहानियां, और मतलब उस समय मुझे बहुत तो सेलिब्रिटी बन गई, इतने सारे लेटर्स के बीच में छोटी सी अलका बैठी हुई पत्र पढ़ रही है सारे। खैर फिर वो एक सिलसिला शुरू हो गया आकाशवाणी जबलपुर और फिर तमाम जगह, फिर बॉम्बे भी गई, तो मेरे साथ में अच्छा ये हुआ क्योंकि मेरे पति वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं लेकिन वो मेरे लेखन को बहुत पसंद करते रहे हमेशा से, तो उन्होंने कहा कि तुम लिखना बंद मत करो। और मुझे कुछ वहां पर जनसत्ता में सब रंग उनका आता था, तो शादी के बाद भी मेरा लेखन कभी ना रुका नहीं। तो यही वाली बात है कि आप दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या दुख में अपने आप को खत्म कर दीजिए, तो दुख ने मुझे बनाया है जी, इस तरह में लिखने लग गई, शब्दों में ढाल दिया अपने दुख को मैंने।
0: ये जो सेंटेंस है जी, दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या खत्म कर दीजिए, यही से वो जो आपका जो पहला टाइटल है शायद वो सिद्ध हो जाता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, इतिहास वो लिखते हैं जैसे आप जैसे लोग जो जिन्होंने दुख से अपने आप को बना लिया। मुझे लगता है लाखों लोगों को दुख से निकालने के निमित्त बन गए
1: जी।
0: क्या इसके लिए फिर आपको ऐसा कुछ लगा कि हाँ मुझे और ट्रेनिंग करनी है या और कहानियों को समझना है? किसको मतलब आप पढ़ते किनको थे या कौन आपको बहुत पसंद, कौन किसका लेखन आपको बहुत पसंद था?
1: जैसे चित्रा मुद्गल जी का बहुत अच्छा लिखता है, लगता है मुझे। मधु काकड़िया इस समय जो है हमारे समय की, मतलब हम हमारे से बड़ी पीढ़ी की हैं लेकिन मधु काकड़िया जी बहुत अच्छा लिखती हैं। उसके अलावा जैसे कि हरिशंकर परसाई जी को तो मैं खैर एक तरह से उनके लेखन को जीती हूँ। ज्ञानरंजन जी भी मुझे बेटी जैसे ही मानते थे और मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मुझे इन सब से मिलने का मौका मिला है। मुक्तिबोध को मैंने पढ़ा है, अज्ञेय को मैंने पढ़ा है, तो कई बार जैसे बाबा नागार्जुन की कुछ कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। इसी तरह से अमरकांत मुझे बहुत पसंद थे, उनकी जिंदगी और जो क्या बहुत सारी, तो मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे एक कोई साहित्यकार पसंद है। कभी किसी की कुछ चीज अच्छी लगती है, कभी किसी की कोई चीज बहुत अच्छी लगती है। तो और आपको ना वो रास्ता जैसे बशीर बद्र उनकी आप शायरी सुनेंगे कि आप सुने कि हम बचपन में थे ना तो वो रखते थे उजाले अपनी यादों के, हमारी साथ रहने दो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और बहुत सारे है कि मतलब उनकी मतलब बार बार हम उनके बहुत सारे शेर हमें याद आते हैं। तो जो भी अच्छा मिलता है, और कई बार ये भी होता है आरुषि जी की बहुत नाम नहीं होता है किसी का, लेकिन अचानक आप उठा के पढ़ते हैं तो अरे इतने ये लिख दिया, ये मैंने क्यों नहीं लिखा, तो ये होता है। और जैसे कि कई बार ये होता है कि जैसे ना, जैसे अगर आप बोलेंगी तो मैं अपनी एक आध आपको रचना भी सुना दूंगी।
0: जी मैं एक्चुअली वो पूछने ही वाली थी कि कुछ पंक्तियां अगर आप सुनाएं अपने लेखन की हमें भी, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
1: तो पहले से मैं बताती हूँ कि ना बता, जैसे मतलब हमेशा मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं, और मैं ना मैंने मुझे लगता है कि आपका भी, मुझे लग रहा है आपके अंदर का भी बच्चा हमेशा जिंदा रखती है आप, तो अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। तो मेरे पति हमेशा कहते हैं मम्मी पापा ने तुमको बड़ा करके नहीं भेजा, तो मैं कहती थी कि कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए, कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए, बड़े हो ना मतलब झूठ बोलो शान से, मक्कार हो जाओ, क्या करें इस परिभाषा पे हम खरे नहीं हुए, तो कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए।
0: वाह वाह वाह।
1: तो क्या हुआ कि मेरी बेटी अब तो बड़ी हो गई है, तो जब वो 5 साल की थी ना तो एक बार मेरे साथ जा रही थी। अच्छा वो वैसे मम्मा बोलती है, लेकिन जब वो बहुत उसमें प्यार में होती है तो माँ बोलती है मुझे, और मुझे बहुत मतलब, तो मैं लगती हूँ कि ना, और सचमुच मुझे लगता है कि जो रिश्ते आपको जो खुशी देते हैं ना वो कहीं नहीं मिलती है। और मैं आपको 2 कविताएं इसलिए सुनाऊंगी कि आपने अगर परिवार चुना है तो पहले मैं वो चुनाती हूँ, फिर मैं अपनी बेटी पे।
0: प्लीज प्लीज जरूर जरूर
1: जी। तो क्या सपने बन गए बॉन्साई, कहते हैं कुछ लोग कि स्त्री जब बनती है माँ करती जाती है अपने सपनों को छोटा छोटा, बहुत छोटा, मारती जाती है अपने सपनों को खुद बेमौत, या हो जाते हैं उसके सपने बौने, बन जाते हैं क्या बॉन्साई, बन जाते हैं बॉन्साई। सोच का बवंडर उठा अभी तर उसके, क्या ये सच उसका भी है, क्या ये सच उसका भी है, हो जाने दिया है उसने अपने सपनों को बौना, बना दिया हरे भरे वृक्ष से बॉन्साई। विचार मंथन चल पड़ा अंतस में, अगर ऐसा होता तो मिट चुका होता कब का वजूद उसका, उसने टटोला खुद के वजूद को महसूस किया, अरे वो तो वहाँ है, मतलब उसका वजूद तो वहाँ है, बड़ा अजीब है व्यक्तित्व उसका, एक ओस्त्री विमर्श की बातें तमाम, पर झेलती है यातनाएं भी तो क्या छद्म है उसकी बौद्धिकता, लेखन में विरोध के स्वर है मात्र दिखावा, तर्कों की मथानी से फिर मंथन वो करती है, तब सांसारिक सच की सोच नवनीत से उतरती है, पत्नीत्व और मातृत्व का चुनाव उसका ही तो है, तो फिर शायद जायज है समझौते भी, यातना सहते हुए भी खुद को खुश रख पाती है, अपने वजूद से पहचानी जाती है, यानी नहीं होने दिया उसने अपने सपनों को बौना, जिजीविषा के पानी, महत्वाकांक्षा की खाद और आत्मसम्मान की धूप से बचाया है उसने अपने सपनों को बॉन्साई बनने से। तो अब मेरी बेटी मेरे साथ जा रही थी, एक बार 5 साल की थी तब, वो तो ऐसे आंख बंद करके एकदम बैठी थी, मैं उसको देख रही थी, अचानक उसने मुझे जो बोला तब ये कविता निकली, क्या बोला था इसमें आएगा। सुबह की सुहानी बयार सी है वो, अल सुबह की सी शीतल ओस सी है वो, उसे देखकर लगता है ऐसे भर ली हो भोर की भीनी खुशबू भीतर जैसे, उसका मीठा बोसा लगता है यूं सहला गया ठंडी हवा का झोंका जूं, चूमती जब मासूमियत से आंखों को मेरी, कितना नाजुक पिघलता सा है वो एहसास। उस रोज सुबह सुबह संग मेरे वो निकली, नन्ही परी ने आंखें बंद कर ली अपनी, खो गई एक प्यारी सी दुनिया में, एंजल सी चमकती चेहरे पे उसके, अपनी छोटी छोटी बाहों का घेरा मेरे गले में डाल, आंखों में सितारे भर कर कहा उसने, माँ माँ माँ मुझे सुबह बहुत अच्छी लगती है। अनहद नाच सब बज उठा अंतस में मेरे, मंदिर में बज गई हूँ घंटियां जैसे, कैसे महसूस कर पाती है मेरी नन्ही सी कली सुबह की पावन खूबसूरती, कितनी मधुर है ये अनुभूति, बड़े प्यार से फिर वो मुझसे सटी, सीप सी पलकें बंद कर अपनी, झर झर झर झर झर झर झरते झरने सी आवाज में कहा उसने, सुबह कितनी अच्छी लगती है ना माँ, है ना माँ सुबह कितनी अच्छी लगती है ना, खिल उठी भीतर मेरे खुशियों की बीथियां, कितनी प्यारी होती हैं बेटियां, आगोश में अपने भर कर पेशानी उसकी चूम कर कहा मैंने, बेटी मेरी मुझे तो तू खुद सुबह सी लगती है, तू खुद सुबह सी लगती है।
0: क्या बात है। मतलब सच में ये जो आपने पंक्तियां कही हैं, हर माँ सुनेगी तो अपनी बेटी को, अगर वो उनसे थोड़ा सा भी दूर है तो मुझे लगता है वो उनके करीबी पल, वो उनकी आंखों के सामने वैसे तो रहते ही हैं, लेकिन वो आंखों में आंसू बन के बह जाएंगे, इतने खूबसूरत हैं ये पंक्तियां। आपकी बेटी क्या कहती है जब वो आपकी कविता सुनती
1: है? मेरी बेटी अभी मतलब बेटा भी है मेरा, अभी जॉब कर रहा है और बेटी अभी लॉ कर रही है और फोर्थ ईयर में है। और अभी मैं आपको बताऊं कि पता नहीं मतलब कई बार हमको लगता है कि शायद पता नहीं वो उतना प्यार करती है, लेकिन अभी इधर में भोपाल में किसी कार्यक्रम से गई थी, यहाँ पर हूँ मैं 26 तारीख से, तो वो मुझे बहुत मिस कर रही है तो रोज फोन करती है, तो मुझे लग रहा है कि काश मैं जल्दी चली जाती। खैर तो वो ना लॉ कर रही है। अच्छा एक बात अच्छी है कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखती है, मुझसे अच्छा। बेहतर लिखती है और वो बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कर लेती है। तो मैं कहती हूँ कि उसका नाम, वैसे हम लोग घर में मिष्टी बोलते हैं, वैसे उसका नाम शरण्या है।
0: अच्छा।
1: तो कई बार ना वो जब छोटी भी थी ना तो जैसे मैं उसको लोरी सुनाया करती थी तो वो मुझे अपनी गोद में सुला करके वैसे लोरी गाती थी। तो मैं कहती थी कि बेटी माँ बन जाती है तो मतलब ये होता है। तो अभी भी ना कई बार मम्मा ऐसे नहीं करना, मम्मा वैसे करना है, तो मैं कई बार मुझे लगता है और मैं भी उसको बोलने देती हूँ क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ वो मेरी माँ बन करके मुझे उस तरीके से वो कर रही है। तो बड़ी प्यारी सी नाजुक सी है और अच्छा लिखती है और लॉ कर रही है। और उसका शुरू से ना बहुत ये मन था कि मैं इसमें रहूँ, मतलब जो जासूसी जो सीरियल होते थे, हाँ, इस तरह के जो होते थे वो देखा करती थी, तो उसको उसमें मतलब बहुत इंटरेस्ट आता था, तो उस तरीके से वो अब वो लॉ कर रही है।
0: क्या बात है। अच्छा इसीलिए उन्होंने वो प्रोफेशन बनाया उसको और समाज की मदद के लिए, जैसे वो एक उसको इंटरेस्ट को भी उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। क्या बात है। तो वो क्या करते हैं जब आपके घर वाले आपकी कविताएं सुनते हैं, तो क्या आपको फीडबैक देते हैं, कैसा लिखा है कहते हैं, या क्या महसूस हुआ, कैसा मतलब पहले सबसे पहले जब आप लिखते हैं तो किसको सुनाते हैं आप?
1: आपको बताऊं, मैं सबसे पहले अपने पति को सुनाती हूँ।
0: अच्छा,
1: ठीक है
0: जी।
1: वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन मैंने देखा कि साहित्य की समझ उनके बहुत अच्छी है और मैं ना बहुत जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी अभी जैसे बोल के बता रही हूँ मैं बहुत जल्दी जल्दी बोला कर
0: जी।
1: तो मुझे कहते हैं कि थोड़ा ना थम थम के
0: आराम
1: है ना। तो उन्होंने मुझे एक तो ये सिखाया, दूसरा वो कहते थे कि तुम्हारा जो फोर्टे है वो तुम्हारी भावनाएं संवेदनाएं हैं, तो तुम अपने किसी के बोलने से ना उसको बदलो नहीं। और वो कई बार मुझे कहते नहीं ये चीज ऐसे अच्छी नहीं लग रही है, तो वो मैं उनको बताती हूँ। अच्छा कई बार ये भी होता था कि मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बता देती थी, तो पता चलता था थोड़े दिन में मेरी चीज उनके नाम से आने लग गई। ये बहुत होता है आरुषि जी। मेरी तो आपको बताऊँ ये कविता है जो बहुत ज्यादा फेमस हुई है, द्रौपदी तुम्हें उठाने होंगे शस्त्र, तुम्हें ही बनना होगा सशक्त, नहीं आएंगे अब कोई कृष्ण, उसको चुरा के लोगों ने कर लिया, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अपना आएंगे गोविंद, ये मैंने लिखी थी कविता।
0: अच्छा उसमें एक दो शब्द बदल के
1: और ये मतलब एक मिनिस्टर है, नाम नहीं ले रही मैं यहाँ रेडियो पे, एक मिनिस्टर है उन्होंने फिर एक और, तो तमाम उसको बहुत सारे राजनेताओं ने उसको कोट किया। तो मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मम्मा आप लिखते हो, आप इतना अच्छा लिखते हो, आप उसके लिए, तो मेरे पास में मेल है वो, जब मैंने पहले लिखी थी भेजी थी पेपर में छपी भी थी। अच्छा मैं एक और काम किया करती थी उस कविता को, हम जो जाते थे हम मार्शल आर्ट वालों को लेकर के जाते थे, तो मार्शल आर्ट वाले जो थे वो वहां पे मार्शल आर्ट सिखाते थे लड़कियों को, एक मेरे साथ वकील जाते थे मेरे दोस्त, और मैं एक कविता गाती थी बोलती
0: अच्छा,
1: थी
0: जी।
1: तो हम पूरी लड़कियों को, मैं कहती थी कि आप लड़कियों को इतना ट्रेन कर दो कि दो चार लोगों को से अपने आप को सेफ तो कर सके वो।
0: बिल्कुल।
1: तो ये मैं, मेरा ये पूरा का पूरा मोटो था। लेकिन खैर उसके बाद मेरे एक सीरियल को मेरा, मैंने लिखी थी कहानी तपस्या वाला था, वो क्या था तपस्या थी उस सीरियल में, अब मैं सीरियल का नाम पता नहीं कैसे अचानक से अभी बात करते, तो उस पर सीरियल बन गया और वो मेरी कहानी की चोरी थी। तो
0: अच्छा।
1: खैर मुझे फिल्म राइटर एसोसिएशन में मुझे मेरे फेवर में डिसीजन भी आया, पर बहुत कुछ ऐसा हुआ, पर ठीक है क्या किया जा सकता है, तो बहुत कुछ होता है। लेकिन और भी जैसे कि मैं, अगर आप बोलेंगी तो आपको मैं एक दो चार शेर सुना दूं अगर आप बोले तो।
0: जरूर जरूर, और शेर भी सुनना चाहेंगे, और साथ में जो आपने कहा ना कि लड़कियों को इतनी तैयार हो जाए, इतना मोटिवेट हो जाए कि वो खुद की रक्षा स्वयं कर सके। हाँ। तो अगर कोई ऐसी भी कविता हो तो भी हम जरूर सुनना चाहेंगे अगर आपको याद।
1: जैसे कि मैंने वो जो द्रौपदी वाली थी ना कि मतलब सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, कि मतलब द्रौपदी अब जगह जगह पुकार रही है, लेकिन मतलब अब उसको खुद को ही सशक्त बनना होगा, तो ये तो है। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि जैसे दूसरों को भी, कि मतलब हम कहते हैं कि अपने दिल और जान में रखना, नाम मेरा भी ध्यान में रखना, मुफलिसों को ना दो चांद तारे भले पाके उनके ध्यान में रखना, कि भाई आपके मन में एक दया भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अपने किरदार, ये देखिए जैसे कि अपने किरदार को बहुत मजबूत इस बदलते जहान में रखना. ऐसे नहीं कि आप बह गए धारा के साथ में, तो मेरा शीर्षक भी मुर्दे इतिहास नहीं लिखते. आपका अगर किरदार मजबूत है तो फिर आपको कोई बदल नहीं सकता है कि इस बदलते जहान में रखना. तेरे कपड़ों पे जो है गर्दे सफर कामयाबी की शान में रखना. कई लोग कहते होता है ना कि जब बड़े बन गए तो भूल जाते हैं. आप अपनी जमीन से हमेशा जुड़े रहे, तो ये मैं कहती हूँ कि तेरे कपड़े पे जो है गर्दे सफर कामयाबी की शान में रखना. हमेशा याद रखो कि हम कहाँ से उठे, कहाँ पहुँचे हैं. और तुमको आकाश है छूना अगर, तुमको आकाश है छूना अगर, पंख अपनी उड़ान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना. और ये जो आपने कहा कि मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम इतना मीठा बोलती हो कि मतलब हम तो बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं. मैंने कहा नहीं, वो ऊपर वाले ने दे के भेजा है. तो ये शायद इस तरह है कि सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, लुत्फ ऐसा जुबान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना. और कभी कभी होता है ना कि हम बहुत दुखी हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं. तो अब जैसे अब तो बाबा है वो कोना, हमको कभी लगेगा तो हम बाबा को स्मरण करेंगे. तो कि रो सको जहाँ पे छुप छुप कर, रो सको जहाँ पर छुप छुप कर, ऐसा गोशा मकान में रखना, ऐसा कोना मतलब गोशा, ऐसा गोशा मकान में रखना. और वो गोशा आध्यात्मिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और ये कि कम नहीं है, हालांकि मैंने अलका अपना इसमें तलफ्फुज जो होता है मक्ता जो कहते हैं, लेकिन मैं इसको भी बदल देती फिलहाल यहाँ की. कम नहीं है किसी से कोई, कम नहीं है किसी से कोई, दोस्तों ये गुमान में रखना, दोस्तों ये गुमान में रखना. तो आपने जैसे कहा तो मेरी एक कहानी थी बेटी
0: जी,
1: तो उसमें माँ अपनी बेटी के बारे में सोचती है. और वो पहले सोचती नहीं शादी, तो दूसरे कहते भाई बेटी बड़ी हो रही शादी करा, तो बेटी को फिर बताने लगती है देखो तुम जाओगी एक राजकुमार जैसा लड़का होगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा. और लड़की बेटी सपने पाल लेती है, शादी होती है, शादी होती है जब, तो वो जब आती है घर तो वो खुश नहीं है मैके जब आती. तब माँ को समझ में आता है कि उसको जो सपने बेटी को दे दिए हैं वो उसको हाथ में हाथ लेकर घुमाने नहीं लेकर जाता है. बहुत सारी जो चीजें,
0: राजकुमार आएगा,
1: राजकुमार आएगा, तो वो तो नहीं मिला उसको कि भाई नमक कम है तो भी बोलेगा है वो है. तब उसको समझ में आता है कि मैंने इसे गलत सपने दे दिए हैं. फिर वो उसको दूसरी तरह से कि एक एक कविता है कि हो जाती वो पायस्विनी जब वो माँ खुद बनती है तो महिला, तो वो बेटी को फिर अलग तरीके से समझाती है.
0: अच्छा.
1: आपकी और वो प्रेग्नेंट है जब बेटी आती तभी भी खुश नहीं, तो फिर उसको अलग तरह से समझा के भेजती है. और कि मतलब आपकी बार अगर दुखी हो जाएगी तो मैं इसे नहीं भेजूंगी, लेकिन उसको मालूम है कि मैंने इसे ऐसा समझा दिया है क्योंकि मैंने उसे गलत ट्रेन किया था. तो ये जो हम संस्कार देते हैं ना, तो वो हमारे भीतर कहीं ना कहीं पनप जाते हैं. तो माँ जो बच्ची को सिखाती है वो बहुत सोच समझ के बताना चाहिए कि उसको आगे जा करके भी एक घर संभालना है. तो वो उस तरह से ट्रेन करे कि वो समझ पे आए कि हाँ मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ रही, अब मैं वो बच्ची नहीं रह गई हूँ. बहुत बदलना पड़ता है. तो मुझे जो मेरी टाइप करते थे उनने कहा कि एक दिन मुझे कहा कि क्या लड़कियां सब सोचती कि शादी के बाद ऐसा होगा. मैंने कहा अमूमन तो सभी सोचती,
0: अमूमन सभी सोचते.
1: तो मैंने भी सोचा था. बोले अच्छा. तो मुझे एक दिन फोन किया, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ. मैंने कहा कि क्यों. बोले कि आपकी कहानी से मैं अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने लग गया. मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर एक दिन मैंने बोला कि मेरे कुछ कहानियां टाइप कर दीजिए. बोले आज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं कर सकता. मैंने कहा क्यों. बोले मैं आज अपनी पत्नी को डेट पर लेकर जा रहा हूँ और ये आपकी कहानी का असर है.
0: और इससे पहले शायद वो,
1: हाँ तो वो
0: रियलाइजेशन मतलब उनको हुआ उससे.
1: एक्चुअली मतलब क्या होता है ना, कई बार ना जो दूसरे घर से लड़की आती है ना, पति समझ ही नहीं पाता है कि ये कितनी अंदर अपनी भावनाएं लेकर आई है,
0: उनके सपने क्या है,
1: सपने लेकर आई है ना. और आप जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आप कायम कर पाते, तो जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और हम एक दूसरे के साथ में साथ साथ कदम बढ़ा के चल रहे हैं ना, ये कोई नहीं सोचे कि मैं ये तो आई है मैं ही, क्योंकि एक शोविनिस्टिक मेंटालिटी
0: सोचते हैं इनको एडजस्ट करना है, ये आई है यहाँ से. मगर वो सोच उनके मन में क्या चल रही है वो सोच समझ ही नहीं पा रही.
1: वही वाली बात. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उसके बाद उनको लगा कि अच्छा ये भी सपने लेके
0: बदलाव कितना
1: उसको समझना चालू कर दिया. तो मुझे लगता है कि मेरा लिखना सार्थक हो गया. और इससे मुझे बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कई लोगों ने मुझे कहा कि आपको देख के हमने डांस करना सीखा, आपको देख कर, मतलब कटनी में, पहले मैं मारवाड़ी हूँ, हमारे दादाजी नगर सेठ हुआ करते थे, तो लड़कियों को डांस वगैरह, इवन मेरे बाबा जी ने वैसे बहुत हमको फ्रीडम दे रखे थे. हमको कभी पता, आप आरुषि जी, मैं बिल्कुल खुले दिल से बोलती हूँ कि मुझे कभी वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे घर में नहीं हुआ.
0: लड़का और लड़की वाला?
1: हाँ, लड़का अच्छा. लड़की वाला कभी नहीं हुआ. हम लोग पांच बहने थे, पर कभी नहीं, ना बाबा जी ने, दादाजी ने, ना पापा ने, मम्मी, किसी ने नहीं. तो फिर लेकिन वो लोग आए तो बोले डांस, तो उनने बोला भाई नगर सेठ की बेटी ने, लोकचंद फुलचंद की पोती डांस करेगी, तो बोले अगर आपकी बेटी डांस करेगी पोती तो बहुत सी बच्चियों, तो उन्होंने हाँ कह दिया.
0: अच्छा, कि हाँ, बाकी लोगों को भी और इंस्पिरेशन मिले.
1: हाँ, तो उन्होंने हाँ कहा. और मैंने पहला डांस जो किया था वो था होठों पे ऐसी बात.
0: हाँ,
1: और उसके बाद में कारी कारी कारी अंधी आ रही थी रात नवरंग की, तो उसमें भी मुझे दूसरी बार किसी ने डरा दिया, अरे तुमसे तो बहुत बड़ी डांसर आ रही, तुम क्या जीतोगे, छोड़ दो. मैं रोई तो मम्मी ने कहा अब तो तेरी असली परीक्षा है बेटा, अब तो तेरे को जीतना ही. दीदी लोगों ने भी, तो वो मैं फिर जीती, फिर मैं सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बनी.
0: क्या
1: तो ये मतलब हमेशा मुझे मतलब ये कि मुझे लोग फॉलो करते, अच्छा अलका ने किया, उनकी पोती ने किया, अब हमारी बेटियों को भी,
0: हमारी बेटियों को भी करना चाहिए ना, करना एक चाहिए. क्या बात है. मुझे आपकी बातों से ना एक चीज और बहुत समझ में आई कि साहित्य कैसे जीवन को आसान बनाने में मदद करता है, कैसे एक दूसरे को समझने में मदद करता है. तो हमें से बहुत लोग हैं जो पढ़ते नहीं है, मोबाइल में ही चले गए हैं जिंदगियां. तो अगर साहित्य के और नजदीक जाएंगे तो अपने आसपास वालों को भी और बेहतर समझ पाएंगे.
1: बिल्कुल सही बात है जी,
0: ये पढ़ना चाहिए. और
1: बिल्कुल देखिए क्या होता है ना, आपने आप भी बचपन से पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं. और मैं दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में गई थी तो आज तक वालों ने एक इंटरव्यू किया था, उनने कहा कि क्या आपको लगता है कि आजकल पुस्तकों का अस्तित्व खत्म हो रहा है. मैंने अगर ऐसा होता तो आप पुस्तक मेले में मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और तमाम स्टॉल्स हैं और लोग खरीद रहे हैं किताबें और स्पेशली जाते हैं, और खास करके बच्चों के माता पिता जाते. मेरी बेटी भी बहुत पढ़ती, ठीक है, वो अंग्रेजी में पढ़ती लेकिन बहुत किताबें पढ़ती है. तो कई बार क्या होता है कि जैसे जब हम मोबाइल पे, आजकल जो हम रील बोलते हैं ना, रील लाइफ में के कारण हम रियल लाइफ से दूर होते जा रहे हैं. और व्हाट्सएप, हम फेसबुक पे, अच्छा अभी हम परिचित हो गए, अच्छा आप में से कनेक्टेड है, अरे अलका जी आपकी तबीयत, ओ प्लीज गेट वेल सून, अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे लगेगा आरुषि से ज्यादा तो मेरा कोई अपना है ही नहीं. लेकिन अभी मेरे घर में अगर कोई है और मैं आपको तो पूछ रही हूँ, आप मुझे पूछ रहे, लेकिन आपके घर में तो मतलब लोग लीस्ट वरीड होते हैं या सोचते भी नहीं कि घर में भी हमको वही चीजें करनी है. तो लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो साहित्य हमें एक एक, एक भावना देता है. जैसे मेरी जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं कि मैंने कहानियां पढ़ रही हूँ, आलेख, जैसे मैंने परसाई जी को, उनको पढ़ करके मेरी चीजें बहुत भीतर बदला है.
0: जो
1: आप उसको उस तरह से जब पढ़ेंगे ना, आपको बहुत एक प्रेरणा मिलती है. कई बार
0: पर्सपेक्टिव भी मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलता है,
1: पर्सपेक्टिव मिलता है, नया पर्सपेक्टिव मिलता है जिंदगी को समझने का. अच्छा कि हम तो अभी तक हम कूप में डूब बने रहते हैं, बट जब आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से लेखक जैसे वो क्या होता है कि उन्होंने पूरी राजनीति पढ़ी होती है, तमाम माइथोलॉजी पढ़ी होती है, तमाम वेद पढ़े होते हैं, या नहीं भी तो और जिंदगी को पढ़ा होता है, और वो उसको उसका सार उसमें लिखते हैं. तो आपको तो सार पूरा मिल गया ना एक जगह, तो जब आपको सार मिल रहा है तो आपको साहित्य बहुत कुछ देता है. साहित्य का अर्थ होता है सहित, जिसमें हित हो, सबका हित,
0: सबका हित हो,
1: तो साहित्य तो हित ही करेगा, तो साहित्य पढ़ना ही चाहिए.
0: अलका जी मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, जो युवा हमें सुन रहे हैं, अगर आप कुछ किताबें सजेस्ट करें कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कुछ कुछ किताबें.
1: देखिए आजकल एक तो सेल्फ हेल्प की बुक्स बहुत आ रही, रॉबिन समथिंग उनका ध्यान एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, और रोंडा बर्न की भी जैसे द मैजिक, और आप लोगों का भी साहित्य शायद जैसे अभी जीवन पलटने की कला है, तो ये तो एक अलग चीज है. लेकिन उसके अलावा जैसे कि बहुत सी अच्छी कविताएं आती हैं, हाँ नेगेटिव बहुत ज्यादा मत पढ़िए. और उसके अलावा जैसे कि हमारे जो बहुत सारे पहले के साहित्यकार हैं, जैसे मैंने इंग्लिश में भी एमए किया है, तो आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं या शैली को पढ़ते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, तो मुझे लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए. और आजकल के भी जैसे अब देवदत्त पटनायक जो आपके यहाँ शायद आ भी चुके होंगे, वो तो उन्होंने माइथोलॉजी को ना बहुत ही खूबसूरती से डिपिक्ट किया है. उनके एक हनुमान की रामायण है, पता है आपको? अच्छा, उन्होंने लिखी है, हाँ, कि हनुमान जी ने एक रामायण लिखी, तो वाल्मीकि जी को पता चला कि नारायण ने उनको बोला, नारद मुनि ने कहा कि आप जाइए एक बार हनुमान की रामायण देखिए. तो हनुमान जी की रामायण पता कहाँ लिखी थी? एक गार्डन में, एक बागीचे में, और केले के पत्तों में, इसमें उसमें उसमें. और वो वाल्मीकि जी पढ़ते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, तो हनुमान जी बोले क्यों रो रहे हैं आप ऐसे? तो बोले नहीं, आपने जो लिख दिया मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? आपने, हनुमान जी ने क्या किया, उसको सारे को खा लिया, पत्तों को. बोले क्या किया आपने, इतना सब लिखा? बोले मेरे राम मेरे अंदर हैं. अब आपको हमेशा सब याद रखेंगे। तो इस तरह की जो आपको एक जगाने वाली अवेयरनेस जहाँ है वो सारी चीजें। और आजकल तो देखिए ये डिजिटल जमाना है, आप AI दे देता है, गूगल को पूछिए,
2: आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे नॉवेल्स भी, उपन्यास भी।
1: हम बॉम्बे में रहते हैं, मैं सोचती हूँ मैं अपनी लाइब्रेरी बहुत बना लूँ बड़ी, तो कहाँ रखूंगी मैं सारी चीजें 3BHK के फ्लैट में। अब आप ऑनलाइन करते जाए, किंडल पे पढ़ लीजिए, और उसमें देखिए कि सेल्फ हेल्प बुक्स, मुझे जैसे जिस समय मुझे जो पढ़ने का मन है कि आई एम फीलिंग लो, नहीं मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे आध्यात्मिक कुछ पढ़ना है, तो सब कुछ तो आपके क्लिक में अवेलेबल है।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि मैं बोल दूंगी ये पढ़ो तो नहीं, क्या होता है जो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है,
2: उनको क्या इंटरेस्ट है,
1: उनको क्या पढ़ना है, उनका क्या इंटरेस्ट है। तो जिसमें खुद की रुचि हो, बस आप ये मत पढ़िए कि आप दूसरों का बुरा करने का सोचे, अपने आप को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे इवॉल्व हो सकते
2: ऐसा
1: हैं,
2: कुछ पढ़िए,
1: एक कहते बेहतर इंसान बन सकते हैं, जो कल से उससे बेहतर बनना है हमें, और बेहतर करते करते दूसरों को भी साथ में लेके चलना है, ऐसा कुछ पढ़िए।
2: बहुत सुंदर बात है, और चाहे कहानियां पढ़ें चाहे कविताएं पढ़ें, लेकिन और मुझे लगता है और संवेदनशील भी बनाती है हमें ये।
1: बिल्कुल, मैं एक छोटी सी लघु कथा आपको बता देती
2: हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल,
1: अभी हाल ही में जैसे क्या होता है, और ये सचमुच में जब होता है ना, क्योंकि कहानियां हमें जिंदगी से मिलती हैं आरुषि जी, तो आजकल कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, तो एक हस्बैंड वाइफ है, और वो जो वाइफ है वो सोच रही कि आज वो अक्षत, और लड़की का नाम है रंगोली, अक्षत आज कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं, अभी उसने मुझे वीट जूस भी बना के नहीं दिया है। वो अपने कमरे में जाती है और तमाम वो सारी देखती, जहाँ उन दोनों की फोटोज हैं, यहाँ गए थे वहाँ गए थे, अच्छा वो देखती है डेकोर पूरा उसके मन से, तो अक्षत ने कराया पूरा पर्ल कलर का, फिर वो देखती है कि कहीं पर्दे का हवा का झोंका आता है और उसके बाल उड़ते हैं, तो उसको याद आता है कि अक्षत कहता कि रंगोली तुम्हारे बाल कितने सुंदर है ना, एकदम मतलब मुलायम हो, ये रेशमी और ब्राउन कलर के, वैसे सब तो अपने आंखों पे उसके बाल भी छा लेता, तो कहती अक्षत बाल तुम्हारे भी तो कितने सुंदर, तुम रोमन गॉड जैसे दिखते। और अचानक वो सोचते सोचते दर्पण के सामने चली जाती है और देखती कि उसके सिर पे बाल नहीं है, क्योंकि केमोथेरेपी से बाल चले गए, तो 6 महीने पहले उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और इससे तो वो मतलब रोते रोते सो जाती। थोड़ी देर में उसको स्पर्श महसूस होता है, तो देखती अक्षत तुम कहाँ, अक्षत तुम्हारे बाल कहाँ गए, तो वो बोलता है नहीं वो चलो सॉरी आज चलो खाना भी लगा है और तुम्हारा वीट जूस भी बना हुआ है। तो तब वो देखती तो बोलता है कि बस वो मतलब उसको मतलब वो बहुत प्यार से सताता है, तो वो सोचती कि आज जो रंगोली है वो अक्षत के प्यार से सज गई है, मतलब ये कि पति जो है उसके लिए उसने अपने बाल भी, जब तक उसकी पत्नी के बाल नहीं आएंगे वो भी बाल ऐसे ही रखेगा। तो ये जो चीजें होती है ना कि मतलब एक पॉजिटिव संदेश मैं देना चाहती हूँ। आजकल मैं लघु कथाओं, मतलब मैं लघु कथा शोध केंद्र बॉम्बे की अध्यक्ष बनी हूँ हाल ही में, तो हम लघु कथाओं पे बहुत काम कर रहे हैं, और आजकल की लघु कथाएं जो एक संदेश देना चाह रही है वो बहुत पॉजिटिव संदेश देती हैं, कि अब उसमें नेगेटिविटी नहीं हो, एक पॉजिटिव संदेश के साथ में अपनी लघु कथा को खत्म करिए, तो आजकल हम लोग वो कर रहे हैं।
2: कई बार हम सोशल मीडिया पे भी और अपने आसपास जिंदगी में बहुत चीजें देखते हैं लेकिन उन्हें भूल जाते हैं, कहते हैं ना आजकल की रात गई बात गई जैसे हो जाता है, एक न्यूज आई दूसरी न्यूज चली गई, लेकिन जब लघु कथा के रूप में हम उन्हें सुन रहे हैं तो मुझे लगता है वो छाप छूट जाती है, वो चीज फिर वो हमारे अंदर वो हमारा हिस्सा बन जाती है कहीं ना कहीं, बहुत प्रेरणादायक कहानियां हैं।
1: आपने जैसे बात की, आपको याद है ना बचपन में हम सब ने कहानी सुनी ना कि एक पिताजी थे, उन्होंने अपने बच्चों को बोला एक लकड़ी का गट्ठर दिया कि तोड़ो, है ना,
2: बिल्कुल,
1: तो वो कोई नहीं तोड़ पाए, जब अलग अलग करके तोड़ा तो तोड़ दिया, तो उन्होंने कहा यही चीज सिखा, तो कथा के माध्यम से वो बात हमेशा आपके जहन में, जैसे आपने कहा बिल्कुल वही बात है कि हमारे जहन में अंकित हो जाती है, हमारे अंदर अंकित हो जाती है, हमें याद आती है। मैं अपनी बेटी को ना बचपन में और बेटे को भी एक कहानी सुनाती थी, हम लोग मारवाड़ी हैं, हल्दी मल्दी सटवा सूट, अच्छा। कि सटवा सूट जो है वो थोड़ी सी बिटर है, दो बहनें हैं, तो हल्दी मल्दी सबका भला करती है, तो जब हल्दी मल्दी अपनी नानी के घर जाती सबको मिलती सबका भला करती जाती, तो जब वो लौटती तो उसको बहुत सारे गिफ्ट मिलते। सटवा सूट भी कहती कि मैं जाऊंगी और सबको, तो जो भी बोलता क्यों मैं, क्यों वो तो थी हल्दी मल्दी, मैं हूँ सटवा सूट, मैं नहीं करती तुम्हारा काम, अब वो आती तो उसको कोई कुछ नहीं देता। तो मेरी बेटी आज भी मम्मा मैं आपकी हल्दी मल्दी हूँ ना, तो ये हमें ना इस तरह की संस्कार कहानियों के माध्यम से हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। और बिल्कुल आपने सही बात बोली कि आप भाषण देंगे ना कोई नहीं सुनेगा, उसको इंटरेस्टिंग वे में बता के कहिए तो आपको लोग जरूर सुनेंगे,
2: जरूर सुनेंगे। तो कहानियां और पढ़िए और सुनिए और सुनाइए, है ना, भारत की तो मतलब मुझे लगता है भारत में तो कहानियां बसती हैं हर कोने में,
1: बिल्कुल
2: हर भाषा में, हर लोकगीत लोक कथा में, बहुत कुछ है सच में. तो आपने आज हमें वापस मुझे लगता है जोड़ दिया, जहाँ से हम थोड़ा दूर भी निकल आए थे, तो वापस उन कहानियों की ओर अब बढ़ जाएंगे. अलका जी, क्या कोई और आपकी ऐसी कविता या कोई एक ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप शेयर करें?
1: बिल्कुल सुना दूंगी आपको. वैसे लता दीदी पर भी एक, जब वो लता दीदी तो गजल तो मैं गा के तरन्नुम में तो अभी नहीं सुनाऊंगी
2: जी,
1: पर एक है ना ये, आजकल हम पर्यावरण के लिए बहुत परेशान मतलब हैं. देखिए तो मैं सुना देती हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं सुनाऊंगी कि जहाँ पर कहीं पर नेगेटिविटी हो.
2: okay.
1: एक ये बॉम्बे में आतंकी हमला हुआ था है ना, तो उस समय अच्छा मैं एक चीज और बताती हूँ कि मैं जब बहुत दुखी होती हूँ ना और गुस्से में होती हूँ तो मेरे भीतर से कविता निकलती है, सिलसिलेवार जिंदगी कहानी बनती है. और मैं व्यंग भी लिखती हूँ, मेरे जैसे आपने व्यंग संग्रहों के नाम भी लिए, तो विसंगतियां व्यंग बन जाती. तो जब ये आतंकी हमले हो रहे थे लगातार, और हमारे भी बहुत परिचित लोग थे जो उसमें मारे गए थे, तो उस समय मैंने एक सिम्बॉलिक कविता लिखी थी कि मैं उसको कुछ तरन्नुम में भी गा के थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ. एक चिड़िया

बीच हरियाली छाई थी, खिले थे सुंदर फूल, तितलियां रंग बिरंगी उड़ रही थी उड़ रही थी। माँ तोती ने दरख्त पे बनाया एक घरवंदा, सुरक्षित रख कर बच्चे उसमें निकल गई लेने दाना। पर अचानक कहीं से आया एक कठफोड़वा, ये कठफोड़वा वो आतंकवादी है, चोंच

बच्चे चीखे डर डर के, तितली के पंख गिरे कट कट के, हरियाली बदली पतझड़ में, फैल गया आतंक, मिट्ठू न जाने कहाँ गुम हो गया, तितलियों ने उड़ना छोड़ा, हो गए फूलों के रंग सभी बदरंग।

0: सच में वो उस इंसिडेंट ने, उस घटना ने हम सबको हिला दिया था, अंदर से झंझोर दिया था.
1: मुंबई का जो आतंकी हमला था
0: वो भूल नहीं सकते. और ये जो आपने कविता सिंबलाइज करके उसको, जो वो हम भावनाओं को प्रकट किया, ये एक लेखक ही कर सकते हैं कि उस प्रकार से भी उस बात को कहा जाता है, हम सोच नहीं सकते. आपका बहुत बहुत धन्यवाद है अलका जी. मुझे लगता है आपकी इतनी कहानियां, इतनी सारी बातें हैं, अभी संभव नहीं है सब कुछ इन एक घंटे में समेट पाना, लेकिन फिर भी जो आपने जो आज सुनाया है वो हमारे सिर्फ आज तक नहीं, मुझे लगता है आगे तक वो प्रेरणा बन के हमारे साथ रहने वाला है.
1: मैं अगर एक मिनट होगा तो खाली आदर्श, एक हमने फिल्म लिखी थी और आदर्श पे फिल्म के ऊपर हमने नॉवेल लिखी थी.
0: अच्छा.
1: तो उसमें मैंने क्यों इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर उसमें एक न्यूक्लियर फैमिली, जो एकल परिवार होते हैं ना, एकल परिवार का बच्चा कैसे अपने आप को, कई बार तो हम बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती तो वो कुछ ऐसा होता है, तो ये जो है परिवारों को बचाना कैसे जरूरी. तो आदर्श फिल्म जो है उस तरह से वो मैंने लिखी थी और वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. बल्कि मैं तो चाहूंगी मैं आपको लिंक भेज दूंगी अपनी,
0: जरूर जरूर,
1: तो आप
0: जरूर
1: वो देखिएगा. तो मुझे लगता है कि ना हम लेखकों का एक दायित्व ये भी है कि सिर्फ लिखने के लिए ना लिखें, है ना, एक कुछ ना कुछ बदलाव और जो कृतित्व और व्यक्तित्व है ना लेखक का वो एक हो, ये मैं चाहती हूँ कि आप लिख कुछ रहे हैं कुछ वो मत करिए, जो आप हैं वो लिखिए और समाज में बदलाव की चेतना के लिए जरूर लिखें. आप समाज सुधारक नहीं है हम, पर कोशिश करें कि कुछ तो बदले, कुछ तो अच्छा लिखे हम. तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपके रेडियो मधुबन में, और क्योंकि यहाँ बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हम लेकर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे हम कि प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम आगे भी जुड़े रहें और अपने घरों में भी उसी शांति के प्रकाश को फैला सकें. आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है, आपकी मुस्कान के लिए मैं आपको बाद में कविता लिख भेज दूंगी. बहुत बहुत आभार आपका.
0: अलका जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय आपने निकाला हमारे.
1: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद.
0: थैंक यू सो मच. तो दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो गया इजाजत लेने का, लेकिन मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि आज कुछ आप अपने साथ जरूर लेकर जा रहे होंगे, कुछ ऐसा जो आपको जीवन के सफर में मददगार साबित होगा. फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। आज 21 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, बच्चे भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में अंतर क्या है? बाबा कहते, भक्ति मार्ग में गाते हैं, ज्ञान मार्ग में समझते हैं, वहां पुकारते हैं, यहां बाप आकर हर बात की समझाने देते हैं, सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं, अर्थात गीता ज्ञान देते हैं। जिस गीता ज्ञान को धारण करने से तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। बाबा कहते, दुनिया में गीता भवन बहुत है, जहां गीता पाठी होते हैं जो बैठकर सुनाते हैं, लेकिन यहां पर हर बात को समझ करके जीवन में धारण करना है। कभी भी कोई भी बात सुनी सुनाई बातों को आधार नहीं बनाना है, लेकिन तुम डायरेक्ट सुना करके आप समान दूसरों को भी नॉलेजफुल बनाते हो। बाबा ज्ञान का सागर आकर के हम बच्चों को जो ज्ञान की बातें समझाते हैं उसको यथार्थ रीति समझ करके फिर दूसरों को भी सुनाकर आप समान बनाना है। तो बाबा कहते हैं, अवस्था अपनी ऐसी मजबूत बनाओ जो अचल अडोल बनो। ऐसे नहीं कि छुई मुई बन जाए, कोई भी बात आए तो एकदम छुई मुई होकर के अवस्था गिर जाए, ऐसे कभी नहीं बनना है। इतना नाजुक कभी नहीं बनना है, लेकिन ज्ञान मार्ग में ज्ञान की एक एक बातों को जानते हुए समझते हुए तुम्हें अपनी अवस्था को मजबूत अचल अडोल बनानी है। ऐसे महावीर बच्चे बाप को भी प्रिय है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए, अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? उत्तर है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे, अपने जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे, थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल अडोल स्थिर, उन्हें ही महावीर कहा जाता है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है, तुम बच्चे अभी समझते हो। इतना अंतर हो गया, पहले सिर्फ गाते हैं, अभी हर बात को समझते हैं। भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे, अब वही भोलानाथ सन्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। तुम समझते हो अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार, अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे ये पुरुषार्थ कराना ही है। कल्प कल्प पुरुषार्थ कराते आए हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की है यह भी सिद्ध कर बतलाते हैं। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। सत्युग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते हैं, पूरी राजधानी होगी, उनकी डिनेस्टी भी है ना, उसको कहा जाता है दैवी वर्ण। भारत में दैवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है,
और यह है संगम। अब आसुरी से दैवी वर्ण में जाना है, बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है। सिर्फ नाम शिव के बदले श्री कृष्ण का डाल दिया है। महाभारत के समय ही गीता ज्ञान सुनाया तो बाबा कहे सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएं व गीता भवन कितने हैं? गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला, खुद सुनाने वाला है नहीं। जो होकर जाते हैं वह फिर गायन चलता है। स्वयं भगवान सुनाने वाला है नहीं, जो सुनाया तो वो फिर गायन चलता है। बच्चों को तो रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते हैं, जो बाबा कभी गुस्सा नहीं करते हैं, सदैव प्यार से समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चे तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो, तुम भारतवासी ही असल देवी देवता धर्म के हो। यह भी बतलाते हैं पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे। यह भी बाबा बताते कि पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे, कौन आएंगे? जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही कहेंगे बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। यह तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राम राज्य यहां ही होता है। भारत पर ही रावण राज्य राम राज्य ये दोनों यहां ही होता है। रावण राज्य है तब तो राम राज्य चाहते हैं। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि राम राज्य की चाहना क्यों होती है, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। इसीलिए दिखाते हैं कि ये दुनिया इस समय रावण राज्य है। इसकी निशानी क्या? तो कहा जाता है कि रावण कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था। रावण जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं था, रावण जैसा शक्तिशाली भी कोई नहीं था, और रावण जैसा धनवान भी कोई नहीं था। तो जो जीवन की चारों बातें चाहिए रावण के अंदर थी, ऊंची जाति, ज्ञानी पुरुष, शक्तिशाली और धनवान। अर्थ बल बुद्धि और भक्ति सब कुछ रावण के पास था, लेकिन दो कमजोरी थी, अहंकार चरम सीमा पर और चरित्र भ्रष्टता आ गई जो सीता को चुरा कर ले आया। आज की दुनिया को रावण राज्य बाबा इसीलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी माना जाता है, ऊंची जाति का है। मनुष्य जैसा ज्ञानवान कोई नहीं। आज मनुष्य के पास कितना नॉलेज है। मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई प्राणी नहीं, मिसाइल पावर है। मनुष्य जैसा धनवान कोई नहीं। तो अर्थ बल बुद्धि और भक्ति सब कुछ मनुष्य के पास है, लेकिन आज के युग में भी दो बातों की कमजोरी मनुष्य जीवन में आ गई है। अहंकार चरम सीमा पर है और दूसरा चरित्र भ्रष्टता, काम विकार के वशीभूत है। तो ये दो कमजोरी के कारण ही परमात्मा राम को इस संसार में आकर के इस रावण राज्य को समाप्त करना पड़ता है, इस रावण को जलाना पड़ता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं
राम राज्य की चाहना इंसान को कब होती? जब रावण राज्य है तभी तो चाहना भी होती है। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार के तरफ ही जाती है, निराकार ही याद आता है, आत्मा ही बाप को पुकारती है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं, बाप समझाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए तो मैं शरीर में आता हूं, ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूं। भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है, ये समझने की बातें हैं। वह समय आता है बच्चे पुकारने लगते हैं, ये तो कहां लिखा हुआ नहीं है कि कब आएंगे, उन्होंने कल्प की आयु ही रॉन्ग लिख दी है। ये चित्र घर घर में होने चाहिए। कौन से चित्र? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और लक्ष्मी नारायण के, जो रोज देखे और याद करे कि ये बाबा, ये दादा और ये वर्षा। बाप कहते बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, ये युक्ति बाप ही समझाते हैं। ये बाप भी कहते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूं, बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ये चित्रों की समझाने बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, सामने महाभारी महाभारत लड़ाई खड़ी है, इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए। ये बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुग घोर अंधियारा है, कितने ढेर मनुष्य है, जरूर विनाश होना है। सतयुग में एक धर्म होगा, जरूर 84 जन्मों का चक्र भी उन्होंने ही लगाया है, ये तो सहज है। बाकी इतने सब धर्मों का जरूर विनाश होगा, फिर एक धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। सर्व का सदगति दाता बाप है, बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं हम जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं वह भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। भगवान वाच, मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है, जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं

इन मदर फादर को फॉलो करो, इनों को सूक्ष्म वतन वैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो, हम भी महाराजा महारानी बनते हैं, हम भी महाराजा महारानी बनते हैं, वैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है, मानते भी है, बच्चे मानते भी है, बरोबर भारत वैकुंठ था, श्री कृष्णपुरी थी, आज कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी होगी, रात बदल दिन होना है, यह है आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। अंधेरे में ठोकर ही खाते रहते हैं, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सत्युग में ब्राह्मण होते नहीं, देवता होते हैं, यह भी बच्चे जानते हैं। भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अब पवित्र राजस्थान बना है, भारत सदैव राजस्थान रहा है, राजाओं का स्थान रहा है, राजाएं चलती आती है, सत्युग से लेकर राजाएं चलती आती है, और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती है, भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं, भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, वह है निराकार ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तुम जानते हो बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है, जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है, तब तो बाबा के विनाश नहीं होता है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे, बाप कहते मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर है तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए। कोई कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में ये पैगाम देते रहेंगे। बाप भी कहते हैं कि पैगंबर और मैसेंजर मैं हूं, तुमको मैसेज देता हूं कि घर चलो। और धर्म स्थापक तो सिर्फ आते हैं, इसलिए आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। मैं सबको मैसेज देता हूं कि अब वापस चलना है, ये दुनिया अब रहने के लायक नहीं है, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पावन बनाने आया हूं। थोड़े समय में ही ये बॉम्ब्स आदि चलेंगे तो समझेंगे ये वही महाभारत लड़ाई है। तो जरूर भगवान भी होगा, परंतु वह समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। कितनी मूंझ है, इतना कंफ्यूजन है। मूंझे नहीं होते तो भगवान को आने की क्या दरकार। मूंझे ये भी तो कल्याणकारी है कि भगवान आ जाते हैं। भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करने से सब भूले खत्म हो जाएगी। आगे अपने को देह समझते थे, अब अपने को देही समझते हो। कितना अंतर हो जाता है समझ में ही। ये सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चों देही अभिमानी बनो। यहां तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, वहां सेंटर्स पर बच्चियां बैठ समझाएंगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यहां तो डायरेक्ट बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं। यह बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते निरंतर मुझे याद करो, बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, बाप और स्वर्ग को याद करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना बन जाएगा। विकर्म कराने वाली है माया, उस पर जीत पानी है।
इसलिए हनुमान महावीर की कथा है। तुम हनुमान महावीर हो ना, हम तो बाबा के बन गए। माया से हार नहीं सकते तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विकर्मा जीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वह अपने जीवन पर तरस खाते हैं कि कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है, सबके काका चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब खत्म हो जाते हैं। सतगुरु कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है, तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे। कहते हैं ना काल खा गया, परंतु मैं तो तुमको शांति धाम में ले जाता हूं। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है, काल नहीं ले जाते हैं, आत्मा को निकलना होता है। अब तो मैं खुद आया हूं तुमको वापस ले जाने। बाबा कोई मारने आया है क्या? नहीं, तुमको पुराना शरीर छोड़ना है, आत्मा तमो प्रधान से सोतो प्रधान होनी है। अब पांच तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं। वहां सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी गोरे बनेंगे। बात कहते मैं फिर से, सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूं। तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं, तुम अपने धर्म को भूल गए हो। और कोई अपने धर्म को भूले नहीं है, तुम अभी जानते हो हम असल में देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच से फिर नीच कैसे बन जाते हैं। बाप बैठ कल्प कल्प तुमको ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते रहेंगे। अब 84 का चक्र पूरा होता है, विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है, वह बनना है याद से। सुबह को उठ बाबा को याद करो। कैसे याद करेंगे? बाबा वंडर है, आप कैसे आते हो, कैसे आप सन्मुख बात कर रहे हो। वह है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो। आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार में आकर मिलते हो। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। यहां तो वह निराकार बाप है गुप्त, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद कर मिलो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं, बाबा कहते तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं, बे अभिमान में आ जाते हैं। प्रतिज्ञा भी करते बाबा मैं आपका हो चुका हूं। मेल चाहे फीमेल दोनों की आत्मा कहती है, परंतु शरीर में है तो मेल कहता है आपका बन चुका हूं। फीमेल कहेगी मैं बन चुकी हूं। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे। याद बिगर कट निकल नहीं सकती। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज्य मिलता है। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देंगे। गाते भी है परवाथी पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा की, वह तो एक ही बार आते हैं। यह भी समझने की बातें है ना, कहीं तो समझते ही नहीं है। आगे चल आंखें खुलेगी। बाबा कह नहीं समझते हैं, आंखें बंद है, आगे चल आंखें खुलेंगी। थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे, वास्तव में ये यज्ञ रचा हुआ है, लड़ाई भी है, इस यज्ञ का किसको भी पता ही नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था कि विनाश हो, वह फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश न हो।
शांति हो जाए। ये यज्ञ